0: क्यारियों को रिच बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल

0: रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें, इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर,
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को समर्पित यह गीत। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता और महेश को संहारकर्ता कहा गया है, लेकिन आप वास्तविक जीवन में आइए तो हमारे किसान बंधु को पालनकर्ता क्यों नहीं कहा जाए? विश्व के समस्त प्राणी, चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, धरती पर चलने वाला मानव हो या जल में विचरण करने वाला जीव जंतु, यदि किसान नहीं होते तो इनका अस्तित्व मिट जाता। तो आइए, इन किसान बंधु के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने काफी हद तक प्रयास किया है, जिसको गीत के माध्यम से आप सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम में मिट्टी को स्वस्थ बनाने के बारे में विशेष चर्चा करते हैं और हम आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पर बात करेंगे सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में। और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से। और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है?
1: जी तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है। इसमें असंख्य जीव विद्यमान है। उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है। तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारी कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में। तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है, उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं। और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं, और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है, और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कैसे? क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कंप्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है, जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है, जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है। और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं, वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है, उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और उसको जोड़ने का काम करते हैं, और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है। तीसरा चीज है जो सूक्ष्म जीव करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जीवाणु पॉलीसेक्रेड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे। उसमें हवा का आवागमन जो है वो गैस का जो एक्सचेंज है उस मिट्टी में ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है जो सूक्ष्म रीड और रंध्र और बृहत रंध्र जो है वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है और उससे पौधा को सांस लेने में या हवा गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं। तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं, और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व यानी सूक्ष्मजीव जीवाणु का महत्व न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्मजीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व खास करके उसमें जो बृहत पोषक तत्व है जो प्राथमिक बृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्मजीव जीवाणु का रोल क्या है, तो वो क्या करता है जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है और उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है तो उसको क्या करता है ये जीवाणु जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होता है, अमाइनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा और उस अमाइनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, कुछ ये सुडोमोनास स्पेसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमाइनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है बहुत सारे फसल जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है, कुछ जो है जैसे धान हो गए तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है, नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, तो हम देख लिए। तीसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है, उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्म जीव जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, ये जो टोबैक्टर हो गया, ये जो एस्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम एन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं उसको भी ऑब्जॉर्व करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी ऑब्जॉर्व करते हैं, और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम क्या करता है, तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से, और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजो एस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रिडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है, मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है, उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज़ है कि वो जो है सूक्ष्म जीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे, तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है, मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है, वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ, आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फॉस्फोरस या तो H2PO4- और HPO4- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, मिट्टी में जाते ही इमिडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है, तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्म जीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्म जीव जीवाणु का हम माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फॉस्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में, एनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज नेक्स्ट चीज है कि जो सूक्ष्म जीव जीवाणु है वो क्या करते हैं, तो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्जीन हो गया, इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं। और ये रिलीज करने से क्या होता है, पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिवीजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है, और उसके साथ साथ एक ACCDMNase एंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु। और वो क्या करता है, तो इथिलीन जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधा में असमय मैच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है सूक्ष्म जीव जीवाणु है, ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए, उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्म जीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं BT बैसुलस थुरिंजेनेसिस, ये क्या है, ये भी रोग के रोकथाम में, पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग, जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज़ में, बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो, या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्म जीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष, जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में, भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
0: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है, और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
1: जी जी धन्यवाद। अब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों, मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा, शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया, और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसानों के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा, बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है, जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है, वायुमंडल का जो प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का जो सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल, लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है। जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती है, यानी अंकुरण अच्छा होता है। जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है और इसी को किसान, इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है राइजोबियम, राइजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है दलहनी पौधों में, दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है, जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट पीएसबी के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है जो जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है जो पीएसबी बायोफर्टिलाइजर है और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं पीएसबी को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे देखा गया कि लगभग 15-40 केजी तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है और जब उससे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी। रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे उस मात्रा में, उसका क्वांटिटी घटाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जैसे राई चावल में यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में ये जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20-25 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का, तो वो क्या करते हैं उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है। जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेड़ को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5-7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लगा होना चाहिए और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल इसको बोलते हैं या ब्लू ग्रीन अलगी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे। और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर, नीलहरी शैवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो भी क्या करते हैं, वो फास्फोरस को अवेलेबल कराने में, माने फास्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है पौधा को अवेलेबल कर, उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। और ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में और व्हीट मेज राइस वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फास्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गए कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं और उसको अच्छा से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में या सब्जी के केस में या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचरा जो 20-21 दिन का बिचरा हो जाता है उसको लगाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचरा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचरा के उपचार के लिए भी हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सॉल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचरा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सुटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये विधि है जिसको हम बिचरा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचरा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, दो 70 से 80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें। तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है उसकी मात्रा बढ़ेगी और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट होकर के जो अपना काम है, जैसे पोषक उपलब्ध पोषक तत्व उपलब्ध कराना या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना या फैटो हार्मोन उपलब्ध कराना या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है। तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं और उपचार करके उसको लगावेंगे तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल के वृद्धि में और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में हमको सुधार आता है और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है, ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है। जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ। इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में, वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है। 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वायबिलिटी अच्छी होती है। और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा, तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें ज़्यादा अच्छा। उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उसको मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सनलाइट से, तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद
0: सर, आपने सूक्ष्म जीव जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
4: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रखो,
4: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
7: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
8: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि।
2: हेलो नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 एफएम ग्रीन पर। हर रोज की तरह हम कुछ खास लेकर आते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। उन्नत कृषि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इसमें आप जानते हैं खेती से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तो आज भी बहुत ही खास बात है हमारे साथ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, और ये हैं प्रधान अन्वेषणकर्ता मखाना अनुसंधान परियोजना, और ये है भोला पासवान शास्त्रीय कृषि महाविद्यालय पूर्णिया से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: और धन्यवाद मैडम।
2: और जैसा कि अभी हमने बात किया है डॉक्टर साहब से और बातें भी की, तो मुझे तो बहुत सारे जो अनुभव हैं वो मिले हैं मखाना के बारे में, और मखाना की खेती बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि, और साथ ही प्रेरित करें कि मखाना की खेती से क्या फ़ायदा मिल सकता है उन्हें, ये कैसे लाभदायक है, और साथ ही इसकी खेती से क्या क्या मुनाफा मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को।
3: देखिए, जो जल जमाव क्षेत्र है बिहार में 9.12 लाख हेक्टेयर जल जमाव क्षेत्र है, और भागलपुर में जब आप 0 माइल से आगे बढ़ेंगे, पुल क्रॉस करेंगे तो नौगछिया पहुंचने से पहले देखेंगे बाएं साइड में बहुत बड़ा एरिया है जो जल जमाव से ग्रसित रहता है, उसमें जलीय खरपतवार भरा हुआ है। तो उन क्षेत्रों में जहां हम पानी ज़्यादा अधिक आ जाने से कोई खेती नहीं कर पाते हैं, उसके लिए मखाना एक बेहतर विकल्प है।
2: अच्छा।
3: अब हम बात करते हैं कि इसकी खेती किन किन परिस्थितियों में की जाती है और इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जमीन की 3 स्थिति है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें जुलाई महीने में 1 से 2 फीट पानी आता है और वो अक्टूबर महीने में सूख जाता है, वहाँ पे हम मखाना को खेत पद्धति में करते हैं। जो दूसरी पद्धति है कि जुलाई महीने में 3 से 4 फीट पानी आता है और वो दिसंबर जनवरी में जाके सूखता है, और तीसरी परिस्थिति है कि जुलाई महीने में 7, 8, 10 फीट तक पानी आता है और वो सालों भर जलमग्न भरा रहता है, जलीय खरपतवार से आच्छादित रहता है। तो इन क्षेत्रों की उत्पादक क्षमता वृद्धि के लिए मखाना एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। तो अब बात करते हैं जो दूसरी परिस्थिति, जो पहली परिस्थिति थी उसमें हम लोग खेत पद्धति में मखाना की खेती करते हैं, जो आपको पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है और किसान काफ़ी लाभ कमा रहे हैं। इसकी जो उत्पादन क्षमता है बहुत ही अच्छी प्रजाति की बीज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा विकसित की गई है, जिसका नाम सबौर मखाना 1 है। इसकी उत्पादन क्षमता 32 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
2: अच्छा।
3: अब हम विशेष रूप से यहाँ पे ये कहना चाहेंगे किसान भाइयों को कि सबौर मखाना के बीज की उपलब्धता भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में उपलब्ध है। ये आपको बीज की उपलब्धता अगस्त महीने से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने तक उपलब्ध रहता है, और बीज की उपलब्धता 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बीज को बेचा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कब और कैसे किया जाए। तो खेत पद्धति में मखाना की खेती के लिए हम सबसे पहले जितना हमारा क्षेत्रफल में मखाना लगाना है उसके 1/10 भाग में

0: पौधशाला का क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, उसमें हम लोग नर्सरी में 1 फीट पानी का लगाते हैं और ये काम बुआई का, बीज बुआई का काम दिसंबर महीने में पूर्ण करते हैं।
1: अच्छा।
0: 1 हेक्टेयर खेत के लिए आपको 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी, जो कि सबर मखाना वन बीज है, उसको हमने पहले ही कहा है आप लोगों को। इसमें आप क्या करेंगे, नीम आधारित कोई भी दवा जो बाजार में उपलब्ध है उससे इसके बीज का शोधन करने के बाद आप उसमें कीचड़ तैयार करके उसको छिड़काव कर देंगे।
1: अच्छा।
0: ये पौधा आपको 35 से 40 दिन में आपके पानी के सतह पे दिखाई देगा, छोटे छोटे पत्ते, तांबे रंग का पत्ता दिखाई देगा। 65 दिन के बाद ये पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो पौधे की रोपाई होती है वो फरवरी मार्च महीने में होती है।
1: अच्छा।
0: खेत की तैयारी अब हम कैसे की करते हैं उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो जिस तरह से किसान भाई धान के फसल के लिए खेत की तैयारी करते हैं, बस सेम प्रक्रिया यहाँ भी है। धान के खेत की तरह खेत को तैयार कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपका मेड़ का जो ऊंचाई है वो कम से कम 1 फीट होना चाहिए और अधिकतम हम लोग मखाना की खेती 6 फीट तक के पानी में, 7 फीट पानी तक मखाना की खेती कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम खेत की तैयारी करने के समय कितना कितना रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करें। तो इसमें नत्रजन, फास्फोरस, पोटास 75-45-30, यानी 75 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम पोटास और 75 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से होती है।
1: अच्छा।
0: बुआई के इसमें खेत तैयारी के आखिरी समय में आप इसमें प्रति हेक्टेयर 40 से 50 किलोग्राम चूना अगर मिला देते हैं तो लावा बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अब बात आती है खेत की तैयारी तो हो गई, अब पौधे को किस तरह से और कितनी कितनी दूरी पे लगाया जाए। तो पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी 1 मीटर से 1.25 मीटर के बीच में रखी जाती है, जिससे बेहतर उत्पादन प्राप्त होता है। अब पौधा लगाने के 35 से 40 दिन के बाद आप में थोड़ा कहीं कहीं इसमें एक अल्टरनेरिया पत्ता गलन की बीमारी आती है, उसमें हम किसान भाइयों कहेंगे कि आप एक नीम सीड कर्नल ऑयल, यानी नीम तेल एक दवा आता है, चाहे नीम आधारित कोई भी दवा जो बाजार में उपलब्ध है
1: उसको आप निम्बिसिडीन,
0: नीम सीड कर्नल ऑयल, नीम का तेल जो भी बाजार में उपलब्ध है उसको आप क्या करेंगे कि 5 से 7 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके उस पे आवश्यकता अनुसार 10 दिन के अंतराल पे छिड़काव करेंगे तो आपका मखाना में किसी तरह का कोई बीमारी और कीट नहीं लगेगा। मैं नीम आधारित तेल का इस्तेमाल दवा का इसलिए कह रहा हूँ कि पानी में बहुत ही लाभदायक जीव जंतु भी होते हैं, उनको रासायनिक अगर कीटनाशक दवा इस्तेमाल करेंगे तो उनके इकोसिस्टम पे उनके खराब पड़ेगा
1: जी।
0: इसमें मछलियां भी रहती हैं, मछलियां भी मरने का डर रहता है, लेकिन नीम आधारित दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें किसी तरह का कोई किसी तरह का हानि होने का संभावना नहीं रहता है। अब बात आती है कि मखाना के खेती में हमने किया, अब बात आती है कि हमको कितना उपज प्राप्त होगा। तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं और जो मखाना की बोराई होती है वो आदमी द्वारा किया जाता है और 1 हेक्टेयर खेत से आपको 30 से 32 क्विंटल उपज गुर्री, जिसको मखाना के बीज को गुर्री कहा जाता है स्थानीय भाषा में, तो 30 से 32 क्विंटल गुर्री प्राप्त होता है। 1 हेक्टेयर की खेती करेंगे आप तो आपको 80 से 85 हजार रुपये खर्च आता है और शुद्ध मुनाफा जो आता है आपको 1,25,000 से लेकर के 1,40,000 के बीच में शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। ये तो खेत पद्धति की बात है। आप खेत आपका जो खाली हो जाएगा वो जुलाई महीने में खेत खाली हो जाता है, उसके बाद आप उसमें धान लगा सकते हैं या धान के खरीफ फसल में आप तीसी, मसूर, खेसारी, केराव, बांकला इन सब चीज़ों को छीट करके काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि खेत पद्धति में तो जहाँ पे जुलाई महीने में 1 से 2 फीट पानी आया है और अक्टूबर महीने में सूख जाता है, वहाँ के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल प्रणाली है जिससे सबसे अधिक उपज प्राप्त होता है वो है मखाना और सरसों। मखाना के खेत में नमी बगैर जुताई के आप सरसों के छिड़काव कर दें तो एक बेहतर उत्पादन और प्राप्त होता है।

0: और मखाना के खेती में सबसे खास बात क्या है कि हम लोग केवल इस फसल से केवल बीज निकालते हैं, बाकी पौधा का जितना भी प्लांट पौधे का जो भाग है वो खेत में ही सड़ जाता है, जो आने वाले फसल के लिए ऑर्गेनिक खाद के रूप में ऑर्गेनिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब तालाब पद्धति की बात हम करते हैं कि मखाना की खेती तालाब पद्धति में जब हम करते हैं तो उसमें मखाना के साथ हम लोग मछली का भी उत्पादन कर सकते हैं। मछली का उत्पादन जितना तालाब का क्षेत्रफल है उसका 1/10 भाग बीच में खाली जगह बांस के खूंटे के सहारे से छोड़ा जाता है, जिसको रिफ्यूज एरिया कहा जाता है। रिफ्यूज एरिया मछलियां पूरे तालाब में मूवमेंट करती है और रिफ्यूज एरिया में हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए उसमें मछलियाँ आरामगाह के रूप में इस्तेमाल करती हैं। मछली इसमें सबसे खास बात क्या है कि लोगों में भ्रांतियां हैं कि मखाना के साथ मछली नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। अच्छा। लेकिन नहीं, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि रेहू, कतला, मृगल ये तीनों जो इंडियन मेजर कार्प जो विजिटेबल मखाना है मछली है, इनको हम लोग पालन करते हैं कर सकते हैं और एक साथ हम दुगुना मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जो हमने पहले भी बताया है कि आपका कितना भी स्थिति खराब हो जाए तो 1,15,000 रुपये मखाना की खेती से मखाना से होना है और 1,25,000 रुपये आपको मछली से होना है। मछली में इसमें खाना देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि जब मखाना का जब फल फटता है तो उससे एक तरल पदार्थ निकलता है जिससे फाइटोप्लांक्टन का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और मछलियाँ उसको अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करती है, मछलियों का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अब बात आती है कि 1 हेक्टेयर तालाब में मखाना के खेत में हम कितने मछली के बच्चे को उसमें डालें, तो मैं आपको बताऊँ 3 इंच का फिंगरलिंग अप्रैल महीने में आप अगर डालते हैं तो 4,000 से 5,000 आपको फिंगरलिंग डालेंगे तो आपको बेहतर उत्पादन मखाना का भी होगा और मछली का भी होगा। अब मखाना सह मछली में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिन जल जमाव क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आता है उसमें आप अप्रैल महीने में मछली नहीं डालेंगे। जुलाई महीने में आप मखाना को निकाल लीजिए और खेत को खाली यूं ही रहने दीजिए। अक्टूबर महीने के बाद बाढ़ की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है कि अक्टूबर दुर्गा पूजा के बाद बाढ़ की संभावना नहीं होती है। तो 1 हेक्टेयर खेत में आप ग्रास कार्प, जिसमें जो 100 ग्राम का लगभग हो जाता है ग्रास कार्प मछलियां आप डालते हैं, मखाना के खेती के बाद जो जलीय खरपतवार का तेजी से बढ़वार होता है जल जमाव क्षेत्रों में, ग्रास कार्प उसको बहुत तेजी से खाता है और क्लीन कर देता है। अगर आप जो मखाना के खेत किए हैं जुलाई महीने में और आप उसको यूं ही छोड़ देंगे तो पुनः दिसंबर महीने में अगर मखाना के खेती करने के लिए आप जाएंगे तो वहां आपको मजदूरों साफ सफाई कराने के लिए कम से कम प्रति हेक्टेयर 32,000 से 35,000 रुपये आपको लेबर खर्च मजदूरी का खर्च लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें ग्रास कार्प डाल दिए हुए हैं अक्टूबर महीने में, तो अगर आप 3 क्विंटल डाले हैं तो जनवरी फरवरी में वो 6 क्विंटल में कन्वर्ट हो जाएगा बगैर किसी अतिरिक्त लागत का। आपका एक तो साफ सफाई की मजदूरी का बचत हुआ और दूसरी डबल मुनाफे भी हुए। तो एक हुआ कि मखाना के बाद मछली उत्पादन, और जहाँ पे जिन क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या नहीं होती है, तालाब हमारा पूर्णतः बांध से सुरक्षित है, उसमें हम लोग मखाना के साथ मछली करते हैं। एक है मखाना के बाद मछली और एक क्षेत्र है मखाना के साथ मखाना सह मत्स्य पालन। उन क्षेत्रों में भी हमने पहले ही कहा कि 1/10 भाग तालाब क्षेत्रफल का छोड़ना होता है और उसमें हम रेहू, कतला, मृगल डाल के अप्रैल महीना में डालते हैं 3 इंच का और उसको हम दिसंबर महीने में निकाल लेते हैं। तो आपके विपरीत परिस्थितियों में भी आपको मखाना सह मत्स्य पालन से अगर जो शुद्ध लाभ है वो आपको 2.5 लाख रुपए आने ही आने हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि मखाना की खेती आप कैसे कर सकते हैं। कठिन हो सकता है ये खेती, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, मुनाफा आपको बहुत ही ज्यादा होगा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया। तो बस यहाँ पर दिए गए सुझावों को और निर्देशों को आप समझें और जैसे आप खेती करना चाहते हैं उस तरीके से करें, और सुझाव तो आप सभी को यूं ही दिए जाएंगे। 90.8 FM ग्रीन पर आपकी खेती से जुड़ी बहुत सारी बातें हम लेकर आते हैं। उन्नत कृषि कार्यक्रम में, तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए आपकी आरजे अनु को। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा
9: दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे, या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित है। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
2: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
2: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों, तो

0: लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सू बबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HSBQ FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहाँ पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहाँ पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टी विटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90% और दोपहर में 60-80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8-10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10-15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी,
2: अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। आइए मित्रों, अब चलते हैं कक्षा 5 की ध्वनिशाला में।
1: मेरे बहुत बहुत बहुत प्यारे बच्चों, आपको उषा दीदी का नमस्कार। आज आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी को हुआ क्या है। पहले तो वे सिर्फ बोलती थी मेरे प्यारे बच्चों, और आज उन्होंने बहुत बहुत बहुत, वो भी 3 बार बहुत शब्द का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों, बात ही कुछ ऐसी है। आज मैं जो आपके साथ बतियाने वाली हूँ, वह दरअसल त्योहारों की बात है। अब जब बात त्योहार की हो तो मन झूम ही उठता है, और जब मन झूमने लगता है तो फिर हमें बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से आज बहुत शब्द मैंने 3 बार इस्तेमाल किया। किसी भी तीज त्योहार का नाम सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या बात आती है? अच्छा, आपसे पहले मैं बताती हूँ, किसी भी त्योहार का नाम सुनकर या त्योहार की बातचीत सुनकर जो सबसे पहले चीज मेरे दिमाग में आती है, वे हैं तरह तरह के पकवान। मुंह में पानी आ रहा है, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। अगर हम होली की बात करें तो क्या चीज जहन में आ रही है? गुजिया। और अगर हम दिवाली की बात करें तो खीर, मालपुए। ये तो मुंह में और पानी आ रहा है। और पूरे भारत देश में अलग अलग समय पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। पता है बच्चों, कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, यानी मौसम में परिवर्तन आया, फसल कटने का समय है तो बस त्योहार मन गया। त्योहार कुछ और नहीं, मन की खुशी है। बस हम अपने मन की खुशी को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगह पर त्योहार को मनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन मूल भावना एक ही है। और वह मूल भावना क्या है बच्चों? वही हम सभी से प्रेम कर सके, एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांट सके। तो आज हम बात करते हैं इन्हीं फसलों के त्योहारों पर। ये जो हम बातचीत करने जा रहे हैं आज, ये दरअसल एक घर में होने वाली बातचीत है। तो हम देखते हैं कि किसके घर में क्या हुआ। तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहां तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहां हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना। आज ई लोग के उठे के नईके का, बोल जल्दी तैयार होकस। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठांड हम पहले कब्बो न देखनी, सारा दे कनकना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, छक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुलके बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। पता है, उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। अरे आप क्या सोच रहे थे कि हम खिचड़ी खाने की बात कर रहे हैं? नहीं जी, हम तो खिचड़ी मनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जब खिचड़ी मनाते हैं तो खिचड़ी खानी पड़ती है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। पता है, झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है आदिवासी किसकी पूजा करते हैं? आदिवासी आम तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बचे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। एक और मजेदार बात होती है, मालूम है, घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरे का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। पता है बच्चों, धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। और तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। क्या मालूम है आपको, इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। प्यारे बच्चों, हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। पता है, यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पता है क्या कहते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया, इसके स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं, तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। प्यारे बच्चों, कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं पता है? कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। पता है कौन से आकार? जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। और पता है क्या गाते हैं? वे गाते हैं, कौआ आओ घुगुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने की घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। ऐसे गाते हैं गाना। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। पता है बच्चों, लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? बच्चों, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अरे आप कहाँ चल दिए? अभी तो कार्यक्रम चल ही रहा है। अच्छा, तो आपका मन कर रहा है कि हम जल्दी से रसोई घर में जाएं और खीर पुए और जो पकवान बने हैं उन्हें खाने बैठ जाएं। और पता है कुछ बच्चे तो जल्दी से जाना चाहते हैं छत पर, ताकि ढेर सारी पतंग उड़ाएं। पतंग को भी सुस्ताने का मौका दीजिएगा और आप पकवान मजे से खाइएगा। तो ये तो थे फसलों से जुड़े हुए हमारे त्योहार। आपको अब एक अंदाजा हो गया होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में फसलों से जुड़े हुए कौन कौन से त्योहार हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों, त्योहार अलग अलग तरीके से भले ही हम मनाते हैं, लेकिन हमारी भावना एक ही है। और इस एक अच्छी भावना के साथ एक और चीज है जो सब त्योहारों में एक जैसी है। वो क्या भला? वो है पकवान। अब चाहे कोई खिचड़ी बनाए, या कोई खीर बनाए, कोई मालपुए बनाए, या कोई कुछ भी बनाए, लेकिन पकवान तो जरूर बनते हैं। और उन्हें खाने में जो स्वाद आता है, बस पूछे मत। और यह लगता है कि यह त्योहार हम साल भर यूं ही मनाते रहें। किस लिए? इसलिए ताकि हमें रोज नए नए पकवान खाने को मिले। तो प्यारे बच्चों, आपने ये भी जाना कि खिचड़ी मनाने में और खिचड़ी खाने में फर्क है। खिचड़ी मनाने का मतलब है कि हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, यानी कि हम खिचड़ी बनाएंगे, ठीक है। और इस खिचड़ी मनाने में हम खिचड़ी खाते भी हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे क्या ज्यादा पसंद करते होंगे? बच्चे खिचड़ी खाना ज्यादा पसंद करते हैं या खीर खाना पसंद करते हैं? भाई मैं तो खीर खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। खिचड़ी खाने में तो मुझे कोई मजा नहीं आता। वो क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि खिचड़ी में होता है नमक और हमें तो मीठा पसंद है, तो कुछ मीठा हो जाए के नाम पर हमें खीर बहुत पसंद है। और अलग अलग बच्चे अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग पकवान खाते हैं, और अगर पड़ोसियों के यहाँ से त्योहार के दिन निमंत्रण आ जाए तो क्या कहने, हम पड़ोसियों के यहाँ जाकर भी पकवान खूब खाते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, हमने अलग अलग प्रांतों में रहने वाले अलग अलग त्योहार उनके तरीकों के बारे में जाना, लेकिन इस पूरी बातचीत में एक और अच्छी बात है, वो ये बात है कि जब हम अपनी बात कहते हैं तो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज ये लोग के उठे के नई के का, यानी कि एक खास तरह की भाषा है कि आज ये लोग उठे या नहीं, तो ये बात किसके लिए कही गई है? बच्चों के लिए। उठ के नहीं देते हैं बच्चे, कोई त्योहार हो कोई काम हो, इतना ही नहीं परीक्षा भी हो, उठने में अक्सर वे आनाकानी करते हैं, बस पांच मिनट करके करवट बदलते रहेंगे लेकिन उठेंगे नहीं। तो ये बात बच्चों के लिए कही गई है कि आज ये लोग उठे हैं या नहीं। आपने दूसरा वाक्य भी सुना होगा, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, यानी कि जाओ भाग के देख कराओ केरा के पत्ते आ गए या नहीं आए। तो ये जो दो बातें आपने सुनी है, इसे आप खुद अपनी भाषा में बोलकर देखिए। एक और बात है बच्चों, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। हमारे पास विविधता के और कई बड़े पैमाने भी हैं, जैसे हमारी भाषा अलग है, हमारे कपड़े अलग हैं, हमारे पहनने का सलीका अलग है, हम नया वर्ष भी अलग अलग समय पर मनाते हैं, हमारा भोजन भी तो एक जैसा नहीं है, हमारी लोक कला भी एक जैसी नहीं है और लोक संगीत भी अलग है। लोक संगीत से याद आया कि क्यों ना हम असम का बिहू सुन ले, और गुजरात का भी लोक संगीत सुन लेते हैं, और लगे हाथ हम झारखंड और बिहार में गाए जाने वाले गीतों को भी सुन लेते हैं। तो तैयार हैं सारे बच्चे इस लोक संगीत का आनंद उठाने के लिए? मजा लीजिए लोक संगीत का।

0: तो मजा आया आपको लोक संगीत सुनने में? आप सबको अलग अलग भाषाओं के कुछ लोकगीत तो याद हो गए होंगे, है ना? अच्छी बात है। और मैं आपसे आज विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में मैं बहुत जल्द आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो। कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
5: So, see you at the vaccination center soon.
6: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
11: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
10: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
11: आपकी सेहत की बातें,
10: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
11: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
10: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
11: वो कहाँ पर?
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
11: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बिहार के एक प्रमुख फसल मक्का की बात करने वाले हैं। और आप समझ गए होंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ मक्का की बात होगी। किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन खरीफ मक्का की खेती करें ताकि उनकी आमदनी अच्छी हो, फसल अच्छा हो, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। सर हैं वरीय वैज्ञानिक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद उमा जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो खरीफ का मौसम है, ये जानते हैं कि मक्का बहुत ही बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य फसल है। आज जो भी हमारा बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसमें मक्का का काफी एरिया, क्षेत्रफल हो, उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़ रहा है और इनसे किसान भाई मक्का के खेती से अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं। और हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को मक्का से अच्छा उपज प्राप्त किया जाए। सरकार का भी इस फसल पे काफी ध्यान है, किसान भाइयों को जागरूक किया जाता है और उन्हें ये हम लोग बीच बीच में हर चीज का देते हैं सावधानियां कि अच्छे उपज लेने के लिए आपको क्या करना है।
10: जी सर, तो बिहार में कब खेती की जाती है खरीफ मक्का की?
12: बिहार में जो खरीफ मक्का का खेती का समय है 25 मई से हम लोग शुरू करते हैं और 10 से 15 जुलाई तक मौसम के आधार पे, बारिश के आधार पे हम लोग फसल की खेती करते हैं। तो ये हमें किसान भाई ये ध्यान देना है कि जब बुआई करते हैं तो खेत में पर्याप्त नमी रहे। तो हम जो मई की बात करते हैं, यदि आपके पास खेत में पर्याप्त नमी है, सिंचाई की सुविधा है, तो 25-26 मई से भी आप लगा सकते हैं फसल, और फिर जैसे बारिश होती है तो उसके बाद भी आप फसल को लगा सकते हैं।
10: जी सर, और बिहार में कितने क्षेत्रफल में खरीफ मक्का की खेती होती है?
12: बिहार में अभी 2 लाख हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है, और हमारे जो राज्य की उत्पादकता है ये तो बहुत कम दिखता है, 29 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिख रहा है, लेकिन हम लोग किसान भाई के यहाँ जो भी डेमोंस्ट्रेशन प्रत्यक्षण कराते हैं या हम लोग अपने फार्म पे लगाते हैं, हम लोग देखते हैं तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई आराम से उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से ये कह सकते हैं और देख भी रहे हैं कि 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में किसान भाई उपज मक्का से रबी खरीफ मौसम में प्राप्त कर लेते हैं। और जो हमारे जो राज्य की उत्पादकता की बात है तो हमारे राज्य की उत्पादकता कम दिखता है, इसका वजह है कि कहीं जो अगस्त का बाढ़ होता है, ज़्यादा पानी का मात्रा बारिश हो जाती है तो उस वजह से कुछ फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारी जो उत्पादकता है कम दिखती है। लेकिन जो किसान भाई अच्छे से अच्छे माहौल में अच्छे से अपना खेती करते हैं वो 60 से 60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर बहुत अच्छे से उपज प्राप्त कर लेते हैं।
10: यानी कि अगर किसान भाई बहन कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनकी आमदनी उपज बढ़ने की संभावना होती है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खरीफ मक्का की खेती के
12: लिए? सबसे पहले जो आप खेत का चुनाव करते हैं तो आपका खेत ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जल जमाव नहीं हो। बरसात के मौसम में जो खेत होता है वर्षा आधारित मक्का बोला जाता है इसको, तो बारिश हो जाती है उसी से इसका जो सिंचाई का काम है पूरा हो जाता है फसल का। फिर भी जहाँ जहाँ पानी जब नहीं, किसी कारण से पानी नहीं आई, नहीं पानी पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो आपको हल्की सिंचाई की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी है कि ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ बारिश होने के बाद 24 घंटे के अंदर पानी खेत से निकल जाए, और बुआई के जो विधियाँ हैं उसमें खरीफ में सबसे जरूरी है कि आप पहले मेढ़ बना लें। अब तो सरकार का भी योजना आ रहा है, मेढ़ बनाने वाला यंत्र आ रहा है, मेढ़ रीज बनाया जा रहा है, तो आप मेढ़ बना लें। मेढ़ को बनाने के बाद मेढ़ पे ही बीज का बुआई करें। इससे क्या होता है कि जो बारिश होती है बड़ी आसानी से खेत से जल्दी निकल जाता है और आपके फसल पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जब खेत का चयन करें तो सबसे प्राथमिकता दें खरीफ में कि वहां जल निकासी का व्यवस्था आपके खेत में हो।
10: जी सर, सर बीज दर कितना होना चाहिए और बुआई का उचित समय, जैसे कि आपने बताया तो बुआई का उचित समय क्या है?
12: बुआई का तो उचित समय जैसा कि हमने बताया भी, चर्चा भी हम लोग किए कि 25-26 मई से लेकर के 10 जुलाई तक आप बुआई कर सकते हैं। वो निर्भर करता है मौसम पे, बारिश पे और खेत में नमी की उपलब्धता पर। तो ये जो खरीफ का मौसम का होता है 90 से 120 दिन का पौधे का अवधि होता है। अब ये हम लोग जब खरीफ की बात करते हैं तो इसमें 2-3 तरह के मक्के किसान को उपजाने के लिए मिलते हैं। पहला तो है कि एक अनाज के लिए आप उपजाते हैं तो वो 110 से 120 दिन में आपका फसल तैयार हो जाता है, बुआई से 120 दिन पे हार्वेस्ट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप भुट्टे, हरा भुट्टा भी जो खरीफ मौसम का होता है बड़ा ही अच्छा इनकम का एक सोर्स है, आप भुट्टा भी खरीफ में यदि आप लगाते हैं तो भुट्टा में जो पुष्पन की क्रिया होती है खरीफ में बुआई के 55 दिन के आसपास होता है, और उसके 25 से 28 दिन बाद, 30 दिन बाद यानी 80 से 85 दिन में आपका भुट्टा बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हरा भुट्टा यदि बेचना है और उसको आप यदि हरे भुट्टे को समय पे बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो उसका अच्छा उससे मुनाफा होता है। दूसरा एक और भी आमदनी का साधन है कि बेबी कॉर्न की खेती करते हैं, तो बेबी कॉर्न जो है ना बुआई के 60 से 70 दिन के आसपास वो तुड़ाई हो जाता है, 2 से 3 उसमें बेबी कॉर्न आता है, तो 2 से 3 तुड़ाई कर लेते हैं। इसके बाद उस फसल को, जो पौधे बचे हैं उसको हरे फसल के रूप में जानवर के चारा के रूप में यूज करते हैं। तीसरा एक स्वीट कॉर्न होता है। जब आप हरे भूटे की बात करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम स्वीट कॉर्न लगाएं। स्वीट कॉर्न का जो बाजार में औसत जो हम लोग जो अभी देख रहे हैं एक भूटा 10 रुपये से कम नहीं किसान के, यानी किसान चाहे तो 10 से 12 रुपये में अपने खेत से एक भूटा वो व्यापारी को बेच देते हैं। तो इस हिसाब से ये हम स्वीट कॉर्न के खेती को प्रोत्साहन सरकार भी कर रही है और हम लोग भी प्रोत्साहन देते हैं। उसका भुट्टा में मिठास ज्यादा होता है, दाने मुलायम होते हैं, भून कर खाएं या बॉयल कर खाएं, उसके बहुत तरह से उपयोग है। तो उस परिस्थिति में किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ इनकम ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज इसको गोल्डन क्रॉप के रूप में, कैश क्रॉप के रूप में किसान भाई देख रहे हैं इनकम के हिसाब से।
10: जी सर, सर बीज दर कितनी होनी चाहिए?
12: बीज दर, जब हम बीज दर की बात करते हैं तो 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगता है, यानी ढाई एकड़ में 20 किलो बीज लगेगा आपको।
10: और बुआई की विधि क्या?
12: बुआई की विधि में जैसा कि हमने बताया कि पानी से फसल को बचाना है, तो हमारा और हवा से भी बचाना है। अक्सर देखते होंगे कि चक्रवाती टाइप का हवा, अगस्त के आसपास बारिश भी बहुत होती है, उसी समय बाढ़ की भी संभावना होती है 15 अगस्त के आसपास, और उस समय हवा चलती है तो हवा से पौधे भी गिरने का, क्योंकि उसका जड़ कमजोर हो जाता है बारिश की वजह से, तो पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं। तो हमें पूरब से पश्चिम की तरफ लाइन बना लेना है, मेड़ बना लेना है, मेड़ पे बुआई करनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना है, और एक बीज से दूसरे बीज की जो मेड़ पर बुआई करते हैं तो आप उसको 20 सेंटीमीटर रखिए। तो आपके पौधे का जो लाइन है पूरब पश्चिम होता है, तेज हवा चलती है जनरली पूर्वा या पश्चिया, तो हवा बीच से, दो पौधों के बीच से जो गैप होता है उससे निकल जाता है और आपका फसल खड़ा रह जाता है।
10: हमारे किसान भाई बहनों को सर आप अब उचित प्रभेद के बारे में बता दीजिए जो खरीफ में। हाँ,
12: देखिए जो मक्का का जो प्रभेद है खरीफ के लिए, यदि आप प्रभेद का चुनाव करते हैं तो अभी सरकार, राज्य सरकार भी और हम लोग मिल करके राज्य स्तरीय बैठक होती है और हरेक मौसम के लिए प्रभेद का चुनाव किया जाता है। इसमें उसके बाद अनुमोदन करके वो सरकार के जो पोर्टल है उस पर डाला जाता है। तो उसमें किसान भाई को सब्सिडी भी है, उसमें से आप चॉइस करते हैं कि हमको ये सीड चाहिए, वही बीज आप लेते हैं और जो सरकार का सब्सिडी है वो आपको मिलता है। तो जो अभी तक अच्छी वैरायटी है खरीफ के लिए, IMH 222 है, IMH 234, DKC 8181, DKC 7074 है, बायो 9544 है, SKM1 है, DHM 121 है, DHM 117, राजेंद्र मक्का 4 है, राजेंद्र मक्का 3 है, ये प्रभेद लगा करके आप अच्छा उपज प्राप्त कर सकते।
10: खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए क्या करें?
12: खाद जो ये खरीफ का फसल होता है मक्के का, इसमें थोड़ा कम ही देना पड़ता है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीन चीज देना है, साथ में जिंक भी देना है। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम हर 3 साल पर जिंक देना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यदि DAP दे रहे हैं तो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है, फास्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। तो जो आपका DAP से नाइट्रोजन की मात्रा चला गया उसको निकालने के बाद ही आप जो हम बता रहे हैं कि 80 किलो देना है नाइट्रोजन उसको दें। तो 80 किलो नाइट्रोजन चाहे आप यूरिया से दें या DAP से दें या NPK से दें, 60 किलोग्राम फास्फोरस आप DAP से दें या जो भी सोर्स है उससे दें, और 40 किलोग्राम पोटास देना है। हर 3 साल पे 20 से 25 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट देना है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को, जो खाद की मात्रा है नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास और जिंक की पूरी मात्रा खेत के तैयारी के समय ही खेत में दे दें बुआई से पहले, और जो 50% आप नाइट्रोजन 40 किलो बचा रहे हैं, 40 को 20 किलो नाइट्रोजन को बुआई के 20 से 25 दिन बाद दें, और जो 20 किलो और बचाए हैं 25% उसको जब फसल में भुट्टा बनने लगता है, बाली आने लगती है, वो वही 55 से 60 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास उसको उसमें उपरिवेशन के रूप में दें।
10: सर बुआई के समय ऐसे कौन से उपाय करें किसान भाई बहन जिससे कि पौधों को कीटों से बचाया जा सके?
12: बुआई के समय ही जैसे अंकुरण होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपका बहुत अंकुरण बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, फसल जो पौधा होता है एक एक पत्ती का होता है, तो बीच से लगता है कि जड़ से कोई काट दिया है, लगता है कि ब्लेड से कोई काटा हुआ है, वो कटवर्म होता है, कीड़े होते हैं जमीन में पड़े होते हैं और वो रात में जनरली वो काटते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अंकुरण होता है तो क्लोरोपाइरीफास को ले लीजिए, घोल बना करके अच्छे से उस पे पौधे पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव ऐसे करना है कि जड़ तक जाए, मिट्टी पे भी पड़े, और जो पौधे के बगल वाले जैसे दो लाइन के बीच का जो जगह है उस पे भी छिड़क दें, यानी पूरे खेत में छिड़क दें, ताकि जो भी कीड़े होंगे या उसके लार्वा होंगे या उसके जो एडल्ट होंगे वो मर जाएंगे। तो इस तरह से ये करते हैं। जब पौधे आपके थोड़े बड़े होते हैं, 6 पत्ती 8 पत्ती के होते हैं, तो उस समय भी आपको क्लोरोपाइरीफॉस का छिड़काव करना है। साथ ही एक बड़ा ही भयानक कीट है, फॉल आर्मी वर्म जिसको बोलते हैं, ये रातों रात फसल को काफी बर्बाद कर देता है। फॉल आर्मी वर्म का उपचार शुरू से ही आपको करना है, ताकि उसके जो कीड़े होते हैं आकर के उस पे अंडा देते हैं ऊपरी पत्ती पे। तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट एक दवा है, बड़ा प्रभावी दवा है, अलग अलग नाम से आता है। तो इमामेक्टिन बेंजोएट का पौधे के बुआई के 20 दिन के आसपास एक छिड़काव कर दें। वो भी छिड़काव करते समय ध्यान देना है कि पौधे की जड़ तक पानी चला जाए। तो इमामेक्टिन का पहला छिड़काव जब पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दे दीजिए, दूसरा छिड़काव जब पौधे 50 दिन के आसपास होते हैं उस समय दे दीजिए। दो छिड़काव अत्यंत आवश्यक है इस कीड़े से बचने के लिए। इमामेक्टिन से आपका तना छेदक भी बच जाता है और जो आपके जो फॉल आर्मी वर्म वो भी बच जाते हैं। कॉब बोरर आता है बाद में, भुट्टे में आप देखे होंगे कीड़े घुस जाते हैं, उससे भी बच जाता है। तो दो छिड़काव जरूर आप करें, इससे आपके फसल कीड़े से बच जाते हैं।
0: सर, खरीफ मक्का में सिंचाई की कितनी जरूरत होती है?
12: खरीफ मक्का में सामान्यतः किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं बारिश होती है, तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। यदि समय समय पर बारिश हो जाती है तो कोई सिंचाई की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे पौधे आपके घुटना के ऊंचाई के होते हैं 20 दिन के आसपास, तो उस समय खेत में ज्यादा नमी की कमी होती है, तो एक हल्की सिंचाई करें। चूंकि आप मेड़ के ऊपर पौधे लगाए हैं तो थोड़ी सी भी सिंचाई करेंगे तो पौधे के जड़ के पास नमी बन जाती है। दूसरी है कि जब आपके पौधे 45 से 50 दिन का होते हैं, उसी समय पौधों में फूल आने की क्रिया शुरू होता है, पराग बनता है, मोचा आता है, दाना बनता है, उसी समय स्टार्ट होता है। तो पहली सिंचाई 20 दिन के आसपास जरूर करें, खेत में नमी होनी चाहिए यदि बारिश नहीं होती है तो। दूसरी सिंचाई जब आपके खेत में पहले धनबाल आता है, ऊपर में जो पौध निकलता है उसको धनबाल बोलते हैं, जो सिल्क को हम लोग मोचा बोलते हैं जिसपे दाना बनता है, तो वो 55 दिन के आसपास आता है। उस समय भी खेत में नमी की काफी जरूरत है। तो उस समय यदि बारिश नहीं होती है, खेत में नमी है नहीं है, तो आप एक हल्की सिंचाई उस समय भी कर दें। उसके बाद से लेकर के करीब उससे यानी 60 दिन से लेकर के बुआई के 60 दिन से फिर 25 दिन और 75 दिन तक खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। कारण कि जब पराग बनता है, परागण होता है, ये 60 दिन के आसपास, 60 दिन से 80 दिन के आसपास, 85 दिन के आसपास दाना बनता है, दाने के लिए नमी की जरूरत बहुत जरूरत है। तो इसलिए खेत में यदि बारिश नहीं होती है तो हल्की सिंचाई करें। जब भी खरीफ में सिंचाई करें हल्की करें, हो सकता है कि आप दिन में सिंचाई करें रात में बारिश हो जाए, तो हल्की किए रहेंगे तो पानी निकल जाएगा। चूंकि नाली पे किए हैं, मेड़ पे किए हैं, तो पानी निकल ही जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार खरीफ में सिंचाई देना है। नहीं सिंचाई की जरूरत है, खेत में पर्याप्त नमी है, तो देने की जरूरत नहीं है।
0: जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से सिंचाई करनी होती है, तो क्या इन अवस्थाओं में और भी कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए?
12: विशेष सावधानी में नमी होनी चाहिए उसी समय, जैसा कि हमने बताया कि 20 से 25 दिन पर जो आप यूरिया का मात्रा बचाए हैं 25% दे दीजिए। फिर फूल आने के समय यानी 50 से 60 दिन के आसपास जो तीसरा जो डोज है बचाए हुए हैं 25% यूरिया उसको दे दीजिए, और उस समय इंसेक्ट पेस्ट का भी स्प्रे कर दीजिए कंट्रोल करने के लिए, और खेत में नमी भी पर्याप्त रूप से बनाए रखें। और इसके अलावा उसमें कुछ जो फसल का जो आपने जो यदि बीमारी दिखता है, यदि दिखता है बीमारी, जैसे कि फ्यूजीरियम स्टॉक रॉट एक बहुत बीमारी आ रहा है, जब पौधे में दाना बनता है तो आप देखे होंगे दाना बनते ही पौधा लगता है पक गया, मैच्योर हो गया, लेकिन एक्चुअली वो मैच्योर नहीं होता है, वो सूख जाता है, उसको विल्ट बोलते हैं, फ्यूजीरियम विल्ट बोलते हैं। वो बड़ा ही एक खतरनाक बीमारी है। उस बीमारी से बचने के लिए आपको खेत के जुताई के समय ही 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा खेत में डाल देना है। और जब फसल में वो बीमारी दिखता है सूखने की, आप देखे होंगे बीच बीच में 10-20% पौधे सूख जाते हैं, दाना बनता है उस समय सूख जाते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग का छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला करके और छिड़काव कीजिए। लेकिन उस ब्लीचिंग से भी बहुत ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसके लिए जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें। ये खरीफ में अभी ये भी देखा जा रहा है और इस एरिया में देखा जा रहा है जहां पे ज्यादा पर केला की खेती हो रही है, जिस एरिया में केला का ज्यादा क्षेत्रफल है वहां पे ये विल्ट का प्रॉब्लम मक्का में भी आ रहा है। तो जहां भी केला का एरिया है बिहार में, वहां निसंकोच आप ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ में 5 से 6 किलो खेत में मिला दें। इससे कुछ हद तक आपकी जो खेत की बीमारी है बच जाएगा। और प्रभेद का चुनाव जो आप करते हैं, वैरायटी जो लेते हैं, तो जो भी बीज खरीदते हैं तो बीज अनुशंसित दुकान से ही खरीदें, जो रजिस्टर्ड कोई दुकान है वहां से खरीदें, और कभी भी लूज बीज नहीं खरीदें, खुला हुआ बीज नहीं खरीदें। बीज पैकेट खरीदें, उसका रैपर देखें और उस बीज के थैले को, बीज के रसीद को अंत तक रखें जब तक कि आपका फसल कट नहीं जाता है। तो इससे होगा कि जो भी आप क्लेम करते हैं कि हमको बीज गलत मिला, बीज में बीमारी था, ये ओरिजिनल बीज नहीं था, तो बिहार सरकार और हम लोग जाते हैं बीज में निरीक्षण करते हैं, तो उसमें आपको 2-3 चीज रखनी है। पहला कि बीज का थैला रखना है, सुरक्षित रखना है। आप बीज का थैला रखते समय ध्यान रखिएगा कि बीज उपचारित होता है, बीज जो होता है बीज से उपचारित होता है, तो बीज के थैला को अच्छे से बांध करके कहीं सुरक्षित जगह रख दें ताकि कोई बच्चा या जानवर उसको कुछ दुरुपयोग नहीं कर सके। दूसरा है कि उसके जो थैला है वो रखिए, रसीद को रखिए और बीज का कुछ सैंपल रखिए, 5-10 दाना ही आप उसमें

0: यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपके खेत में विल्ट का प्रॉब्लम आएगा, सूखने वाली बीमारी आएगी। लाइन से लाइन 50 सेंटीमीटर से कम नहीं करें, पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर से कम नहीं करें। यदि ज्यादा लाइन घना करते हैं, पौधा घना करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कीड़े और बीमारी खेत में आना निश्चित है। इसलिए जो भी वैज्ञानिक सुझाव है, 60 सेंटीमीटर पे लाइन से लाइन रखें, 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा रखें। समय पे बुआई तो करना जरूरी है, प्रभेद का सही चुनाव करें और जल जमाव से खेत को बचाएं। जब भी मक्का की बात आप करते हैं, सबसे पहले आपके ये दिमाग में ये जरूर आना चाहिए कि हमें खेत में पानी नहीं लगने देना है, और यदि पानी लगता है तो फसल बर्बाद होगा ही। और यदि बाढ़ आता है, मान लीजिए कि आपका फसल तैयार हो गया, भुट्टा बेचने के लायक हो गया, यदि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, ज्यादा बारिश हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि हरा भुट्टा के रूप में उसको बेच दें बाजार में, ताकि आपको एक अच्छा इनकम मिल जाए, और जो फसल है जिस पे भुट्टा है, पौधा है, उसको हरा चारा के रूप में बेच दें। कीट व्याधि का समुचित प्रयोग बरसात में जरूर करें, क्योंकि खरीफ में कीट पतंग बहुत ज्यादा आता है। इससे बचने के लिए जो हमने दो दवा बताया, सिर्फ दो ही दवा दीजिए, विशेष कोई उपचार की ज्यादा दवा, विटामिन है, ग्रोथ रेगुलेटर है, ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसी दवे का उपचार कीजिए। और जब आप फसल को काटने जाते हैं, जो फसल की कटाई करते हैं, तो देख लीजिए कि उचित परिपक्वता के अवस्था में ही फसल की तुड़ाई करें। कारण कि बरसात में जब आप भुट्टा तोड़ते हैं, नमी ज्यादा रहता है और रखते हैं, तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन जो एक काला काला फफूंद टाइप का होता है, आप देखे होंगे, वो फसल को आपके दाना को बर्बाद कर देता है। तो उचित नमी 18-19% जब उसमें नमी रहे तभी फसल को तोड़ें, और 14% नमी तक उसको धूप में या जहां भी सुखाने की आपको सुविधा है वहां सुखाएं। 13-14% नमी पे सुखा करके ही उसको आप भंडारित करें। यही मुख्य रूप से सुझाव है। टाइम पर बुआई करें, उचित बीज का चुनाव करें, कीट व्याधि का कंट्रोल करें, और खेत में जल जमाव की स्थिति नहीं आने दें।
1: जी सर, तो किसान भाई बहनों, जिन बातों का ध्यान रखने के लिए सर ने कहा, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप बेहतर फसल आपके खेत में होगा और आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप अपनी फसलों का अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीका

0: बीमारियों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के।
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को समर्पित यह गीत। ब्रह्मा को सृष्टि करता, विष्णु को पालन करता और महेश को संहार करता कहा गया है, लेकिन आप वास्तविक जीवन में आइए तो हमारे किसान बंधु को पालन करता क्यों नहीं कहा जाए। विश्व के समस्त प्राणी, चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, धरती पर चलने वाला मानव हो या जल में विचरण करने वाला जीव जंतु, यदि किसान नहीं होते तो इनका अस्तित्व मिट जाता। तो आइए, इन किसान बंधु के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने काफ़ी हद तक प्रयास किया है, जिसको गीत के माध्यम से आप सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: सुन

0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान में पोषण तत्व प्रबंधन के बारे में। धान में पोषक तत्वों की कब कब जरूरत होती है और किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर SS आचार्य से। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। यह विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है जो कि संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि धान हमारे बिहार की सबसे प्रमुख फसल है और सही उर्वरक प्रबंधन हम करेंगे तो हमको अधिक उपज और क्वालिटी जो यील्ड है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो आजकल क्या करते हैं किसान भाइयों कि आप लोग नाइट्रोजन जो नेत्रजन या यूरिया के हिसाब में आप लोग देते हैं उसका तो प्रयोग भरपूर करते हैं, लेकिन फॉस्फोरस, पोटास या सल्फर की मात्रा में कम डालता है, जिसके कारण आपका क्या होता है, मिट्टी में बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी भी कमज़ोर होता है और आपका पौधा भी कमज़ोर होता है। आप जो उपज आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, उपज में गिरावट आ जाती है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि धान में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करने के लिए, संतुलित पोषक तत्व मतलब धान के लिए जैसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, उसको सही मात्रा में और सही समय में हम अगर धान के खेत में डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे संतुलित पोषक तत्व। इसको करने से पहले हम एक मिट्टी को जांच करना या मिट्टी को परीक्षण करने का बारे में हम आपको सलाह देंगे। अगर देखा जाएगा तो मिट्टी में पहले जानना पड़ेगा कि हम लोगों का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना मात्रा में है, और ये सुविधा हमारा किसी भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र या जिला मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला वहाँ पर इसका सुविधा उपलब्ध है। तो इसको जानने के लिए पहले आपको मिट्टी को टेस्ट करना पड़ेगा। मिट्टी को टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व तो कम है और कौन सा पोषक तत्व तो उसमें ज्यादा है आपका मिट्टी में। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप जो खाद डालते हैं, आप जो पोषक तत्व देते हैं मिट्टी में, उसका भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, आप लोग ज़्यादा डाल देते हैं, कभी कभी क्या होता है आपको जितना ज़रूरत है उससे कम डालते हैं। तो इसीलिए पहले मिट्टी को परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हो गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास डालें तो कितना डालें, तो देखा जाएगा कि इसको अगर जो कि नॉर्मल वैरायटी है, जो कि सामान्य किस्म है धान का, उसमें हम लोगों का बिहार के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर की अनुशंसा की जाती है। तो अगर संकर किस्म या हाइब्रिड राइस होगा तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो सटीक मात्रा में हम लोग अगर मिट्टी जांच करके, मिट्टी को परीक्षण करके उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा मिट्टी का प्रकार और धान का जो प्रोडक्शन वो अच्छा रहेगा, ज़्यादा होगा। तो पहला है कि नाइट्रोजन सबसे अगर धान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या किसी भी फसल में ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पौधा का जो पत्ता में जो क्लोरोफिल है और जो आपका उसी क्लोरोफिल का एक पार्ट है नाइट्रोजन। अगर हम क्लोरोफिल सफिशिएंट नहीं रहेगा तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा उपज कम होगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोग सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिस जो पोषक तत्व, उसके बारे में अगर देखें तो पहले जब हम रोपाई कर रहे हैं, धान के रोपाई कर रहे हैं, तो उसी समय पहली मात्रा दे देना चाहिए, तो उसका 3 हफ्ते बाद दूसरी मात्रा देना चाहिए, और जिस समय के हम लोगों का जो बोलते हैं टीलरिंग होता है, टीलर निकलता है, उसी समय भी पौधा को नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए दूसरा मात्रा 3 से 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए। और तीसरी मात्रा जो कि बाली निकलने के समय या गम्भोट के समय, उसी समय हम लोगों को देना चाहिए। तो इसे अगर देंगे तो हमारा नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो बेहतर हो पाएगा, बर्बादी कम होगा और अच्छा उपज हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हो गया फास्फोरस, पोटास और सल्फर। अगर फास्फोरस के बारे में देखेंगे, फास्फोरस मिट्टी में नष्ट नहीं होता है लेकिन मिट्टी में फिक्सेशन हो जाता है। तो देखा जाएगा तो फास्फोरस को अगर हम लोग देखेंगे कि कब देंगे, तो फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फॉस्फेट या DAP से हमको मिलता है, ये हम लोग जब पहली मात्रा जब रोपाई कर रहे हैं उसी समय दे देना चाहिए। और पोटास अगर देखेंगे, पोटास के आधा मात्रा हम लोग देंगे जो रोपाई के समय, और आधा हम लोग जो जब हम लोगों का नाइट्रोजन का तीसरे मात्रा है या बाली निकलने के समय, उसके पहले, बाली निकलने से पहले हम लोगों को दे देना चाहिए। इस ये तो हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके बाद हम लोगों का जो जिंक है, सबसे जितना सूक्ष्म पोषक तत्व है या माइक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग बोलते हैं, उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है जिंक। जिंक की कमी अगर देखा जाएगा तो बिहार के धान के खेतों में सबसे बड़ा समस्या है। और इसकी कमी में पत्तियों के बीच के नसों में सफ़ेदी या कांसे जैसा रंग दिखाई देता है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है, मतलब पौधे बढ़ता नहीं है, पौधे स्टंटिंग हो जाता है, ग्रोथ होता नहीं है। तो इसको के लिए, इसको अगर हम लोग इसका निदान करें, तो इसके लिए हम लोगों को 1 हेक्टर में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाना चाहिए। और अगर खड़ी फसल है और उसमें कुछ सिम्टम आ रहा है जिंक का, तब हम लोग क्या करेंगे, जिंक सल्फेट पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गया जो रासायनिक फर्टिलाइजर है या रासायनिक पोषक तत्व है इसके बारे में। इसको छोड़ के हम लोग सिर्फ रासायनिक अगर देंगे तो हमारा मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, मिट्टी का जो हेल्थ है, वो ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर जो हम लोग बोलते हैं जैविक खाद, इसको देना बहुत ज़रूरी है। जिसमें आता है आपका कंपोस्ट, भर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, ये सब का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। केवल या सिर्फ यूरिया के ऊपर या नाइट्रोजन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, फास्फोरस, पोटास दे देना चाहिए। और उसके साथ भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कंपोस्ट, भर्मी कंपोस्ट या हरी खाद, इसको भी देना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आज अगर देखेंगे तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से उगाई गई जो फसलें हैं उनके मांग लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी लगातार रासायनिक और उर्वरकों के प्रयोग से हमारे मिट्टी को जैविक सक्रियता कम हो जाती है, और इसीलिए हम लोगों को जैविक खाद देना बहुत ज़रूरी है। जैविक खाद को अगर देखेंगे तो इसमें, इसके बहुत टाइप का जैविक खाद है, जैसे हुआ आपका कंपोस्ट या कंपोस्ट और गोबर की खाद। अगर कंपोस्ट देखेंगे, कंपोस्ट अगर हम लोग कितना चाहिए अगर देखेंगे, 10 से 12 टन कंपोस्ट हमारा जो सड़ी हुई गोबर खाद, इसको लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीना पहले मिट्टी में मिला देना चाहिए। और अगर भर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद देखेंगे तो 2 से 2.5 टन भर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो जाना चाहिए, वो भी 15 से 20 दिन पहले। और अगर ग्रीन मैन्योर या हरी खाद, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस एक ये एक फसल है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या जो नाइट्रोजन हमारा जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसको ये फिक्सेशन कर पाते हैं, इसके अंदर में एक राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, 45 से 50 दिन पहले एक फसल लगाएंगे जो होगा हरी खाद, जैसे कि हुआ जिसमें धैंचा है या सनहेम्प है, इसको अगर लगाएंगे और 45 दिन के बाद फूल आने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसी हरी खाद को पूरा मिट्टी में, जो जब हम धान के रोपाई करेंगे, रोपाई से पहले जब फील्ड प्रिपरेशन करेंगे, उस समय ट्रैक्टर में इसको मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, 60 से 80 किलो नाइट्रोजन हम लोगों को 1 हेक्टर में मिल जाएगा। तो ये भी एक नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसका एक सोर्स है जो कि हरी खाद में। और एक हुआ सिर्फ नाइट्रोजन नहीं और कुछ भी जैविक स्रोत है जिससे हम लोगों को फास्फोरस और पटास भी मिल सकता है, जैसे हुआ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट है और एक है फॉस्फेट सल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है फास्फोरस का सोर्स। इसको अगर हम लोग हमारा धान के खेत में इसका यूज़ करेंगे तो हमारा फास्फोरस जो फिक्सेशन हुआ है मिट्टी में उसको भी कुछ हम लोग उसमें फिक्सेशन को कम कर सकते हैं और हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर देखें या जैव उर्वरक देखें तो उसमें हम लोग एजोस्पिरिलम जो कि मिट्टी में वायुमंडल या नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है, और हुआ कि आपका माइकोराइजा जो जड़ों के साथ मिलकर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये छोड़ के और एक है धान का खेत में अजोला। अजोला एक जलीय फर्न है और यह नील हरित शैवाल के साथ मिलकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। इसीलिए अगर अजोला हम धान के खेत में उसका उपयोग करेंगे 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका बायो फर्टिलाइजर के बारे में। तो इसे अगर हम किसी भी धान फसल में शुरू में क्या करेंगे, हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर या जो कि हम लोग कंपोस्ट भर्मी कंपोस्ट इसका उपयोग करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, जैसे हुआ कि नाइट्रोजन बोले हैं कि तीन बार हमें हम लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है, कुछ पानी के साथ मिट्टी के नीचे चला जाता है, कुछ वोलेटाइलाइज हो जाता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन को अगर हम तीन बार में अप्लाई करेंगे, पहला बार हुआ कि जब हम फील्ड प्रिपेयर करेंगे उसी समय, दूसरा बार है जब हम उसका तीन हफ्ता या चार हफ्ते के बाद जब हम लोगों का टिलरिंग होता है उसी समय, और एक है जो कि हम लोग बोलते हैं पैनिक इनिशिएशन उसका पहले एक बार, तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये उपज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन फास्फोरस और पोटास, फास्फोरस अगर देखेंगे पूर्ण मात्रा फास्फोरस का हम लोग जमीन जब तैयार करेंगे तो उसी समय दे देना चाहिए, लेकिन पोटास को अगर हम दो बार में अप्लाई करेंगे, एक हुआ शुरू में बेसल फर्टिलाइजेशन और एक हुआ पीआई या पेनिकल इनिशिएशन से पहले या बाली निकलने से पहले अगर हम दे देंगे तो हमारा जो उपज है हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसको छोड़ के हम जो अभी जो चर्चा किए, जिंक की कमी बहुत सारा जहाँ पर धान के बाद व्हीट, धान के बाद गेहूँ, धान के बाद गेहूँ करते हैं वहाँ पर जिंक की कमी महसूस होता है, तो जहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अगर जिंक सल्फेट वहाँ पर उसी फील्ड में यूज करेंगे तो हमारा यील्ड को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जो पोषक तत्व प्रबंधन उसको सही समय में सही डोज में और मिट्टी जांच करके अगर देंगे तो आप उपज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का आप ध्यान रखें और धान में पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे तरीके से करें, वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आज के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
7: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
12: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
13: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
12: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
13: आपकी सेहत की बातें,
12: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
13: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
12: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
13: वो कहाँ पर?
12: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
13: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
12: उन्नत कृषि।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी साथी आरजे अनु। और एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। साथियों, आज मैं आप बता दूं आपको कि हमारे साथ हैं संजय कुमार जी, और ये हैं सहायक प्राध्यापक कनीय वैज्ञानिक पौधा प्रजनन व अनुवांशिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और ये आपके लिए कुछ खास बातें भी लेकर आए हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज का हमारा विषय है
14: मसूर के उन्नत प्रभेद वैज्ञानिक खेती।
0: जैसा कि आज का हमारा विषय है मसूर के उन्नत प्रभेद व वैज्ञानिक खेती, तो इससे जुड़े कुछ सवाल मैं पूछूंगी डॉक्टर साहब से, और वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इसके हमें उपाय मिल सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि मसूर की बुआई की उपयुक्त समय क्या होती है?
14: सबसे पहले मैं किसान भाइयों को, आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को मसूर के उन्नत प्रभेद वैज्ञानिक खेती कैसे करें और किन किन बातों का ख्याल रखें, उसके बारे में मैं आपको ध्यान आकर्षित करूंगा। तो मेरा पहला, मसूर की बुआई कब करें? सर, किसान भाइयों, आप लोग जैसा जानते हैं कि मसूर एक दलहनी फसल है जो कि रबी में उगाई जाती है। इसकी बुआई का सबसे उपयुक्त समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। अगर आप देरी तक पूरा नवंबर ले सकते हैं, लेकिन सबसे उचित समय जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है, जिससे आप बुआई करके आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं।
0: तो ये तो बात हो गई कि मसूर की बुआई, और इसके बाद बिहार के लिए हम खास तौर पर जानना चाहेंगे कि बिहार के लिए मसूर की अनुशंसित प्रभेद कौन कौन सी है।
14: हाँ किसान भाइयों, आप लोग जैसा जानते हैं कि जो है हमारा बीज जो है, तो बीज जो है किसी भी फसल के लिए मुख्य है, तो बीज वैसे जगह से खरीदें और जहाँ का आपको विश्वसनीय स्रोत हो, एवं प्रभेद जो है किसी भी फसल के लिए मुख्य रूप से है कि जो हमारे क्षेत्र में अनुशंसित प्रभेद हैं उसी को प्रभेद की बुआई करें। तो आइए हम जानते हैं बिहार के लिए हमें मसूर की कौन कौन सी अनुशंसित प्रभेद हैं। पहले आप किसान भाइयों जान लें, समझ लें कि मसूर की जो है दो तरह की प्रजाति होते हैं। एक छोटे बीज छोटे दाने वाले होते हैं, एक बड़े दाने वाले। छोटे दाने जैसे कि उसमें 100 दानों का जो वजन है 2 से 3 ग्राम होता है, और बड़े दाने के जो बीज होते हैं 3 से 5 ग्राम के लगभग होते हैं। तो पहले हम छोटे दाने की प्रजातियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला प्रभेद है PL4 पंत लेंटिल 4, जो कि जिसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जा सकती है, और इसकी उपज क्षमता है 15 से 16 क्विंटल पर हेक्टेयर। और इसमें सबसे बड़ी खास विशेषता है कि रतुआ जो रोग होता है, उकटा रोग होता है, और मूल रूप से जो मसूर में लगने वाली बीमारी है जड़ गलन बीमारी, उसके रोग रोधी है एक किस्म। दूसरी किस्म है PL 406 पंत लेंटिल 406, इसकी बुआई 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक कर सकते हैं, जिसकी उपज क्षमता है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और ये जो है रतुआ रोग रोधी एवं उकटा के प्रति सहनशील है। तीसरी प्रजातियां हैं PL 639 पंत मसूर 639, जिसकी बुआई 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक कर सकते हैं, इसकी उपज क्षमता है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये प्रभेद जो है रतुआ रोग उकटा रोग के प्रति सहनशील है। जो छोटे दाने में सबसे प्रमुख जो प्रभेद हमारे यहाँ बिहार में जो उगाई जाती है हल संतावन, जिसकी उपज क्षमता है 14 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, और रतुआ रोग का ये सहनशील है। अगला प्रभेद है KLS 218, जिसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर सकते हैं, इसकी उपज क्षमता 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका विशेष गुण रतुआ रोग रोधी है। इसी तरह छोटे दाने में आशा है, रंजन है, जिसकी उपज क्षमता 15 से 18 क्विंटल है। इसका विशेषता है कि इसकी जो फूल होते हैं उजले रंग के होते हैं। अब हम बड़े दाने की प्रजातियां के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बड़े दाने में हमारे मुख्य रूप से IPL 406, जिसको अंगूरी नाम से जाने जाते हैं, ये जो है प्रभेद 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी उपज क्षमता 17 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और रतुआ रोग रोधी के प्रति सहनशील है। दूसरी वैरायटी प्रभेद है बड़े दानों में IPL 316, जो कि 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी उपज क्षमता है 17 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और ये भी जो है उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। इसी तरह PL 5 पंत मसूर 5, जो कि 130 से 135 दिनों में परिपक्व होती है, और इसकी उपज क्षमता है 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और रतुआ रोग रोधी है। हमारे यहाँ की सबसे प्रमुख प्रभेद है अरुण PL 77-12, जो कि 125 से 130 दिनों में पककर तैयार होती है, इसकी उपज क्षमता है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और ये रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। नेक्स्ट प्रभेद है मलिका K75, जो कि 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी उपज क्षमता है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है और बड़े दाने वाले प्रभेद में L4076 जो कि 130-135 से दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी उपज क्षमता है 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है। इसी तरह प्रिया जिसको DPL 15 कहते हैं ये भी 130 से 135 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसके उपज क्षमता है और ये भी प्रभेद जो है उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है
0: जी।
14: सबसे प्रमुख प्रभेद और हैं जो बड़े दाने में आते हैं नरेंद्र मसूर 1, शेरी DPL 62, जवाहर मसूर 3 और नूरी IPL 81 जो कि उकटा और रतुआ रोग के प्रति सहनशील है।
0: तो यहाँ पर हमने जाना कि प्रजातियाँ क्या हैं, प्रभेद कौन कौन से हैं मसूर के बिहार में खास तौर पर। इसके बाद यहाँ पर बारी आती है कि हम बीज दर की मात्रा भी जानें। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएं, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि मसूर की बीज दर की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
14: किसान भाइयों, बीज का जो दर है ये जो है हमारे, जब पहले आपको बताएं कि हमारे जो है दो तरह के प्रजाति होती हैं, छोटे दाने वाले और बड़े दाने वाले। छोटे दाने वाले के लिए जो है बीज की दर की मात्रा जो है 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लगाएंगे और बड़े दाने के लिए 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर।
0: चलिए तो ये बात हो गई कि बीज दर कितनी होनी चाहिए और इसके बाद उर्वरक का भी इसमें खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा उर्वरक दे देते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
14: हाँ, किसान भाइयों, जैसा आप लोग जानते हैं कि मसूर एक दलहनी फसल है, इसमें जो है ज़्यादा मात्रा की उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए शुरू में जब फसल की बुआई हो तो एक बार में 20 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से नाइट्रोजन, 40 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से फास्फोरस और 20 केजी पोटास और 20 केजी सल्फर की दर प्रति हेक्टेयर की दर से इसको बुआई के समय खेत में ही प्रिपरेशन के समय डाल दें
0: जी। तो यहाँ तो ये बात हो गई कि उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखें जितना यहाँ पर बताया गया है सिर्फ उतना ही उर्वरक डालें। इसके साथ ही पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए ये भी जान लेते हैं।
14: हाँ किसान भाइयों, ये बहुत ही आवश्यक बात है कि जो है पौधे की पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अधिक उपज के लिए और अच्छी फसल के लिए बहुत ही आवश्यकता है। इसीलिए इसके हमेशा जो है दूरी पौधे से पौधे और कतार से कतार एक मेंटेन रखना चाहिए, जिसमें कि इसकी उपज क्षमता अधिक हो। इसीलिए इसकी जो कतार टू कतार जो है दूरी जो है 25 सेंटीमीटर पर हो और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर पर हो तो अधिक पैदावार होगी। और इससे क्या होगा कि आपका फसल का क्षति जो रोग व्याधि से जो बचाव होगा, पौधे के प्रॉपर उचित रोशनी मिलेगी जिससे कि रोग कीट का प्रकोप कम होगा
0: जी। तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और इसके बाद रोग की बात हम करें, डॉक्टर साहब ने बताया कि रोग कम होगा, तो क्यों ना हम जान लेते हैं कि मसूर के कौन कौन से प्रमुख रोग हैं ताकि उन रोग को हम पहचान लें और उनका निवारण करें।
14: हाँ किसान भाइयों, ये जो है मसूर के लिए सबसे प्रमुख चीज़ है रोग। रोग जो है इसको कैसे बचाव करें और कौन कौन से रोग आते हैं, तो सबसे पहले मसूर के जो है प्रमुख रोग जो है उकटा है, जिसको कहते हैं किसान भाइयों सूखना, ये सबसे प्रमुख बीमारी है। और दूसरा है रतुआ रोग, जो कि टेम्परेचर या बारिश होने पर उसका फंगस जो है ग्रोथ करता है। तो उकटा रोग और रतुआ रोग, इसके बचाव के लिए अगर आप शुरू में इसकी जो है उपचार कर देंगे तो आपको जो है करीब करीब 80-90% तक आप रोग व्याधि से बचाव हो सकता है। इसके लिए आप किसान भाइयों पहले से प्रिपेयर रहें कि जैसे ही आप सोइंग करते हैं उसके पहले बीजोपचार कर लें। बीजोपचार के लिए सबसे पहले फंजीसाइड से करें, फफूंदी नाशक से करें, उसके बाद कीटनाशक से करें, उसके बाद राइजोबियम से, तब उसके बाद पीएसबी से करें, जिसमें फंजीसाइड फंगस जो फफूंदी नाशक होते हैं वो उकटा और रतुआ रोग के लिए अच्छी उपयोग करते हैं, बीज उपचार करते हैं, और जो है कीट व्याधि कीटों के लिए जो है फसल को बचाने के लिए जो है क्लोरोपाइरीफॉस 8 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचार करते हैं, उसके बाद जो है राइजोबियम से उपचार करने के बाद तब है जो हम किसान खेत पर बीज को बुआई करते हैं।
0: तो इसके बाद एक सवाल और हमारे दिमाग में आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि पौधे से पौधे और पंती से पंती की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये तो आप सभी ने जान लिया, लेकिन मसूर की औसत उपज क्या है ये भी जानना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो इसे भी बताएं।
14: हाँ किसान भाइयों, अगर आपकी फसल अच्छी है, अगर अच्छी तरीके से बीज ने आपने बुआई की है, प्रॉपर डिस्टेंस पर दूरी पर लगाए हैं, अगर पौधे के कतार से कतार और पौधे की पौधी दूरी मेंटेन करने के लिए आपने सीड ड्रिल या जीरो टिलेज का उपयोग किया है, तो इसकी औसत उपज जो है 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर तक आप ले सकते हैं।
0: जी तो ये तो बात हो गई यहाँ पर मसूर की, अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि मसूर की आप बुआई कैसे कर सकते हैं, समय क्या होना चाहिए, इसके बाद प्रभेदों के बारे में बताया गया आप सभी को, बीज दर के बारे में बात हुई, उर्वरक की मात्रा, पंती से पंती की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी। तो मुझे लगता है कि इतना जानने के बाद यह काफ़ी उपयुक्त होगा इसकी वैज्ञानिक खेती को जानने के लिए आपको, और मसूर के उन्नत प्रभेद की बात यहाँ पर हो चुकी है। तो आशा करते हैं कि आज के इस वार्ता से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, और अगर आप मसूर की खेती करना चाहते हैं तो इन सारी बातों को आप ध्यान रख लें, अपने दिमाग में रख लें और ज़रूर इसे अपनाएं, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आज के लिए हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों के लिए इतना ही, आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। अगले दिन उन्नत कृषि कार्यक्रम में एक और अलग विषय, खास विषय आप सभी के लिए हम लेकर हाजिर रहेंगे। इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
15: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
8: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: हरियाली से खुशहाली तक।
11: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
12: धन्यवाद।
11: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
12: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनः रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
13: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
12: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है, उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं।

0: में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़ और बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाएं। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्कार, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वॉच कार्यक्रम में। आज हम बातें करने वाले हैं किसी एग्जाम के बारे में नहीं, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि फलाना एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी कैसे करनी है या कुछ भी। आज हम पूरी तरीके से स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, छात्र जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ, खास तौर से छात्र का जो जीवन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वो समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। इस दौरान जो आदतें हम अपनाते हैं वही आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता तय करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य की, यानी कि गोल सेटिंग की। दोस्तों, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है ना कि आपने तय ही नहीं किया है कि आपको क्या करना है, तो कल आप किसी और चीज के लिए तैयारी करेंगे, कल आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है तो हम उसी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं ना। इसलिए सबसे पहले तो ये तय करना जरूरी होता है कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या फिर कुछ और भी। जब आपका लक्ष्य साफ हो जाता है तब आपकी मेहनत भी सही दिशा में जाती है। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही ये तय कर लें कि आपको बनना क्या है, अपने जीवन से आप क्या चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं समय प्रबंधन की। समय जो होता है ना, बहुत कीमती होता है। पैसा खो देंगे, कुछ भी खो देंगे तो आपको वो मिल जाएगा, पर समय अगर एक बार चला गया ना तो वो नहीं मिलता। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने दिन की एक योजना बना ले, पढ़ाई के लिए समय तय करें, खेलने के लिए समय तय करें और आराम के लिए भी समय निकालें, क्योंकि आराम भी जरूरी है ना, सेहत भी तो जरूरी होती है ना। और अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंसिस्टेंसी की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब पढ़ाई में बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज पढ़ाई की, 3 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन पढ़ाई की, उसके बाद फिर 3 दिन गायब। तो ऐसा उनके साथ होता है। लेकिन और ये क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करते हैं बहुत जोश से पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और पढ़ाई खत्म। लेकिन आपको पता है ना कछुआ और खरगोश वाली कहानी। खरगोश बहुत तेज था दौड़ने में और कछुआ बहुत स्लो, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश ने क्या किया, वो रुक गया। चलता रुक जाता, चलता रुक जाता। और ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में ही हमें सिखा दिया गया था कि कंसिस्टेंसी कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत बेहतर होता है। रोज पढ़िए, पर लगातार पढ़िए, हर रोज पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन बंद हो गया, फिर 2 दिन पढ़ा, फिर 4 दिन बंद हो गया। ध्यान रखना है कि नियमित अभ्यास ही आपको मजबूत बनाता है। और अब बात करते हैं एकाग्रता की, ध्यान और एकाग्रता की। आज के समय में जब हमारे पास मोबाइल फोन है, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया एप्स हैं, गेम्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारा ध्यान बहुत आसानी से भटकाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय इन सारी चीजों से आप दूरी बनाकर रखें, एक शांत जगह पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको फोन की आदत है या फिर सोशल मीडिया की आदत है, तो आपको लगेगा अगर उसने मैसेज कर दिया तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, फिर आगे क्या होगा, अरे किसी का फोन तो नहीं बज रहा होगा, गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगा या फिर गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगी, अरे ये मेरे रेपुटेशन का सवाल है। बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कोई नया गेम आएगा या फिर सोशल मीडिया पे कोई नया पोस्ट, नई कॉन्ट्रोवर्सी या फिर फोन पर किसी दोस्त से गपशप, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आपको इन सारी चीजों से दूरी बनानी है, धीरे धीरे दूरी बनानी है। पहले दिन आप 5 मिनट फोकस कर पाएंगे, अगर आपका फोकस बहुत खराब हो चुका है तो आप पहले दिन 5 मिनट फोकस करेंगे, अगले दिन 10 मिनट। इस तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे आपकी आदत और आपका फोकस बेहतर होता जाएगा और एक दिन आप देखेंगे कि लगातार आपने 40-45 मिनट पढ़ाई कर ली है। लगातार 40 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई करनी होती भी नहीं है, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 45 मिनट या 40 मिनट पढ़ाई की। ये होता है एक हेल्दी तरीका पढ़ाई करने का। लेकिन आज के टाइम पे फोकस बहुत मुश्किल से होता है, तो ध्यान रखिए मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गेम्स, इन सारी चीज़ों से एक टाइम बना ले कि 2 से 3, या फिर आपका अपने हिसाब से कोई भी टाइम आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि 2 से 3 मुझे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कुछ भी करना है लेकिन इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, इस दौरान मुझे पढ़ाई ही करनी है। और जब आप कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करते हैं, फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खुद ही आने लगता है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको खुद की मदद करनी होगी, आपको कहना होगा खुद से, खुद को समझाना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। और ये छोटा सा जो सेंटेंस होता है ना, ये आपके अंदर बहुत ताकत पैदा कर सकता है, ये आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा कर सकता है। हर रोज जगने के साथ ही आईने में देख कर कहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे ये होगा और मैं ये करके दिखाऊंगी, मुझे खुद पर भरोसा है। ऐसी कुछ बातें बस 5 मिनट हर रोज सुबह, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है असफलता। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपने कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की, फोकस्ड रहे आप, टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से की और उसके बावजूद आप सफल ही होंगे, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप असफल हो और फिर क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है, जीवन में हर किसी को कभी ना कभी असफलता का सामना करना ही पड़ता है, करना। लेकिन असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता से सीख लेनी चाहिए कि कहीं कुछ तो छूट गया होगा ना, या फिर कहीं हमसे कोई कमी नहीं रही है, तो फिर शायद हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमारे लिए कोई और रास्ता चुना गया है जिस पर हमें चलना होगा। तो थोड़ा ठहरिए और अपने नए रास्ते की तलाश कीजिए, या फिर अगर आप एक बार और कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, पर घबराइए मत, हारिए मत। असफलता हमें सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, और हर असफलता कहते हैं कि आपको सफलता के और करीब और बेहतर तरीके से करीब लेके जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले हम स्वास्थ्य के बारे में भी बातें कर रहे थे, तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो फिर पढ़ाई पर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज और सही खान पान और पूरी नींद। जी हाँ, सोशल मीडिया और मोबाइल्स ने और गेम ने भी हमारे नींद को भी बहुत बुरे ढंग से प्रभावित किया है। हम रात रात भर जाग कर इन सारी चीज़ों के पीछे अपना वक्त जाया करते हैं, और फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, फिर हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। अभी फ़िलहाल उन सारी परेशानियों के बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक बात की अपनी नींद पूरी ज़रूर करें। 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए एक्सरसाइज करें, सही खान पान लें और पूरी नींद लें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और आपके स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सके। और इसके साथ ही बहुत ज़रूरी होता है कि आप गुड कंपनी में रहें, अच्छी संगति में रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। इसलिए आप कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं, ये भी बहुत प्रभाव डालता है आपके जीवन के ऊपर, आपके सोच के ऊपर। अगर आप फोकस्ड लोगों के साथ रह रहे हैं, पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, तो अगर आप रास्ता भटकेंगे भी ना, तो वो आपको रास्ते पर ले आएंगे, वो बातें करेंगे पढ़ाई की, तो आपको भी लगेगा कहीं कुछ तो छूट रहा है ना, मेरी पढ़ाई भी तो छूट रही है ना। वो अच्छी बातें करेंगे तो आपके ऊपर भी असर अच्छा होगा। इसलिए हमेशा ऐसे दोस्तों का चुनाव करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ना कि वो अपने साथ आपको पीछे खींच कर लेकर जाए। और अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। जी हाँ, हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को मोटिवेट कर पाने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, तो डायरी लिखना शुरू कीजिए और उसमें एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपको खुद के अंदर विश्वास आने लगेगा। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, पर हफ्ते भर में तो पक्का आएगा। और आप जब डायरी में लिखेंगे कि ये चीज़ें हुई और मैं अभी बहुत लो फील कर रही हूँ, मैं क्या करूँ इस वजह से मैं लो फील कर रही हूँ, तो लिखते लिखते आपको आधे जवाब मिल जाएंगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा आपको कोई कहने के लिए नहीं होगा कि टाइम हो चुका है, पढ़ाई करने बैठो टाइम हो चुका है, खाना खाने जाओ टाइम हो चुका है, फ़ोन नीचे रख दो सो जाओ, नहीं होगा। या आपको खुद के अंदर खुद ही ये चीज़ लानी होगी, यानी कि आत्म अनुशासन लाना होगा। अनुशासन ही सफलता की कुंजी होती है, और अगर आप खुद को नियंत्रित करना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। इसलिए आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपना लें, आत्म अनुशासित रहें और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़े। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके जीवन का वो फेज़ चल रहा है जब आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा ये, मैं हार चुकी हूँ, थोड़ा रुकिए, डायरी लिखिए, आईने में देखकर खुद से बातें कीजिए और थोड़ा सा वक्त खुद को दीजिए, थोड़ा शांत होकर सोचिए और फिर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका जीवन किसी ना किसी सही दिशा में पहुंच ही जाएगा। और अब मैं अंत की ओर आगे बढ़ती हूं और आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूं कि अपने सपनों को कभी भी छोटा मत समझिए, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और कभी हार मत मानिए। याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
4: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: पीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
5: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
5: पीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
8: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
9: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
11: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
0: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
12: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 एफएम ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
13: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
14: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या
15: आपको भी चाहिए जानकारी
16: फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की,
17: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
16: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
18: FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि
0: 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम रबी सब्जियों के बारे में बात करेंगे और इसकी नर्सरी हमें कैसे तैयार करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो इस विषय के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता मैडम। मैं आप सभी को बता दूँ, मैडम वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम आपका स्वागत है।
19: धन्यवाद अनु।
0: सबसे पहले तो मैडम, रबी सब्जियों में कौन कौन सी जो सब्जियों की फसल हैं वो आते हैं?
19: ये जो रबी सब्जियां हैं मुख्यतः पूरे साल को रबी, खरीफ और गर्मा में तीन भागों में बांटा गया है और आने वाले दिनों में 15 अक्टूबर से हमारा रबी का सीज़न प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके लिए रबी में बहुत सारी सब्जियां आती हैं। आपका गोभी आता है, पत्ता गोभी आता है, टमाटर आता है, पालक है, मेथी के पत्ते हैं, शलजम है, बीट रूट है, सारे सब्जी इस तरह के, गाजर है, मटर है, ये सारी सब्जियां आपको रबी फसल में ही आती हैं।
0: विषय है वो है नर्सरी कैसे तैयार करना रबी सब्जियों का। तो सबसे पहले तो नर्सरी क्या होता है इसके बारे में बता दें।
19: नर्सरी पौधशाला को कहते हैं। नर्सरी एक बहुत ही बड़ा बृहद शब्द है। नर्सरी सिर्फ पौध का नहीं होता है, जो भी छोटे चीज होते हैं, जैसे एक माँ है जो अपने बच्चों को, शिशु को पालती है, पालने में रख करके उसको धीरे धीरे एक एक दिन करके बड़ा करती है, उसी तरह से पौधा में जब पौधा तैयार करते हैं तो पौधशाला भी उसी तरह से तैयार किया जाता है, उसी तरह से नर्चर किया जाता है। तो नर्सरी में पौधों को धीरे धीरे और स्वस्थ तरीके से उसे बढ़ाया जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो, पौधा स्वस्थ हो, ताकि आने वाले दिन में उत्पादन को में अच्छा प्राप्त कर सकें। इसीलिए नर्सरी में हमेशा पौधे को स्वस्थ रखना चाहिए
0: जी। और जब हम नर्सरी में सब्जियों के बीज डालते हैं तो किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
19: सर्वप्रथम अभी गर्मी सितंबर का माह है और सितंबर में साधारणतः अगर क्लाइमेट चेंज की बात ना करें तो बहुत कड़ा धूप निकलता है, गर्मी का धूप रहता है, इस धूप में बहुत गर्मी रहती है। तो इसमें हमारे किसान जो भी हैं नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, जहाँ पे भी पौधशाला तैयार करना चाहते हैं, उसकी मिट्टी को वो खोल दें। मिट्टी को खोल करके उस मिट्टी में 1% फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन डाल करके उसे उजली पन्नी से मिट्टी को ढक दें, ढक करके उसे एक सप्ताह लगभग छोड़ दें। इससे क्या होगा कि जो उन्होंने घोल डाला है 1% फॉर्मल्डिहाइड का, उसमें ईचिंग का टेंडेंसी होता है, वो लगता है उसमें। इससे क्या होगा कि वो जैसे जैसे आपका घोल नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से आपका जितना भी कीड़ा मकोड़ा होगा वो बाहर की तरफ भागेंगे, और बाहर में आपने उसे ज़मीन को पन्नी से ढक करके रखा है। पन्नी से ढकने की वजह से एक तो कीड़ा आपका बाहर भाग नहीं सकेगा, दूसरा क्या होगा कि धूप की गर्मी उस पन्नी को में प्रवेश करके अंदर की तरफ जाएगा और उस गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखेगा, जिसमें सतह पर जितने भी कीड़े मकोड़े या फफूंद रहेंगे वो लगभग 50% तक के समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से एक सप्ताह आप अपनी ज़मीन की तैयारी कर लें या इस तरह से मिट्टी की तैयारी कर लें, और तैयारी करने के बाद पुनः ज़मीन को खोल करके आप ज़मीन की अच्छे से जुताई करें, उसे महीन करें ताकि नर्सरी उसमें डाला जा सके। और अभी नर्सरी डालने के लिए बहुत सारे प्लास्टिक का प्रो ट्रे आ गया है अलग अलग साइज में, आकार में, तो उस मिट्टी का प्रयोग वो वर्मी कंपोस्ट और 1 ग्राम DAP प्रति स्क्वायर मीटर के दर से मिला करके वो मिट्टी को तैयार में डालें और तैयारी करें। साथ में नर्सरी जहाँ भी तैयार करनी है वहाँ पर नर्सरी वाले मिट्टी में बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की मात्रा को नहीं डालना है। अगर कंपोस्ट की मात्रा को वो ज़्यादा डालते हैं तो पौधा लंबा हो जाता है, पौधा मोटा होने की बजाय पौधा लंबा हो जाता है। अब हम लोगों ने मिट्टी की तैयारी की, मिट्टी हमारा तैयार हो गया है। आप प्रोट्रे ले लें, प्रोट्रे में उन मिट्टी को भर दें। प्रोट्रे में मिट्टी भरने से पहले प्रोट्रे के जो बेस होता है, जो कटोरी नुमा संरचना होता है, उसके बेस पर हल्का बालू डाल दें। बालू डालने से क्या होगा कि आपका वो मिट्टी है जो आपके कप में सटेगा नहीं, और उस प्रत्येक में मिट्टी डाल दें और बीज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जब तक हम लोग नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं तब तक हमें गुणवत्ता युक्त बीज का व्यवस्था करना चाहिए। टमाटर में भी, बैगन ये में, इसका गोभी का, पत्ता गोभी का, शिमला मिर्च का, इन सब का बीज का हम लोगों को तैयारी कर लेना चाहिए। और बीज को तैयारी करके बीज को उपचारित कर दें, रात में बीज को फूलने दे दें और बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल करके और क्लोरोपायरीफॉस 6 ml 1 लीटर पानी में डाल करके आप उस बीज को अच्छे से उपचारित कर लें। और अगर बीज को उपचारित करना, अगर पानी में नहीं फुलाना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो क्या करें कि कार्बेंडाजिम में किसी अलग रंग को मिला दें, कार्बेंडाजिम में अलग रंग का मतलब गुलाबी मिला दें या पीला मिला दें, और बीज को किसी प्लास्टिक वाले सतह पर फैला लें, और फैलाने के बाद उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद दवा का भुरकाव करके उसे अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि बीज, एक एक बीज पर कुछ ना कुछ दवा लग जाए। रंग मिलाने से क्या होता है कि बीज पर जब रंग दिखाई देता है तो लगता है कि हाँ, इस पर दवा मिल गया है। उसी प्रकार से अगले दिन क्लोरोपायरीफॉस से कर लें। दूसरा चीज़ है कि किसान भाई बीज को उपचारित करते समय उसमें गुड़ की मात्रा थोड़ा मिला देते हैं, तो गुड़ का एक कोट बन जाता है बीज पर, जो बीज को स्वस्थ रखता है और न्यूट्रिशन, पोषण देने का काम करता है। तो बीज इससे न्यूट्रिशन, जब पोषण उसको मिलता है तो बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार से किसान हमारे बीज एक एक बीज करके प्रोट्रे में डालें। और अगर नर्सरी में बीज वो डाल रहे हैं, जमीन में डाल रहे हैं, तो छिट्टा विधि को से नहीं डालना चाहिए हमारे किसानों को। छिट्टा विधि से क्या होता है कि कभी कभी बीज का फैलाव एक तरीके से नहीं होता है, कुछ बीज एक जगह ज़्यादा पड़ जाते हैं, कुछ जगह एक बीज कम पड़ते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जहाँ पे कम बीज पड़ता है वहाँ पे पौधा बौना और मोटा होता है, और जहाँ पर घना बीज पड़ता है वहाँ पर नर्सरी है जो आपका पौधा है जो लंबा और उसका जो तना होता है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जब उसे हम मुख्य भूमि में देते हैं तो उस समय हमें गुणवत्तापूर्ण पौध नहीं तैयार होता है। तो किसान भाई इसको नर्सरी में अगर जमीन में भी डाल रहे हैं तो बीज को हमेशा 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर दें, ताकि उनको पौधा अच्छा प्राप्त हो। दूसरा, किसान हमारे सावधानी बरतें कि लगाते समय वो कोशिश करें कि लगाने के एक दिन पहले उसमें सिंचाई करेंगे तो उसमें किसी कीटनाशक को अवश्य पानी में डाल करके उसका पटवन कर दे, ताकि प्रत्येक पौधा में कुछ ना कुछ कीटनाशक का अंश आ जाए। दूसरा चीज़ है कि अगर वो लगाने जा रहे हैं पौधे को, तो ऊपर की पत्तियों को काट दें, जो बहुत सारी पत्तियां निकली रहती हैं लगाने में, सिर्फ उसके एपिकल कली का भाग को छोड़ दें और बाकी पत्तियों को हटा दें वो नर्सरी में ही। इससे क्या होगा कि जब आप उसे मुख्य भूमि में लगाएंगे तो लगाते समय आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि पत्तियां ही खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, और जब पत्तियों को सूर्य की रोशनी में जाएंगे तो पत्तियां हैं जो जड़ से आपको खाना मांगना, पानी मांगना प्रारंभ कर देगा, और आपका जड़ जो है अभी ज़मीन में स्थापित नहीं हुआ है। तो अपनी पौध लगाए गए पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए किसान भाइयों को अग्रभाग को छोड़कर बाकी की पत्तियों को हटा दें। और इससे क्या होगा, पत्तियों को हटाने से आपका मुख्य तना तना ही निकलना प्रारंभ हो जाएगा, तना निकलना प्रारंभ हो जाएगा जहाँ जहाँ से आपने पत्तियाँ छोड़ी हैं, तो कल्लिका है जो तना में परिवर्तित हो जाएंगी। इससे पौधों में शाखाएं की संख्या बढ़ जाएंगी, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि फल लगने वाले कल्ले भी बढ़ेंगे। इस प्रकार से अगर किसान अपने पौधों का प्रबंधन करते हैं नर्सरी अवस्था में ही, तो वो उत्पादन में एक नया आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद
15: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मैडम। और श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आज की इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
20: उन्नत कृषि।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ हाँ हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना?
5: खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
6: टीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
1: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो,
0: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
7: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
12: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
12: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
14: हर घर सूर्य घर।
15: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं श्री अन्न के खरपतवार नियंत्रण के बारे में। दोस्तों, श्री अन्न काफी डिमांड में है और अब हमारे किसान भाई बहन श्री अन्न की खेती बड़े स्तर पर करने लगे हैं, और उनकी एक परेशानी होती है कि खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। आइए जानते हैं विस्तार से डॉक्टर एस के चौधरी सर से। सर आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
16: धन्यवाद मैडम।
15: सर श्री यानी के खरपतवार के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से मुख्य खरपतवार होते हैं जो श्री यानी की फसलों में उगाते हैं?
16: धन्यवाद मैडम। पहले तो मोटे अनाज जो किसान भाई लगाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे।
15: जी बिल्कुल।
16: मोटे अनाज को दो भाग में बांटते हैं, एक मोटे अनाज जो मोटे अनाज में भी जो एक मोटा जिसका दाना रहता है, एक छोटे मोटे अनाज जिसका जो मोटे अनाज में जिसका छोटा दाना रहता है उस भाग में बांटते हैं। तो पहले तो एक मोटे मोटे अनाज जिसे है उसमें से जैसे मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, रागी हुआ जिसको मरुआ भी कहते हैं, और छोटे मोटे अनाज जैसे कि सावा, कोदो, कुटकी, चीना, कंगनी में जो खरपतवार नियंत्रण बहुत ही जरूरी है, जो कि उसका जो उपज है वो बहुत कम से कम 30-40% तक की कमी कर देता है। मोटे अनाज में जो मुख्यतः खरीफ मौसम की फसल है और इस मौसम में रबी मौसम की तुलना में ज़्यादा खरपतवार निकलते हैं। मोटे अनाज के पौधे शुरुआती 4-6 हफ्ते में बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं जिसके कारण खरपतवार से मुकाबला नहीं कर पाते और उपज में लगभग जो पहले बताए थे 30-40% तक की भारी कमी कर देते हैं। मोटे अनाज के फसल में अक्सर ऐसी जिद्दी खरपतवार का सामना करना पड़ता है जो फसलों से पोषक तत्व, पानी और धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। स्वास्थ्य फसल और अधिकतम उत्पादन के लिए प्रभावी खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। प्रभावी खरपतवार नाशकों का उपयोग करके खेत को खरपतवार मुक्त रखा जा सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो मोटे अनाज में खेत में समानता जो खरपतवार है वो सबसे ज्यादा सकरी पत्ती खास कुल के लिए, चौड़ी पत्ती के साथ साथ मोथा कुल के खरपतवार आमतौर पर देखने को मिलता है, जिसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार में इक्लिप्टा अल्बा, सिजुलिया एक्जेल्डिस जिसको थुकचर भी कहते हैं, कोमिलेला बेंगलसिस, कोमिलेला डिफ्यूजा जिसको केन भी कहते हैं, एजिडिटम कोनोजॉइट्स महकौवा नाम से प्रसिद्ध है। ये सब जो है वो खरीफ सीजन में मोटे अनाज के तौर पे जो मोटे अनाज के फसल में उगते हैं। उसके अलावा जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार है जिसमें इकाइना कुलोनम है, छोटा सावक है, क्रिसगेली है जो कि सावक भी कहते हैं, इलुसिनिया इंडिका कहते हैं जिसको वन मरुआ भी कहते हैं, मकड़ा घास, और इसके अलावा इरोगोटिस जैपोनिका, ये सब जो है सकरी पत्ती घास कुल के खरपतवार में आते हैं और ये मोटे अनाज के फसल में निकलते हैं। उसके अलावा जो मोथा कुल के खरपतवार में साइप्रस इरिया, साइप्रस रोटेंडस जो कि मोथा के नाम से जानते हैं, साइप्रस मेरिमस बूचर के नाम से भी जानते हैं, साइप्रस डिफॉर्मिस नगर मोथा भी कहते हैं, असाइनोटिक एक्सेलिडिस गोरंडा के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये मोथा कुल के खरपतवार है और यह मोटे अनाज में प्रायः देखने को मिलता है।
15: जी सर। सर अब बात करते हैं कि इन खरपतवार से अपने खेत को मुक्त करने के लिए खरपतवार नाशी का छिड़काव हमारे किसान भाई बहन कब करें?
16: खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से पहले हम एक चीज ये बताना चाहेंगे, खरपतवार के रोकथाम कब करना चाहिए। वैसे तो मोटे अनाज में खरपतवार से होने वाले नुकसान खरपतवार की संख्या, किस्म एवं फसल की प्रतिस्पर्धा के समय पर निर्भर करता है। घास कुल के खरपतवार प्रारंभिक एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार बाद की अवस्था में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। बीज के द्वारा बोए गए मोटे अनाज में कम से कम 15 से 35 दिन तक तथा रोपाई वाले मोटे अनाज में 30 से 40 दिन के बाद का लाभ खरपतवार प्रतिस्पर्धा के दृष्टि से क्रांतिक नाजुक स्थिति होता है। इस अवधि में फसल को खरपतवार से मुक्त रखना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है तथा फसल का उत्पादन को भी अधिक प्रभावित नहीं करता है। खरपतवार के रोकथाम कैसे करना चाहिए, इसके जो खरपतवार नाशी एकदम जो अंतिम विकल्प के रूप में हम लोग अपनाते हैं, लेकिन उसको इससे पहले खरपतवार नाशी के प्रयोग करने से पहले भी बहुत से मेथड है जिसके से हम लोग खरपतवार का नियंत्रण फसल में या मोटे अनाज में करते हैं। जैसे कि खरपतवार की रोकथाम में ध्यान देने वाली बात यह है कि खरपतवारों को सही समय पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, चाहे तरीका कोई भी हो। समेकित एकीकृत खरपतवार नियंत्रण के अंतर्गत किसी एक विधि पर निर्भर न रहकर यांत्रिक, सांस्कृतिक, निवारक और रासायनिक विधियों का एक साथ तालमेल बिठाकर उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो निवारक जो उपाय है, जिसको प्रिवेंटिव मेथड मेजरमेंट कहते हैं, जिससे कि खरपतवार कि जो बीज है वो अपने खेत में, जो अपने फसल में नहीं आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो साफ बीजों को का उपयोग करना चाहिए। हमेशा प्रमाणित और खरपतवार बीजों से मुक्त साफ बीजों का ही बुआई करना चाहिए। पूरी तरह सड़ी हुई खाद का उपयोग करके खेत में केवल अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर के खाद कंपोस्ट डालें। कच्ची खाद में खरपतवार को जीवित बीज होते हैं जो कि खेत में फैल जाते हैं। इसके अलावा जो है मेड़ और नालियों की साफ सफाई रखना चाहिए। खेत के आसपास के रास्ते, पानी, नालियों और मोटे मेड़ों पर उगे खरपतवार के फूल आने से पहले ही नष्ट कर दे, ताकि उनके बीज मुख्य खेत में पानी के सहायता से ना पहुंचे। ऐसा करने से हमारे फसल में जो खरपतवार का बीज है वो आने से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो है यांत्रिक भौतिक विधि है, जिसको मैकेनिकल मेथड भी करते हैं। इसमें सबसे पहले है निकाई गुड़ाई। मोटे अनाज के लिए बुआई के बाद 20 से 35 दिन नाजुक होते हैं। लाइन में बोई गई फसलों में 20 से 25 दिन पर पहली और 35 से 40 दिन पर दूसरी निराई गुड़ाई हैंड हो, डच या साइकिल वीडर्स की मदद से अवश्य करें। हाथ से उखाड़ना, बिखेर कर ब्रॉडकास्ट विधि से बोई गई फसलों मोटे अनाज में कम से कम 2 बार हाथ से खरपतवार निकालना सबसे प्रभावी रहता है। खरपतवार को हमेशा फूल आने से पहले ही उखाड़ लेना चाहिए। इसके अलावा जो है और भी विधि है खरपतवार नियंत्रण के, उसमें से जो एक है शस्य क्रिया विधि, जिसको हम कल्चरल मेथड में भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले है गर्मी की गहराई जुताई। जैसे आप खरीफ मौसम में जो जून जुलाई में आप मोटे अनाज लगाते हैं, उसके पूर्व अप्रैल और मई महीने में खेत की गहरी जुताई करके खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि तेज धूप के संपर्क में आने से खरपतवार की जड़ें, जैसे कंद, जैसे मोथा की गांठें और बीज नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है स्टील सीड बेड टेक्निक, एक किसान लोग को ये जानना जरूरी है। जैसे कि हम बुआई से 10 से 15 दिन पहले खेत में हल्की सिंचाई या नमी होने के लिए होने देने के बाद इसको शाकनाशी ग्लाइफोसेट या पाराक्वाइट द्वारा यांत्रिक विधि से जुताई करके से भी नष्ट करते हैं और फिर मुख्य फसल को बोते हैं। ऐसा करने से मुख्य फसल में खरपतवार के प्रकोप में काफी कमी आती है। इसके अलावा जो है घनी बुआई और कम कतार की दूरी, जैसे स्पेसिंग जो है दो कतारों की दूरी कम करके या नहीं तो बीज दर को बढ़ा करके भी खरपतवार का जो संख्या है उसका प्रकोप है उससे बचा जा सकता है। जैसे कतारों के बीच की दूरी उपयुक्त रखकर, जैसे रागी में 15 सेंटीमीटर फसल बोने से जमीन जल्दी ढक जाती है और खरपतवार को बढ़ने के लिए धूप व जगह नहीं मिलती है। इसके अलावा जो है बीज दर का जो मात्रा है उससे थोड़ा ज़्यादा 10% बढ़ा देने से भी खरपतवार को दबाया जा सकता है। इसके अलावा जो है उचित फसल चक्र अपनाकर एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में उगाने से खरपतवार की समस्या और जटिल हो जाती है। अतः आवश्यक है कि पूरे वर्ष भर एक खेत में एक फसल लेने की बजाय मोटे अनाज की एक फसल लेने के बाद उसमें दूसरी फसल जैसे चना, मटर, गेहूं इत्यादि लेने से खरपतवार को कम किया जा सकता है। सिंचाई एवं जल प्रबंधन करके भी खरपतवार के प्रकोप को भी बचाया जा सकता है। जैसे कि मोटे अनाज में बुआई के बाद पौधे से जब 3 से 4 पत्ती के हो जाए तो उसमें 1 सप्ताह तक पानी 1 से 2 सेंटीमीटर खेत में समान रूप से रहना चाहिए। इसके बाद पानी का स्तर को 5 से 10 सेंटीमीटर तक समान रूप से रखने से खरपतवार की वृद्धि को आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा जो है उर्वरकों का प्रयोग करके भी खरपतवार को रोक सकते हैं। ऐसा करने से भूमि में पोषक तत्व की मात्रा देने की विधियां एवं समय का भी फसल एवं खरपतवार के वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद पोषक तत्व की अनुमोदित मात्रा को ठीक समय और उचित तरीके से देने पर मोटे अनाज की फसल इसमें इसका समुचित उपयोग कर पाती है। असिंचित उपजाऊ भूमि में जहां खरपतवार की समस्या अधिक होती है वहां नाइट्रोजन की आरंभिक मात्रा को बुआई के समय न देकर पहली निराई गुड़ाई के बाद देना लाभदायक रहता है तथा नाइट्रोजन को फसल की लाइन के पास डालना चाहिए जिससे कि ज्यादा भाग फसल को मिल सके। और अंत में जैसा मैडम आप बताए थे जो खरपतवार नाशी उसका प्रयोग करके भी हम खरपतवार को अपने खेत से अपने मोटे अनाज के फसल से मुक्त रखते हैं। जब मजदूर उपलब्ध न हो या खरपतवार बहुत ज्यादा हो तब सीमित मात्रा में कृषि वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित शाकनाशियों का उपयोग समेकित प्रबंधन के तहत करना चाहिए। खरपतवारों का शाकनाशियों द्वारा नियंत्रण करने से प्रति हेक्टेयर लागत मूल्य में कमी आती है तथा समय पर की भारी बचत होती है। लेकिन शाकनाशी जो खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग करते समय उचित मात्रा उचित ढंग तथा उपयुक्त समय पर प्रयोग का सदैव ध्यान रखना चाहिए अन्यथा लाभ के बजाय हानि होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि मोटे अनाज में कुछ जो फसल है उसमें बिंदुवार हम जो शाकनाशी है जो खरपतवार नाशी है उसका हम यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे। उसमें से पहले जो ज्वार है उसमें जो एट्राजीन एक खरपतवार नाशी है जो कि 0.75 से लेके 1 kg प्रति हेक्टेयर का उपयोग एज ए प्री इमर्जेंस पौधा अंकुरण होने से पहले इसमें आप अप्लाई या उपयोग कर सकते हैं। इससे सभी तरह के खरपतवार को दबाया जा सकता है। इसके अलावा जो है टोपड़ा मीजॉन जो कि टिंजर के नाम से है वो भी बहुत कारगर है मोटे अनाज ज्वार में जो कि मात्रा है 0.0126 kg प्रति हेक्टेयर जो पोस्ट इमरजेंस के रूप में 25 से 30 दिन के बोने के बाद देना ज़्यादा उपयुक्त है और ये लगभग घास कुल और चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए बहुत कारगर होता है। इसके अलावा टेम्बोट्रीन जो कि लोडिस नाम से बाजार में उपलब्ध है जो कि भी ये पोस्ट इमरजेंस के रूप में इसका उपयोग करते हैं और ये लगभग 0.0242 kg प्रति हेक्टेयर ए आई की मात्रा देना ज़्यादा लाभदायक पाया गया। इसके अलावा दो दवाओं का मिश्रण करके जैसे एट्राजीन टोपड़ामिजॉन करके एट्राजीन टेम्बोट्रीन दोनों अगर आप एक साथ देते हैं तो प्री

0: मोटे अनाज जैसे बाजरा, उसमें ये भी दे सकते हैं एट्राजिन, ट्रेम्बोट्रीन, टोपोडामिजन। इसके अलावा एक फिनोक्सो प्रॉप पी इथाइल है जो 750 ग्राम एआई प्रति हेक्टेयर, जो कि पोस्ट इमरजेंस है, लगभग 25 से 30 दिन के बुआई के उपरांत देना ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा रागी में पैरोजो सल्फिरोन इथाइल जो 15 ग्राम एआई प्रति हेक्टेयर के रूप में देना चाहिए, ये बुआई के दूसरे दिन रागी में देना लाभदायक है, ये प्री इमरजेंस के रूप में काम करता है। इसमें भी सभी तरह के खरपतवार को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा है मेट सल्फिरोन मिथाइल और क्लोरोमिरोन इथाइल, ये सभी तरह के मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। ये मार्केट में ऑल मिक्स करके है और ये मूल साग मतलब सकरी पत्ती के लिए और चौड़ी पत्ती खरपतवार के लिए बहुत ही कारगर है और ये 4 ग्राम एआई प्रति हेक्टेयर का पोस्ट इमरजेंस के रूप में उपयोग में किसान भाई के द्वारा करना चाहिए। इसके अलावा जो कोदो मिलेट है, कोदो कुटकी चीना इत्यादि जो है, उसके लिए ऑक्सी ड्राइजील 80 वेटेबल पाउडर 50 से 75 ग्राम एआई प्रति हेक्टेयर के रूप में, जो कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है जो खरपतवार नाशी है, उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा बेंसल्फिरोन मिथाइल जो 0.6 ग्रेन्यूल में आता है और पेट्राक्लोर 6.0 ग्रेन्यूल में, ये दोनों दवा का मिश्रण है, देने से सभी तरह खरपतवार को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा ब्यूटाक्लोर का भी 50% इसी लाभदायक होता है, जो कि मोटे अनाज के लिए कारगर होता है। इसके अलावा पेंडीमिथिलीन या नहीं तो आइसोप्रोटोन 0.5 से 1 kg एआई प्रति हेक्टेयर देना लाभदायक है। जितना भी दवा है वो एक बार आप अपने निकटतम जो जानकारी है उससे सलाह लेके, नहीं तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के उपरांत ही किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि जो अपने खेत में उसका उपयोग समय के पर्यंत करना चाहिए, जिससे कि खरपतवार को जो बढ़ावार है, जो उसका नुकसान है, उससे बचा जा सकता है और तथा ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से बताया कि कौन कौन से खरपतवार है और किस प्रकार से उनका नियंत्रण करना चाहिए। तो आज के लिए किसान भाई बहनों इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
5: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
7: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि

0: विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को समर्पित यह गीत। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनकर्ता और महेश को संहारकर्ता कहा गया है, लेकिन आप वास्तविक जीवन में आइए तो हमारे किसान बंधु को पालनकर्ता क्यों नहीं कहा जाए। विश्व के समस्त प्राणी, चाहे आकाश में उड़ने वाला पक्षी हो, धरती पर चलने वाला मानव हो या जल में विचरण करने वाला जीव जंतु, यदि किसान नहीं होते तो इनका अस्तित्व मिट जाता। तो आइए, इन किसान बंधु के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने काफ़ी हद तक प्रयास किया है, जिसको गीत के माध्यम से आप सुन सकते हैं।

0: 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी ब कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी ब कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, कई बार किसान भाई बहनों को मौसम की वजह से या कोई अन्य वजहों से काफी नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार उनके पास लागत की भी कमी होती है। और हमारे ऐसे कई सारे किसान भाई बहन हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो उनका लाभ नहीं उठा पाते। हमारी आज की चर्चा का विषय यही है, कृषि विकास के लिए सरकारी योजनाएं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सर। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसे मैम ने कहा, कृषि में जो सबसे आजकल हमारा फसल, जब फसल बहुत ख़राब हो रहा है बाढ़ के कारण से, सूखा के कारण से, और भी बहुत सारे इस तरह के सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए बहुत सरकारी योजनाएं हैं जिससे भाई किसान भाई बंधु लाभ उठा सकते हैं। और इसकी जानकारी थोड़ा बहुत तो है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण से बहुत सारे किसान भाई बंधु उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। उनको कहाँ से वित्तीय सहायता मिलेगा? बहुत सारे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, तो जानकारी के अभाव में वो लोन नहीं ले पाते हैं और बहुत सारे स्कीम के बारे में उनको जानकारी भी नहीं होती। तो आज उसी पे थोड़ा बात करेंगे।
0: सर, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मुख्य स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे किसान भाई बहन उठा सकते हैं।
1: देखिए, बहुत तरह के हैं, जिसमें पहला जो है आय एवं ऋण सहायता। जो कोई भी आप छोटे और जो छोटे सीमांत किसान है उनको आय बढ़ाने के लिए, उनको लोन देने के लिए बहुत सारे स्कीम है। दूसरा जो सबसे मेन है, जो जैसे आजकल बहुत रिस्क है, फसल तैयार है, अब देखिए इसी बार आम लीची के फसल बहुत खराब हुआ, गेहूं का फसल बहुत खराब हो गया, ऐसे मतलब बेमौसमी जो बरसातें हुई, फिर कभी सूखा पड़ जाने के कारण से, कभी बाढ़ पर, तो उसके लिए जो है जोखिम सुरक्षा योजना, जिसको आप लोग जानते होंगे, फसल बीमा योजना है। फिर उसके बाद सिंचाई के लिए है, फिर और भी बहुत सारा आप में उसमें जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाना है, पॉली हाउस बनाना है, आपको कोल्ड स्टोरेज बनाना है, इस सब के लिए अलग अलग तरीके के बहुत सारे योजनाएं हैं।
0: यस सर। तो सर, हम शुरुआत करते हैं लोन के लिए कौन कौन से योजनाएं हैं इसके साथ। तो लोन के लिए कौन कौन से,
1: देखिए सबसे पहला जो है प्रधानमंत्री किसान योजना, उसमें जो है छोटे और सीमांत किसानों को सब आजकल सभी भाई बंधु इससे पूर्ण रूप से मतलब इसका जानकारी होगा उनको। आजकल सरकार जो है 6,000 रुपये सालाना उनको 3 किस्तों में 2,000 रुपया उनको प्रदान करते हैं, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत ये दिया जाता है। फिर उसके बाद जो सबसे अहम है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। आप लोग अपने अपने नज़दीकी बैंक में जाके, नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाके, नहीं तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय आके जानकारी इसका प्रदान मतलब ले सकते हैं, कहाँ से ऐसे इसको, कहाँ किन से मिलेंगे, कैसे इसका हम कहाँ अप्लाई करेंगे जिससे हमें किसान क्रेडिट कार्ड मिल पाए। किसान क्रेडिट कार्ड का एक फैसिलिटी क्या है, जैसे आपको तुरंत यूज है, तुरंत आपको नीड है, आपकी आवश्यकता पड़ गई, जो कल ही 5,000 रुपया निकालना है, तो आप बैंक तो 5,000 तुरंत आपको लोन देगी नहीं, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप तुरंत पैसा निकाल सकते हैं जैसे दूसरे कार्ड से निकाल सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में सबसे अच्छी बात यह है जो उसमें जो ऋण दर बहुत कम है, अगर आप समय से चुकाते हैं तो 4% ही देना पड़ता है, तो एक तो वो है। दूसरा जो है AIF बोलते हैं, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें भी जो भंडारण के लिए, प्रसंस्करण के लिए, लगभग उसमें मतलब आप करोड़ों रुपया तक का उसमें फंड ले सकते हैं।
0: यस सर। तो अभी हमने लोन के बारे में बात की और अभी आपने बताया कि फसल बीमा योजना भी है
1: जी।
0: किसानों को मौसम की वजह से
1: नुकसान। बिल्कुल
0: वो कौन कौन से,
1: उसमें जो है सबसे प्रमुख तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें प्राकृतिक विपदा, कीट, बीमारियों से फसल अगर खराब हो रहा है तो उसके लिए दिया जाता है। उसमें भी जैसे दो उसमें भी अलग अलग स्कीम है, जो रबी फसल है तो अलग है उसमें, और खरीफ है तो अलग है। खरीफ में थोड़ा सा प्रीमियम 2% देना पड़ता है, जैसे एक बीघा में मान लीजिए आपका 20,000 का फसल लगा हुआ है तो उसका लगभग 400 रुपया का आपका प्रीमियम देना पड़ेगा, और जो रबी फसल उसमें थोड़ा कम देना पड़ता है, 1.5% ही देना पड़ता है। और ऐसे ही है जो आपके जिसे बागवानी फसल है जिसमें साग सब्जी फल फूल ये सब है, उसमें 5% तक देना पड़ता है, लेकिन उससे सारा आपका फसल सुरक्षित हो जाता है, जिसमें प्राकृतिक विपदा के कारण से बाढ़ सूखा किसी भी कारण से फसल खराब होता तो उसमें पूरी आपके आपको पूरा उसका जो है मूल्य आपको मिल जाएगा। तो दूसरा है पीएम किसान मानधन योजना, जनधन योजना, और उसमें किसानों के लिए पेंशन दिया जाता है, एक तो ये है। फिर जैसे मैंने बोला सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसका एक हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया, प्रति ड्रॉप अधिक उपज पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब आप कैसे पानी को अधिक से अधिक इस्तेमाल करें जिससे आपका पानी की बर्बादी भी कम हो और आपकी उपज भी बढ़े। जी
0: तो सर, आजकल हमारे किसान भाई बहन चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ें, और ये अच्छी बात भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए, ऐसे में बहुत सी लागत की परेशानी आती है, तो क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी कोई खास स्कीम है जिसका फायदा किसान भाई बहनों को मिल सकता है?
1: जी मैम, उसमें जैसे है परंपरागत कृषि विकास योजना, आप भाई बंधु आप लोग अगर सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो इसके बारे में जानकारी आप उपलब्ध कीजिए, और आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग या बैंक में भी आप जाके पता कर सकते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करना चाहते हैं उनको कम मतलब सब्सिडाइज रेट पे सब्सिडी मिलता है और उस पे उनको लोन मिलता है जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, सभी भाई बंधु इसमें जागरूक मतलब इसके बारे में उनको जानकारी होगी, जो भी आप फसल लगाते हैं उससे पहले आपको अपने मिट्टी में कौन कौन उर्वरक उसमें उपलब्ध है, कमी है ज्यादा है, उसकी पहले जानकारी हो जानी। तो ऐसा होता है कभी कभी देखा गया है जो कुछ उर्वरक तत्व पहले से मौजूद है फिर भी ऊपर से लोग डाले जा रहे हैं तो उल्टा वो लाभ की जगह पर हानि पहुंचाता। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का लाभ उठाइए, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाइए। उसके बाद डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, उसके तहत जो है लगभग सरकार ने 2,817 करोड़ का बजट इस बार पास किया है। उसके अंतर्गत कोई किसान अगर इसमें डिजिटलाइजेशन ऐप बनाना चाहते हैं, सामान बेचने के लिए जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्कीम है। जी मैम,
0: तो ये कुछ स्कीम्स हैं, अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं जिनका हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं। सर, अगर आप अंत में हमारे किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहे तो क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मेरा आप सभी भाई बहनों से एक निवेदन है, जो इसके बारे में जानकारी सही जानकारी नहीं मिलने के कारण से, सही जानकारी नहीं होने के कारण सब आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो भी ठीक ठीक आपको जानकारी नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो उससे अच्छा है आप या तो किसी विश्वविद्यालय आइए, आप जो हमारा टोल फ्री नंबर है वहाँ उस पर आप कॉन्टेक्ट करिए हमें, और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके ग्रामीण विकास बैंक है, बैंक जाइए वहां से जानकारी उपलब्ध कीजिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत सारी स्कीम्स आप लोगों के लिए सरकार ने उपलब्ध करवाया है, उसका लाभ उठाइए। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जिन भी स्कीम्स के बारे में बताया, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन उन स्कीम्स का सुविधा अनुसार लाभ जरूर लेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: किसान भाई बहनों, आज की चर्चा से उम्मीद है कि आपको काफ़ी लाभ होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए मिला होगा सरकारी योजनाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
1: टीकू, तेरे कितने दोस्त है?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो,
5: आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
7: हर घर सूर्यघर।
8: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
8: है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
8: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
12: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
8: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
13: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
14: धन्यवाद
13: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें।
14: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहां पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
13: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
14: देखिए पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों, तो हम लोग राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगें तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
13: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
14: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे, तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही, तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
13: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
15: कृषि विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन यानी विविध कार्यक्रमों का गुलदस्ता, कृषि, स्वास्थ्य, करियर और लोक मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रमों को सुनिए भागलपुर में FM बैंड के 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। इसके साथ ही एंड्रॉइड और iOS पर सुनिए FM ग्रीन के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। रेडियो गार्डन एप्लीकेशन पर खोजिए FM ग्रीन और सुने कहीं से भी और कभी भी। FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
16: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
17: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं, तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है, और इस बारे में, नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
1: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
0: तो मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक, सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण, सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
0: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
1: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30 से 40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15 से 20% होती है एवं पोटाशियम का 60 से 70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है, जो 1 से 5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है, तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा, तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
0: जी जी। तो मैम, अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
1: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे, तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी, तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले, उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है, तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की, वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
0: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी बहुत सारे अनेक अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या आईसीआर हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसकी फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि हैं, जलवायु अनुकूल कृषि हैं या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके के पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्व की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटाशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग, तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे
0: जी।
1: तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
0: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
1: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था, तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीकी है। तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है, नैनो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक ताको वृद्धि करेंगे, ये सब चीज़ें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियाँ हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है। 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
0: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: धन्यवाद उमा आपको।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात।

योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं, जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, न सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले बल्कि

0: FM ग्रीन
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

कानपुर से माना जाता है। कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहाँ आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा से संबंधित एक रोचक प्रसंग मैं आप लोगों को गीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है। और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है, कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएँ होती है, कमाने वाली महिलाएँ होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज़ को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीज़ें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज़ को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना, और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती है या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
3: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में रबी मक्का में लगने वाले कीटों के समुचित प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह और सर वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका स्वागत है। और किसान अभी मक्का लगा रहे हैं और इस समय उनको क्या कुछ करना चाहिए, तो उसके बारे में पहले बता दें।
10: हाँ नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप मक्का लगा रहे होंगे, इसमें कुछ सावधानियां हैं। कैसे आप मक्का तो आप लगाते ही हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जिसको आप कर करके आप ये कीट है, ये कीट का जो संक्रमण होता है जो, उसे आप बच सकते हैं और आप अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप खेत की तैयारी, जो लोग नहीं लगाए होंगे वो कर रहे होंगे, तो खेत की तैयारी में कुछ चीज़ें हैं, उस बातों पे ध्यान देना है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब जुताई करते हैं तो जुताई हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा है कि कल्टीवेटर से भी करते हैं तो एकदम ऊपर ऊपर ना हो करके उसको थोड़ी गड्ढा में उसको करना है। चूँकि अभी तो ये सीजन है, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी हर तीसरे साल पे आप लोगों को अपनी ज़मीन का गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई जनरली इस महीने तो नहीं संभव है, इस महीने करने से फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। गहरी जुताई करना है आपको मई जून के महीने में, जब सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा होता है उस समय आपको करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि जितने भी रोग जो पौधे को करता है, जो शुरुआत में जो पौधा जब हमारा बहुत छोटा रहता है तो उसको संक्रमित करता है, तो उनसे रोग करने वाले कारक को सूर्य के जो प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश जो है उनको मार देते हैं, जिसके चलते ये संक्रमण नहीं हो पाता है। तो एक तो रोगों से बचाव होता है, दूसरा जो है कीट के जीवन चक्र का कोई भी जो स्टेज होता है वो अगर सॉइल में है, जमीन में है, तो वो ये ज़्यादा तापमान से, धूप के प्रकाश से वो मर जाते हैं। तो साथ ही साथ जो बहुत सारे जो कीट को जो चिड़िया है वो चुन करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये हो गए आपके गहरी जुताई के फायदे। अब हम लोग चलते हैं उर्वरक के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि उर्वरक भी कहीं ना कहीं हमारे कीटों पर व्यापक प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो आपको जो उर्वरक है उसको कब कब देना चाहिए, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उर्वरक हम लोग देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के फॉर्म में, तीन फॉर्म में हम लोग देते हैं। तो इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी खड़े फसल में भी वो फॉस्फोरस और पोटाश डालते हैं। तो ये खड़े फसल में जब फॉस्फोरस और पोटाश डालेंगे तो इनका जो उपलब्धता होता है, ये अगर आज हम उसको छींटते हैं प्लांट में तो इसकी उपलब्धता में होते होते महीनों लग जाते हैं। तो इसीलिए फर्टिलाइजर उर्वरक जो है देने का भी एक प्रोटोकॉल है, एक सही समय है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आधी मात्रा यूरिया का जो अनुशंसित है मक्का के लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान आजकल हाइब्रिड मक्का लगाते हैं, तो उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उसकी आधा मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय और पूरी मात्रा फॉस्फोरस और पोटास की। आपको खेत की जब अंतिम जुताई करते हैं उसके बाद पट्टा दे करके जब हम बीज लगाते हैं तो उस समय आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका जब पौधा शुरू में छोटा रहता है तो जितना उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो तो मिलेगा, लेकिन फॉस्फोरस और पोटास लगभग एक महीने के बाद जब उपलब्ध होगा तब तक आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसका उस समय में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, ऐसे आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जो रेस्ट जो नाइट्रोजन है उसको जो आप यूरिया के फॉर्म में देते हैं तो उसको पुनः दो पार्ट में आधा आधा कर करके, एक जब नी हाइट होता है, मतलब नी हाइट कहते हैं जब आपके ठेहुने के हाइट का हो तब, और दूसरा जब उसमें धनवाल जब आने वाला होता है उस समय आपको प्रॉपर सिंचाई के साथ आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो पोटेशियम जो होता है अगर आप कम मात्रा में देते हैं या नहीं देते हैं तो ये आपके पौधे के जो रोगों से लड़ने या कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। अगर पोटेशियम आप कम मात्रा में देंगे तो आपके जो फसल होंगे उस पर कीटों का आक्रमण हो सकता है कि ज़्यादा हो और वो, लेकिन अगर आप पोटेशियम जो समुचित मात्रा में देते हैं तो इस पर कीट वो पौधा जो होता है वो मजबूत होता है और उसके चलते जो है उसमें कीटों का आक्रमण कम होता है। तो ये आप पोटेशियम के बारे में आप समझ लीजिए, जो म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद जब आप उर्वरक जब दे दिए तब होती है कि भाई बीज का चुनाव कैसे क्या करना है। तो बीज आप अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लेंगे, और बीज में भी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बीज एक तो हाइब्रिड होना चाहिए, क्योंकि अच्छी जो गुणवत्ता वाली जो अगर बीज होती है तो उसमें रोग और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। एक जो साधारण प्रकार का अगर बीज हम लगाते हैं वो और एक जो अच्छी गुणवत्ता वाली बीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक तो उत्पादन में ही अंतर होता है और साथ ही साथ इसमें रोगों और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। तो बीज आपको हाइब्रिड और अच्छी गुणवत्ता वाली लेनी है। अब ये बीज आपको मिलेगी कहाँ से, इसके बारे में भी कुछ बात करनी है। तो बीज जो है अच्छे दुकान से ले और वहाँ उनसे कैश मेमो का डिमांड करें, मांग करें, और कैश मेमो जो होता है ओरिजिनल बिल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है उसका लॉट नंबर रहता है, सारा डिटेल रहता है उसमें दिया हुआ। तो इन केस अगर कभी कोई आपको अगर बीज का शिकायत होता है, समय से अगर पहले उसमें अगर फ्लावरिंग हो गया, फूल आ गया या दाना सेट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है आपको, अगर आपका कैश मेमो होगा तभी कृषि विभाग या कोई भी आपको सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो ये होगा कि कहाँ से बीज लाएँ, तो ये आपको रसीद लेनी है ओरिजिनल कैश मेमो के साथ और उसको आपको लगाना है। टाइमिंग का भी सही उपयोग करना चाहिए, अभी उपयुक्त टाइम चल रहा है, उसको आप लोग लगाइए। अब क्या है कि बीज जो आप लेते हैं उसको उपचारित करना है। अब वो उपचारित कैसे करें, उपचार करने से क्या फ़ायदा होता है, तो उपचार करने का दो, चूँकि ये मक्का है इसलिए दो चीज़ों से उपचार करने से ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो करना है कि रोगों से इसका कैसे बचाव हो, तो रोगों से जो बचाव होने के लिए इसका हम लोग कार्बेंडाजिम से हम लोग इसका बीज उपचार कर सकते हैं। इसका 2 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलो सीड की दर से आपको कार्बेंडाजिम लेना है और पानी उतना ही मिलाना है जितना कि जस्ट ये बीज आपको उसमें मतलब ये भींग जाए। और इसको आपको पक्का फर्श पे या पॉलीथीन जो आता है पॉलीथीन सीट उस पे करना है, ज़मीन पे कभी इसको ना करें। और ये जब भी बीज उपचार करते हैं आपको ठंडे में करना है, धूप में, कड़ी धूप में नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपको रोगों से लड़ने। इससे क्या होता है, ये जो कार्बेंडाजिम है ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, फफूंदनाशी है, और ये आपके पौधे को, जो पौधा आपका छोटा छोटा होता है उसको लगभग 21 दिन तक आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आपके मिट्टी में मिट्टी जनित फफूंद भी होगा तो ये अप टू बहुत हद तक आपके फसल को ये बचाता है। तो ये हो गई। दूसरी बात है कि कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक से भी इसको जो है बीज उपचार करना चाहिए। तो मक्का के केस में क्योंकि कहीं कहीं पे ये हम लोग रबी में लगा रहे हैं इसको, तो इसमें दीमक और इस सब की भी समस्या हो सकती है। दूसरे जो कीट है उनके भी जो शिशु है वो मिट्टी में हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 AC प्लस साइपरमेथ्रिन 5 AC ये जो द्रव के मात्रा में ये पाए जाते हैं कीटनाशी, तो इसका आपको जो मक्का का बीज है उसमें 2 मिलीलीटर प्रति की दर से इसको आपको किसी भी पात्र में या जो पॉलीथीन का जो पैकेट आता है, मक्का का जो पैकेट आता है 2 kg वाला जो आता है, तो उसी में डाल करके आप दोनों हाथ से उसको हिला दीजिए, और हिलाने के बाद पुनः जो है इसको पक्का फर्श पे इसको आप सुखाइए, और सुखाने के बाद तब जा करके आप इसको खेत में लगाना है। इसको पुनः अब खेत में कैसे लगाना है, तो कई किसान भाइयों को रहता है कि अगर जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हम कम करेंगे, और फिर लाइन में पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको भी कम करके अगर जो मक्का के जो पौधा है उसकी संख्या अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा। लेकिन इसके उल्टा भी होता है, जब इस सारा एक अनुशंसित मतलब इसका जो दूरी होती है जो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, और पुनः उसमें 20 सेंटीमीटर का जो होता है लाइन में पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखना चाहिए, क्योंकि इसे अगर कम आप रखते हैं तो जो सूरज का प्रकाश है वो हमारे जो मक्के का पौधा है उसको सभी पार्ट में नहीं लगता है, और जिसके चलते रोग भी होने की समस्या रहती है, और कीटों के जो जीवन चक्र के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था नीचे में जाके कहीं ना कहीं वो छुप जाता है, और छुपने के बाद जो है वो आपके फसल को ज़्यादा ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लाइन से लाइन कर दिए, देन आपको जो पौधा है उसको हमेशा आपको खेत पे अपने जाते रहना चाहिए। खेत पे जाते रहने से क्या होता है कि आपको अगर कोई कीटों का अगर उस पर समस्या होगा, आक्रमण होगा, तो आप देख पाएंगे और उसका जो है समुचित आप उपचार कर पाएंगे।
0: जी, तो अगर हम बात करें कीटों की, तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं इसके बारे में बताएं।
10: हाँ, ये कीट एक तो कटवर्म जो मक्का में बहुत, अभी जब आपका पौधा जब छोटा छोटा होता है तो वो आता है कटवर्म, और दूसरा है जब पौधा फिर आपका जब थोड़ा सा बड़ा होगा तब इसमें तना छेदक का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। और उसके बाद तना छेदक के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, एक फॉल आर्मी वर्म जो कीट है, जो पहले नहीं पाया जाता था लेकिन विगत कुछ सालों से उसकी आक्रामकता बढ़ गई है, तो वो मुख्यतः ये रहते हैं। उसके अलावा भी कई कीट है लेकिन इन ये तीन कीटों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है ग्रास हॉपर है जो आपको पत्तियों पे खाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग इन तीनों तीन कीटों पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे कि क्या है, उनको कैसे आप पहचानें, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जिसको हम लोग कटवर्म बोलते हैं, ये कटवर्म का आप लोग अपने अलग अलग जगहों पे लोकल भाषा में उसका कुछ और भी नाम है, हो सकता है, ये आपको बताते हैं कि ये कैसे आपके फसल को नुकसान करता है। तो आप जब अपने जब हम मक्का जब लगाते हैं तो शुरुआती कंडीशन में जब ये दो पत्तियों के फेज में होता है, ये जर्मिनेशन के अंकुरित होने के बाद के जो बात है, उसके बाद ये जनरली आपको कटवर्म की समस्या हो सकती है। तो कटवर्म में क्या होता है कि इसके जो शिशु होंगे वो लंबा लंबा शिशु होते हैं, और वो जनरली ज़मीन का जो ढेला होता है और उसमें ये छुपा रहता है या दरार रहता है उसमें छुपा रहता है ये दिन को, लेकिन जो ही शाम होता है ये निकल करके आपकी जो फसल है उसको ये नीचे से ही कट कर देते हैं, मतलब जड़ के ऊपर से ये कट कर देते हैं। चूँकि पौधा बहुत छोटा होता है, मुलायम रहता है, जिसके चलते कभी कभार किसान भाइयों को क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर ये काट दिए ये जो कीट है, इसके जो शिशु है, तो आपको पुनः किसान भाइयों को वहाँ पे गैप फिलिंग करना पड़ता है मक्का के दूसरे बीजों से। तो ये कटवर्म है। तो अब इस कटवर्म से कैसे आपको निजात पाना चाहिए, तो अगर ये इसकी कहीं कहीं समस्या है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी समस्या ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको ये क्लोरपाइरीफॉस 50C प्लस हाइपरमिथ्रिन 5EC की जो मात्रा है वो 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में, इसको आपको पूरी तरह से इसको ज़मीन पे और जो आपका छोटा पौधा है उस पर शाम के समय, शाम के 4 बजे के आसपास इसको छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से आपका जो है वो रोकथाम हो जाएगा। तो ये तो हो गया जो शुरुआती कंडीशन है। उसके बाद पुनः इसके बाद क्या होता है कि जब पौधा आपका जब बड़ा होगा तो तना छेदक का समस्या हो सकता है। तो ये तना छेदक कैसा होता है, ये तना छेदक आप देखेंगे कि आपका जो मक्का है तो उनकी जो पत्तियां हैं उस पत्तियां में लाइन से तीन तीन गोला गोला छिद्र ये हो सकता है, छिद्र मिले। तो पुनः छिद्र के साथ साथ होता है क्या कि जो उसका जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन में जो है ये इसके जो है शिशु रहते हैं और वहाँ पे वो उसको वो खा करके क्षतिग्रस्त करते हैं, साथ ही साथ स्क्रीटा भी उसमें वो डालते रहते हैं। तो ये है तना छेदक का। तो तना छेदक की जब समस्या हो, और इसमें भी आपको ध्यान देने की बात है, अगर 100 पौधे में अमूमन अगर 5 पौधे में ऐसा समस्या अगर 5 से ज़्यादा में देखा जाता है तब आपको इसके उपचार के लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए। अगर कहीं कहीं पे है 5 से इसकी संख्या कम है तो ये उतना इकोनॉमिक लॉस नहीं कर सकता है, आपको इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसके कीटनाशी को छिड़कने में और ख़रीदने में और छिड़कने में जितना पैसा आपका लगता है उससे कहीं ना कहीं उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तब आपको इसके उपचार के लिए आपको आगे आना होगा। तो एक तो हो गया, अब इसका उपचार कैसे करें। तो इसके उपचार करने के लिए अगर पौधा आपका छोटा है, आपका अगर पौधा आपके ठोने से नीचे कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप जो दानेदार जो कीटनाशी है जो कटाप हाइड्रोक्लोराइड 0.4G के नाम से आता है, तो इसको एक जर्दे के डब्बा में डालना है और जर्दे के डब्बा में छेद करके जैसे जर्दा पान पे डालते हैं लोग, उसी ढंग से आपको जो मक्का का जो गभा है उस गभा में उसको डालना है, ऐसे छींटना है ताकि दो तीन उसके जो हमारा जो कीटनाशी है क्लोरोपाइरीफॉस दानेदार, उसकी ये दानेदार कीटनाशी है उसका दाना जो है उसके कंठ में चला जाए, क्योंकि ये कीट जो कंठ में छुपे रहते हैं तो ये कीट के बॉडी में ये स्पर्श करते ही सटते ही ये कीट मर जाता है और आपका जो है जिस पोर्शन में जिस पॉकेट में जिस क्षेत्र साइड में अगर ये समस्या उधर ही सिर्फ छिटने से आपको काम हो जाएगा, आपके पूरे फसल पे छिटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके चलते क्या होता है कि एक तो हमारा जो कीटनाशी की मात्रा कम लगती है और हमारे जो मित्र कीट है वो भी मरने से बच जाते हैं। तो ये हो गया आपको ये तना छेदक के लिए। लेकिन हाँ, अगर पौधा पर बहुत जब बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में आप ये जो दानेदार दवा जो है नहीं छीट सकते, तो उस कंडीशन में आपको जो लिक्विड वाला दवा है उसको आपको गटोर से स्प्रे करना चाहिए और उस कंडीशन में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG उसकी मतलब 10 लीटर पानी में 4 ग्राम मात्रा आपको डालना है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक ऐसा कीटनाशी है जिसको पहले ये झिल्ली की तरह होता है, इसको पहले आपको किसी भी पात्र में घुला लेना है और घुलाने के बाद ये घुलाने के बाद तब आपको स्प्रेयर में डाल करके फिर पानी डालना है और उसके साथ कुछ मात्रा में स्टिकर मिलाना है और स्टिकर मिला करके अच्छी तरह से उसको तब आपको स्प्रे करना है गटोर से, पूरी अच्छा से स्प्रे करना है और स्प्रेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें एकदम स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटा छोटा बूंदा, ऐसा नहीं कि पूरा पानी पूरा निकल रहा हो, इससे आपकी दवा भी ज़्यादा लगती है और हमारा जो सॉयल और सारा हमारा जो सिस्टम है वो उस पर ख़राब प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया तना छेदक के लिए। अब एक आती है जो फॉल आर्मी बम, तो ये फॉल आर्मी बम हो सकता है कि सब कहीं पे आता है कहीं पे नहीं भी आता है, लेकिन इसको ये बहुत आक्रामक है, ये तना छेदक से भी ज़्यादा बहुत जल्दी ये आपके फसलों को बर्बाद करता है, इसीलिए इसका नाम फॉल आर्मी बम रखा गया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका 2 से 3 दिन में आपके फसल को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। तो पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो ये आपको जो तना छेदक होता है इससे ये ज़्यादा मोटा होता है, लंबा भी होता है, इसके बॉडी पे ये काला काला धारी होता है और साथ ही साथ इसके जो टेल जो पूंछ पोर्शन जिसको बोलते हैं, तो पूंछ पोर्शन में 4 छोटे छोटे बिंदु काले काले बिंदु होते हैं जो एकदम स्क्वायर के रूप में रहते हैं, जैसे कि अगर चारपाई या जो भी स्क्वायर होता है उसके चारों साइड पे ये बुंद रहेंगे। साथ में अगर आगे पोर्शन में देखिएगा तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो उल्टा वाई का शेप उसके सर पे बना हुआ रहता है। तो ये फॉल आर्मी बम है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो जनरल कीटनाशी है उससे ये कंट्रोल जनरली नहीं होता है। तो इसके भी 6 इन स्टार है, इसके जो 6 स्टेजेज हैं, अगर ये इनिशियल कंडीशन में है तो सिंपल कीटनाशी से भी ये इनका रोकथाम हो सकता है, लेकिन अगर ये इन स्टार अगर ये एडवांस इन स्टार में है जैसे 4, 5 और उसके आगे के इन स्टार में है, तो उस कंडीशन में आपको मतलब इससे जो हार्डी इंसेक्टिसाइड है वो देना है। तो जो शुरू वाला अगर फेज है जैसे स्टेज 1 और 2 में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट हमने जो बताया है उससे भी ये नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन अगर 3 या 4 स्टेज में है तब स्पाइनोटोरम 11.11.7% की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको और साथ में स्टिकर लेकर के इसको छिड़काव करना है शाम के समय में। और अगर इसकी उपलब्धता नहीं हो तो थायोमेथगजम 12.6% और लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन 9.5% की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में इसका 1 ml दवा देना है। मतलब ये कहें कि अगर 16 लीटर का हमारा स्प्रेयर है तो इसमें जो है थायोमेथोजियम प्लस लैम्डा साइलोथिन का जो कीटनाशी है उसकी 4 ml दवा ही देनी है। तो ये सब इसके कीटनाशी हैं जिनको आप छिड़काव करके और समय समय पे आप उसको देख करके ये कर सकते हैं। फॉल आर्मी वर्म में क्या होता है, ये आपके पत्तियां को तो खाते ही हैं, जो बढ़ने वाले पोर्शन को खाते हैं, साथ ही साथ जब आपका जब मक्का का जो बाल लग जाता है और बाल का जो बाहर वाला पोर्शन है जिधर मोचा से अंदर की ओर जब हमारा इसका दाना लग जाता है तो उसको भी ये खाना उसको भी ये खा करके क्षतिग्रस्त करता है। तब उस समय में आपको क्या है कि हमने जो ये कीटनाशी बताया है इसको पूरी तरह ऐसा इसको गटोर मशीन से छिड़काव करना है ताकि ऊपर से आपको मोचा और समथिंग ये सब में भी जाए और इससे आपका इस से आप निजात पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप करिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मक्का का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा।
11: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद।
6: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
8: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनः रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
9: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
8: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग राज्य

0: गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के भाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का भाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, डबल जीरो

0: 4528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
1: कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 cm लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लिस्टर बीटल, ग्राउंड बीटल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरीफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
1: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
1: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही PT उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
2: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
1: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
2: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
1: श्रोताओ, मेघालय यानी मेघों का घर
2: जी।
1: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
2: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
1: किसेन वानियांग, एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
2: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
1: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है।
2: जी।
1: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देख कर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
2: श्रोताओ कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने दो रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
1: और किसेन ने श्रोताओ दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था
2: जी।
1: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
2: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
1: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
2: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
1: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
2: जी।
1: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
2: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि चार बच्चों का जीवन बच गया।
1: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है
2: जी।
1: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
2: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
1: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
2: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
1: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
2: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
1: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें
2: जी।
1: तो पहली बात,
2: संकट में घबराएं नहीं।
1: दूसरी बात,
2: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
1: और तीसरी बात,
2: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम
2: जी। और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
1: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी
2: जी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
3: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: बहुत ही बढ़िया बोला,
5: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
6: ना नहीं,
5: अरे
6: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
7: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
5: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
6: प्लीज मेघा
7: दिखा दो ना।
5: अरे चुप, देखो मैडम आ रही हैं। चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी। चलो चलो चलो चलो चलो।
8: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
9: बहुत अच्छी।
10: मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
11: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
11: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
11: जी
5: मैडम, आप ही कहते इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
5: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
11: लीजिए मैडम।
3: हाँ इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
5: अरे किताब भी नहीं है।
3: हाँ शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
11: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
5: सैनिकों के बारे में? अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
11: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
11: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
10: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
5: सैनिकों को तो बात करनी होती होगी।
11: बहादुर है हमारे सैनिक।
5: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
10: मुझे भी।
7: इसके बाद में
5: नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
6: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
5: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
5: रास्ता है?
3: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ, कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
11: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
9: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
11: जी मैडम।
3: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
11: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
3: क्या बात है।
5: अच्छा मेघा ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
11: बताती हूँ सुनो। परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
3: वाह। अच्छा मेघा क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
11: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
3: शाबाश।
11: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
5: मेघा ऐसा क्या किया था उन्होंने?
11: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
9: ओ मैडम जी।
3: जी मोहन भैया क्या बात है, आ जाइए।
9: मैडम जी आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
3: ओ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
9: ठीक है जी।
3: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
11: जी मैडम।
3: मेघा देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
5: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
12: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन।
5: वाह देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
13: मोहित लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
3: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
14: नमस्ते
15: बच्चों।
3: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
11: जी मैडम।
15: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
11: धन्यवाद सर।
13: धन्यवाद।
15: सबसे पहले तो मेघा मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
11: धन्यवाद सर।
15: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
11: सर मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
15: बिल्कुल ठीक। बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
3: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
15: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
16: एक हिंदुस्तान।
15: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को ये नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
14: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
15: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद। दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
17: शाबाश जांबाजों, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, ये जान पर फायर फायर।
15: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
17: सर सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए।
15: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
17: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
15: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
17: सर, सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण गिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर, फायर, आतंकी, जय, एक-एक को भूनने दो, कोई ना बचने पाए। फायर।
15: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
17: जवानों, आगे बढ़ो, एक दुश्मन बचना नहीं पाए, आगे बढ़ो, फायर।
15: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे।
17: बाला सिंह,
15: उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्युनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खास तौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्ते क्लास। टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: या हैं आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। जी हाँ, आज फिर से एक बार मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें होंगी कुछ उन्नत बातें खेती से जुड़ी। तो आज भी बहुत ही खास विषय हम लेकर आ चुके हैं, और आज का हमारा विषय है खेसारी की उन्नत खेती। और हमारे साथ हैं यहाँ पर हमारे स्टूडियो में डॉक्टर CK पांडा जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले आइए जानते हैं खेसारी की फसल के बारे में। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये बहुत ही कठोर फसल है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे कि अत्यधिक नमी हो, जल जमाव हो, सुखाड़ हो, इसमें सहने की क्षमता होती है। तो आज इसकी खेती के बारे में जानेंगे हम, और डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवाल भी करेंगे और उसके जवाब भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर खेती की बात आती है, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बताएं कि हमें खेत की तैयारी, यानी खेसारी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए।
11: नमस्कार किसान बंधुओं, और मैडम नमस्कार आपको भी। तो इसके बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा इस फसल के बारे में आपके साथ बात कर लेता हूँ।
5: जी जी,
11: देखिए आप जैसे बताया ना, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, तो सुखाड़ में, बाढ़ में एक फसल है जो सरवाइव कर जाता है
5: जी।
11: और ये जो फसल है ना, ये बहुत दिन से हमारा देश नहीं, सिर्फ इंडिया मतलब भारतवर्ष, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस प्रदेश, ये सब देश में भी इसका आबादी होता है। ये छोड़ के भी साउथ अफ्रीका का कुछ देश में और भी देश में इस फसल की आबादी होता है। और ये फसल का एक हम फलीदार फसल भी बोलते हैं, इसको लिगुमिनस फसल भी हम लोग बोलते हैं
5: जी।
11: लिगुमिनस फसल होने के कारण ये मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक होता है। कैसे
5: जी?
11: ना मिट्टी में इस फसल के आबादी के कारण हर हेक्टर में, प्रति हेक्टर में 37 kg से 40 kg के आसपास नाइट्रोजन जुड़ जाता है।
5: अच्छा,
11: तो जब सबसे बड़ा अभी के ज़माने में मिट्टी के स्वास्थ्य बचाने के लिए इस फसल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है
5: जी।
11: और इसका जो डाल है, इस डाल में 31% 31% के आसपास प्रोटीन रहता है, 41% के आसपास कार्बोहाइड्रेट रहता है, 17% के आसपास डाइटरी फाइबर रहता है।
5: अच्छा।
11: तो आप देख रहे हैं इसमें प्रोटीन काफी है, 31% मतलब काफी है। और इसको पोर मैन पल्स भी बोला जाता है। क्यों? ये ऐसा एक फसल है, कोई भी जगह पर आप इसको बुआई कर दीजिए, क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल रह जाएगा तो मिट्टी कैसे इसका जुड़ जाएगा, तो इसका बस जर्मिनेट कर जाएगा तो एक क्रॉप स्टैंड कर जाता है। और पहले आप जो बताया है, जो क्वेश्चन पूछे थे, जो इस फसल की आबादी करने के लिए लैंड प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, देखिए खेती कैसे करना चाहिए। देखिए इस फसल को दो तरह से आबादी किया जाता है, एक है पैरा व यूटेरा क्रॉपिंग कहते हैं।
5: अच्छा।
11: दूसरा होता है डायरेक्ट।
5: अच्छा।
11: मेनली इस क्रॉप को पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग में कल्टीवेशन किया जाता है। पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग मतलब हुआ क्या? एक्चुअली ये जो धान का जो जमीन में इस फसल को खेसारी का जो बीज है उसको बुआई दिया जाता है। कैसे ना, धान का फसल कटने की 10 से 15 दिन पहले खेसारी का जो सीड है बीज जो हम कहते हैं उसको छिटका दिया जाता है। तो छिटकाने से पहले क्या देखा जाता है, नमी व मॉइस्चर लेवल मिट्टी में ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक ठाक होना चाहिए मतलब जो उसका मतलब इतना मॉइस्चर रहना चाहिए जो बीज जर्मिनेट किया जाए
5: जी।
11: तो इसी को कहते हैं यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग कहते हैं।
5: अच्छा।
11: और ज्यादा से ज्यादा यही फॉलो किया जाता है। क्यों? देखिए इस फसल जहां पर यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग में आबादी किया जाता है, धान के बाद दूसरा कुछ फसल नहीं लिया जाता है। तो एक फसल ऐसा एक फसल है, ज्यादा दिन का भी नहीं है, 115-120 दिन के अंदर भी उसका मैच्योरिटी भी हो जाता है, आ जाता है। एक कहावत है, शुरू किया जाता है इसका आबादी दिवाली के बाद, मतलब सोइंग का टाइम शुरू होता है दिवाली के बाद और होली से पहले, इसका होली के आसपास इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है।
5: अच्छा।
11: और बाकी रह गया डायरेक्ट सोइंग के बाद। तो डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है, तो डायरेक्ट सोइंग के लिए आपको जमीन को तैयारी करना पड़ता है। इसका मतलब मान लिया पहले आपका फसल धान था, तो धान हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके बाद मिट्टी का नमी के आधार पर एक से दो बार उसको जमीन को प्लाइंग करना पड़ता है।
5: अच्छा।
11: तो उसके बाद बीज को मॉइस्चर व नमी जैसे रहेगा उसके आधार पर उसको सोइंग किया जाता है। सोइंग करने के बाद वो जर्मिनेट कर जाता है, बस यही है। तो मैडम उसके बारे में थोड़ा सोइंग टाइम के बारे में और एक बार रिपीट कर देता हूँ। मतलब आप टाइम के आधार पर बताए थे अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके नवंबर का सेकेंड वीक तक इसका सोइंग किया जाता है।
5: अच्छा।
11: बीज को सोइंग किया जाता है, बोई किया जाता है।
5: अच्छा।
11: और इसका फसल हार्वेस्टिंग का टाइम होता है आप मान लिए मार्च का एंड के आसपास,
5: मतलब होली के आसपास।
11: हाँ, होली के आसपास उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है,
5: जा सकता है यानी।
11: और इसके बाद आप पूछ रहे इसका उन्नत प्रभेद के बारे में, यही बात है ना। देखिए इसका उन्नत प्रभेद बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, लेकिन दूसरे क्रॉप से थोड़ा इसका इशू कुछ अलग है। क्यों? आप सब लोगों को पता है एक समय इस क्रॉप को बैन किया गया था
5: जी।
11: तो उसका कारण भी था, इस क्रॉप में एक केमिकल रहता है जो न्यूरोटॉक्सिन के केमिकल है, जिसको बीटा ऑक्साइल डाई अमाइनो प्रोपाइनिंग एसिड कहते हैं। तो साइंटिफिक आधार पर नहीं जा सकते हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं। तो एक केमिकल रहता है जिसके कारण लेथाइरिज्म होता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन किए थे और रिसर्च भी चल रहा था, रिसर्च के आधार पर कुछ वैरायटी व प्रभेद निकल के आया है। जैसे आपका इनिशियल फेज में आया था निर्मल करके एक वैरायटी व प्रभेद, इसके बाद आया प्रतीक, प्रतीक है, रतन है, महातेवड़ा है, इस प्रभेद है। इस प्रभेद का, इस प्रभेद सबका खूबियत व स्पेशलिटी यही हुआ, इसमें जो केमिकल बारे में अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया उसका अमाउंट बहुत कम रहता है, 0.1 से नीचे रहता है। और ये रिकमेंडेशन है लेथाइरस का कोई भी प्रभेद जिसमें ओडाब व कोई कोई बुआ भी इसको कहते हैं, उसका परसेंटेज 0.1 से कम होना चाहिए। और मैं जो चार प्रभेद के बारे में आप लोगों को अभी अभी बताया, इस सब में 0.1 से कम है, तो इसके आप आराम से इसको कल्टीवेशन कर सकते हैं।
5: तो सर यहाँ पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीज दर की, और उसके बारे में बताएं, और जो दूरी है बोने की दूरी क्या होनी चाहिए, बीज दर क्या होनी चाहिए वो बताएं।
11: अच्छा, देखिए इसका हम पहले ही बताया हूँ, इसको दो तरह से स्विंग कल्टीवेशन किया जाता है, एक पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग, दूसरा है डायरेक्ट स्विंग किया जाता है।
5: अच्छा।
11: तो पैरा यूटेरा क्रॉपिंग में हम लोग उसको ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, मतलब छिटका देते हैं, तो छिटका के कारण थोड़ा ज्यादा सीड का जरूरत होता है। इसमें 70 से 80 केजी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 70 से 80 केजी पर हेक्टर सीड को यूटेरा क्रॉपिंग या पैरा क्रॉपिंग आप ब्रॉडकास्टिंग भी बोल सकते हैं, इसमें कर सकते हैं आप लोग। और लाइन सोइंग के आधार पर आएंगे तो, अर्थात अब ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में करना चाहेंगे तो, तब उसका सीड रेट होता है 40-60 केजी पर हेक्टर। और इसमें लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर के आसपास और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर के आसपास, इस डिस्टेंस को इसमें मेंटेन किया जाता है
5: जी। फिर जो है बीज उपचार की बात करते हैं, जब बीजों को कुछ रोगों से बचाना हो तो फिर क्या करना है?
11: हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज उपचार बहुत जरूरी है, जिसको बीज को टीकाकरण भी हम लोग कहते हैं। तो क्योंकि बीज उपचार कर लेंगे तो इन फ्यूचर में बहुत रोग से हम फसल को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए बीज उपचार के लिए मोनली किसान भाई सबको पता ही है कार्बेंडाजिन वो लोग यूज करते हैं 2.0 ग्राम पर केजी, तो वो सीड सोइंग के एक दिन पहले कर लेना चाहिए। और इसमें बायोफर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन किया जाता है। बायोफर्टिलाइजर को एप्लीकेशन इसीलिए किया जाता है, देखिए जो राइजोबियम जो कल्चर होता है, राइजोबियम कल्चर को सीड के साथ मिक्सिंग करने से क्या फायदा होता है ना, ये नोड्यूल जो फॉर्मेशन जो गांठ होता है खेसारी का सिकड़ जड़ सिकड़ में रूट में जो जड़ होता है उसमें क्या होता है ना, वो कुछ नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं।
5: अच्छा।
11: तो उस नोड्यूल में राइजोबियम रहता है और राइजोबियम कल्चर आप देंगे तो नेचुरली उसका नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा, और नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा, तो इसलिए घुमा के हम बोल सकते हैं फसल के अपने लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है और फ्यूचर जो क्रॉप है उसके लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है।
5: अच्छा, तो ये बात हो गई बीजोपचार की। और उर्वरक और खाद की बात करते हैं, जब खेती होता है तो उस समय उर्वरक और खाद बहुत ज़रूरी होते हैं डॉक्टर साहब, उसके बारे में बताएं कि कौन से उर्वरक और कौन से खाद देनी चाहिए इन्हें।
11: देखिए ऐसे जो ऐसे एक फसल है जब पैराक्रॉपिंग या यूटेराक्रॉपिंग में इस फसल को आबादी किया जाता है, तब तो किसान लोग उसको डायरेक्टली फर्टिलाइजर देने के बाद उर्वरक देने के लिए स्कोप नहीं रहता है। क्यों, मैंने पहले ही बताया जो धान का हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले उसको सीड को सोइंग किया जाता है, तो उसमें तो आपका उर्वरक देने का कोई जगह ही नहीं रही है। तो मतलब धान में जो उर्वरक दिया गया था, फर्टिलाइजर व मैन्योर जो दिया गया था, उसी का रेसिडुअल जो है उसी को यूज किया जाता है। और डायरेक्ट सोइंग में हुआ तो उसके आधार पर 100 केजी डीएपी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 100 केजी डीएपी पर हेक्टर इसको दिया जाता है। तो इसमें फसल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल जाता है, इसी में काफ़ी काम हो जाता है। और एक इशू होता है इसके, जैसे मान लिया फर्टिलाइजर को स्प्रे भी करते हैं।
5: अच्छा।
11: फर्टिलाइजर स्प्रे भी करते हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे करने का क्या जरूरत पड़ जाता है, मान लिया आपका पॉट फ्लावरिंग हो गया, पॉट फॉर्मेशन का आसपास टाइम आ रहा है, उस समय यूरिया का स्प्रेइंग भी करते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा पॉट का भी साइज बढ़ भी जाता है और आपका जो यील्ड फलन जो है वो भी बढ़ जाता है।
5: अच्छा, तो फिर इसमें सिंचाई की भी जरूरत होती है या नहीं?
11: देखिए इस फसल में हम पहले ही बताया है ये ज़्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट बा क्रॉप है, बा क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का जरूरत मोरलेस नहीं होता है। तो नमी बहुत कम हो गया, तो बहुत कम हो गया तो वो आप थोड़ा सा नमी के थोड़ा नमी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केस में हम लोग देखे हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग देखे हैं जो इसमें सिंचाई देने का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर मैं बता रहा हूँ ऐसा नमी बहुत घट गया तो आपका पानी देने का बंदोबस्त है तो पानी दीजिए, नहीं तो आप

0: पास जो वीट गए उसके ऊपर स्मूदरिंग इफेक्ट हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, उसको कर देते हैं। उसके लिए वो ज्यादा कुछ किसान का कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है।
1: तो इसके बाद पौधा संरक्षण उपचार के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: देखिए एक क्रॉप जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप भी है और उसके साथ ये भी है, इस क्रॉप में कीड़ा बोलिए डिजीज का इन्फेस्टेशन बहुत कम होता है। फिर भी हम लोग कुछ कुछ जगह पर देखे हैं इसमें एफिड होता है, एफिड का थोड़ा बहुत अटैक होता है, तो लेकिन एफिड का अटैक होता है तो तब आप उसको औसत दवा देने का जरूरत होता है। तो उसके आधार पर आप डाइमिथोएट 30 से एट द रेट ऑफ 1.7 ml पर लीटर उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक रास्ट होता है तो उसके आधार पर देखिए एक रास्ट जब दिखा जाएगा तो तब तो आपको कुछ मेडिसिन देने का जरूरत पड़ता है, लेकिन उससे पहले आप सीड ट्रीटमेंट ठीक से करके रख देंगे तो रास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कार्बनडाइजिन देके आप उसको ट्रीटमेंट करके रखे हैं तो सीड ट्रीटमेंट किए तो उसमें रास्ट का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो किसी कारण पर आ गया तो मैंगोजेब 75W पे एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर पानी के आधार पर आप दीजिए, इसे कंट्रोल हो जाएगा।
1: अच्छा अब बात आती है अंत में कटाई की, तो हमारे किसान भाइयों को कब समझ जाना चाहिए कि अब इसकी कटाई कर देनी चाहिए और उसका भंडारण कैसे करना चाहिए?
0: अच्छा देखिए एक भंडारण का कटाई करने के लिए आप क्रॉप फील्ड में मतलब फसल के जमीन में आप लोग रेगुलर विजिट भी करते हैं। पहली बात है पत्ती का जो कलर है, कलर ये हो जाता है ग्रीनिश, जो डीप ग्रीन से धीरे धीरे उसको लाइट होते होते वो जो क्या बोलते हैं ना मैच्योरिटी का जो कलर होता है वो आ ही जाता है। और आप देख पाएंगे पॉट जो होता है उसका पॉट भी सूखा शुरू हो जाता है, मोर और लेस आप देखेंगे पौधा ड्राई हो गया। तब आपने वहां से उसको हार्वेस्टिंग करके लेके आइए और हार्वेस्टर अवेलेबल है। अच्छा। तो हार्वेस्टर में जैसे आप लोग चना का हार्वेस्टर है उसी हार्वेस्टर लेके आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए, उसका जो क्या बोलते हैं पुआल वगैरह जो भी हो सेपरेट हो जाए, सीड भी अलग हो जाएगा। सबसे बड़ा खूबी क्या है उसका जो स्ट्रॉ जो बोलते हैं हम लोग पुआल जो बोलते हैं उसका वो भी फोडर के आधार पर और तत्व गाही जो है बेस के लिए एक खाने का अच्छा एक सोर्स हो सकता है, एवं गांव में प्रैक्टिस भी होता है और इसमें मिल्क का परिमाण दूध का परिमाण भी बढ़ जाता है।
1: अच्छा तो इस तरीके से किसान भाइयों आपने जाना कि खेसारी की फसल की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक सभी बातें यहाँ पर आप सभी को बताई गई, आप सभी को निर्देश दिए गए हैं, तो आशा करती हूँ कि आप इन निर्देशों को अपनाएंगे और खेसारी की फसल जी हाँ ज़रूर करेंगे और उन्नत खेती करके आप एक सफल किसान बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन RJ अनु के साथ उन्नत कृषि में। कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी

0: पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूएमएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
5: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
6: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें।
5: है, इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे, या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। और नाम से पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करके मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कई सारे ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जो हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर उन फूलों के पौधे खेत में होते हैं तो कीटनाशकों का आपको कम प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप गेंदा के पौधों की बात करें तो सूत्रकृमि, जिसे कि नेमाटोड भी कहते हैं, या फिर कुछ और भी कीटों के प्रबंधन में काफी उपयोगी माना जाता है। वैसे ही सूरजमुखी और गेंदा जैसी और भी कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो मिट्टी की हानि कारक नेमाटोड के प्रबंधन में बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी होती है। और कुछ ऐसे भी फूलों के पौधे होते हैं जो लाभकारी कीटों को, जो कि फसलों को, मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत फायदेमंद होता है अगर आप अपने मुख्य फसलों के साथ फूलों के पौधों को लगाएं तो आपको आय तो मिलती ही है, साथ ही आपके फसलों को आप कीटनाशकों से बचाते हैं और आप मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं। और जब हम फूलों की बात करते हैं तो फूलों से हमें लगता है कि कितना ही आय हम कमा लेंगे, क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा, तुरंत मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि एक रास्ते पर चलने से आपको नुकसान होगा तो आप कई सारे रास्ते खुले रखिए। और जब फूलों की खेती की बात आती है तो बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन के बारे में। किसान भाई बहनों और जो भी हमारे श्रोता है, आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा स्रोत है आय का। आपको पता होगा कि हमारे बिहार में भी फूलों की बहुत ज्यादा मांग है, हर तरह के फूलों की मांग है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम ताजे, सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन कर आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं या आय का एक नया जरिया बना सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह से। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापक उद्यान पुष्प एवं भूदृश्य विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत फूलों के मूल्य संवर्धन के बारे में।
0: जी मैम, तो मैम जब हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करते हैं तो फूलों का, पुष्पों का मूल्य संवर्धन क्यों जरूरी होता है?
1: देखिए, ताजे फूलों एवं पत्तियों में अधिक नमी होने के कारण इनकी आयु सीमित होती है, जिससे हम अधिक समय तक इन्हें भंडारित नहीं कर पाते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए फूलों को मूल संवर्धित करने की तकनीक काफी महत्वपूर्ण है, जिससे हम फूल की सुंदरता को काफी समय तक सहज कर रख सकते हैं।
0: जी मैम, तो अगर हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करें तो मूल्य संवर्धन के कितने वर्ग होते हैं?
1: देखिए, प्रायः तीन तरीके के फूलों को हम मूल्य संवर्धित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ताजे फूलों का मूल्य संवर्धन। अगर हम फूलों को बाजार में बेचने ले गए हैं और कुछ फूल बच गए हैं तो वहीं बैठे बैठे हम उनसे कुछ ताजे फूलों में थोड़ा सा कुछ ऐसे लगा के उनको मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। दूसरा वर्ग हमारा ऐसे फूलों का होगा जैसे कि फूलों को हम सुखा लेंगे और सूखे फूलों से हम कई तरीके के उत्पाद बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ग। और तीसरे वर्ग की यदि हम बात करें तो फूलों को या तो हम ठंडे पानी या गर्म पानी में उबाल कर, पीस कर, या उसमें किसी भी तरीके से प्रसंस्करण करके हम मूल संवर्धित उत्पाद बनाएंगे, तो ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया प्रसंस्कृत फूलों का मूल संवर्धन।
0: पहले वर्ग के साथ मैम शुरू करते हैं, तो क्या फूलों के मूल्य संवर्धित उत्पादों की जब हम बात करते हैं
1: जी,
0: तो ताजे फूलों के मूल्य संवर्धन द्वारा कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: देखिए, ताजे फूलों से हम गुलदस्ता, मालाएं, या जैसे गजरा, वेनी, या फिर साज सज्जा के रूप में भी इन फूलों में, जैसे जो आजकल हम शादी ब्याह में डेकोरेटिव डेकोरेशन के चीजें देखते हैं, तो ये साज सज्जा भी की जा सकती है। तो आजकल जैसे शादी ब्याह बहुत ही आधुनिक हो गया है और इसमें सिर्फ मंडप ही नहीं अपितु इसमें हम बात करें तो गाड़ी, पंडाल, या यहाँ तक कि घर के अंदर की भी सजावट की जाती है। वहीं फूलों से बनी हुई रंगोली और मेहंदी और हल्दी जैसे फंक्शंस में फूलों से बने गहने भी बहुत डिमांड में हैं। तो इस तरीके के उत्पाद हम ताजे फूलों से तुरंत के तुरंत बनाकर कर सकते हैं
0: जी, अगर फूल बच गए तो उसका इस्तेमाल कर
1: जी।
0: तो मैम क्या पुष्पों के जब हम मूल संवर्धन उत्पादों की बात करते हैं, अभी आपने अलग अलग अवसरों के बारे में बताया, तो शोकाकुल अवसरों पर भी इसका प्रयोग हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है। जैसे उल्लासित अगर अवसरों की बात करें तो वहां तो हम बुके देते हैं या गुलदस्ता भेंट करते हैं, पर अगर हम शोकाकुल सभाओं की बात करें तो वहां भी हम एक कीपाकार गुलदस्ता या तिकोनाकार या गोलाकार गुलदस्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में रीथ बोलते हैं। प्रायः इनमें हम हल्के वर्ण के फूल, क्योंकि शोक है तो हल्के सफेद से लेकर हल्के रंग के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, और जितने ही फूल तो उतनी ही पत्तियां भी इस्तेमाल करके इनका आकार दिया जाता है। और आजकल जैसे कि कह लें कि इसमें खास बात यह है कि फूलों के साथ इसमें पत्तियां भी जो इस्तेमाल होंगी तो वो बड़ा अच्छा लुक देती हैं, मतलब फूलों के साथ उनका कंट्रास्ट इफेक्ट आता है। मेनली जैसे कि फूल हो गए गुलाब, कार्नेशन, ग्लैडुलस, एस्टर, लिली, या पत्तियां हो गई जैसे साइकस, ताड़, फर्न, इनको हम प्रयोग करके बहुत अच्छे रीथ्स बनाते हैं, और ये रीथ्स बुके के मुकाबले काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं, तो इनका भी शोकाकुल सभाओं में प्रयोग होता है। और वहीं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे कि डिप्रेशन जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ऐसे में गुलाब का तेल या तुलसी का तेल या इनके पौधे बगीचे में होना भी एक बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि ये भी हमारे एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम करते हैं। इनसे जो निकलने वाली खुशबू होती है ये एरोमा थेरेपी में भी बहुत काम आती है।
0: जी मैम, मैम जब हम फूलों से साज सज्जा की बात करते हैं तो क्या इस वक्त हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है?
1: जी, बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि सामान्यतः फूलों की साज सज्जा के मिश्रण में हल्के रंगों की अपेक्षा गहरे रंग अधिक इस्तेमाल होते हैं, बट वहीं पर जैसे मैंने बताया शोकाकुल में आप हल्के रंग इस्तेमाल करेंगे। और फूलों के संयोजन में क्या होता है कि कलियों को प्रायः हम किनारे की ओर रखते हैं, और जो भारी फूल होता है उसे हम, या चटकीले रंग का फूल होता है उसे हम सेंटर पर रखते हैं। प्रायः हमें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि फूलों के अधिक रंग या अधिक तरीके के फूलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 तरीके के फूलों का ही इस्तेमाल करके हमको गुलदस्ता या साज सज्जा करनी चाहिए। और वहीं पर कृत्रिम रोशनी अगर है तो हल्के रंगों की जगह गहरे रंग इस्तेमाल करने चाहिए, और नेचुरल लाइट में हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और फूलों को यदि पात्र में रखना हो तो फूलों की लंबाई पात्र से कम 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए। और प्राकृतिक रूप प्रदान करने के लिए हमें प्रायः लचीली टहनियाँ या लटकने वाले क्लाइंबर जो फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अभी हमने बात करी थी कि गाड़ी को जब हम शादी ब्याह के लिए सजाते हैं तो उसमें भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो फूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे गाड़ी के रंग से विपरीत हो, तभी वो निखर के आएगी उसकी सजावट। और यदि कार को बहुत दूरी तय करनी है तो हमको फूलों की डंडियों के नीचे गीली फोम का इस्तेमाल करना चाहिए। और कम खर्चे में अगर गाड़ी को सजाना है तो छोटे छोटे बटन होल का प्रयोग करना चाहिए। अधिक खर्चे में भी हमें भारी भरकम सजावट से बचना चाहिए ताकि गाड़ी चलाने में कोई असुविधा ना हो। और प्रायः सफ़ेद गाड़ियों के लिए हमें रंग बिरंगे फूल जैसे ऑर्किड, जरबेरा या गुलाब, या फिर हरी चटकीली पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही में इनके रिबन या हल्के नेट या फ्रिल को इस्तेमाल करके भी हम गाड़ी को सजा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम रंगों पर सही ध्यान देंगे तो बड़ी अच्छी सजावट निखर के आएगी।
0: जी मैम, मैम अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम सूखे फूलों के मूल्य संवर्धन की बात करें तो वो किस प्रकार किया जा सकता है?
1: देखिए, यहाँ पर फूलों को सुखाकर फिर हम अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। ये जो उद्योग है ये बड़ा नवीन उद्योग है, क्योंकि इसमें हम सूखे फूलों को उनके ढांचे के बिगाड़े बगैर या उनके नेचुरल प्राकृतिक रंग को संजो के सुखाते हैं, एवं अन्य विभिन्न तरीके के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि हो गई आपकी फ्रेम जड़ित तस्वीरें, बधाई कार्ड, कवर या पुष्पगुच्छ, मोमबत्ती स्टैंड या शीशे की कटोरी में बने हुए पेपर वेट, ऐसे बहुत तमाम इस तरीके के उत्पाद हैं जो हम सूखे फूलों से बना सकते हैं। ये उत्पाद टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं और थ्री डायमेंशनल भी। और अन्य उत्पाद जैसे जो और उत्पाद हैं टू डायमेंशनल में हैं, ग्रीटिंग कार्ड या फिर पॉटपोरी या फिर आपका वॉल हैंगिंग हो गया, पुष्प विन्यास हो गया, या थ्री डायमेंशनल में गुलदस्ता, पेन स्टैंड, इस तरीके के उत्पाद हो गए जो होटलों और मॉल में बहुत मांग में हैं। साथ ही ऐसे उत्पादों से जो खाली बैठी घर में महिलाएं हैं या कोई भी वर्ग है वह इसका बहुत फायदा उठा सकता है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है। इसमें हम कबाड़ का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू जो कबाड़ है उसके साथ खराब फूलों को सुखाकर उनसे उत्पाद बनाते हैं, और वहीं इनकी डिमांड अधिक होने के कारण इनकी जो बिक्री दर है वो बहुत अच्छा है।
2: जी मैम, मैम आपने एक और वर्ग की बात की थी प्रसंस्कृत फूलों के बारे में
1: जी,
2: जहां आपने बताया था उबाल सकते हैं, तो फूलों को उबाल कर कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: देखिए, हर तरीके के तो फूलों को नहीं उबालते हैं, जो फूल टेम्परेचर को सहनशीलता जिनमें रहती है उनको उबालते हैं, या फिर कुछ को ठंडे पानी में ही हम रख के उनसे तेल निष्कर्षित कर सकते हैं या रंग निष्कर्षित कर सकते हैं, और इनसे हम हर्बल गुलाल, धूप बत्ती, या फिर फूल अगर हमारा बहुत तादाद में बच गया है तो इसे गड्ढे में डाल के हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर जो बचे हुए फूल हैं उनको सुखाकर पाउडर बना के मुर्गी के दानों में मिश्रण बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो होता है क्या है, अक्सर इसके लिए गेंदा का प्रयोग किया जाता है, जब डेकोरेशन के बाद जो फूल गेंदा के बच जाते हैं तो उनको पीस कर, क्योंकि इसमें कैरेटिनॉइड और भी पिगमेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये मुर्गी की आँखों की बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अंडे के पीले भाग को और रंग प्रदान करते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो इस तरीके के उत्पाद बनाकर भी हम काफी लाभ कमा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम उबाल कर या पका कर बात करें तो इससे हम गुलकंद या फूलों से बनी हुई चाय या सौंदर्य आइटम जैसे हो गए क्रीम, शैम्पू या गुलाब जल, ये भी बना सकते हैं।
2: जी मैम, तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को एवं अन्य श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि फूलों से, अगर आप फूलों से खेती करेंगे तो बहुत इससे फायदा है। फूलों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नमी अधिक है, बस इस नमी को यदि हम कंट्रोल कर लें और इससे मूल संवर्धित उत्पाद बना लें तो किसान भाई बहन या उनके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, या शारीरिक कमजोर से भी अगर कोई मेंबर है तो वो घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे उत्पाद बना सकता है जिनकी भारी डिमांड है और इससे बहुत लाभान्वित हो सकता है।
2: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि किस प्रकार से ताजे सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान भाई बहनों, फूलों की खेती से न केवल आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अंततः फायदा इससे हमें ही होता है। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना। टीकू, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
8: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
7: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
9: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
7: है आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
10: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
7: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
11: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
7: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु या फिर यूं कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय जरूरत होता है पशु पालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं।
12: जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नजर आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
7: संक्रमण होने
12: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं हम लोग उसको HS, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नजर आता है, और खास करके कम उम्र के पशुओं में, 2-3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
7: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है।
12: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये, इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
7: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज्यादातर देखा जाता है,
12: ये ज्यादातर पाया ही जाता
7: और
12: है।
7: सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है।
12: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-106 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है,
7: अच्छा,
12: और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
7: और गला
12: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
7: और सर, एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
12: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
7: तो इसके लक्षण क्या?
12: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी, अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांघ वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है, शरीर का तापक्रम, वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन, जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है, और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
7: टीकाकरण पर विशेष बल देना है और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
12: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग होते हैं।
7: खुर और मुँह,
12: हाँ, तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
7: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
12: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है।
7: अच्छा।
12: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुर पका और मुंह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है, किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में, खुरपका मुंह पका रोग में, पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशुपालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
7: उनको नुकसान होता है,
12: दूध में काफी कमी आ जाती है और चलने में पैर के, पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है, दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट, शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं। और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
7: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे, वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए, और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब, आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया अब किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब, अब जानना चाहेंगे हम आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती है ये?
12: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव, और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता, जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
7: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
12: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, किलनी जू इसकी भी संख्या बढ़ती है, जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम जो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहां जल जमाव न हो, और ऊंचे स्थान पर रखें। वहां शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें, जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें। उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वहाँ नमी की कमी रहती है।
7: तो डॉक्टर साहब, आपने जिन रोगों के नाम बताए, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियां हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती हैं?
12: जी, ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं, और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग हैं, और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
7: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
12: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
7: अच्छा।
12: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें, और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहाँ जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू, लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
7: अच्छा।
12: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है, HS, BQ
7: FMD
12: और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
7: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज्यादा अच्छा होगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु है उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं, अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है, तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
12: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर की कॉमन चारागाह है,
7: जहां पर सभी पशु,
12: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है, जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें, या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल जमाव है वहाँ का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं, तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
7: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
12: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
7: अच्छा।
12: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
7: अच्छा।
12: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
7: कृमिनाशक
12: दवा बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
7: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो हैं वो बीमार ना पड़े, और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटी मोटी उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
12: यहाँ तक है जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडीन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडीन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूँकि HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूंकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो इनिशियल सबको सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है, वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई जरूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का, तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव। हाँ। तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं, और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें, अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है, और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
7: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान
12: होता है।
7: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं, तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रख रखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए, और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
11: धन्यवाद।
10: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
11: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं, पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें, पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें, अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर

0: किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़े, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट

0: किसी भी तरह की समस्या आ रही तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी नर्सरी में कर ले, इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की अगाध बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: given is an image of a teacher sitting in a circle with 5 students. Page number 26. Assessment. Chapter 2. One stage, many scripts. C2.1 creates and performs drama based on situations or stories that challenge stereotypes observed in their surroundings. C2.2 connects elements of drama, themes and symbols with personal experiences, emotions and imaginations. Given is a table with 5 columns and 7 rows. Column number 1, CG. Column number 2, C. Column number 3, learning outcomes. Column number 4, teacher. Column number 5, self. Column number 1, CG, 2. Column number 2, C, 2.1. Column number 3, learning outcomes. Shares thoughts on genres and stereotypes associated with them. Column number 4, teacher, blank. Column number 5, self, blank. Next row. Column number 1, CG 2. Column number 2, C 2.2. Column number 3, learning outcomes. Relates different genres to the stories read or movies watched. Column number 4, teacher, blank. Column number 5, self, blank. Next row. Column number 1, CG 2. Column number 2, C 2.2. Column number 3, learning outcomes. Tries to create simple imaginary stories in each genre. Column number 4, blank. Column number 5, self, blank. Next row. Column number 1, CG 2. Column number 2, C 2.2. Column number 3, learning outcomes. Can bring in stories from personal experience to interpret in genres. Column number 4, teacher, blank. Column number 5, self, blank. Next row. Column number 1, CG 2. Column number 2, C 2.2. Column number 3, learning outcomes. Reads plays to identify different types of scripts. Column number 4, teacher, blank. Column number 5, self, blank. Next row. Overall participation in class. Teachers' comments and students' observation. Fill in the blanks. End of chapter 2.
1: Kriti, you were just listening to this audiobook. Textbook of Arts for Grade 8. Narration, Richa Jain. Sound recordist, Muhammad Faizan Khan. Assistance in production, Soumya Malik. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi.
2: Namaste class. TV harega, desh jitega ki class mein aapka swagat hai. Aur jaisa ki hum jante hain ki class mein hum sote hain, to nuksan hamara hota hai. Is class mein aapko aur har deshvasi ko dhyan dena hoga. Kyunki TB kisi ko bhi ho sakta hai. Teacher ji.
3: Ji.
2: Please, bataiye aaj aap kya naya sikhane wali hain.
3: Ji sir. Aaj ka subject hai टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान. टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है. दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल. साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी. उपचार चल सकता है और भी लंबा.
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना. तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें. इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं. टीबी हारेगा, देश जीतेगा.
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात. आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार. अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो, तो सोचते क्या हो. जल्दी से आशा दीदी से करो बात. बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना.
5: सुहाना सफर और ये मौसम हसी.
4: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का. तो सभी करो एक जरूरी काम. करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम. टीका सुरक्षित है. टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है.
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें.

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि।
4: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। रबी फसलों की बात करते हैं और दलहनी फसलों की हम बात ना करें तो थोड़ा अधूरापन रहता है। जी हां, रबी फसलों में बुआई के पहले और उसके उपरांत लगने वाले रोगों के प्रबंधन के बारे में आज हम जानेंगे। जी हाँ श्रोताओं, तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रमेश नाथ गुप्ता। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में, और डॉक्टर साहब आज बहुत सारी जानकारी देंगे हमें। तो स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बुआई के पूर्व रोगों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और बुआई के उप, डॉक्टर साहब।
5: प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दलहनी रबी का दलहनी फसलों का समय, बुआई का समय आ चुका है, तो अच्छी उपज लेने के लिए और खासकर रोगों से बचाव करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है और उसका प्रबंधन करना जरूरी है ताकि रोग का प्रकोप कम से कम हो और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो देखा जाता है कि अगर हम समय से बुआई करें, जैसा कि बुआई का समय आ गया है और यहाँ पे हमारे बिहार की परिस्थिति में जो बुआई का जो दलहनी फसल है खासकर चना और मसूर का, इसका बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय जो है ये सही समय माना जाता है। इस समय अगर लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ जाती है
4: जी।
5: अगर इसमें अगर लेट हो जाती है किन्हीं कारणों से, अगर धान की कटाई बाद हो तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक भी बुआई कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें प्रभेद का चुनाव करना आवश्यक होता है उसके अनुसार। तो सबसे पहली कड़ी है कि हमारा जो है बुआई अगर समय समय पर हो जाता है तो उसमें रोग और कीटों का भी प्रकोप काफ़ी कम जाता है
4: जी।
5: रही दूसरी बात कि जो हम बुआई करें तो सबसे बड़ी बात है कि खेतों में जो है खरपतवार के जो है वहाँ पे नहीं हो, खेतों की सफाई अच्छे ढंग से हो और जुताई हो तो बहुत ज़्यादा भुरभुरी जुताई ना हो, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है
4: जी।
5: तो जुताई भी अगर हल से भी करते हैं या ट्रैक्टर से भी करते हैं तो उसमें जो है मिट्टी को बहुत भुरभुरा होना ज़रूरी नहीं है। तो जुताई जो है अच्छी तरह से होना चाहिए, खेतों में साफ सफाई होना चाहिए, खेत बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा गीली रहेगी तो उसमें जो है बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तीसरी बात रही कि जो है हम सही प्रभेद का चुनाव करें। अगर हम सही प्रभेद का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है उसमें बीमारियां कम लगती है और उत्पादन बढ़ती है। तो सही प्रभेद के चुनाव में अगर मसूर है तो हल 57 जो है ये अच्छी प्रजाति है और इनका उत्पादन भी अच्छा होता है। रही बात चना की, तो चना में हमारे विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सारी प्रजातियों का विकास हुआ है चना में, उसमें खासकर जो है चना का जो है सबौर चना 1 जो है वो समय से बुआई के लिए उपयुक्त है और इसमें उत्पादन भी अच्छे होते हैं और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। दूसरी जो है हमारी प्रभेद जो है विश्वविद्यालय द्वारा है वो है सबौर चना 2। सबौर चना 2 जो है नवंबर के बाद करते हैं और 15 दिसंबर तक करते हैं तो ये प्रभेद जो है उपयुक्त है और इसमें बीमारी भी कम आती है और इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। बुआई पूर्व रोगों से प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त प्रभेद का चुनाव भी करना आवश्यक होता है। और जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो है विकसित प्रजातियां हैं सवा और चना वन की समय से बुआई के लिए उपयुक्त है, और इसकी बुआई अगर किसी कारणों से लेट हो जाता है तो उसमें हम सवा और चना टू की बुआई कर सकते हैं, जिसका जो है बुआई का समय आपको 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक है। तो इस दरमियान में ये प्रभेद अच्छा करता है और उत्पादन भी इसमें अच्छा होता है। छिटकौआ विधि द्वारा छीट करके ही बुआई करते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे बीजों का अंकुरण नहीं सही से हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे बीज ऊपर में रह जाते हैं, उनको प्रॉपर नमी नहीं मिलती है, जिसके कारण जो है उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो बुआई के लिए जिस पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है, ताकि हर पौधे को सही हवा पानी और उपयुक्त जो है उनका पोषक तत्वों को मिल सके। तो इस चीज़ों को अगर हम ख्याल रखते हैं तो उससे भी हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। इन सबसे ज़रूरी है कि अगर हम लोग ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो इससे भी बीमारी कम हो जाती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घने रहेंगे तो उस शरीर है वो बीज का उपचार करना ज़रूरी है। बीज उपचार जो है खासकर रोगों से बचाव करने के लिए आपको करना आवश्यक है। बीज उपचार करने के लिए जो सबसे ज़रूरी तत्व है उसमें कार्बोक्जिन, उसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उपचार कर सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रैकोडर्मा का उपलब्ध है तो हम ट्रैकोडर्मा 10 ग्राम, वह समस्या बहुत ज़्यादा है। वैसे खेतों में जो है हम 2 ग्राम कार्बोक्जिन और प्लस 10 ग्राम ट्रैकोडर्मा से बीज का उपचार करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा बीमारियों का प्रकोप कम होगा और साथ साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। और बीज उपचार में ये तो रोकथाम के लिए होता है, इसके अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते जो है कीट का भी प्रकोप होता है, तो अगर वैसे खेतों में जहाँ कीट का प्रकोप ज़्यादा हो और उकठा की समस्या ज़्यादा हो और उत्पादन भी अगर बढ़ाना हो तो उसमें समग्र बीज उपचार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कार्बोक्जिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार कर दें, उसके 12 घंटे के बाद हम कीटनाशक में जो दवा आती है क्लोरोपाइरीफोस उसका 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करें, और इसके 36 से 48 घंटे के बाद हम राइजोबियम से उपचार करें। अगर हम इस तरह से समग्र उपचार करते हैं तो निश्चित तौर से बीमारियां का प्रकोप भी कम होगी और साथ साथ हमारा उत्पादन भी कम से कम 15 से 20% सिर्फ इतना ही करने से हमारा बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर बीज उपचार करके ही लगावें अगर इस तरह से आप, तो इन सारी प्रक्रियाओं को समावेश करना ज़रूरी है। अगर समावेश करते हैं तो निश्चित तौर पर बीमारी हमारी कम आएगी। अब दूसरी बात रही कि बीमारियां जो है बुआई के बाद कौन कौन सी आती है, तो इसमें जो प्रारंभिक अवस्था में जो बीमारी आती है वो कॉलर रॉट की समस्या आती है। ये हमारे अंकुरण के 1 सप्ताह के बाद ही ये बीमारियां लगना शुरू हो जाती है पौधे कारण, इसको कॉलर रॉट बोला जाता है, जो कि ये एक मृदा जनित बीमारी है। अगर हम ट्रैकोडर्मा से मतलब बीज का उपचार करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कम जाता है। अगर जिन खेतों में इस तरह की समस्या ज़्यादा हो, उकठा की समस्या, निश्चित तौर पर प्रक्रिया उसको डालना चाहिए, ताकि खेतों की जो है हिसाब से भी उसमें डाल के करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ये दोनों का प्रभाव तौर पर ये करना चाहिए बुआई पूर्व। और वैसे खेतों में प्लस मृदा जनित दोनों हैं, तो वैसे खेतों में जो फफूंद जिस उसके कारक, तीसरी जो बीमारियाँ आती है वो शुष्क जड़ गलन की समस्या आती है। शुष्क जड़ गलन की समस्या प्रायः जब पौधे में जब दाने बनने लगते हैं और मृदा में नमी की कमी हो जाती है, वैसी परिस्थितियां अगर रहती है तो उस समय इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। और जब हम पौधे को उखाड़ते हैं उस समय तो ये तने का भाग जो है और जड़ का भाग जमीन के अंदर रह जाता है और तने का भाग जो है वो मतलब टूट जाता है। तो इस तरह से इस रोग को हम पहचान लेते हैं। अगर इस तरह की समस्या आती है तो उसको रोकथाम करने के लिए आप उस समय हल्की वह सिंचाई कर दें, क्योंकि ये रोग के तापमान बढ़ने के कारण ही ये पैथोजन का विकास होता है। तो उस समय हल्की सिंचाई कर देने से इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। एक बीमारी और प्रमुख है जो कि अभी हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है, उसको हम लोग अस्टंट रोग के नाम से जानते हैं, और ये बीमारियाँ काफ़ी ये धीरे धीरे बढ़ने जा रही है और एक समस्या के रूप में सामने उभर कर आई है। ये स्टंट रोग जो है ये हमारे जो लाही है उसके द्वारा ये रोग फैलते हैं। ये एक विषाणुजनित रोग है और ये इसमें जो है आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें पत्तियाँ पीली और नारंगी और लाल रंग की पत्तियाँ हो जाती है, और जो इसके इंटरनोट होते हैं, जो वर्ब होते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं। पौधे का विकास काफ़ी कम हो जाता है, पौधे बौने हो जाते हैं और इसमें बहुत कम फलियां लगती है। इस तरह से जो है पौधे, इस बीमारी को हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर इस तरह के बीमारी के लक्षण जैसे ही खेतों में दिखाई पड़े तो उस पौधे को उसको उखाड़ देना चाहिए और एक कीटनाशक कोई भी, जैसे इमिडाक्लोरोपीड, उसका 1 ml 3 लीटर पानी में स्प्रे कर देना चाहिए ताकि जो इसके रोग वाहक है, जो बीमारी फैलाते हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो ये सब जो है हमारे प्रमुख रोग थे जिनका निदान करना जरूरी है और ये इनके पहचान भी आसानी से आ जाती है। तो बुआई से पूर्व भी कुछ प्रक्रिया अगर अपनाते हैं तो बिना पैसे को उसको हम कम कर सकते हैं, और अगर बुआई के बाद आती है तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम समग्र उपचार करते हैं तो निश्चित तौर से जो है जो लगने वाली बीमारियां हैं उससे हम काफ़ी हद तक उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं।
4: जी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि कैसे रबी में जो दलहनी फसलें हैं उनके बुआई के पहले और उसके उपरांत आप कैसे रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। सारी दवाइयों के नाम भी आप सभी को बताएं और तरीका भी बताया। तो आशा करते हैं कि आपको आज के इस वार्ता से लाभ मिलेगा इसे सुनकर। तो इसी के साथ अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
9: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
8: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
10: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
8: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
11: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों, चाहे मोथा परिवार

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी ब कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी ब कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों आदाब, मैं डॉक्टर चमन आरा खां NCERT नई दिल्ली से। आज हम आपको आपकी 7वीं जमात की किताब अपनी जबान की दर्सी किताब से एक नज्म पढ़ाएंगे जिसका उन्वान है मेरा वतन। ये नज्म जो है ये लिखी है शफीउद्दीन नय्यर ने। शफीउद्दीन नय्यर के बारे में थोड़ा सा हम जान लें एक मुख्तसर तारुफ, उसके बाद फिर हम इस नज्म को पढ़ेंगे। शफीउद्दीन नय्यर 1903 में पैदा हुए। नय्यर इनका तखल्लुस था अलीगढ़ के कस्बे अतरौली में। इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की, फिर अलीगढ़ तालीम हासिल करने गए, उसके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक स्कूल में उस्ताद मुकर्रर हुए और वहाँ पर 65 बरस की उम्र तक पढ़ाते रहे। शफीउद्दीन नय्यर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। उनका इंतकाल 30 जनवरी 1978 को दिल्ली में हुआ। तो ये जो नज़्म है मेरा वतन, ये भी शफीउद्दीन नय्यर की नज़्म है। इन्होंने ज़्यादातर जो नज़में लिखी हैं वो जो कुदरती मनाजिर हैं उन पर लिखी है, फूलों पे, बागों पे, इस तरह की नज़में जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हैं। जैसे बंदरवाला इनकी नज़्म है, और भी बहुत सी नज़में हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इसी तरह से देखिए वतन के ऊपर तो हमारी पूरी उर्दू शायरी में बहुत नज़में लिखी गई हैं। इसकी जो दूसरी और नज़में हैं जिसमें दुनिया में जन्नत, वक्त की डिबिया, ये सब नज़में हैं। शफीउद्दीन नय्यर साहब ने जो ये नज़्म लिखी है मेरा वतन, तो इसमें इन्होंने हिंदुस्तान के जो परिंदे हैं, चिड़िया है, तोता है, मोर है, बुलबुल है, चकोर है, इन सब का जिक्र किया है। झीलों का जिक्र किया है, दरियाओं का जिक्र किया है, झरनों का जिक्र किया है। तो आइए आज इस नज़्म को हम पढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है। मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। पहाड़ों का मंज़र, बनों का समा है, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर घुमा, ये बाग़े इरम है, ये बाग़े अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। शफीउद्दीन नय्यर ने जो शुरुआत की है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी एक फ़ख्र के साथ कह रहा है कि देखिए ये मेरा वतन है, कि जिसमें चिड़िया है, तोता है, मैना है, मोर है, और कोयल, बुलबुल, खुमरी और चकोर। तो खुमरी जो है ना फाख्ता की किस्म का बच्चों एक परिंदा होता है, उसकी आवाज़ जो होती है ना बहुत गूंजदार होती है उसकी आवाज़। और चकोर जो होता है तीतर की किस्म का एक परिंदा है, उसे चांद का आशिक भी कहा जाता है। कहते हैं ना वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर। अब जैसे पहले शुरुआती उन्होंने नज़्मी की, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, कहते हैं ये मेरा वतन है, ऐसे इस तरह से कह रहे हैं कि ये वो चिड़िया है, वो तोता है, वो मैना है, वो मोर है, वो कोयल है, बुलबुल है, खुमरी है, चकोर है, झीलों की लहरें हैं, यानी झीलें जो हैं उनमें जो लहरें उठती हैं वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। तो झरनों का गिरना मतलब पूरा एक मंजर हमारे सामने आ जाता है, झरने गिर रहे हैं, पानी का शोर हो रहा है, झीलों की लहरें हैं, दरिया जोरों पर है, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और बन। पहाड़ों का भी जिक्र कर दिया कि सरसब्ज जिसमें हरियाली छाई हुई है। सरसब्ज के मायने होते हैं हरियाली, हरा, सरसब्ज इसके पहाड़ और वन। उसके बाद कहते हैं वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुशरंग फूलों की गुलकारियाँ। अब यहाँ पर वो गल्ले मेवे, गल्ले तो अनाज हो गया, मेवे जो होते हैं जैसे बादाम, पिस्ते और काजू वगैरह, ये सब मेवे होते हैं। तरकारियाँ यानी सब्जियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, यानी गुलकारियाँ यानी ऐसे ऐसे फूल हमारे मेरे मुल्क के मेरे वतन में है जो कहीं नहीं मिलेंगे, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ। और फुलवारियाँ भी हैं, और कैसी फुलवारियाँ हैं जो सरसब्ज हैं, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ। सैराब यानी पानी से भरी हुई, खुशनुमा दिल को खुश करने वाली खुशनुमा क्यारियाँ मौजूद हैं। ज़मीनें वो जरखेज दिलकश चमन, ज़मीनें जरखेज़ हैं यहाँ की, यहाँ पे जो है हर फसल पैदा होती है। जैसे कि बताया कई मौसम है हमारे यहाँ, गर्मी, सर्दी, बरसात, और एक बाहर का मौसम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हर मौसम की फसल है, ज़मीनें हैं, ज़मीनें जरखेज़ हैं, दिलकश चमन है, खूबसूरत चमन यानी बाग हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन यानी मेरे वतन में ये सब चीज़ें हैं। हर तरह के तरकारियाँ हैं, हर तरह के गल्ले हैं, गल्ला यानी अनाज है, दालें हैं, चावल, ये सब तरह की हर तरह की फसल जो है मेरे मुल्क में मौजूद है। और इतना जरखेज़ मुल्क है मेरा। इसी तरह से पहाड़ों का मंजर, वनों का समा, पहाड़ों का मंजर, पहाड़ों के मंजर की बात कर रहे हैं, वनों का समा यानी वन जो है जंगलों में, जैसे पेड़ हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, झरने हैं, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवा, और इसमें चश्मे रवा हैं जो झरने हैं, चश्मा कहते हैं झरने को, तो चश्मे रवा हैं। कहाँ तक बयां हूँ इसकी खूबियाँ, मैंने कितनी खूबियाँ मैं इनकी बयान करूँ कि इसकी कोई हद नहीं है। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना दिलकश मेरा वतन है। है फिरदौस का इस चमन पर घुमा, फिरदौस कहते हैं जन्नत को, तो जन्नत पर जो है ये चमन जो है यहाँ के जो बाग हैं उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हम जन्नत का गुमान होता है, जन्नत तो नहीं लेकिन गुमान होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि जन्नत में इसी तरह के फल फूल पेड़ पौधे गल ये सब चीज़ें होंगी। ये बाग इरम है या बाग अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। जैसे कि मैंने बताया जहाँ क्यारियाँ हैं, गल्ले हैं, यहाँ पे हर तरह के अनाज हैं, मेवे हैं, खुश्क फल हैं, बादाम है, अखरोट, किशमिश वगैरह वगैरह और भी हैं, तो जो इस मुल्क में पैदा होते हैं, सब्जियाँ हैं, गुलकारियाँ हैं, गुल बूटे हैं, फूल जो हैं उनको तराशा जाता है, सैराब है, पानी से भरे हुए हैं जो चश्मे हैं, जरखेज है ऐसी ज़मीन। जरखेज़ किसे कहते हैं, उपजाऊ को कहते हैं बच्चों, जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है। तो यहाँ हिंदुस्तान में हर तरह की फसल होती है, गर्मी की अलग है, सर्दी की अलग है, बरसात की अलग है, तो इस तरह की फसलें होती हैं जो मौसम के हिसाब से होती हैं। चश्मा ज़मीन से उबलता हुआ पानी का, पानी या सोता, ज़मीन से उबलता हुआ पानी, पहाड़ों पे देखे होंगे आपने झरने बहते हुए, और चश्मा जो होता है वो ज़मीन से उबलता हुआ पानी होता है। रमा यानी बहता हुआ, फिरदौस के माने जन्नत है, जो मैंने बताया कि उस पर चमन जो है, जो बाग हैं उन पर जन्नत का गुमान होता है। ऐसे ही गुमान, गुमान के माने होते हैं शक शुबा यानी वहम गुजरता है, हालांकि वो जन्नत नहीं है लेकिन जन्नत की जैसा है। जैसे हम कहते हैं अरे कितना खूबसूरत बाग है, कितना दिलकश बाग है, कितना खुशनुमा बाग है, ऐसे लग रहा है कि जैसे जन्नत में आई, हवाएं ऐसी चल रही हैं कि जैसे जन्नत की हवाएं आ रही हैं, हवा के बारे में भी कहा जाता है। इसी तरह से दिलकश, दिल पसंद है, दिल को लुभाने वाली है। ऐसे ही बाग इरम कहते हैं जन्नत का बाग, इरम बाग इरम यानी जन्नत का बाग, इरम भी जन्नत को ही कहा जाता है। बाग अदन वो जन्नत का बाग जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। तो इस नज़्म में ज़्यादातर जो मंजर बयान किए गए हैं बड़े खूबसूरत मंजर है, जिसमें सबसे पहला मंजर जो है वो बागों का है, फूलों का है, परिंदों का है, उसके बाद चश्मों का है, पहाड़ों का है, दरियाओं का है। तो ऐसी इसी नज़्म के उस पर मुझे एक हमीदुल्ला अफसर का एक नज़्म है जैसा मेरा देश, उसकी एक चार लाइनें याद आ रही हैं जो उन्होंने अपनी नज़्म में कही है, कैसे अच्छे अच्छे दरिया वो उनका इठलाकर चलना, दो बहने हैं गंगा जमुना, दुनिया में सानी नहीं उनका, जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं। देखिए जहाँ इन्होंने कहा कि दरियाओं के बारे में कहा है, ऐसी हमीदुल्ला अफसर ने भी, कैसे अच्छे अच्छे दरिया वो इनका इठला कर चलना, और दो बहने यानी गंगा और जमुना का जिक्र कर दिया, गंगा जमुना उनका जिक्र किया है, और दुनिया में उनको कोई स्थानी नहीं है यानी उनको कोई दूसरा है नहीं, जैसी गंगा जमुना हमारे मुल्क में बहती है, तो जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं। अब हम सवालों की तरफ आते हैं कि शायर ने इस नज्म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है, तो वही है, कुमरी का है, चकोर का है, बुलबुल का है, मोर का है, चिड़िया, तोता, मैना, इन सब का जिक्र जो है इस नज्म के अंदर किया है। दिलकश चमन किसको कहा है उसने, वतन को कहा है। इस नज्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियां बयान की गई हैं, जो खूबियां बयान की गई हैं उनको आपको इसमें से देखकर समझकर लिखना है, और वो क्या खूबियां हैं, वो यही है कि भई आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है, हर तरह के परिंदे हैं, हर तरह के मेवे, हर तरह का जो है वो अनाज यहाँ पैदा होते हैं, और यहाँ के बाग, यहाँ के झरने, यहाँ के पहाड़, इन सब का जिक्र जो है भारत शायर ने, शबीद्दीन नय्यर ने बड़ी खूबी से बयान किया है, और उसमें जो ज़बान का इस्तेमाल किया है वो बड़ी आसान और आम फहम ज़बान है, यानी ऐसी ज़बान है जिसको आप जो है वो आसानी से समझ में आ जाती है, कोई मुश्किल लफ्ज़ जो है उन्होंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि सारे लफ्ज़ जो हैं वो आसान हैं और उसकी मौजू की मुनासबत से हैं, क्योंकि वो वतन के फूलों का, बाग़ों का इसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें ये सब लफ्ज़ों का, दिलकश जैसे लफ्ज़ है, खुशनुमा लफ्ज़ है, तो इन सब लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं या कोई नज़्म लिखते हैं, क्योंकि नज़्म जो है बच्चों एक मुसलसल इज़हार ख्याल होता है, नज़्म जो है किसी मौजू पर मुसलसल इज़हार ख्याल करते हैं, जैसे कि यह नज़्म है मेरा वतन, तो मेरे वतन में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरा वतन कैसा है, इस पर जो है वो शायर का पूरा जो है फोकस है, और उसमें वो यही बताते हैं कि मेरा वतन हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा वतन है, और उसमें ये सब चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत का गुमान इस पर हो रहा है, और खूबियाँ भी बयान की हैं अपने वतन की, कि हर तरह के अनाज हैं यहाँ पर, हर तरह के परिंदे हैं, और हर तरह की मेवजात जहाँ पर यहाँ पर हैं, हर तरह के परिंदे, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। बच्चों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जब भी कोई नज़्म पढ़ें तो ठहर ठहर के पढ़ें, नज़्म को नज़्म के अंदाज से पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि हर चीज़ हर आप पर वाज़े हो जाए, लफ्ज़ को दुरुस्त अदायगी के साथ, मुनासिब लब व लहजे के साथ जो है आप उसको पढ़िए, तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखिए, दिलकश को दिलकशी बोलिए, दिलकश मत बोलिएगा, क्योंकि उसकी मीनिंग फिर जो है वो बदल जाएंगे, ऐसे ज़रखेज़ लफ्ज़ है तो ज़रखेज़ मत करिए उसको, ज़रखेज़ पूरा क़े और ज़े की आवाज़ जो है वो पूरी निकलनी चाहिए, इसी तरह से जो है कुमरी है तो कुमरी ना निकल जाए आपके मुंह से, तो कुमरी को ख़ाफ़ की आवाज़ जो है वो बाकायदा आपको तलफ़्फ़ुज़ को ऐसे ही अदायगी करनी है, और मुनासिब लब व लहजे के साथ, मौज़ूनियत के साथ उसको पढ़ना है, और पढ़कर समझना है, समझ कर उसको जो मरकज़ी ख्याल है उसको लिखना है। मरकज़ी ख्याल क्या है, वो यही है कि वतन के बारे में, वतन की अहमियत को, वतन की खूबियों को शायर इस नज़्म में बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करता है। पैगाम क्या देना चाहता है, पैगाम यही देना चाहता है कि भाई मेरा वतन हिंदुस्तान जो है वो इतना दिलकश और इतना अच्छा है कि इस पर जन्नत का गुमान होता है मुझको, क्योंकि ज़रखेज़ ज़मीन है यहाँ की, बाग फल और बाग हैं, मेवाजात हैं, बागों में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, जब बरसात का मौसम आता है तो इसमें आपने देखा होगा कि हर चीज़ धुल जाती है, सब्ज़ा जो है वो चारों तरफ साफ़ सुथरा नज़र आता है, फूलों में जान पड़ जाती है, कलियों में जान पड़ जाती है, और परिंदे भी चहचहाने लगते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि गर्मी से सबका बुरा हाल होता है। तो इस तरह से उसने जो शुरुआत में जो एक कहा है कि मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, यानी एक बड़ाई बयान कर रहा है, अपने वतन की खूबियां बयान कर रहा है, इसी तरह से इसमें कुछ लफ्ज दिए गए हैं, नीचे लिखे हुए कुछ लफ्ज हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें है वतन, तो वतन पे आप वतन लिखिए और वतन को जुमले में इस्तेमाल कीजिए कि मेरे वतन का नाम हिंदुस्तान है और उसमें बहुत दिलकश बाग है। इसी तरह से मंज़र है, तो पहाड़ों का मंज़र बहुत अच्छा मालूम होता है, तो मंज़र लफ्ज जो है उसमें ज़रूर आना चाहिए। उसकी मीनिंग मत लिखिएगा बल्कि उस मंज़र को, क्योंकि लफ्ज़ अपने आप में कुछ नहीं होता, बल्कि लफ्ज़ को जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं विद कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ऐसी चमन लफ्ज़ है, ऐसी समा, कैसा खूबसूरत समा है या कैसा दिलकश समा है। तो समा यानी कैफियत, एक तरह से किस तरह का मंज़र है, तो वो मंज़र जो है वो आप इसके अंदर समाज में लिख सकते हैं, कैसा अच्छा समा है या कितना खुशगवार वक्त है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इसके अंदर लफ्ज़ हैं जिनको आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही इसमें जैसे तरकारी है, तो तरकारी जो है वो वाहिद हो गया, उसके जमा तरकारियाँ हो गई। ऐसे जो है इसमें चश्मा है, तो उसकी जमा जो होगी बहुत सारे चश्मे यानी चश्मों। ऐसी जो है बाग, बाग की जमा बागों। इस तरह से नज़्म में जितनी भी वाहिद जमा और मुतज़ाद अल्फाज आ रहे हैं उनको इसी नज़्म से भी तलाश करके लिखिए। ऐसे इसमें मैंने बताया था जैसे लिखते वक्त भी जो इमला जो लिखते हैं आपकी मैडम आपको लिखवाती हैं, या घर में आप अपने इमला लिखते हैं, आपके घर में आपकी बहन या आपकी मदर आपको इमला लिखवाती हैं, तो उसमें जैसे इसमें है तरकारियाँ, तो आपने अगर उसको सही सुना होगा तो सही लिखेंगे, अगर आपने सुन लिया तरकारियाँ तो उसको क्या लिखेंगे, तरकारियाँ। तरकारियाँ तो कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है, तरकारी है, तरकारियाँ हो गया। इसी तरह से अब जैसे बागों, तो गैन की आवाज़ ना लिख के आपने गाफ उसके अंदर लिख दिया तो वो हो जाए बागों, तो बागों तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो है इसका इमला जो है वो दुरुस्त आपको लिखना होगा। ऐसी मंजर है, तो मंजर को मीम नून और जो और रे से लिखा जाता है, और अगर आप उसको जे से लिख देंगे तो वो मंजर नहीं रहेगा, गलत लिख जाएगा। तो लफ्ज़ों को सही हिज्जे के साथ लिखना, सही तलफ़ुज के साथ लिखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वतन है, वतन वाव तोय और नून है, तो आप इसमें वतन को जो है बहुत से बच्चे लिख देते हैं वाव ते और नून वतन, तो ते तो उसमें है नहीं बल्कि तोय है, तो तोय को जो है उसमें लिखा जाएगा। तो इसी तरह सरसब्ज है, तो सरसब्ज को आप सीन से ना लिख कर स्वाद से लिख दें तो वो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इमला भी आपको दुरुस्त करना है, तलफ़ुज़ भी आपको उसकी अदायगी भी सही से करनी है, और उसको उसका जो मतलब है उसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मुनासिब लफ़्ज़ोलॉजी के साथ और मौजूनियत के साथ आपको पढ़ना, मौजू करके पढ़ना है। यानी कि आप एक आंग होता है ना, एक लय होती है एक नज़्म के अंदर, उसी नज़्म के तहत उसको पढ़ना है। जैसे ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। देखिए एक ही लय में, लय आपकी एक ही होनी चाहिए, और अगर आपको आपने उसको ऐसे पढ़ दिया वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर इस तरह से, तो कोई भी नज़्म होती है ना उसका अपनी एक लय होती है, उस लय में जो है अगर आप उस नज़्म को पढ़ेंगे तो मज़ा भी आता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। आप जब उसको पढ़ें या उसकी किरत करें या उसको बुलंद खानी करें तो आवाज़ का भी आपको उतार चढ़ाव आपको देखना है, तो बहुत ज़्यादा ये ना हो कि बहुत खींच के पढ़ना है या बहुत ज़्यादा ऊपर एकदम चढ़ा दिया उसको, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान पढ़ते वक्त रखना है। जैसे मैंने बताया था चिड़िया, तो चिड़िया की जमा चिड़ियाँ हो गई, बुलबुल बुलबुलें, झील की जमा हो गई झीलों, दरिया की जमा दरियाओं, फिर झरना झरना की झरनों हो जाएगी, पहाड़ की पहाड़ों होगी, और मेवे की में वो हो जाएगी। तो इस तरह से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद अगर आप बनाएंगे तो नए नए लफ्ज भी आप लिखेंगे और इस तरह से आपकी आपकी ज़खीरे अल्फाज में इजाफा होगा। और बच्चों आप भी नज़्म लिख सकते हैं किसी भी उस पर, इन्होंने तो वतन पे लिखी है, आप किसी भी मंजर पर, आप फूल पे लिख सकते हैं, आप बरसात पे लिख सकते हैं, या पहाड़ पे लिख सकते हैं, या कोई आपको परिंदा नजर आता है तो चिड़िया पे भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप नज़्म, लेकिन लिखते वक्त जब आप लफ्ज़ों के इंतखाब करें, तब जैसे चिड़िया है तो चिड़िया से मुतालिक जितने लफ्ज हैं, जैसे चिड़िया आई दाना लाई इस तरह से, तो चिड़िया से मुतालिक जो जो चीज़ें हैं वो आपको उसके अंदर जो लफ्जियात है उनका इस्तेमाल जो है सही तरीके से करना होगा। चिड़िया आई दाना लाई, या फिर एक नज्म जो है वो कि एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्नी मुन्नी भोली भाली, पाली और भोली भाली, तो इस तरह से उसमें पूरा ये कहानी है कि एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई, मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही डाला। चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद ना आई, चू चू चू चू करके रोई सारी रात इसी में कोई। सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला, प्यार से जब उसको चमकारा, चिड़िया ने तोतों से चोंचों से मारा। बुढ़िया भागी अंदर आई, मिट्टी भरकर दाना लाई, जब बुढ़िया ने दाना खिलाया तब चिड़िया ने गीत सुनाया। तो देखा ये भी एक गीत है और चिड़िया पर है, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी के नाम से बरकतुल्ला फराक की नज़में, जो कि बच्चों के शायर थे, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। तो ये मुझे एक नज़म याद आ गई, क्योंकि आपको बता रही थी कि नज़म को किस तरह से लिखा जाए, तो वो नज़म आप लिख सकते हैं। फिर ये है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप नज़में भी जमा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यार बच्चा नज़म लिख सके। आप नज़म नहीं लिख सकते तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में इकट्ठी कीजिए, उन नज़मों को याद कीजिए, इस नज़म को याद कीजिए और उसको सुनाइए आप अपने घर वालों को, और या फिर जो है तरन्नुम से गाइए, मिलकर गाइए, दो तीन लोग अगर मिलकर गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो गाने से क्या होता है वो जल्दी समझ में आएगी, और बच्चे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं खासतौर पर नर्सरी केजी के, या तो इस तरह के बच्चे जो है ना नज़में गा गा के पढ़ते हैं तो उनको याद भी हो जाता है, क्योंकि आपकी बड़ी क्लास है, क्योंकि पाँचवीं क्लास आप पास कर चुके हैं, प्राइमरी आपका इब्तदाई जमातों से आप निकल कर अब आप प्राइमरी में दाखिल हुए हैं, तो अपर प्राइमरी में आपसे क्या तवक्कु की जाती है, यही तवक्कु की जाती है कि आप नए नए अल्फाज जो हैं उनको समझेंगे, और ज़बान मतलब आपने जो वहाँ पर सुनना बोलना पढ़ना लिखना सीखा है, तो यहाँ अगर आपका जो मयार है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ऊँचा हो जाएगा, और वो कैसा होगा ऊँचा, कि आप रवानी से बोलेंगे, रवानी से अपनी किसी बात का इजहार करेंगे, किसी मंजर को देख के उसके बारे में दो चार जुमले भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के जुमलों को लिखेंगे, या वतन से मुतालिक और किसी ने जो नज़में कही हैं, जैसे मैंने अभी आपको सुनाई थी हामिदुल्लाह अफसर की नज़म, और भी अल्लामा इकबाल ने भी लिखी है नज़में, तो उन नज़मों को भी आप ले सकते हैं, या और जो मनाजिर फितरत पर लिखी गई हैं नज़में, उन नज़मों को भी आप इंटरनेट से तलाश कीजिए, उनको लिखिए और उनका एक वो बना लीजिए। ऐसे ही अब इसमें जो है वो से शेर मुकम्मल करने हैं, तो मिसरों को सही तरतीब से देके लिखना। मिसरा दे दिया इसमें, वो गल्ले वो मेवे वो तरकारियाँ, अब इसमें मुझे देखना है कि इसमें वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, तरकारियाँ और गुलकारियाँ, कहाँ तक बयां उसकी हों खूबियाँ, मुझीलों मुसरसा बागों की फुलवारियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुबा, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर। तो इस तरह से आपको नज़्म जब आप देखेंगे तो ये जो किताब में जो मशकें दी गई हैं उस मशक में ये लिखा गया है कि मिसरों को सही तरतीब से लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए, क्योंकि जो शेर होता है दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, तो दोनों मिसरों को आपको जो है मिलाना है। अब इसमें एक एक मिसरा इधर दिया है तो दूसरा जो है वो आप अगर आपको नज़्म याद है तो बखूबी उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको देख कर और उस नज़्म को कीजिए। अच्छी ज़बान को मैं ये भी कहूँगी कि आप ये भी कर सकते हैं कि नज़्म को ज़बानी याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी नज़्म है और ज़बानी याद की जा सकती है। ज़बानी याद कीजिए, फिर उसको जो है वो तरन्नुम से गाइए, और उसके बाद ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में जब आपको याद होगी नज़्म ना तो आप आराम से उस नज़्म को लिख सकते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात यही है कि इसमें वतन की जो सबसे बड़ी वतन की अहमियत को बयान किया है शायर ने, शफीउद्दीन अय्यर ने, और इसके अलावा वतन की या मुल्क की, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बहुत सारी खूबियों को मुख्तसरन बयान किया गया है, क्योंकि नज़्म तो मुख्तसर बयान होता है, बहुत कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाती है, और नसर जो होती है उसको हम इतने वजाहत के साथ लिखते हैं। जैसे अब ये मेरा वतन है, मेरा वतन पे आप मज़मून भी लिख सकते हैं बच्चों, तो एक मज़मून जब लिखेंगे तो आप उसमें लिखिए कि भाई मेरा वतन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इतना ये चीज़ें हैं जो आपने इसमें देखी है, जो जो आप महसूस करते हैं, उन सब चीज़ों को लिखिए, एक पैराग्राफ कम से कम आप लिख सकते हैं मेरा वतन पर। ऐसे ही इस वतन की मोहब्बत और दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है कि शायर को अपने वतन से कितनी मोहब्बत है। वो ये कहता है ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी उस पर एक फ़ख्र महसूस करता है कि देखिए मेरा वतन कितना दिलकश है, कितना खूबसूरत है मेरा वतन, मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है कि यहाँ पर हर तरह के पर फूल हैं, क्यारियाँ हैं, चश्मे हैं, झरने हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपने नज़्म में भी, अगर नज़्म अगर लिख सकते हैं तो नज़्म में लिखिए। नज़्म ज़रूरी नहीं आप मेरे वतन पे ही लिखें, किसी और मौजू पे भी लिख सकते हैं, मेरे वतन पर आप मज़मून भी लिख सकते हैं, वतन पर कोई ड्रामा भी आप जो है वो लिख सकते हैं, उसको स्टेज कर सकते हैं। वो ड्रामा आपको जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर आप बना सकते हैं तो उसको जो है वो बना सकते हैं, और उसमें कुछ मुकालमे वगैरह जो है वो डाल दीजिए, और बहुत कितना 5 मिनट का बनाइए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 मिनट में ही आप अपनी बात को जो है बयान कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ बच्चों आपको इस नज़्म से एक तो पढ़ना, मौजूनियत के साथ पढ़ना, और दूसरे ये कि लह के साथ पढ़ना, सही तलफ़ से अदायगी करना, और इस नज़्म का जो मरकज़ी ख्याल है उससे वाकफियत हो गई होगी। इसके अलावा वतन की अहमियत को जो शायर ने जो बयान की है, ज़बान को जो लिखा है, जो उनका अंदाज़ है, जिसको कहते हैं हम तहरी उसलूब कहते हैं, जिसको स्टाइल कहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस पर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार लगिए कि आपको ये नज़्म कैसी लगी और क्यों अच्छी लगी, इस पर कम से कम 5 जुमले तो आप लिख ही सकते हैं। और मैं समझती हूँ बच्चों आपको आज की नज़्म बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप जो है इस नज़्म को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए, समझ के फिर लिखिए। तो इस तरह से ये नज़्म जो है वो वतन की अहमियत, उसकी वतन से मोहब्बत और वतन दोस्ती के जज्बे को एक नज़्म में उभारा गया है। तो इसके साथ ही मैं समझती हूँ आपको ये नज़्म बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: क्लास टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुनो सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
4: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार किसान भाई, मैं हूँ आरजेनु और एक बार फिर से आ चुकी हूँ आप सभी के बीच लेकर उन्नत कृषि कार्यक्रम। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर हमेशा इस कार्यक्रम में बातें करते हैं किसानों के लिए, किसानों के हित की बातें, तो आज भी कुछ ऐसे ही बातें, आपकी खेती से जुड़ी सारी बातें हम लेकर आए हैं। लेकिन फिलहाल आज का एक हमारा बहुत ही खास विषय है, और जैसा कि जानते हैं आप किसान भाई कि आलू, जिसे सब्जियों का राजा कहा जाता है, आलू के बिना हमारा हर एक जो सब्जी है वो अधूरा रहता है। तो जब भी हम जाते हैं बाजार तो आलू ज़रूर खरीदते हैं। क्या आपको पता है कि आलू की खेती भी वैज्ञानिक तरीके से हो सकती है? जी हाँ, आलू की वैज्ञानिक खेती, आज यही विषय है हमारा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर से, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आलू की खेती किस मौसम में होती है?
12: आलू मिट्टी के नीचे तैयार होने वाली शीतकालीन कंद फसल है। आलू की खेती मुख्य सब्जी फसल के रूप में बिहार के प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है। आलू की खेती ठंडे मौसम में, जहाँ पाले का प्रभाव नहीं होता है, सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके सही जमाव के लिए 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अधिकतम तापक्रम कंद बनते समय दिन का 20 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस तरह का तापमान उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर से मार्च तक रहता है। कम तापमान, सूर्य की तेज रोशनी और छोटे दिनों में कंदों का शीघ्र निर्माण होता है। 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर कंदों का निर्माण रुक जाता है।
11: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, शीतकालीन मतलब कि शीतकाल में इसकी जो आलू की खेती है वो हो सकती है, ये आपने बताया। तो डॉक्टर साहब, अब खेत की बारी थी कि हम आलू की खेती करना चाहते हैं, तो खेत की तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें?
12: आलू उत्पादन में खेत की तैयारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करें। ध्यान रखें कि प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं, ताकि भूमि में नमी बनी रहे तथा मिट्टी भुरभुरी हो जाए। यदि भूमि में नमी की कमी हो तो जुताई से पूर्व सिंचाई कर लेना चाहिए, जिससे भूमि भली भांति तैयार की जा सके। उसके बाद जुताई के क्रम में खरपतवार एवं फसलों के डंठल वगैरह जो भी हो उसे चुनकर खेत से बाहर निकाल दें।
11: तो ये थी खेत की तैयारी। और डॉक्टर साहब, खाद और उर्वरक जो हैं, ये इसका इसके लिए यानी कि किसी भी फसलों की खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आलू की खेती की बात आती है तो इसके लिए अलग खाद और उर्वरक की ज़रूरत होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि खाद और उर्वरक आलू की खेती में कैसे दें, कौन सी देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए?
12: अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। आलू की फसल के लिए खाद एवं उर्वरकों की मात्रा भूमि की किस्म, भूमि की उर्वरा शक्ति, जलवायु, फसल चक्र एवं किस्म पर निर्भर करती है। नियमतः खाद एवं उर्वरक मिट्टी के परीक्षणोपरांत ही डालना चाहिए। अतः खेत जोतने के समय 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। गोबर की खाद खेत में डालने से न केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी पूरी होती है, बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी पूर्ति होती है। आलू की फसल को प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर तथा 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए 730 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट या 325 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। आलू की फसल को गंधयुक्त रासायनिक उर्वरकों से अधिक लाभ मिलता है, अथासंभव यूरिया के बदले अमोनियम सल्फेट तथा डीएपी के जगह सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा आलू बोने के समय ही करना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा मिट्टी चढ़ाते समय अर्थात बुआई के 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। बुआई के समय उर्वरकों को डालने की विधि पर ध्यान देना आवश्यक है। आलू के कंद उर्वरकों के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, अन्यथा कंद सड़ने की संभावना रहती है। अतः आलू बोने के लिए बनाई गई उथली नालियों में उर्वरकों को डालकर मिट्टी में मिला दें और तब आलू के कंद रखें, या कंद रखने के 50 सेंटीमीटर दूर उर्वरक को डालें। आलू के कंदों को पंक्ति में रखने के बाद मिट्टी चढ़ा दें। प्रायः देखा जाता है कि एक ही खेत में प्रत्येक वर्ष आलू लगाया जाता है। शुरू के कुछ वर्षों तक उपज अच्छी मिलती है, परंतु बाद में उपज में कमी आने लगती है, क्योंकि एक ही खेत में कई वर्षों तक लगातार आलू की खेती करने पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। अतः सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए प्रत्येक 2-3 वर्षों पर 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 10 से 15 किलोग्राम मैंगनीज सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व खेत तैयारी के समय ही खेत में डाल दें।
11: तो डॉक्टर साहब ने बताया आप सभी को कि खाद एवं उर्वरक किस मात्रा में, कौन से खाद एवं उर्वरक डालनी चाहिए आपको आलू की खेती के लिए। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि हम अगर सही प्रभेदों का चयन करें तो हम आलू की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो आप किसान भाइयों को बताएं कि आलू के कौन कौन से प्रभेद उनके लिए अच्छे होंगे।
12: आलू की भरपूर उपज प्राप्त करने के लिए उसकी उन्नत किस्मों को ही उगाना चाहिए। आलू के प्रमुख उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे आलू का कुछ किस्में आगात किस्म होती है। जैसे आगात किस्म में आती है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी कुबेर, कुफरी जवाहर, कुफरी पुखराज। ये सभी किस्में 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है तथा इन्हें 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अवश्य ही लगा देना चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। फिर दूसरा ग्रुप आता है मध्य आघात। मध्य आघात के लिए अच्छी किस्में हैं कुफरी बादशाह, कुफरी लालिमा, कुफरी ज्योति, कुफरी चमत्कार। ये सभी मध्य आघात यानी कि मुख्य फसल वाली किस्में हैं जो लगभग 100 से 110 दिनों में तैयार होती है। इसे 20 नवंबर तक लगा देना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ पिछात किस्में। इसमें पिछात किस्में में मुख्य रूप से हैं कुफरी सिंदूरी, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2। ये किस्में लगभग 120 से 125 दिनों में तैयार होती है तथा इन्हें 30 नवंबर तक लगा देना चाहिए।
11: तो यहाँ पर हमने जो प्रभेदों के बारे में जाना है, डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्नतशील प्रभेदों को ही हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए, आलू के उन्नतशील प्रभेदों को, और उसके टाइमिंग के बारे में बताया कि कब और किस समय के बीच लगाएं आप, ताकि आपको फ़ायदा हो किसान भाइयों। और डॉक्टर साहब, जब बीजों की आवश्यकता की बात करते हैं तो हमारे जो किसान भाई है वो सही बीजों का चयन करेंगे तो उन्हें इस खेती में, आलू की खेती में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप बताएं हमारे किसान भाइयों को कि कौन से जो बीज हैं वो उनके लिए सही होंगे।
12: आलू का उत्पादन आलू के बीज के ऊपर निर्भर करता है। आलू के बीज पर लगभग कुल लागत का 40-50% तक खर्च आता है, अतः अधिक उपज हेतु सदैव प्रमाणित एवं निरोग बीज का उपयोग करना चाहिए। इसकी खेती के लिए बीज की मात्रा आलू के कंदों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे 25 से 30 ग्राम यानी कि बाजार में उसे सूत पर बिकता है, तो 25 से 30 ग्राम यानी कि 8 से 9 सूत का कंद प्रयोग में लाने पर एक हेक्टेयर के लिए 15 से 20 क्विंटल बीज लगेगा तथा 40 से 50 ग्राम यानी 12 से 14 सूत का कंद लगाने पर एक हेक्टेयर के लिए 20 से 25 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है। 20 ग्राम यानी लगभग 6 सूत से छोटे आकार के कंदों का प्रयोग करने पर उपज में कमी हो जाती है, अतः बहुत छोटे कंदों का प्रयोग बुआई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 25 से 30 ग्राम अर्थात 8 से 9 सूत यानी उस या उससे बड़े आकार के कंदों को वायरस से ग्रसित होने की संभावना नहीं होती है तथा पौधे स्वस्थ एवं पुष्ट होते हैं। यदि बीज के कंद वायरस से ग्रसित होंगे तो कुछ दिनों के बाद पौधे की पत्तियां मुड़ने लगेगी यानी कुकुड़िया जाती है और ऐसे पौधों में कंद लगेंगे ही नहीं, और यदि लगेंगे भी तो आकार में बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, फलस्वरूप उपज में कमी आ जाएगी। आलू के बड़े कंदों को काटकर भी लगाया जा सकता है, परंतु कटी हुई आलुओं से बुआई अक्टूबर माह के बाद ही की जानी चाहिए, जब तापक्रम कम हो जाए। वायुमंडलीय तापमान अधिक रहने की स्थिति में कंदों को काटकर लगाने पर सड़ने की संभावना रहती है। कंदों को काटने के समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 आँखें, जिसे कलियां कहते हैं, अवश्य रहे। अंकुरित आलू के कंद ही लगाने चाहिए। उत्तर भारत में प्रायः शीतगृह में रखा हुआ बीज ही बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज से बीज को निकालने के बाद उसे ठंडे हवादार और अंधेरे कमरे में फैलाकर एक सप्ताह छोड़ दें ताकि कंदों में अंकुरण आ जाए। यह हमेशा ध्यान रखें कि अंकुरण आने के बाद ही उसकी बुआई करें।
11: तो यहाँ पर हमने जाना कि कैसे बीज होने चाहिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ बीजों की जो खराबी है उनके बारे में बताया कि अगर वैसे बीज रहते हैं तो आप उसे ना लें ताकि उससे आपको नुकसान ना हो, आपके जो फसल है उस पर नुकसान ना पहुँचे, उसे नुकसान ना पहुँचे। और डॉक्टर साहब, अब सस्य क्रियाओं की बात करते हैं, तो इसके खेती में जो प्रमुख सस्य क्रियाएँ हैं वो हम जानना चाहेंगे।
12: इसकी खेत पहले तो कि जब हम आलू लगाते हैं तो उसको हमको बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। उपचारित करने के लिए एमिसान नामक दवा आती है, एमिसान 6, उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर उसे घोल बना लें और उसमें आलू को डुबो दें। 10-15 मिनट डुबोने के बाद उसे बाहर छानकर निकाल लें और छाया में सुखाने के पश्चात उसकी बुआई करें। बुआई की दूरी जो है हमेशा 50 से कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें और कंध से कंध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें खरपतवार आ जाते हैं, अतः बुआई के 10-15 दिनों बाद निकाई गुड़ाई करें ताकि फसल कर खरपतवार से मुक्त रहे। साथ ही साथ मिट्टी हल्की होगी जिसके कारण कंदों का विकास भी ठीक होगा। अब आलू बोने के बाद जो है उसमें मिट्टी चढ़ाना एक प्रमुख कार्य होता है, अतः आलू में मिट्टी का चढ़ाया जाना बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए मिट्टी चढ़ाना समय पर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। विलम्ब से मिट्टी चढ़ाने के कारण नए नन्हे कंदों को नुकसान होगा, अतः बुआई के 25 से 30 दिनों के अंदर ही खेत की कोरनी कर एवं नाइट्रोजन उर्वरक का भुरकाव कर मिट्टी चढ़ा दें। उसके बाद शस्क्रिया में मुख्य रूप से सिंचाई पर भी ध्यान देना आवश्यक है, तो सिंचाई के लिए हमें नियमित एवं हल्की सिंचाई का होना आवश्यक है। यदि बुआई के बाद नमी में कमी नज़र आए तो प्रथम सिंचाई बुआई के 4-5 दिन बाद हल्की करें ताकि पौधा आसानी से उग जाए। दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 15 दिनों बाद तथा तीसरी सिंचाई मिट्टी चढ़ाने के 2-3 बाद करें। इसके बाद 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। ध्यान रहे कि आलू के क्यारियों में कभी भी ज़्यादा पानी न हो। सिंचाई से मेड़ों का केवल 2/3 भाग ही गीला होना चाहिए। कंदों के खुदाई के 15 दिनों पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। उसके बाद इसमें मुख्य रूप से फसल सुरक्षा

0: वायरस रोग का प्रयोग प्रकोप होता है। इन रोगों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि फसल 5-6 सप्ताह का हो जाए तो इमिडाक्लोरोपीड कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में तथा इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद सिर्फ इंडोफिल M45 फफूंदनाशी दवा का 10-15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। यदि मौसम में नमी अधिक हो, तापक्रम बहुत कम हो, बदली छाए रहे तथा हल्की बारिश हो जाए तो रीडोमिल एम गोल्ड फफूंदनाशी दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना अति आवश्यक है, अन्यथा पिछात झुलसा रोग से फसल बर्बाद होने की संभावना रहती है। वैसे तो बिहार राज्य में पाला पड़ने की संभावना नहीं रहती है, परंतु कभी कभी तापक्रम काफ़ी कम हो जाता है और पाला गिरने जैसी स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति में फसल को बचाने के लिए खेत में कम दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे तथा रीडोमिल गोल्ड दवा का भी छिड़काव करते रहें। आलू के पौधों की पत्तियों में जब पीलापन आने लगे तो समझें कि अब मेरा आलू तैयार हो गया है, उसके बाद इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। आलू को खेत से निकालने के बाद उसे छायादार एवं हवादार जगह में 10-15 दिनों तक सुखाने के बाद ही भंडारण करें।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी कि आप आलू की वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि खेत की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, खाद एवं उर्वरक आप किस तरीके के और कौन से डाल सकते हैं, साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी खेती के प्रमुख सस्य क्रियाएँ कौन सी हैं, बीमारियों से बचाव के बारे में बताया। तो इन सारी चीज़ों की पूरी जानकारी आप सभी को उपलब्ध हो गई है और आशा करेंगे कि आप डॉक्टर साहब के बताए गए इन सुझावों को अपनाएंगे और आलू की खेती बिना रुकावट के साथ करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले।

0: जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूमेन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपनी जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई, लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी। अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया।
4: उन्नत कृषि।
5: हेलो नमस्कार, तो लीजिए फिर से हाजिर हैं हम और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु, लेकर आ चुकी हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम। जी हाँ, वैसे समय की बात करें, सीजन की बात करें तो सब्जियों की रोपाई का वक्त आ चुका है और उसमें भी बहुत सारे सब्जियां हैं जो आप अपने बागान में लगा सकते हैं। तो सब्जियों को लगाने से पहले ज़रूरी होता है कि हम सावधानियां बरतें। सावधानियां यानी कि जो कीट पतंगे हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, उन कीट पतंगों से हम कैसे आज़ादी दिलाएं अपने बागानों को, यानी कि खास तौर पर सब्जियों के बागानों को। तो आज हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं एक खास विषय पर जो है सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन। जी हाँ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर टी साहा जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और जहाँ तक देखा जा रहा है तो मौसम के अनुसार भी हमारे किसान भाइयों को अभी ये सलाह दिया जा रहा है कि वो अपने नए बागान सब्जियों के लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैंगन की ओर जाएंगे और ये जानना चाहेंगे कि बैंगन के अगर हम बागान लगाते हैं तो उनमें कौन कौन से कीट पतंगे जो हैं वो आ सकते हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम।
6: धन्यवाद। मैं पहले बताना चाहूँगा, बैंगन में हमारे बिहार में जो है मुख्यतर 3-4 कीड़े जो है सबसे ज़्यादातर डैमेज करते हैं। उसमें जो है बैगन के तना और फली छेदक है, जो जब हमर बैगन ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उसके 20 से 25 दिन के बाद से ये कीड़े का आक्रमण शुरू होता है। ये पहले तना में अटैक कर डैमेज करता है, तना के अंदर वो जो है छेद करके उसके अंदर घुसता है, जब एक से जब उसका पिल्लू निकलता है उसके बाद फिर वो होल पहले शुरू में जो है बहुत छोटा रहता है, बट जब मैच्योर होता है लार्वे जो पिल्लू जो है वो निकल के फिर फ्रूट में डैमेज करता है। जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है, फल का अवस्था होता है तो फल में वो डैमेज करता है। ये पिल्लू जो है देखने में थोड़ा सा हल्का सा उजला और भूरा कलर का मिक्सचर है और जो उसका हेड है जो उसको बोलते हैं वो जो है भूरा कलर का होता है और ये जो है दोनों तना को भी एवं फल को भी ये छेद करते हैं। किंतु इसका जो एडल्ट है जो संपूर्ण अवस्था है ये डैमेज नहीं करता है, किंतु इसका जो इमैच्योर जिसको हम लोग पिल्लू बोलते हैं इसको ज़्यादा डैमेज करता है सब्जी में बैगन में। और ये डैमेज जो है लगभग 20-80% तक डैमेज करता है, रबी में भी डैमेज करता है। तो रबी फसल में थोड़ा सा कम करता है कंपेयर अगर किया जाए हम लोग खरीफ बैगन और रबी में अगर बैगन लगाए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सबसे मुख्य कीट है जिसको हम लोग बोलते हैं हड्डा बीटल, ये शुरू के टाइम में ही ज़्यादा डैमेज करता है। जब बैगन का 2-3 पत्ती के समय आता है इसमें ये क्या, ये बैगन का पत्ती को जो है नोच के इसको पूरा उसका जो हरा वाला पोर्शन पीला हरा वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा डैमेज करके ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है और उसमें जो पत्ती में जो वेंट्स वगैरह रहता है वही से बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा। जब बैगन का 2-3 लीप का स्टेज रहे उसी समय हमको इनको अच्छा से कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद तीसरा जो कीड़ा है ये है बैगन का जैसिड बोल सकते हैं हम लोग, ये पूरा पीला का हरा कलर का होता है, बहुत छोटा होता है और बैगन के पत्ती के निचले भाग में ये ज़्यादातर देखा जाता है। ये अंडा भी उसी के अंदर ही देता है, अंदर जो बैगन के नीचे वाला पत्ती में, और ये बैगन को बैगन से जो है पत्ती से रस चूस के इसको कंप्लीट जो है एकदम ड्राई कर देता है। जो पत्ता जो आहिस्ता इसका अंदर जो क्लोरोफिल रहता है बैगन के पत्ती में ये पूरा ख़त्म करके इसको भूरा कलर का आकार कलर में आ जाता है। पहले पीला करते हैं फिर भूरा कलर होके फिर पत्ती गिर जाता है और ये वायरस नामक एक बीमारी भी फैलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ बेंजर। ये कैसे होते हैं देखने में, जब भी ये वायरस बीमारी आपके खेत में आएगा तो बैगन का जो नॉर्मल जो हाइट होता है उससे वो छोटा हो जाएगा, उसमें ना फल लगेगा ना फूल लगेगा, और बैगन का जो जितना भी ब्रांचेस आता है उसमें छोटा छोटा छोटा छोटा जो है जो पत्ती है छोटा छोटा हो जाएगा, और वो ऊपर की तरह मुड़ थोड़ा सा मुड़ जाएगा, और उसमें कोई फूल भी नहीं लगता है, कोई फल भी नहीं लगता, और उसका पत्ती का जो कलर है जो नॉर्मल हमारा बैगन का पत्ती का कलर है उससे ज़्यादा डार्क जो है डार्क हरा कलर का पत्ती आता है। तो ये जो है बहुत भयंकर बीमारी है, ये अगर आपके खेत में आ जाता है तो आपको तुरंत जो है आपको खेत को वो बीमारी से मुक्त करना पड़ेगा। और उसके बाद भी कुछ और छोटे छोटे कीड़ा है जिसे हम लोग बोल सकते हैं सादा मक्खी बोल सकते हैं बैगन का, ये भी डैमेज करता है, ये भी निचले वाले पोर्शन के बैगन के पत्ती के नीचे वाले पोर्शन पे रहता है, ये भी शुरू के टाइम में ही डैमेज करता है मैक्सिमम। ये जब डैमेज करता है जो पत्ती का फिर वही कलर चेंज हो जाता है, और बैगन का पत्ती का कलर जो है ये पीला कलर का हो जाता है फिर भूरा कलर का हो जाता है, तो इससे भी हमको सावधानियां बरतना पड़ेगा। यही सब जो है बैगन का मुख्य कीट जो है हमारे इधर लगता है।
5: अच्छा, यहाँ पर आपने बताया डॉक्टर साहब कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं इन कीट पतंगों से, तो अब जो समेकित अगर हम इसके समाधान के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए खासतौर पर बैंगन के लिए?
6: हाँ, हम लोग अगर समाधान करने के जाए बेचा हम शुरू से बताना चाहेंगे हम कैसे बैगन का समाधान करेंगे। जैसे शुरू में हम आपका आप लोगों को बताएं जो बैगन का जो जैसीड है और सादा मक्खी है ये शुरू के समय में ज़्यादा लगता है, और जो दो से तीन पत्ती में हड्डा बीटल लगता है।
5: अच्छा।
6: जो अगर हम बीज शोधन करके अगर हम लगाए तो ये हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है जैसे जैसीड हो गया सादा मक्खी हो गया ये जो है 20 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, और नर्सरी में भी हम जब इसको बुआई करेंगे तब भी कोई दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारा जो है कीट जो फसल में जो कीटनाशी का प्रभाव भी कम होगा, और हमारा फसल में जो फार्मर फ्रेंडली जो बंधु कीट है इसका भी नंबर बढ़ेगा, और डिजीज़ भी हमारा कम है, मतलब तो रोग भी जो है हमारा कम आएगा। तो ये हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा। शुरू से हम लोग बीज शोधन करें, बस सीडलिंग डीप मतलब जो सीडलिंग जो नर्सरी से आप मेन फील्ड में जब रोपाई करेंगे तो सीडलिंग को अगर इमिडाक्लोपीड बथायोमिथाक्साम नामक जो दवा है इमिडाक्लोपीड का गौचो और थायोमिथाक्साम नामक एक तरह का दवा है, ये दवा अगर 3 ml और 3 ग्राम 15 लीटर सॉरी 5 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप इसको डीप कर सकते हैं। अगर कम मात्रा में बनाना है तो इसका मात्रा है 1 gram/1 ml प्रति 3 लीटर पानी। अगर स्प्रेयर में लेना है तो 15 लीटर का नैपसैक स्प्रेयर में 5 ग्राम 15 लीटर स्प्रेयर में आप घोल कर सकते हो। तो हम इसको बीज शोधन जो है हम उसको नर्सरी से मेन फील्ड में लगाने के बाद हम इसको सीडलिंग डीप करके भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा जो चूसने वाले कीड़ा से हम 25 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा हड्डा बीटल के बारे में आप बताएं, जब हम 2 से 3 लीफ की स्टेज में हैं वो मैक्सिमम डैमेज करता है, अगर वो एक बार डैमेज मैक्सिमम कर देंगे तो फिर उसमें फल भी नहीं बनेगा फूल भी नहीं आएगा और वो ग्रोथ भी बंद हो जाएगा, तो इसका ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम अगर समेकित प्रणाली में जाए तो हम जानते हैं हमारे गाँव में जो है राख मिलता है, राख मतलब जो जलावन करने के बाद जो रेसिड्यू रहता है उसको अगर हम कलेक्ट करके उसको अगर हम भुरकाव करें पत्ते के ऊपर, भुरकाव करने के बाद हल्का सा मिट्टी का तेल डाल दे, इसलिए डाल दे जो वो उसके ऊपर बना रहे, नहीं तो कभी कभी ये होता है बारिश के समय पे वह हल्का जो संडी के समय पे जो ड्यू जो पानी गिरता है उससे जो है वो फिर पत्ती में सटके नहीं रह सकता है, तो इसी के लिए हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसमें अगर डाल देंगे तो ये जो है हमको कोई भी कीटनाशी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और हमारा जो पत्ती जो है और हमारा बैगन का जो फसल है कीटनाशी मुक्त रहेगा, और इस तरह से हम समेकित प्रणाली से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके गाँव में नीम का पेड़ है, नीम का पत्ती आपको मिलेगा, अगर नीम आधारित कोई दवा अगर आप इस्तेमाल करना चाहे अगर बाजार में उपलब्ध है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ना मिले तो नीम का पत्ती जो है आप पेड़ से तोड़ के 400 से 500 ग्राम पत्ती मिक्सचर ग्राइंडर में उसको क्रश करके उससे जो निष्कास निकलेगा उसको एक उजला कपड़ा में पोटली बनाकर एक लीटर पानी एक मिट्टी के घर में घड़ा में व कोई भी बर्तन में आप रख के उसको ओवरनाइट जो एक रात तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन देखिएगा जो पानी का पूरा कलर चेंज हो जाता है, निष्कास से जो पानी में जो मिल गया उससे जो जो आपको जो जो बना जो नीम का सॉल्यूशन बना वो आप एक एक लीटर का पानी का जो बॉटल मिलता है उसमें आप उसको आप स्टोर कर गए, स्टोर करके उसी से 5 ml एक लीटर पानी के दर से आप छिड़काव करें। अगर 15 लीटर का नेफ्सट्रक स्प्रे है तो 75 ml 75 ml का जो है आप लेके उसको छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको कोई कीटनाशी का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और हम जो है समेकित कीट प्रबंधन के और भी बढ़ सकते हैं, तो इससे बहुत हद तक हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप केमिकल में भी जाना चाहते हैं तो केमिकल के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक केमिकल है बहुत ही सस्ता है जिसको हम लोग बाज़ार में क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन जो नाक के नाम से मिलता है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो मात्रा है 1 ml एक लीटर पानी में आप घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। ये हो गया जो चूसने वाले कीड़ा और जो चाटने जो चूसने और चाटने वाले। अब जो सबसे खतरनाक जो कीड़ा है बैगन का, तना और फली छेदक। तना और फली छेदक के लिए हमको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, इसलिए बैगन जो है हम डायरेक्टली इसको खाते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों को दिमाग में ये रखना पड़ेगा कीटनाशी का छिड़का जितना हद तक कम करें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो शुरू में हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू में हम आपको जैसे नीम आधारित दवा के बारे में बताएं, आप नीम आधारित दवा का अगर बाज़ार में मिले आप उनका छिड़काव कर सकते हैं। नीम के पत्ती से बना जो जो सॉल्यूशन बनाए हम उसको 5 ml 1 liter पानी में घोल करके 7 दिन के अंतराल में 25 से 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप उसके अंदर छिड़काव करने से ये जो है रिपेलेंट का काम करेगा। इससे क्या होगा, जो हमारे कीड़े का आक्रमण कम होगा। और हम फेरोमोन ट्रैप जो है बाज़ार में उपलब्ध है, फेरोमोन ट्रैप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं आपके खेत पर। इससे क्या होगा, जो मेल जो मक्खी होता है वो मक्खी सोचेगा उसका फीमेल उस ट्रैप के अंदर है, वो उससे मेटिंग करने जाएगा और उसके अंदर वो फंस के मर जाएगा। इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन हमारा जो बैगन का तना और फली छेदक का पॉपुलेशन है ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा और इससे हमारा कंट्रोल भी बहुत हद तक हो जाएगा। ये तो हुआ समेकित कीट प्रणाली। अगर हम केमिक बायोपेस्टिसाइड भी इसके अंदर हम बताना चाहेंगे, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस नामक एक बायोपेस्टिसाइड है जो बैक्टीरियासाइड बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1 ml 1 liter पानी में बाजार में BT करके नाम से मिलता है, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस भारत कुर्सटाकी के नाम से मिलता है, इसको हम लोग बाजार से खरीद के इसको भी 1 ml 1 liter के दर से पानी के दर से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ये भी समेकित कीट प्रणाली में कर सकते हैं। और दो बायो इंसेक्टिसाइड्स है, अगर आपको लगे जो नहीं मात्रा 10% to 15% डैमेज से ज़्यादा हो जा रहा है हमारे विल में, इस समय जो है आप दो बायो इंसेक्टिसाइड है, एक है स्पाइनोसेट जो बाज़ार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, इसका मात्रा जो है 2 liter पानी में 1 ml, और एक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाज़ार में प्रोक्लेम के नाम से मिलता है जिसका मात्रा है 5 liter पानी में 2 gram। तो ये दोनों में से कोई भी मिल जाए, थोड़ा सा ये दो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है किंतु ये दवा तभी आपको स्प्रे करना पड़ेगा जब आपका खेत में कीड़े के आक्रमण 20% to 30% से ऊपर डैमेज कर रहा है तब, नहीं तो हम जो आपको समेकित कीट प्रणाली बताए जिसमें आपको नीम का नीम लीव्स कर सकते हैं, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस का स्प्रे कर सकते हैं और फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं तभी आप कर सकते हैं। और ये भी दोनों बायो इंसेक्टिसाइड है। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छा दो केमिकल पेस्टिसाइड है, इस एक जो नाम है फ्लूबेंडियामाइट जो फेम करके दवा के नाम से आता है, ये जो है 1 gram/3 liter पानी में आप घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा जो है लैम्डा साइहैलोथ्रिन जो कैराटे के नाम से आता है, लैम्डा साइहैलोथ्रिन नामक दवा ये भी बहुत अच्छा है, ये बैगन के तना फली तना छेदक के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसका भी यूज़ करते हैं, इसका दाम थोड़ा सा कम होगा। फेम नामक जो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है किंतु ये ही दवा आपको कब करना पड़ेगा, जब आपका आक्रमण ज़्यादा होगा तभी आपका छिड़काव करना पड़ेगा।
5: तो इस तरीके से आप बैंगन के कीट से छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप राख का छिड़काव कर सकते हैं उस पर किरासन तेल डालकर। और इसके अलावे जो है, अगर सावधानियों की बात करें तो आप नर्सरी से जैसे ही उसे पौधे रोपाई के लिए ले जाते हैं तो बीज शोध करके ही ले जाएं, अन्यथा नहीं ले जाएं, क्योंकि डर रहता है कि उसमें कीट पतंगे भी लग सकते हैं। इसके अलावे अभी बात आ रही है डॉक्टर साहब कि हम टमाटर की जो है रोपाई वो कैसे करें। अभी फिलहाल टमाटर की रोपाई का सीज़न भी है, अभी सलाह दिया जा रहा है किसान भाइयों को कि आप टमाटर की आराम से रोपाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सावधानी भी बरतना है। और उसमें सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि कीट पतंगों से कैसे बचा जाए। तो हम जानना चाहेंगे टमाटर खासतौर पर इस पौधे में जो कीट पतंग लगते हैं उनके बारे में और वो किस तरीके से इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं।
6: टमाटर में हमारे बिहार में मुख्यतर 3-4 तरह के कीड़े हैं जिसमें ज़्यादा समस्या दिखाई देता है। शुरू के टाइम में जो सादा मक्खी, जिससे एक वायरस डिजीज़ जो हम लोग बताते हैं टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, मतलब पत्ता ऊपर की तरह कुकड़ी हो जाता है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। ये बीमारी है ये सादा मक्खी नामक कीड़े से फैलता है। ये सब शुरू में ही सबसे प्रॉब्लम होता है। इसके छोड़ के टमाटर के सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है टमाटर फसल को वो है फली छेदक। वो जो है अंतिम अवस्था में आता है, जब फल आना शुरू होता है उस समय जो है फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, तो वो भी बहुत ही समस्या। तो फली छेदक को अगर हम लोग कैसे पहचाने, तो हम जब भी देखेंगे टमाटर के फल में छोटा सा छेद किया हुआ रहता है, जब भी उसका आक्रमण होता है उसको अगर हम तोड़े फल को, तो उसके अंदर से एक पिल्लू, तो हरा कलर का पिल्लू जो है निकल के आएगा। तो वो सबसे ज़्यादा बैगन में जो है 20-30% तक डैमेज करता है अगर हम बैगन लेट में लगाएं। अगर हम बैगन अक्टूबर से नवंबर के महीने में लगा देते हैं और हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च तक हो जाता है हमारे, उस केस में हम लोग देखते हैं जो बैगन में फली छेदक का आक्रमण कम है। अगर बैगन हम लोग लेट लगाते हैं, लगभग नवंबर के एंड दिसंबर में लगाते हैं और हार्वेस्टिंग हम लोग मार्च के मिडिल से अप्रैल तक करते हैं, तो उस फसल में हम फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादातर देखते हैं। ये फली छेदक छोड़ के जो तीसरा जो हमारा कीड़ा है, जो हम लोग टमाटर का लीफ माइनर कहते हैं, जो पत्ता में जो है सांप जैसा जो है अपना दाग छोड़ के जाते हैं, और ये भी जो है बहुत ही हद तक डैमेज करता है, किंतु हमारा फल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, किंतु टमाटर का पत्ती के ऊपर बहुत हद तक ये डैमेज पहुँचाता है। तो ये तीन जो है मुख्य कीड़ा है, टमाटर का सादा मक्खी, टमाटर का फली छेदक और टमाटर का लीफ माइनर। और माइनर अगर उससे भी अगर हम डैमेज अगर कम करें, इसके बारे में अगर हम बताना चाहेंगे, तो टमाटर में माइट का भी, मकड़ी जिसको बोलते हैं, माइट का भी समस्या है। और इसमें जो है पत्ता जो है टमाटर का नीचे की तरह मुड़ने लगेगा। जब हम बताएं सादा मक्खी जब आक्रमण होगा तो ऊपर की तरह मुड़ेगा, किंतु जब मकड़ी व माइट का आक्रमण होता है तो नीचे की तरह मुड़ता है। तो ये भी जो है बहुत हद तक डैमेज करता है टमाटर के पत्ते के शुरू के समय में।
5: अच्छा, तो ये हो गई बातें कीट की, और अब इसका समाधान कैसे करें हमारे किसान भाई, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम।
6: समाधान के लिए पहले ही हम बताना चाहेंगे आपको, शुरू से ही आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप बीज शोधन से शुरू करते हैं तो आपको जो बैगन टमाटर में जो वायरस बीमारी है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जिसको हम कहना चाहेंगे, इससे आप बहुत हद तक जो है आप निष्कास पा सकते हैं। इसमें जो है आपको जो है इमिडाक्लोपिड नामक दवा, जो गौचो करके नाम से आता है, 5 ग्राम प्रति केजी सीट, थायमिथक्सम बा एक तरह नामक दवा जो आता है वो भी 5 ग्राम प्रति केजी सीट के दर से आप इसको बीज शोधन कीजिए। बीज शोधन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम आपको ये थोड़ा सा बता दें। एक पॉलीथीन जो है आप मिट्टी में बिछा दीजिए और सीट को फैला दीजिए पॉलीथीन के ऊपर, और पॉलीथीन में थोड़ा सा हल्का सा जो है बीज के ऊपर नमी के लिए थोड़ा सा पानी का हल्का सा छिड़काव करें, और जो इमिडाक्लोपिड नामक दवा और थायमिथक्सन का जो पाउडर हम बताए वो पाउडर पूरा बीज में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करके आप हाथ में पॉलीथीन पहन के, खाली हाथ में नहीं, हाथ में कुछ पहन के, पॉलीथीन पहन के या कुछ भी ग्लव्स पहन के आप उसको अच्छा से मिला दीजिए। मिला के एक पूरा रात छोड़ दीजिए, अगले दिन बा अगले से एक दिन और छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन जाके आप इसको जो है सोइंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपको शुरू के समय में जो आपका वायरस नामक बीमारी का जो समस्या है, ये समस्या आपके खेत पे नहीं आएगा। ये बहुत हद तक जो है आपको खेत में कंट्रोल भी कर देगा और कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव भी नहीं करना पड़ेगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है शुरू के 20 से 25 दिन के बाद अगर बीज शोधन करते हैं तो 30 दिन और 40 दिन के अंतराल में, मतलब 10 दिन के इंटरवल में, 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप दो छिड़काव, कीड़ा खेत में थोड़ा भी रहे तब भी आप कर सकते हैं। इमिडाक्लोपिड नामक दवा है, वो एडमायर व कन्फिडर के नाम से मिलता है, 1 ml 3 liter पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। वा आप जो है थायोमिथोक्साम, जो एक तरह नामक दवा है, इसका भी जो है आप 1 gram 3 liter पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर समेकित कीट प्रबंधन के तरफ आप जाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा, जो ये सादा मक्खी जो है, जो वेक्टर है जो बीमारी का, जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है, इसके लिए हम लोग योलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। योलो स्टिकी ट्रैप ये है, आप कोई भी पीला कलर का कागज व पॉलीथीन जो है, आप एक पिच बोर्ड जो है, बच्चे लोग जो पढ़ता है वो पिच बोर्ड को, उसको उखाड़ के पिच बोर्ड के दोनों तरफ जो पीला कलर का कागज साट दीजिए, साट के उसके अंदर जो है ग्रीस और गोंद का मिक्स करके, ट्रांसपेरेंट गोंद होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट गोंद और ग्रीस का जो है प्रोलेप मिक्स करके उसको ब्रश से इससे दोनों साइड में आप उसका प्रोलेप लगा दीजिए। लगा के जो है आप एक जो बांस का ये मिलता है, स्टिक मिलता है, उसको जो है आप गाड़ के जो फसल का जो हाइट होता है, जो हमारा पौधा का जो हाइट है, उसी हाइट के अनुसार आप अपना जो ट्रैप जो बनाए, उस ट्रैप को आप जो फील्ड खेत में लगाइए। ऊँचा, ज़्यादा ऊँचा भी नहीं लगाना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाना, जो उसका हाइट है फसल का वही सिमिलर हाइट में आपको लगाना है। इसलिए लगाना है, जो हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है वो ज़्यादातर ऊपर उड़ नहीं पाते हैं, वो बहुत ही वीक है, उड़ नहीं पाते, तो इसीलिए वो सिर्फ हवा के माध्यम से ही दूसरे जगह पे जा सकता है। तो ये जो हम येलो स्टिकी ट्रैप बताए, जो पीला कलर का ट्रैप बताए, इससे क्या होगा, जो हमारा सादा मक्खी उसमें अट्रैक्ट ज़्यादा होगा और उसमें जाके वो फंस जाएगा। एक बार जब उसमें फंस जाएगा, उसके गोंद और ग्रीस के वजह से वो उधर से निकल नहीं पाएगा, उसी में वो मर जाएगा। तो इससे जो है बहुत हद तक हम पॉपुलेशन जो है हमारा सादा मक्खी का कंट्रोल कर सकते हैं। और शुरू में जो है आप नीम आधारित, आपको हम बताए थे नीम आधारित कोई भी दवा, बन निम्बिसिडिन हो, निमाजोल हो, एचूक हो, कोई भी दवा अगर आपको बाज़ार में मिले वो कर सकते हैं। बा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, नीम का बीज को मिक्सचर ग्राइंडर में क्रश करके उसका 5% सॉल्यूशन बना के 5 ml 1 liter पानी में घोल करके भी हम छिड़काव कर सकते हैं। पर नीम का पत्ती से भी हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो है हम कीट बताए, कीड़े के बारे में बताए, जो टमाटर का फली छेदक है, फली छेदक के लिए हम लोग शुरू से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जब भी हम लोग जिस फील्ड में लगाना है उस फील्ड को अच्छा से जुताई करना चाहिए। इसलिए जो कीड़ा है, कीड़े का जो इमैच्योर जो अवस्था है, वो एक इमैच्योर स्टेज जो है वो सॉयल जो मिट्टी के अंदर भी रहता है। अगर हम उसको अच्छा से प्लाउइंग करेंगे तो वो जो है सूर्य के सामने जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसका पॉपुलेशन भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो प्लाउइंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो हम टमाटर में हम ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप क्या मतलब जो है, जो कीड़ा टमाटर छोड़ के दूसरे क्रॉप में भी अट्रैक्ट हो। उससे क्या होता है, जो हमारा जो मेन क्रॉप टमाटर है वो बच जाएगा। जो ट्रैप क्रॉप है, ट्रैप क्रॉप के ऊपर ही हम दवा का छिड़काव करेंगे तो मेन क्रॉप में कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होगा। तो ये ट्रैप क्रॉप का नाम है मेरीगोल्ड, गेंदा जिसको हम लोग बोलते हैं। गेंदा का जो है 25:2 row, मतलब 25 row टमाटर, 2 row गेंदा, 25 row टमाटर, 2 row गेंदा, ये लगा के हम जो है अपना पेस्ट जो है जो हम बोले पिल्लू हेलिकोबर्फा, वो हम गेंदा पे शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज गेंदा का जो फूल है वो जो पीला कलर का होता है, इसमें वो अट्रैक्ट होता है और उसमें वो शिफ्ट हो जाए, तब हम गेंदा में स्प्रे कर से जो हमारा टमाटर जो मेन फसल है इसको पेस्टिसाइड के लोड से बचा सकते हैं। ये एक तकनीक है समेकित कीट प्रबंधन का। दूसरा जो समेकित कीट प्रबंधन का तकनीक है, हम बताए थे फेरोमोन ट्रैप के बारे में, फेरोमोन ट्रैप भी आप लगा सकते हो। फेरोमोन ट्रैप का नाम है हेलिलियो। हम लोग अगर मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग मतलब कब हमारे खेत में कीड़ा है, इसके अगर हम लोगों को जानना है तो इसके लिए हम लोगों को एक हेक्टर में 12 ट्रैप लगाना पड़ेगा 200-200 मीटर के दूरी में। उससे क्या होगा, जो उसका एडल्ट का जो एडल्ट है, पिल्लू का जो एडल्ट है, वो उसमें फंस जाएगा। उससे हमको पता चलेगा जो हमारे खेत में जो है हेलिकोबार्फा का इन्फेस्टेशन शुरू हो चुका है, तो हम लोगों को सचेत रहना होगा। और उसके बाद हम लोगों को अगर इन्फेस्टेशन लेवल जो है 5% 5% 10% फ्रूट डैमेज से ज़्यादा हो, तो हमको समेकित कीट प्रणाली में से एक दवा आता है HANPV, उसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबार्फा आर्मीजेरा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये नामक दवा का जो है हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से बहुत 70-80-90% तक हमारा कीड़े का जो है कंट्रोल हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, तो हमको कोई रासायनिक दवा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसान बंधु रासायनिक दवा में भी जाना चाहता है तो रासायनिक दवा के लिए हम बता देते हैं, जो एक दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्साकार्प, जो बाजार में एवांट करके नाम से मिलता है, उसका मात्रा है 2 लीटर पानी में 1 ml इंडोक्साकार्प एवांट, ये एक दवा है। दूसरा जो दवा है ये है लैम्डासाइलोथ्रिन, जो बाजार में कराटे के नाम से मिलता है, ये शुरू में आप दे सकते हैं, इसका महंगा भी नहीं है ज़्यादा। आप इसे अगर आपका कीड़े का आक्रमण ज़्यादा हो गया, अगर लगता है जो नहीं कीट जो है कीटनाशी अच्छा कोई कीटनाशी देना पड़ेगा जिससे कंट्रोल और कम हो जाए, इसके लिए हम बताना चाहेंगे थोड़ा कॉस्टली दवा है, जैसे स्पाइनोसेट जो हम बताना चाहेंगे, स्पाइनोसेट जो बाज़ार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, 2 लीटर पानी में 1 ml के दर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। फ्लूबेंडियामाइड जो फेम है, फेम भी 1 ग्राम प्रति 3 लीटर के दर से 15 लीटर पानी में 5 ग्राम के दर से आप छिड़काव कर सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा दवा है जो कोराजेन के नाम से मिलता है, ये भी जो है 3 लीटर पानी में 1 ml के गुना के दर से घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। ये दो जो लास्ट दवा बताए, फ्लूबेंडेमाइड फेम और कोराजेन, ये थोड़ा सा महंगा दवा है। जब आपका खेत में आक्रमण जो है 20-30% के ऊपर चला जाएगा तभी इस दवा का छिड़काव करें, अन्यथा आपको जो पहले जो हम इंडोक्सोकार्प के बारे में बताएं, लैम्डासाइलोथ्रिन के बारे में बताएं, इसी दवा का आप छिड़काव करें। और अंतिम जो मैं कीड़े के बारे में बताया था, टोमेटो का लीफ माइनर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पत्ते में जो सांप के जैसा दाग छोड़ देता है, इसके लिए जो है आप समेकित कीट प्रबंधन में नीम आधारित दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और रासायनिक में क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा है, क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और जो है आप प्रोफेनोफॉस नामक दवा है जो कुराक्रॉन के नाम से मिलता है, ये भी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं।
5: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि लगभग सभी सब्जियों में कीट और समाधान एक समान है, लगभग, तो इसलिए आप इस तरीके से इन दवाइयों का छिड़काव जो डॉक्टर साहब ने बताया, उन दवाइयों का छिड़काव करके या फिर कुछ सावधानियों को अपनाकर अपनी सब्जियों को स्वस्थ रख सकते हैं, यानी कि इन कीटों से दूर रख सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे आगे मुलाकातें होंगी अगले विषय के साथ, अगली जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे 90.8 FM ग्रीन पर। तब तक सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
7: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
7: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
3: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
5: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
6: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
5: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थाई पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थाई पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
6: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
5: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और चीज जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
6: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में

को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं। खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है, तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM, CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवा सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपनी जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई, लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे इसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
12: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
11: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
13: हर घर सूर्य घर।
14: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
15: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
14: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
15: आपकी सेहत की बातें,
14: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
15: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
14: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
15: वो कहाँ पर?
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
15: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
16: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
17: जी
16: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
17: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
16: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
18: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
19: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी।

सामान्यतः धान की फसल में वर्षा न होने पे या कम होने पे, जब मृदा में नमी सेचुरेशन की अवस्था से कम होने लगे, मतलब संतृप्त अवस्था से कम होने लगे, तो सिंचाई करना आवश्यक होता है। वर्षा के पानी के अच्छे उपयोग के लिए हमें चाहिए कि धान की खेत की मेड़ खूब मजबूत होनी चाहिए। अब हम सिंचाई की विधियों की बात करें तो एक विधि है कंटिन्यूअस फ्लडिंग की, जहाँ पे जल प्लावन की स्थिति हम लगातार बनाते हैं। इस विधि में खेत में सदैव पानी को हम भर के रखते हैं ताकि मृदा संतृप्त रहे। मृदा अपचयन के कारण खाद्य तत्वों की उपलब्धता इस स्थिति में बढ़ जाती है और खरपतवार नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण है जो कि फसल का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। मृदा की सतह पे हम सामान्यतः 2.5 से 5 सेंटीमीटर पानी को रोपनी से फसल के पकने तक की अवधि के लिए हम इसमें रखते हैं। विशेष परिस्थिति में जहाँ जीवांश की मात्रा अधिक होती है वहाँ और जहाँ जल निकास नहीं होती है, वहाँ अगर ज़्यादा दिन तक ठहरा हुआ पानी रहता है तो उस स्थिति में पौधों में कुछ रोग लगने के कारण होते हैं। इस स्थिति में सामान्यतः देखा गया कि पानी

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: नमस्कार, मैं अजय कुमार, रेडियो प्रतिनिधि 90.8 एफएम ग्रीन से। मैं आज इब्राहिमपुर की ओर हूं और इब्राहिमपुर में व्यक्तियों को पोषण से संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं, यह जानकारी एकत्रित करने का कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आज एक भैया जी से पोषण से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। तो भैया जी, आप पोषण के बारे में।
2: पोषण वह है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण कर अपना लोग अपना पाचन, अपना शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, जिससे आदमी को काम करने में मदद मिले।
1: तो पोषण को हम किस किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं?
2: पोषण को हम बहुत सारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम फल, हरी सब्जी, फिर साबुत अनाज, प्रोटीन, वसा, इसे सब खाकर हम उसे हम अपने उपयोग कर सकते हैं उस सबका।
1: अच्छा, मान लिया जाए कोई व्यक्ति, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति दवाई वगैरह से भी अपना पोषण को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति मान लिया जाए पोषण को दवाई के अलावा, वो किन माध्यम से प्राप्त कर सकते?
2: पोषण दवाई के माध्यम, दवाई के अलावा मनुष्य को अपना फल खाए, सब्जी खाए, और फिर आपका दाल दूध पिए, और फिर उसके बाद वो प्रतिदिन सुबह सुबह योगा करे, तो उससे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा भैया जी, आप ये बताएं कि मान लिया जाए अगर व्यक्ति को सही से पोषण ना मिले, आम व्यक्ति को, मान लिया जाए जो भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर ग्रामीणों को या फिर व्यक्तियों को सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
2: हृदय रोग हो सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकता है, कुपोषित हो सकता है वो, जैसे इसी तरह के कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उसके शरीर में।
1: जी, मान लिया जब महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
2: उन्हें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, महिलाओं को उन्हें खून की कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है, बराबर संक्रमित हो सकती है वो, हार्मोनल उसका असंतुष्ट हो सकता है, जिससे गर्भाशय या माँ दोनों बच्चों का, उस पर दोनों का बुरा असर पड़ेगा। उनके अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके अंदर जो पल रहे बच्चे हैं उन पर भी उनका असर पड़ेगा।
1: जी, मान लिया जाए इसी तरह से अगर मान लिया जाए पोषण आहार सही से बच्चों को ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?
2: बच्चों को ना मिले तो फिर उसे कई प्रकार के रोग, बौनापन, जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं उन्हें, और उन्हें कठिनाइयाँ बहुत सारे, बच्चों के लिए बहुत सारे कुपोषित हो सकते हैं रोग, जैसे एनीमिया, रतौंधी, ये सब बढ़ सकते हैं उन लोगों को।
1: तो अगर मान लिया जाए ये सब तो आपको पता है कि

0: लिए जैसा ऐसा होता है, अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले, स्त्रियों को ना मिले या फिर आम व्यक्तियों को ना मिले, तो ये समस्याएं होती है, ये जानकारी आपको है। तो इसी बीच आप अपना परिचय देंगे क्या?
1: जी हाँ, मैं सबौर बड़ी इब्राहिमपुर का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा नाम मानव है।
0: जी, तो मानव जी, आपसे ये तो आपने पोषण के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कि इस पोषण को सही से हम प्राप्त करते रहें, इसके लिए हमारे कृषि कॉलेज भी एक मुहिम चलाई है। उस मुहिम के अंतर्गत अपनी क्यारी अपनी थाली एक मुहिम है, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? इब्राहिमपुर से एग्रीकल्चर कॉलेज की ज्यादा दूरी भी नहीं है, 2 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा होगी, तो आपको अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में क्या जानकारियां हैं ये बताएं।
1: अपनी क्यारी अपनी थाली का उसका कहना है कि जैसे अभी आपके पास अगर ज़मीन है तो वहाँ पे अपना कुछ रोप दिए, अपना उगाइए, अपना खाइए, जिससे कि अनाज की कमी नहीं होगी, जिससे आदमी को बराबर पोषण मिलता रहेगा।
0: ये तो मान लिया जाए कि वृहत पैमाने पे आपने बताया, मान लिया जाए ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, उनको सभी को मान लिया जाए बहुत सारा जमीन नहीं होती है।
1: हाँ।
0: जब जमीन नहीं होती है तो वो अपना खेती तो नहीं कर सकती है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करे और कैसे अपनी क्यारी अपनी थैली को यूज कर सकता है? मान लिया जाए वो घर के आगे गार्डनिंग के लिए क्या करे, या फिर क्या उनके बारे में जानकारी है?
1: वो अपने बारे वो क्या करे, अगर जो वो नहीं कर सकते, अगर जो उनके पास अपना जमीन नहीं है तो वो दूसरे के अथी पे डिपेंड कर सकता है। अगर वो उगा रहा है तो अगर वो उसके पास है कि वो एक दूसरे
0: नहीं, अपनी क्यारी अपनी थाली का एक सीधा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि आपके आगे आंगन हो, बाड़ी हो, उसमें आप एक क्यारी के रूप में आप लगा सकते हैं। उस क्यारी में लगाएं और अपना जैसे कि सब्जी हो, फल हो, वो अपने आप आंगन में अगर उपजाते हैं तो वो आपको ऑर्गेनिक मिलती है, पूर्ण रूपेण आपको रासायनिक रहित मिलती है। ठीक है, उसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इनके लिए 90.8 FM ग्रीन आपका धन्यवाद करती है। मैं

0: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, और बात करें अपने बिहार के तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं, जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब, लोग किसान नाम सुनते ही ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में, गरीब, एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान, अगर बिहार की बात करें तो, परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूँ मुख्यतः, जो खरीफ की बात करें तो ज़्यादातर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पर आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूँ पर आश्रित हैं। और यहाँ बरसों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु, तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूं, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यावसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों, आज के टाइम में सारी विचारधारा ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा जमीन है, तो आप कुछ जमीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं, उस कंडीशन में अगर जिनके पास जमीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी, तो वो क्या कर सकते हैं? पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है। लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी ज़मीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा तो अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है। और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यवसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
5: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
6: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है। फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं, और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए कम, वहाँ पर पानी उपलब्ध है तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है, तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था आप बोल सकते हैं, आज वहाँ पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, वही धान गेहूँ पर आश्रित है, तो ऐसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गाँव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
5: तो सर, अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
6: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है, मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाएं, आपका मूल जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते हैं, कोई भी काम उसको बोलते हैं व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही, जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
5: और सर अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
6: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है, उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसी योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके लिए जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है। तो इसलिए सरकारी योजनाएं उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों नई फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है। फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है। तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे। आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा, आपको लकड़ी का हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, अब जो जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है। तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
5: जी, यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
6: जी जी हाँ।
5: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
6: जी देखिए, हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट, प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
5: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
6: देखिए एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है, जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उससे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियां हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत। अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाध में बोलते हैं, बाध बोलते हैं, खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला पूर्वी पुबारी बाध में है, पश्चिम बाध में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है। तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में आसान दिक्कत होती है, और छोटे खेत में आप एक खेत के लिए आप ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा। तो एक बड़ी समस्या है पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं, या तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है। और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
5: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं जो पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर जा रहे हैं उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
6: जी ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती। क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पर जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है। अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो एक 10 लोग मिलके एक टाइप का फसल उगाइए और वो 10 लोग मिलके एक जगह आप मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागवानी में आपका फल फूल आपका जो हाँ औषधीय पौधे, औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए। तो इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
5: जी तो सर जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
6: जी जी देखिए बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए। और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, खाना हो जाए, सालों भर के लिए हम उसे उतना उगा लें वो हो गया। लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो मूलतः लाभ आधारित है, हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है हमारा लाभ कमाना, आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है पारंपरिक खेती क्या है, उसके लिए छोटे जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए। तो यही सब अंतर है, पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
5: तो सर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
6: देखिए बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत महाराष्ट्र हो गया गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जलवायु अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे मैंने बताया वही एक बीघा में धान लगाइए वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हम 2 गुना की बात करें 2 गुना से बहुत ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियाँ जैसे हमने बात किया तो उस चुनौतियाँ सब जगह चुनौतियाँ हैं, जीवन में चुनौतियाँ हैं, खेती में आप किसी भी चीज़ में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियाँ हैं, लेकिन उस चुनौतियाँ उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो आखिरी जो है निष्कर्ष ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी
5: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सर आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि।
7: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
11: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
14: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
15: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
14: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
15: आपकी सेहत की बातें,
14: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
15: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
14: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
15: वो कहाँ पर?
14: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
15: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
16: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की

संभावना है सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90% और दोपहर में 60-80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8-10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 cm की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 cm की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे अनु। एक बार फिर आप सभी के बीच एक बहुत ही उपयोगी विषय लेकर हम आ चुके हैं। दोस्तों, हमारे भारत में और हमारे बिहार में बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है, लेकिन एक जो सबसे खास, जो देखने में तो सुंदर लगता ही है और उसकी विशेषताएं भी बहुत हैं, वो है स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही हम उसकी खेती के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करूँ तो बहुत ही कम जगह ख़ासतौर पर मैंने देखा है इसकी खेती, और इसीलिए लोग इसकी खेती को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इसकी एक विशेषता इस स्ट्रॉबेरी से है, वो है पोषण सुरक्षा। यानी स्ट्रॉबेरी की खेती से पोषण सुरक्षा कैसे हो सकती है और ये एक लाभदायक व्यवसाय हमारे लिए कैसे बन सकता है, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए है डॉक्टर रूबी रानी जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु। मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में क्यों की जानी चाहिए और पोषण सुरक्षा में उसका क्या अनुदान है, उपयोग है, कि स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का हमारा क्या उपयोग है, पोषण सुरक्षा इससे कैसे की जा सकती है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
0: तो मैम, सबसे पहले जब इसकी खेती की बात आती है तो हम ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे इतनी मेहनत करके लोग उगाते हैं, क्योंकि इस खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रॉबेरी को उगाई जानी चाहिए, लोगों ने सोचा?
1: यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है और किसानों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमारे स्ट्रॉबेरी जो है उसमें बहुत ही पोषण से भरपूर, या पोषण का कैप्सूल, न्यूट्रिटिव कैप्सूल आप इसको कह सकते हैं। अच्छा। हर तरह का न्यूट्रिशन है और जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटास, फोलेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फैट का ये अनुपात कम है और इसमें कैलोरी कम मिलती है।
0: अच्छा।
1: लेकिन ये फाइबर रिच फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स में बहुत ज़्यादा है। अब एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स का क्या मतलब है? ये जो तत्व होते हैं ये शरीर में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं।
0: अच्छा।
1: इसलिए स्ट्रॉबेरी के खाने से लोगों में रोग रोधी क्षमता बढ़ती है और बहुत से रोगों से आप इससे बच सकते हैं अगर इसका नियमित सेवन करें।
0: अच्छा।
1: इसमें जो कैलोरी है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो भी फैट कंटेंट थोड़ा मैम फैट कंटेंट है, मिनरल्स विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, फैट कंटेंट काफ़ी कम है और वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसलिए ये लो कैलोरी फूड है। आज सभी जो हमारे किसान भाई हैं, आम नागरिक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: होना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हमें ऐसा फल मिले जिसमें कि वसा की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य फलों की तुलना में कम हो,
0: एंटीऑक्सीडेंट्स
1: ज़्यादा हो, विटामिन मिनरल्स ज़्यादा हो, तो इस तरह का फल उन्हें चाहिए या इस तरह का खाद्य पदार्थ उन्हें चाहिए। तो स्ट्रॉबेरी में ये सारे गुण मौजूद हैं
0: जी,
1: तो इसलिए इसका पोषण का कैप्सूल बोला गया है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो मतलब इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से लो कैलोरी फूड है, फाइबर रिच फूड है, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल बहुत ज़्यादा है, सोडियम फ्री है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी फूड है। लेकिन विटामिन्स मिनरल्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, मैगनीज, मैग्नीशियम ये सफिशियंट मात्रा में है, इसलिए इस फल की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और ये फल जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत दूर से इसको लाया नहीं जा सकता है।
0: अच्छा।
1: जैसे कि हमारे पोषण तो बहुत है, जैसे कैसू नट है उसमें प्रोटीन बहुत है, अखरोट है, बादाम है, इसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इन फलों को, इन नट्स को हम बहुत दूर से क्योर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में रहते हैं।
0: अच्छा।
1: स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही कोमल फल है, इसका तुड़ाई के उपरांत इसकी अवधि जो उसको जो अच्छे कंडीशन में जब इसको बहुत कम दिन होता है, 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इसलिए ये आवश्यक है कि ये हमारे आसपास उगाए जाएं
0: जी,
1: तभी हमें ये मिल पाएगा वरना हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए आवश्यकता है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें।
0: तो दोस्तों मैम ने बताया कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैट कम है, और बस हमें यही तो चाहिए। आजकल लोग डाइटिंग भी करते हैं तो फल को ज़रूर शामिल करते हैं, और अगर आप उसमें स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अभी फ़िलहाल हम कोरोना काल में जी रहे हैं, जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के साथ कोरोना शामिल हो चुकी है ये महामारी, और इस समय कहा जा रहा है कि हमें ऐसे फल और सब्ज़ियाँ लेनी चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी को ज़रूर शामिल करें, और आपको हम स्ट्रॉबेरी से जुड़ी सारी जानकारियाँ देंगे। तो मैम ने जैसे कहा कि इसे बहुत दूर से नहीं लाया जा सकता, ये बहुत कोमल फल है, तो मैम बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है क्या?
1: बेशक बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है, हमने पिछले 10 साल में पर इस पर शोध किया। जब हमने शुरू किया था तो हमें भी विश्वास नहीं था कि यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमने इसका शोध किया तो मैंने पाया कि बिहार में इसका खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हालांकि ये फल जो है वो ठंडे जगहों का फल है, जैसे कि पहले ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में, सिक्किम में, आदि जगहों में उगाया जा सकता था, लेकिन अभी कुछ किस्में आई हैं और कुछ विशेष तकनीक की मदद से इसे हमारे प्रदेश जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जगहों में भी काफ़ी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए हमने शोध के उपरांत मैंने देखा कि बिहार में ये अच्छी तरह से उगाई जा सकती है और इसकी हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं।
0: मतलब पहले लोग ये घबराते थे कि गर्म वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये पहले जम्मू और कश्मीर में ही उगाया जाता था, तो यहाँ पर शोध के बाद पता चला है दोस्तों कि बिहार में इसका उत्पादन किया जा सकता है। मैम साथ ही आप इसके लगाने की विधि भी बता दें, और समय क्या है इसे लगाने की वो भी बता दें।
1: तो सब इसमें एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें पोषण तो भरपूर है ही है, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, जैसे कि इसका उपयोग सौंदर्य सामग्री बनाने में होता है, आइसक्रीम, कैंडी, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मांगते हैं तो उन सब चीज़ों में बनाता है, सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है, केक, आइसक्रीम, बहुत तरह से सॉफ्ट ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी का यूज होता है, और इस तरह से इसमें पोषण के साथ साथ इसके उपयोग
0: व्यावसायिक रूप
1: में बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही सुवासित सुगंधित फल है, इसका अलग ही एक एरोमा है, और जो कि इसका आकर्षित रंग के साथ साथ इसका एरोमा भी लोगों को अट्रैक्टिव करता है, साथ ही पोषण और बहुआयामी इसके उपयोग हैं, इसके कारण इसकी खेती बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि किसान इसके प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं इसको उगाने के लिए, क्योंकि ये 7 से 8 महीने में पूरा फसल तैयार हो जाता है, और इसका डिमांड ज़्यादा होने के कारण इसके प्राइस ज़्यादा हैं, और किसानों को ज़्यादा मुनाफा 7 से 8 महीने में प्राप्त हो जाता है
0: जी।
1: और अब आती है कि इसको लगाने की विधि
0: जी,
1: और इसका समय क्या है। तो हमने शोध के उपरांत पाया कि बिहार में इसको लगाने का समय अक्टूबर माह जो है इसको लगाने का सबसे उत्तम समय है, प्रथम सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अंत तक आप लगा सकते हैं, हालांकि इसको 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप अक्टूबर तक लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर 15 नवंबर के बाद आप लगाएंगे तो इसके उत्पादन में तेजी से वृद्धि कमी आ जाती है। अच्छा। क्योंकि उसको सही समय नहीं मिल पाता है उसको समुचित ग्रोथ का, और फूल खिलने लगते हैं इसके कारण कि छोटे पौधे में फूल खिलने से उत्पादन में कमी हो जाती है, गुणवत्ता भी सही नहीं रहती है। तो लगाने का उचित समय इसका अक्टूबर है,
0: अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से
1: आप 15 नवंबर तक लगा सकें, नवंबर तक बिल्कुल लगा दें, और 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी उत्पादकता में आपको कमी
0: मिलेगी जी।
1: अब मैं इसको पूछा जैसे कि अपने लगाने की विधि क्या है, तो इसको लगाते हम लोग रनर से, पौध से हम इसे लगाते हैं
0: जी जी।
1: इसके लिए जो है छोटे छोटे पौध आते हैं और इसके हम बीज से नहीं लगाते हैं, और ये पौध जो है हमारे रनर से एक पौधे से कई पौधे निकलते हैं उससे तैयार होते हैं, परंतु हमारे राज्य में अप्रैल महीने के बाद से इतनी गर्मी होती है कि ये पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें पौधों के लिए दूसरे राज्यों जहाँ ठंड प्रदेश हैं वहाँ से हमको उस पर निर्भर रहना पड़ता है, और ये पौधे 4 से 6 पत्तियाँ हों उस पौध में उसको हमको लगाना चाहिए, और लगाने के पहले पौधे को हम कार्बन डाइजीम के 0.2% के घोल में 5 मिनट तक डुबाते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके पौधे को लगाते हैं। तो ये भी लगाने की विधि और इसका लगाने का समय।
0: तो मैम इसके बाद उत्पादन तकनीक को भी हम जानना चाहेंगे, जब विधि की बात हो गई है और इसके बाद उत्पादन तकनीक को ना जाने तो थोड़ा अधूरापन रहता है, तो इसके उत्पादन तकनीक के बारे में भी बताएं थोड़ा।
1: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी इसका भूमि की तैयारी कैसे करें, इसका बेड कैसे बनाएं, इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालें और इसमें सिंचाई कैसे करें, और इसमें कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इनके बारे में मैं एक एक करके सबको आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी करने के लिए आप जैसे अक्टूबर में लगाना चाहते हैं तो उसके 10 से 15 दिन पहले एक गहरी जुताई कर दें खेत की। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी वैसे भूमि का चुनाव करें जहाँ जल जमाव नहीं होता हो।
0: अच्छा।
1: और मिट्टी जो है वो बलवाही दोमट मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, और वो क्षारीय मिट्टी ना हो, जैसे कि उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का चुनाव करें और वैसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल का जमाव नहीं हो और मिट्टी हल्की हो। इसका जिसका पीएच मान मिट्टी का 6.5 से 7 के बीच या 6 से 7 के बीच हो, 7 से ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का हम चुनाव करें
0: जी।
1: और चुनाव करने के बाद लगाने के समय के, यानी कि अक्टूबर में आप लगा रहे हैं या 15 अक्टूबर को लगा रहे हैं, तो उसके 10 दिन पहले आप उसकी ज़मीन की गहरी जुताई करें, उसके बाद एक हल्की जुताई करें। हल्की जुताई के समय उसमें आप कुछ खाद डालें, तो खाद की मात्रा जो है प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट, 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 25 से 30 किलो पोटास प्रति एकड़ आप हल्की जुताई के समय में डाल करके इसको जुताई कर दें। उसके बाद इसकी खेती, व्यावसायिक खेती जो होती है वो उठी हुई क्यारियों पे होती है।
0: अच्छा।
1: तो उस क्यारी को बनाने के लिए आप उसकी ऊंचाई जो है 30 से 35 सेंटीमीटर रखें और उसकी चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर तक आप रख सकते हैं और लंबाई आप अपने सुविधा अनुसार जितना चाहे रख सकते हैं
0: जी।
1: दो क्यारी के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से आपकी उठी हुई क्यारी तैयार हो जाएगी जो कि 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 1 से 1.25 मीटर चौड़ा हो और दो क्यारियों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर हो। एक क्यारी पे अगर आप 1 मीटर रखे हैं या 90 सेंटीमीटर तक चौड़ा रखे हैं तो आप 2 पंक्तियां लगाएं, अगर उससे ज़्यादा रखे हैं तो 3 और 4 पंक्तियां भी आप लगा सकते हैं। 4 पंक्तियां में थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए 3 पंक्तियां आप एक क्यारी पे लगा सकते हैं। पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखें
0: जी।
1: तो इस तरह से आप बेड पे 2 से 3 क्यारी
0: तैयार
1: कर सकते हैं और प्रति एकड़ लगभग 20 से 22 हज़ार पौधे की आवश्यकता होगी। अगर आप इसी तरह से लगाएंगे तो 20 से 22 हज़ार पौधे की आवश्यकता होगी।
0: अच्छा।
1: उसके बाद आता है कि हम इसको लगाने की विधि मैंने पहले बता दी, लेकिन अगर आप इसमें सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था कर सकें तो ये आपके लिए वरदान होगा
0: जी।
1: और ड्रिप सिंचाई पे आज जो है सरकार 90% तक अनुदान भी दे रही है, तो आप सरकारी सहायता प्राप्त कर आप ड्रिप सिंचाई का अपने खेत में लगा सकते हैं और ये जो कि काफ़ी वरदान होता है, इसके लिए बड़ी अच्छी खेती, उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है फलों की। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि किसान भाइयों आप ड्रिप सिंचाई का इसमें उपयोग जरूर करें
0: जी।
1: इसके अलावा पौधे लगाने के बाद ये इसकी जो खेती होती है, इसके जो फल होते हैं वो मूलतः जमीन पे सटे हुए होते हैं। जब निकलते हैं तो जैसे ही फल बड़ा होता है तो अपने भार से वो जमीन सतह पे सट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप, इसलिए मल्च या पलवार का उपयोग बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी और फल का संपर्क ना बने। ये फल चूंकि बहुत ही कोमल मुलायम होता है, लगातार अगर मिट्टी के संसर्ग में रहेगा तो ये खराब हो जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते हैं, बाजार में ले जाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मल्च बहुत ही आवश्यक है। मल्च आप पुआल का भी दे सकते हैं और प्लास्टिक का भी दे सकते हैं।
2: अच्छा,
1: तो प्लास्टिक का मल्च बहुत ही अच्छा देखा गया है इसमें। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की मल्च नहीं है तो आप धान या गेहूं के का जो भूसा होता है या पुआल होता है उसका भी उपयोग मल्च के रूप में कर सकते हैं। वो 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंचा मल्च होना चाहिए ताकि फल का संपर्क डायरेक्ट मिट्टी से ना हो और आपकी फल जो है परिपक्वता तक अच्छे कंडीशन में रहे और बाजार में ले जाने लग रहे। तो इस तरह से दो तकनीक, जो मल्च और सूक्ष्म सिंचाई, ये दोनों इसके लिए वरदान है। और जब आप बेड तैयार करते हैं तब उसमें जो है आप सूक्ष्म सिंचाई पहले बिछा दें, पौधे लगा दें, उसमें सूक्ष्म सिंचाई कर दें। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं आपने वहाँ वहाँ उतनी दूरी पर आप मल्च में छेद करके उस तरह से पौधे को व्यवस्थित कर दें
2: जी।
1: आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले बेड तैयार करके मल्च को फिक्स कर दें, फिर जितनी दूरी पर आपको बेड को तैयार करके पहले ड्रिप इरिगेशन लगा दें, फिर आपको मल्च डाल दें, मल्च फिक्स कर दें और जितनी दूरी पर आपको पौधे लगाने हैं वहाँ पर छेद करके थोड़ा सा होल करके वहाँ पर पौधे को आप फिक्स कर दें और ड्रिप से आपका पानी और पोषण सारा चीज ड्रिप के माध्यम से पौधे को मिलता रहेगा। तो ये हुई विशेष तकनीक।
2: अच्छा,
1: कि इसके उत्पादन में विशेष तकनीक है। इसके अलावा हमारे राज्य में दिसंबर के अंत में और जनवरी तक पाले का प्रकोप रहता है, उसमें बहुत धुंध रहती है, पाले का प्रकोप रहता है और पाले से बचाने के लिए आप छोटा पॉलीटनेल का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि पौधे जो है पाले से बच सकें। और पॉलीटनेल जो है उसकी ऊंचाई 65 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये पॉलीटनेल क्या है, एक छोटा पॉलीहाउस है, मिनिएचर है पॉलीहाउस का, जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर होती है। इसको बेड कवर या रो कवर भी बोलते हैं और इसकी ऊंचाई जो है 60 से 70 सेंटीमीटर तक, 65 से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये अगर आपको टनल बनाने के लिए जीआई पाइप का ना मिले तो आप बांस की करची पे भी पतली पॉलीथीन की सीट बिछा करके पॉली टनल बना सकते हैं। और जो कि आपके पास बहुत आयत में बांस तो हर गांव में उपलब्ध रहता है तो उस कमाची का उपयोग करके, बांस का उपयोग करके आप पॉलीटनल बना लें और पॉलीटनल पर पतली सी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उजले कलर की पॉलीथीन आप डाल दें। और ये जो है जब आपका पाला पड़ना शुरू हो जाए तब और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसको डाले रहें। इससे क्या होता है कि पौधा जो है पाले से बचा रहेगा और धूप उसके अंदर आती रही, ग्रोथ बढ़वार बढ़िया रहता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा पॉलीहाउस का इफेक्ट रहता है। पॉली जैसा पॉलीहाउस में उसका इफेक्ट रहता है पौधों का, उसी तरह से पॉलीटनेल का भी उपयोग है। साथ साथ ये पाले से भी बचाता है और ढके रहने के कारण कीट व्याधि का भी प्रकोप कम रहता है, उसी कारण की फल की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये विशेष तीन तकनीक जो है स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सूक्ष्म सिंचाई, पॉलीटनेल और मल्च। किसान भाइयों, अगर आप सूक्ष्म सिंचाई नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन मल्च तो मस्ट है। चाहे आप पुआल का मल्च दें, चाहे आप प्लास्टिक का मल्च दें, मल्च के लिए हमेशा काले पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन आती है, मल्च सीटू कहलाता है, और वो 1 मीटर और 1.25 मीटर के चौड़ाई में आता है और लंबा आप जितना चाहें एक रोल ले सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी जाती है। खासकर ये स्ट्रॉबेरी, सब्जियों आदि के लिए ही बनाया जाता है। तो इस तरह से मल्च आप का उपयोग करें। सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, अगर अरेंज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बिना उसकी भी खेती कर सकते हैं। टनल का भी उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, करना करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको मल्च का उपयोग तो करना ही होगा। तो ये है उत्पादन तकनीक। और लगाने के बाद जो है आप जो भी उसमें पोषण देंगे वो फर्टिकेशन के थ्रू देंगे, क्योंकि आप ड्रिप सिंचाई लगा चुके हैं और पौधा जो है मल्च के नीचे है तो आपको बाहर से आप नहीं दे सकते हैं, आप जो है इसको फर्टिकेशन के थ्रू दे सकते हैं। और फर्टिकेशन के लिए भी हमने शोध किया है, पौधे लगाने के 30 से 45 दिन बाद जो घुलनशील हमारा एनपीके है 20-20-20 का, उसका 25 ग्राम की मात्रा को चार भागों में बांट दें और प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम चार भागों में बांट करके और 15 दिन के अंतराल पे उसको चार बार दें, तो इस तरह से आपका जो है वो फलों की गुणवत्ता बनी रहेगी और आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा।
0: जी श्रोताओं, मैम ने आपको बताया कि उत्पादन की तीन विशेष तकनीक हैं, वो है मल्च, पॉलीटनल और साथ ही मैम ने बताया सूक्ष्म सिंचाई। मल्च जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये अपनाएं ही अपनाएं, और सूक्ष्म सिंचाई आप चाहें तो अपना सकते हैं, नहीं तो नहीं, और पॉलीटनल भी आप चाहें तो अपना सकते हैं, नहीं तो आपकी जो सुविधा है आप उसके अनुसार उत्पादन तकनीक को अपना सकते हैं। मैम, उत्पादन तकनीक के दौरान भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और अगर किसान भाइयों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं तो पहले से सावधान हो जाएंगे, उन सावधानियों के साथ वो उत्पादन तकनीक को अपनाएंगे ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए उन समस्याओं को ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
1: किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारे किसान, हमारे राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत लोग किसान लोग कर रहे हैं और हमारे पास उनकी समस्याओं के बारे में भी फ़ोन आते हैं और बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के दौरान किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कुछ इसमें फफूंद जनित रोग ज़्यादा लगते हैं, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा है उकठा रोग। कभी कभी देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो बीच बीच में पौधे गलने शुरू हो गए, पौधे अचानक सूखने शुरू हो जाते हैं और उसको चाह करके भी आप नहीं बचा सकते हैं, तो इसके लिए ये समस्या फरवरी मार्च के बाद आनी शुरू होती है, जब पौधे जो थोड़ी सी गर्मी आती है उसके बाद ये आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अच्छी गुणवत्ता की आपको पौध होनी चाहिए, उस पौधे में कहीं किसी तरह का स्पॉट या कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप पौधे को लगाएं तो मैंने बताया कि कार्बन डाइजीम में उसको 0.2% के घोल में, आप कार्बन डाइजीम के घोल में उसको 5 मिनट तक दुबाएं, उसके बाद लगाएं। और जब आप बेड तैयार करते हैं, ऊंची उठी हुई बेड आप तैयार करते हैं, तो 0.01% का मेटल एक्सिल का घोल से एक बार उस पर स्प्रे कर दें
0: जी,
1: तो ये आपको उकठा रोग से बहुत बचाव करेगा। साथ ही साथ मैंने देखा है कि अगर आप ट्राइकोडर्मा को जो कंपोस्ट डालते इसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, कंपोस्ट को डालने के पूर्व ट्राइकोडर्मा आधा केजी लेकर के ट्राइकोडर्मा उसको 15 से 20 केजी कंपोस्ट में मिक्स कर दें, उसको एक सप्ताह के लिए छोड़ दें, मॉइस्ट रखें और उस कंपोस्ट को अगर यूज़ करते हैं तो इसका प्रकोप कम होता है। तो इस तरह से जो मैंने बताया कि आप कार्बन डाइजीम का यूज करें, ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें और मेटल एक्सिल के 0.01% के घोल से आप बेड को जो नर्सरी का अपने जो उठी हुई क्यारी तैयार की उसको उपचारित करें। इस तरह से करने से आपको जो है फफूंद जनित रोग जो है वो आप से आप इसको बचा सकते हैं
0: जी।
1: दूसरा और इसका रोग है लीप स्पॉट आता है, पर्णचित्ती आता है। कभी कभी देखेंगे कि गोल गोल गोल गोल स्पॉट आ गया है लीप पे, जैसे ही आप स्पॉट देखें उसको आप कैंची से हटा दें, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1% का घोल से उसका छिड़काव करें, इससे आप जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये कभी कभी आप देखेंगे कि फल में फल जो है उस पर फफूंद हो गया है, तो वैसे फल जो मिट्टी के संसर्ग में आएंगे या ज़्यादा पानी भी आप अगर आपने दे दिया है तो ग्रे मोल्ड का, वो ग्रे मोल्ड होता है, ग्रे मोल्ड का प्रकोप हो जाता है और ग्रे मोल्ड का प्रकोप होने से आपका फल खराब हो जाएंगे, इसलिए आप मल्च का उपयोग करें। बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं दें, जड़ों को आप नमी बरकरार रखें जड़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी वातावरण में नहीं रहने दें। और अगर सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करते हैं तो आपको जड़ में पानी जाएगा, पत्तियों पे बाकी वातावरण में पानी कम रहेगा और वहाँ पर ग्रे मोल्ड की समस्या कम होगी, इसलिए ग्रे मोल्ड से बचाने के लिए आप मल्च का उपयोग करें। अगर ये कुछ आ गया है तो तुड़ाई के उपरांत डायथन M45 का 2 ग्राम का प्रति लीटर का घोल बना करके आप एक बार स्प्रे कर दें, तो इस तरह से आप ग्रे मोल्ड से, उकठा रोग से यानी कि विल्ट से और लिप स्पॉट से इसका निजात पा सकते हैं
0: जी। तो श्रोताओं, आपने जाना कि जो भी परेशानियां हैं उनके समाधान के बारे में भी आपने जाना, और मैम इसके बाद उत्पादन से लाभ तो मिलेंगे ही, क्योंकि पहले ही भी हम जान चुके हैं इसमें पोषण बहुत ज़्यादा है। तो व्यावसायिक तौर पर आम तौर पर क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं इसके उत्पादन से?
1: इसके पहले हम बताना चाहेंगे इसकी तुड़ाई कैसे की जानी चाहिए।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो अगर आप इसको अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो दिसंबर माह में इसका फल टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ये लगातार मार्च तक या कभी कभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फल देगा। जैसे ही गर्मी आएगी इसमें फूल आना बंद हो जाता है और फूल आना बंद हो जाएगा तो फल आपको नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अगर अक्टूबर में लगाते हैं तो आपको मार्च तक आपको अच्छा फलन देगा। और इसका तोड़ने के लिए जब ये फलना शुरू हो जाता है तो कुछ कुछ अंतराल पे ये फल आपको तोड़ने होंगे और फल की तुड़ाई आप सुबह में करें। तुड़ाई के बाद आप फल को जो है आप ठंडे जगह में रखें और जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें, क्योंकि तुड़ाई के उपरांत इसकी जो है संधारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट फ्रूट है और बहुत जल्दी खराब होता है
0: जी।
1: तो जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें। अगर दूर के मार्केट में आपको भेजना है तो फल को पूरा लाल होने के पूर्व यानी 75% जब पक जाए तभी आप इसको हार्वेस्ट करें, थोड़ा उसमें टफ रहता है और एक दो दिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये थोड़ा सा और पकता है, फिर जा करके आप उसको मार्केट में भेजें। तो नज़दीक के लिए मार्केट के लिए पूरा फल पकने के बाद इसको तोड़ें, और अगर दूर का मार्केट में भेजना है तो आप 75% पकने पर ही उसको तोड़ दें। इसकी पैकिंग के लिए पुनेट आता है, पुनेट का उपयोग करें और सही ढंग से इसकी पैकिंग करें। एक फल दूसरे फल पे बहुत ज़्यादा कसा हुआ ना हो, एक फल पर दूसरा फल ना हो, इस तरह से इसकी पैकिंग करें और तभी आपका ये ज़्यादा दिन तक थोड़ा मार्केट में रह सकता है
0: जी।
1: और जहाँ तक इसके लाभ की बात है, कितने लाभ हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि इसकी लागत जो है आपको अगर ड्रिप सिंचाई क्या लगाएंगे, मल्च डालेंगे, पॉलिटिनेल डालेंगे, तो पहले साल इसकी लागत कुछ ज़्यादा आएगी क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर लगातार इसकी खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इसकी व्यवस्था ज़रूर करें। और 3 साल के बाद उपरांत पाएंगे कि आपने अगर 1 रुपया लगाया है तो कम से कम 4 रुपया आपको मिलेंगे।
0: अच्छा,
1: तो पौधों का कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो पौधे आपको 10 से 12 रुपये के बीच में मिलेंगे या 15 रुपये तक भी मिल सकते हैं। तो अगर आप 20,000 पौधे लेते हैं तो आपको लगभग 3.5 लाख रुपये आपको पौधे में लग जाएंगे, लेकिन उसमें उत्पादकता जो है अगर अच्छे से आप मैनेज करें तो प्रति एकड़ उत्पादकता आपको 15 टन से कम नहीं होगी। तो इस तरह से अगर उसको 200 रुपये के जी भी बेचेंगे तब भी आपको 3 से 4 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा 1 एकड़ में। इसलिए 8 से 9 महीने के बीच में इतना शुद्ध मुनाफा किसी भी क्रॉप में नहीं है, इसका डिमांड भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभकारी व्यवसाय है, पोषण से भरपूर फल है, कम अवधि में इसके उगाए जा सकते हैं। और अगर आपके शहर के किनारे छोटा सा भी ज़मीन है तो आप छोटी सी भूभाग में इसकी खेती करके आप इसको बहुत मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की खेती करें और अच्छी आमदनी पाएं, अच्छा लाभ पाएं। व्यावसायिक तौर पे पोषण सुरक्षा की दृष्टि से ये इसका स्ट्रॉबेरी का फल उत्पादन काफी अच्छा है। और मैं अपनी वार्ता के दौरान एक चीज बताना भूल गई कि हमारे राज्य में किस्में कौन कौन सी अच्छी उत्पादकता के साथ कर रही हैं
0: जी।
1: तो मैं बता दूं कि इसके लिए आप स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, कामारोजा, विंटर डाउन, नबीला, सेंसेशन, ये 6-7 किस्में जो हैं वो अच्छा उत्पादन कर रही हैं, अच्छी उत्पादकता और गुणवत्ता के साथ हमारे राज्य में इसका उत्पादन हो रहा है। तो ये हमने शोध के उपरांत पाया, हमने लगभग 21 किस्में शोध किया है, 21 किस्मों का उत्पादन किया अपने रिसर्च प्लॉट पे, और हमने पाया कि ये 6-7 किस्में जो हैं हमारे राज्य में बहुत अच्छा उत्पादन कर रही है, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादकता के साथ। तो मेरा ये मैंने अपने बताया आपको कि स्ट्रॉबेरी की खेती के कैसे उत्पादन करें और कैसे इससे लाभ कमाएं और क्या इसके लाभ हैं, ये हमारी बात। धन्यवाद किसान भाई, उम्मीद है कि आपको उचित जानकारी मिली होगी, जो जानना चाहेंगे जानना चाह रहे होंगे आपकी वो जानकारी आपको मैं दे पाई होंगी इतने कम समय में। धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना स्ट्रॉबेरी एक लाभदायक व्यवसाय कैसे बन सकता है, पोषण सुरक्षा हेतु स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जा सकती है, हर एक छोटी से बड़ी बात मैम ने आपको बताया यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको इन जानकारियों से बहुत लाभ होगा। अगर आप अभी भी इसे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, समय है। और साथ ही जो भी समस्याओं की बात यहाँ पर हुई है, मैम ने उसके समाधान के बारे में भी बताया, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही लगाएं। और उत्पादन तकनीक के बारे में भी मैम ने बताया कि आप उस तकनीक को ज़रूर अपनाएं, और मल्च जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसे तो आपको अपनाना ही चाहिए, जो कि आपकी जो फल हैं वो मिट्टी से संपर्क में ना आए। तो इस तरीके से बहुत लाभ होगा आपको अगर आप इन जानकारियों को ध्यान से सुनते हैं। तो आज के लिए श्रोताओं इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं, तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है, और इस बारे में, नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
1: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
0: तो मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक, सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
0: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
1: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30 से 40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15 से 20% होती है एवं पोटाशियम का 60 से 70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है, जो 1 से 5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है, तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा, और तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
0: जी जी। तो मैम, अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
1: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे, तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी, तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले, उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है, तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की, वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
0: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी बहुत सारे अनेक अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या आईसीआर हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसके फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि हैं, जलवायु अनुकूल कृषि हैं, या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके की पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटाशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग, तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे
0: जी।
1: तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
0: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
1: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था, तो वैसे ही ये एक भी एक नई तकनीकी है। तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है, नैनो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक को वृद्धि करेंगे, ये सब चीजें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियां हैं।

0: आई और बहुत सारी अच्छी बातें कही. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जानकारियां दी. बहुत बहुत धन्यवाद मैम.
1: धन्यवाद उमा आपको.
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें. अभी के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: उन्नत कृषि

0: आप जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.
7: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

पुर से माना जाता है। कहते हैं जब बिहुला ने रसोई बनाकर बाला को खिला पिला दिया तो बाला ने राम राम कह के अपना प्राण त्याग दिया। यह देखकर बिहुला रोने लगी, जिसे सुनकर उसकी सास सोनिका वहां आई और बिहुला को बुरा भला कहने लगी। तब बिहुला ने नागा को दिखाकर कहा कि देखिए, इसी ने आपके बेटे को काटा है। इसी कथा

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी ब कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी ब कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और ख़ुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्म सम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो ना केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्म सम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं, वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे, तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है। और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं, तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे जरूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है, कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 2400 घंटे सातों दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती है या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
3: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के,
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में रबी मक्का में लगने वाले कीटों के समुचित प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह और सर वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका स्वागत है। और किसान अभी मक्का लगा रहे हैं और इस समय उनको क्या कुछ करना चाहिए तो उसके बारे में पहले बता दें।
10: हाँ नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप मक्का लगा रहे होंगे, इसमें कुछ सावधानियां हैं। कैसे आप मक्का तो आप लगाते ही हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जिसको आप कर करके आप ये कीट है, ये कीट का जो संक्रमण होता है जो उसे आप बच सकते हैं और आप अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप खेत की तैयारी, जो लोग नहीं लगाया होंगे वो कर रहे होंगे, तो खेत की तैयारी में कुछ चीज़ें हैं, उस बातों पे ध्यान देना है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब जुताई करते हैं तो जुताई हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा है कि कल्टीवेटर से भी करते हैं तो एकदम ऊपर ऊपर ना हो करके उसको थोड़ी गड्ढा में उसको करना है। चूँकि अभी तो ये सीजन है, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी हर तीसरे साल पे आप लोगों को अपनी ज़मीन का गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई जनरली इस महीने तो नहीं संभव है, इस महीने करने से फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। गहरी जुताई करना है आपको मई जून के महीने में, जब सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा होता है उस समय आपको करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि जितने भी रोग जो पौधे को करता है, जो शुरुआत में जो पौधा जब हमारा बहुत छोटा रहता है तो उसको संक्रमित करता है, तो उनसे रोग करने वाले कारक को सूर्य के जो प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश जो है उनको मार देते हैं, जिसके चलते ये संक्रमण नहीं हो पाता है। तो एक तो रोगों से बचाव होता है, दूसरा जो है कीट के जीवन चक्र का कोई भी जो स्टेज होता है वो अगर सॉइल में है, जमीन में है, तो वो ये ज़्यादा तापमान से, धूप के प्रकाश से वो मर जाते हैं। तो साथ ही साथ जो बहुत सारे जो कीट को जो चिड़िया हैं वो चुन करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये हो गए आपके गहरी जुताई के फायदे। अब हम लोग चलते हैं उर्वरक के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि उर्वरक भी कहीं ना कहीं हमारे कीटों पर व्यापक प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो आपको जो उर्वरक है उसको कब कब देना चाहिए, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उर्वरक हम लोग देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के फॉर्म में, तीन फॉर्म में हम लोग देते हैं। तो इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी खड़े फसल में भी वो फॉस्फोरस और पोटाश डालते हैं। तो ये खड़े फसल में जब फॉस्फोरस और पोटाश डालेंगे तो इनका जो उपलब्धता होता है, ये अगर आज हम उसको छींटते हैं प्लांट में तो इसकी उपलब्धता में होते होते महीनों लग जाते हैं। तो इसीलिए फर्टिलाइजर उर्वरक जो है देने का भी एक प्रोटोकॉल है, एक सही समय है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आधी मात्रा यूरिया का जो अनुशंसित है मक्का के लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान आजकल हाइब्रिड मक्का लगाते हैं, तो उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उसकी आधा मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय और पूरी मात्रा फॉस्फोरस और पोटास की। आपको खेत की जब अंतिम जुताई करते हैं उसके बाद पट्टा दे करके जब हम बीज लगाते हैं तो उस समय आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका जब पौधा शुरू में छोटा रहता है तो जितना उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो तो मिलेगा, लेकिन फॉस्फोरस और पोटास लगभग एक महीने के बाद जब उपलब्ध होगा तब तक आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसका उस समय में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, ऐसे आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जो रेस्ट जो नाइट्रोजन है उसको जो आप यूरिया के फॉर्म में देते हैं तो उसको पुनः दो पार्ट में आधा आधा कर करके, एक जब नी हाइट होता है, मतलब नी हाइट कहते हैं जब आपके ठहुने के हाइट का हो तब, और दूसरा जब उसमें धनवाल जब आने वाला होता है उस समय आपको प्रॉपर सिंचाई के साथ आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो पोटेशियम जो होता है अगर आप कम मात्रा में देते हैं या नहीं देते हैं तो ये आपके पौधे के जो रोगों से लड़ने या कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। अगर पोटेशियम आप कम मात्रा में देंगे तो आपके जो फसल होंगे उस पर कीटों का आक्रमण हो सकता है कि ज़्यादा हो और वो, लेकिन अगर आप पोटेशियम जो समुचित मात्रा में देते हैं तो इस पर कीट वो पौधा जो होता है वो मजबूत होता है और उसके चलते जो है उसमें कीटों का आक्रमण कम होता है। तो ये आप पोटेशियम के बारे में आप समझ लीजिए, जो म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद जब आप उर्वरक जब दे दिए तब होती है कि भाई बीज का चुनाव कैसे क्या करना है। तो बीज आप अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लेंगे और बीज में भी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बीज एक तो हाइब्रिड होना चाहिए, क्योंकि अच्छी जो गुणवत्ता वाली जो अगर बीज होती है तो उसमें रोग और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। एक जो साधारण प्रकार का अगर बीज हम लगाते हैं वो और एक जो अच्छी गुणवत्ता वाली बीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक तो उत्पादन में ही अंतर होता है और साथ ही साथ इसमें रोगों और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। तो बीज आपको हाइब्रिड और अच्छी गुणवत्ता वाली लेनी है। अब ये बीज आपको मिलेगी कहाँ से, इसके बारे में भी कुछ बात करनी है। तो बीज जो है अच्छे दुकान से ले और वहाँ उनसे कैश मेमो का डिमांड करें, मांग करें, और कैश मेमो जो होता है ओरिजिनल बिल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है उसका लॉट नंबर रहता है, सारा डिटेल रहता है उसमें दिया हुआ, तो इनकेस अगर कभी कोई आपको अगर बीज का शिकायत होता है समय से, अगर पहले उसमें अगर फ्लावरिंग हो गया, फूल आ गया या दाना सेट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है आपको, अगर आपका कैश मेमो होगा तभी कृषि विभाग या कोई भी आपको सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो ये होगा कि कहाँ से बीज लाएँ, तो ये आपको रसीद लेनी है ओरिजिनल कैश मेमो के साथ और उसको आपको लगाना है। टाइमिंग का भी सही उपयोग करना चाहिए, अभी उपयुक्त टाइम चल रहा है उसको आप लोग लगाइए। अब क्या है कि बीज जो आप लेते हैं उसको उपचारित करना है। अब वो उपचारित कैसे करें, उपचार करने से क्या फ़ायदा होता है, तो उपचार करने का दो, चूँकि ये मक्का है इसलिए दो चीज़ों से उपचार करने से ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो करना है कि रोगों से इसका कैसे बचाव हो, तो रोगों से जो बचाव होने के लिए इसका हम लोग कार्बेंडाजिम से हम लोग इसका बीज उपचार कर सकते हैं। इसका 2 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलो सीड की दर से आपको कार्बेंडाजिम लेना है और पानी उतना ही मिलाना है जितना कि जस्ट ये बीज आपको उसमें मतलब ये भींग जाए। और इसको आपको पक्का फर्श पे या पॉलीथीन जो आता है पॉलीथीन सीट उस पे करना है, ज़मीन पे कभी इसको ना करें। और ये जब भी बीज उपचार करते हैं आपको ठंडे में करना है, धूप में, कड़ी धूप में नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपको रोगों से लड़ने। इससे क्या होता है, ये जो कार्बेंडाजिम है ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, फफूंदनाशी है, और ये आपके पौधे को, जो पौधा आपका छोटा छोटा होता है उसको लगभग 21 दिन तक आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आपके मिट्टी में मिट्टी जनित फफूंद भी होगा तो ये अप टू बहुत हद तक आपके फसल को ये बचाता है। तो ये हो गई। दूसरी बात है कि कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक से भी इसको जो है बीज उपचार करना चाहिए। तो मक्का के केस में क्योंकि कहीं कहीं पे ये हम लोग रबी में लगा रहे हैं इसको, तो इसमें दीमक और इस सब की भी समस्या हो सकती है। दूसरे जो कीट है उनके भी जो शिशु है वो मिट्टी में हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 EC प्लस साइप्रोमेथ्रिन 5 EC ये जो द्रव के मात्रा में ये पाए जाते हैं कीटनाशी, तो इसका आपको जो मक्का का बीज है उसमें 2 मिलीलीटर प्रति की दर से इसको आपको किसी भी पात्र में या जो पॉलीथीन का जो पैकेट आता है, मक्का का जो पैकेट आता है 2 kg वाला जो आता है, तो उसी में डाल करके आप दोनों हाथ से उसको हिला दीजिए, और हिलाने के बाद पुनः जो है इसको पक्का फर्श पे इसको आप सुखाइए, और सुखाने के बाद तब जा करके आप इसको खेत में लगाना है। इसको पुनः अब खेत में कैसे लगाना है, तो कई किसान भाइयों को रहता है कि अगर जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हम कम करेंगे, और फिर लाइन में पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको भी कम करके अगर जो मक्का के जो पौधा है उसकी संख्या अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा। लेकिन इसके उल्टा भी होता है, जब इस सारा एक अनुशंसित मतलब इसका जो दूरी होती है जो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, और पुनः उसमें 20 सेंटीमीटर का जो होता है लाइन में पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखना चाहिए। क्योंकि इसे अगर कम आप रखते हैं तो जो सूरज का प्रकाश है वो हमारे जो मक्के का पौधा है उसको सभी पार्ट में नहीं लगता है, और जिसके चलते रोग भी होने की समस्या रहती है, और कीटों के जो जीवन चक्र के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था नीचे में जाके कहीं ना कहीं वो छुप जाता है, और छुपने के बाद जो है वो आपके फसल को ज़्यादा ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लाइन से लाइन कर दिए, देन आपको जो पौधा है उसको हमेशा आपको खेत पे अपने जाते रहना चाहिए। खेत पे जाते रहने से क्या होता है कि आपको अगर कोई कीटों का अगर उस पर समस्या होगा, आक्रमण होगा, तो आप देख पाएंगे और उसका जो है समुचित आप उपचार कर पाएंगे।
0: जी, तो अगर हम बात करें कीटों की, तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं इसके बारे में बताएं।
10: हाँ, ये कीट एक तो कटवर्म जो मक्का में बहुत, अभी जब आपका पौधा जब छोटा छोटा होता है तो वो आता है कटवर्म, और दूसरा है जब पौधा फिर आपका जब थोड़ा सा बड़ा होगा तब इसमें तना छेदक का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। और उसके बाद तना छेदक के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, एक फॉल आर्मी वर्म जो कीट है, जो पहले नहीं पाया जाता था लेकिन विगत कुछ सालों से उसकी आक्रामकता बढ़ गई है, तो वो मुख्यतः ये रहते हैं। उसके अलावा भी कई कीट है लेकिन इन ये तीन कीटों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है ग्रास हॉपर है जो आपको पत्तियों पे खाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग इन तीनों तीन कीटों पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे कि क्या है, उनको कैसे आप पहचानें, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जिसको हम लोग कटवर्म बोलते हैं, ये कटवर्म का आप लोग अपने अलग अलग जगहों पे लोकल भाषा में उसका कुछ और भी नाम है, हो सकता है, ये आपको बताते हैं कि ये कैसे आपके फसल को नुकसान करता है। तो आप जब अपने जब हम मक्का जब लगाते हैं तो शुरुआती कंडीशन में जब ये दो पत्तियाँ एक फेज में होता है, ये जर्मिनेशन के अंकुरित होने के बाद के जो बात है उसके बाद ये जनरली आपको कटवर्म की समस्या हो सकती है। तो कटवर्म में क्या होता है कि इसके जो शिशु होंगे वो लंबा लंबा शिशु होते हैं, और वो जनरली ज़मीन का जो ढेला होता है और उसमें ये छुपा रहता है या दरार रहता है उसमें छुपा रहता है ये दिन को, लेकिन जो ही शाम होता है ये निकल करके आपकी जो फसल है उसको ये नीचे से ही कट कर देते हैं, मतलब जड़ के ऊपर से ये कट कर देते हैं। चूँकि पौधा बहुत छोटा होता है, मुलायम रहता है, जिसके चलते कभी कभार किसान भाइयों को क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर ये काट दिए ये जो कीट है इसके जो शिशु है, तो आपको पुनः किसान भाइयों को वहाँ पे गैप फिलिंग करना पड़ता है मक्का के दूसरे बीजों से। तो ये कटवर्म है। तो अब इस कटवर्म से कैसे आपको निजात पाना चाहिए, तो अगर ये इसकी कहीं कहीं समस्या है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी समस्या ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको ये क्लोरपाइरीफॉस 50C प्लस हाइपरमेथ्रिन 5EC की जो मात्रा है वो 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में, इसको आपको पूरी तरह से इसको ज़मीन पे और जो आपका छोटा पौधा है उस पे शाम के समय, शाम के 4 बजे के आसपास इसको छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से आपका जो है वो रोकथाम हो जाएगा। तो ये तो हो गया जो शुरुआती कंडीशन है। उसके बाद पुनः इसके बाद क्या होता है कि जब पौधा आपका जो बड़ा होगा तो तना छेदक का समस्या हो सकता है। तो ये तना छेदक कैसा होता है, ये तना छेदक आप देखेंगे कि आपका जो मक्का है तो उनकी जो पत्तियां हैं उस पत्तियां में लाइन से तीन तीन गोला गोला छिद्र ये हो सकता है, छिद्र मिले। तो पुनः छिद्र के साथ साथ होता है क्या कि जो उसका जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन में जो है ये इसके जो है शिशु रहते हैं और वहाँ पे वो उसको वो खा करके क्षतिग्रस्त करते हैं, साथ ही साथ स्क्रीटा भी उसमें वो डालते रहते हैं। तो ये है तना छेदक का। तो तना छेदक की जब समस्या हो, और इसमें भी आपको ध्यान देने की बात है, अगर 100 पौधे में अमूमन अगर 5 पौधे में ऐसा समस्या अगर 5 से ज़्यादा में देखा जाता है तब आपको इसके उपचार के लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए। अगर कहीं कहीं पे है 5 से इसकी संख्या कम है तो ये उतना इकोनॉमिक लॉस नहीं कर सकता है, आपको इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसके कीटनाशी को छिड़कने में और ख़रीदने में और छिड़कने में जितना पैसा आपका लगता है उससे कहीं ना कहीं उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तब आपको इसके उपचार के लिए आपको आगे आना होगा। तो एक तो हो गया, अब इसका उपचार कैसे करें। तो इसके उपचार करने के लिए अगर पौधा आपका छोटा है, आपका अगर पौधा आपके ठोने से नीचे कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप जो दानेदार जो कीटनाशी है जो कटाप हाइड्रोक्लोराइड 0.4G के नाम से आता है, तो इसको एक जर्दे के डब्बा में डालना है और जर्दे के डब्बा में छेद करके जैसे जर्दा पान पे डालते हैं लोग, उसी ढंग से आपको जो मक्का का जो गभा है उस गभा में उसको डालना है, ऐसे छींटना है ताकि दो तीन उसके जो हमारा जो कीटनाशी है क्लोरोपाइरीफॉस दानेदार उसकी ये दानेदार कीटनाशी है उसका दाना जो है उसके कंठ में चला जाए, क्योंकि ये कीट जो कंठ में छुपे रहते हैं तो ये कीट के बॉडी में ये स्पर्श करते ही सटते ही ये कीट मर जाता है और आपका जो है जिस पोर्शन में जिस पॉकेट में जिस क्षेत्र साइड में अगर ये समस्या उधर ही सिर्फ छींटने से आपको काम हो जाएगा, आपके पूरे फसल पे छींटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके चलते क्या होता है कि एक तो हमारा जो कीटनाशी की मात्रा कम लगती है और हमारे जो मित्र कीट है वो भी मरने से बच जाते हैं। तो ये हो गया आपको ये तना छेदक के लिए। लेकिन हाँ, अगर पौधा पर बहुत जब बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में आप ये जो दानेदार दवा जो है नहीं छींट सकते, तो उस कंडीशन में आपको जो लिक्विड वाला दवा है उसको आपको गटोर से स्प्रे करना चाहिए और उस कंडीशन में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG उसकी मतलब 10 लीटर पानी में 4 ग्राम मात्रा आपको डालना है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक ऐसा कीटनाशी है जिसको पहले ये झिल्ली की तरह होता है, इसको पहले आपको किसी भी पात्र में घुला लेना है और घुलाने के बाद ये घुलाने के बाद तब आपको स्प्रेयर में डाल करके फिर पानी डालना है और उसके साथ कुछ मात्रा में स्टिकर मिलाना है और स्टिकर मिला करके अच्छी तरह से उसको तब आपको स्प्रे करना है, गटोर से पूरी अच्छा से स्प्रे करना है और स्प्रेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें एकदम स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटा छोटा बूंदा है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी पूरा निकल रहा हो, इससे आपकी दवा भी ज़्यादा लगती है और हमारा जो सॉयल और सारा हमारा जो सिस्टम है वो उस पर ख़राब प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया तना छेदक के लिए। अब एक आती है जो फॉल आर्मी बम, तो ये फॉल आर्मी बम हो सकता है कि सब कहीं पे आता है कहीं पे नहीं भी आता है, लेकिन इसको ये बहुत आक्रामक है, ये तना छेदक से भी ज़्यादा बहुत जल्दी ये आपके फसलों को बर्बाद करता है, इसीलिए इसका नाम फॉल आर्मी बम रखा गया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका 2 से 3 दिन में आपके फसल को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। तो पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो ये आपको जो तना छेदक होता है इससे ये ज़्यादा मोटा होता है, लंबा भी होता है, इसके बॉडी पे ये काला काला धारी होता है और साथ ही साथ इसके जो टेल जो पूंछ पोर्शन जिसको बोलते हैं, तो पूंछ पोर्शन में 4 छोटे छोटे बिंदु काले काले बिंदु होते हैं जो एकदम स्क्वायर के रूप में रहते हैं, जैसे कि अगर चारपाई या जो भी स्क्वायर होता है उसके चारों साइड पे ये बुंद रहेंगे। साथ में अगर आगे पोर्शन में देखिएगा तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो उल्टा वाई का शेप उसके सर पे बना हुआ रहता है। तो ये फॉल आर्मी बम है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो जनरल कीटनाशी है उसे ये कंट्रोल जनरली नहीं होता है। तो इसके भी 6 इन स्टार है, इसके जो 6 स्टेजेज हैं, अगर ये इनिशियल कंडीशन में है तो सिंपल कीटनाशी से भी ये इनका रोकथाम हो सकता है, लेकिन अगर ये इन स्टार अगर ये एडवांस इन स्टार में है जैसे 4, 5 और उसके आगे के इन स्टार में है, तो उस कंडीशन में आपको मतलब इससे जो हार्डी इंसेक्टिसाइड है वो देना है। तो जो शुरू वाला अगर फेज है जैसे स्टेज 1 और 2 में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट हमने जो बताया है उससे भी ये नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन अगर 3 या 4 स्टेज में है तब स्पाइनोटोरम 11.11.7% की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको और साथ में स्टिकर लेकर के इसको छिड़काव करना है शाम के समय में। और अगर इसकी उपलब्धता नहीं हो तो थायोमेथगजम 12.6% और लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन 9.5% की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में इसका 1 ml दवा देना है। मतलब ये कहें कि अगर 16 लीटर का हमारा स्प्रेयर है तो इसमें जो है थायोमेथोगियम प्लस लैम्डा साइलोथिन का जो कीटनाशी है उसकी 4 ml दवा ही देनी है। तो ये सब इसके कीटनाशी हैं जिनको आप छिड़काव करके और समय समय पे आप उसको देख करके ये कर सकते हैं। फॉल आर्मीवर्म में क्या होता है, ये आपके पत्तियाँ को तो खाते ही हैं, जो बढ़ने वाले पोर्शन को खाते हैं, साथ ही साथ जब आपका जब मक्का का जब बाल लग जाता है और बाल का जो बाहर वाला पोर्शन है जिधर मोचा से अंदर की ओर जब हमारा इसका दाना लग जाता है तो उसको भी ये खाना उसको भी ये खा करके क्षतिग्रस्त करता है। तब तो उस समय में आपको क्या है कि हमने जो ये कीटनाशी बताया है इसको पूरी तरह ऐसा इसको गटोर मशीन से छिड़काव करना है ताकि ऊपर से आपको मोचा और समथिंग ये सब में भी जाए और इससे आपका इस से आप निजात पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप करिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मक्का का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा।
2: उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद
7: सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन है वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
9: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें यह भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल

0: करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशेषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं जहाँ पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहाँ पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहाँ पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टी विटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
0: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सकें। दूसरे, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हें तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है, ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है, जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना

0: देता हूं कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दे या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुदका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% एससी का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
1: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी प्रियांशी, रियांशी, ओजस अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
1: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ाबम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
2: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
1: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओं, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
2: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
1: श्रोताओं, मेघालय यानी मेघों का घर
2: जी।
1: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
2: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
1: किसेन वानियांग, एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
2: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
1: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं, अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है
2: जी।
1: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देख कर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
2: श्रोताओं कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
1: और किसेन ने श्रोताओं दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था
2: जी।
1: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
2: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
1: और अंततः 4th बच्चा भी किसेन ने 4 बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
2: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
1: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
2: जी।
1: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
2: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि चार बच्चों का जीवन बच गया।
1: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है
2: जी।
1: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
2: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
1: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
2: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
1: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
2: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
1: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें
2: जी।
1: तो पहली बात,
2: संकट में घबराएं नहीं।
1: दूसरी बात,
2: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
1: और तीसरी बात,
2: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम
2: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
1: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी
2: जी,
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
3: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चीटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: ना नहीं,
4: अरे
5: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
6: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
4: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
5: प्लीज
6: दिखा दो।
4: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं। चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
7: बहुत अच्छी।
8: मैडम, मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
9: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
9: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
9: जी
4: मैडम, आप ही कहते इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
4: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
9: लीजिए मैडम।
3: हाँ, इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
4: अरे किताब भी नहीं है।
3: हाँ, शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
9: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा, ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है।
4: सैनिकों के बारे में?
9: सैनिकों के बारे में है।
4: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
9: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है। वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
9: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
8: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
9: बहादुर है हमारे सैनिक।
4: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा, मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
8: मुझे भी।
4: इसके बाद मैं नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
9: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
4: पर मेघा, इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
4: रास्ता है?
3: मेघा, क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
9: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
7: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा,
7: आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
9: जी मैडम।
7: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
9: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
7: क्या बात है।
4: अच्छा मेघा ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
9: बताती हूँ सुनो। परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
7: वाह। अच्छा मेघा क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
9: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
7: शाबाश।
9: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
4: मेघा ऐसा क्या किया था उन्होंने?
9: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
10: ओ मैडम जी।
7: जी मोहन भैया क्या बात है, आ जाइए।
10: मैडम जी आपसे कोई मिलने आए,
11: कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
7: ओ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
10: ठीक है जी।
7: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
9: जी मैडम।
7: मेघा देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
12: बहुत बहुत ही वीरता का काम है।
4: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
12: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अवसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह
13: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
14: मोहित लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
7: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
15: नमस्ते सर।
11: नमस्ते बच्चों।
7: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
9: जी मैडम।
11: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
9: धन्यवाद सर।
15: धन्यवाद सर।
11: सबसे पहले तो मेघा मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
9: धन्यवाद सर।
11: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
9: सर मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
11: बिल्कुल ठीक। बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
7: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
11: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
15: एक हिंदुस्तान।
11: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे यह बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को ये नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
16: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
17: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद।
11: दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
18: शाबाश जांबाजों, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, चलो ये जान पकड़ो। फायर फायर।
11: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
18: सर सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए।
11: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
18: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
11: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
18: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण घिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर फायर। आतंकी जय। एक एक को भूख ना लो, कोई ना बचने पाए। फायर।
11: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
18: जवानों, आगे बढ़ो। एक दुश्मन बचना नहीं पाए। आगे बढ़ो। फायर।
11: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे।
18: बाला सिंह,
11: उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्युनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस
17: इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: नमस्ते क्लास। टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
6: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
5: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
9: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
12: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
11: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
13: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
11: या है आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
14: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
11: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
15: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
11: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
16: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार, मैं आरजे अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ 90.8 FM ग्रीन पर। जी हाँ, आज फिर से एक बार मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम,
17: जिसमें होंगी कुछ उन्नत बातें खेती से जुड़ी। तो आज भी बहुत ही खास विषय हम लेकर आ चुके हैं और आज का हमारा विषय है खेसारी की उन्नत खेती। और हमारे साथ हैं यहाँ पर हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सी के पांडा जी और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सबसे पहले आइए जानते हैं खेसारी की फसल के बारे में। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि ये बहुत ही कठोर फसल है जो विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे कि अत्यधिक नमी हो, जल जमाव हो, सुखाड़ हो, इसमें सहने की क्षमता होती है। तो आज इसकी खेती के बारे में जानेंगे हम और डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवाल भी करेंगे और उसके जवाब भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर खेती की बात आती है तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बताएं कि हमें खेत की तैयारी यानी खेसारी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए।
18: नमस्कार किसान बंधु और मैडम, नमस्कार आपको भी। तो इसके बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा इस फसल के बारे में आपके साथ बात कर लेता हूँ।
17: जी जी।
18: देखिए, आप जैसे बताया ना, ये क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है, तो सूखाड़ में बाढ़ में एक फसल है जो सरवाइव कर जाता है
17: जी।
18: और ये जो फसल है ना, ये बहुत दिन से हमारा देश नहीं, सिर्फ इंडिया मतलब भारतवर्ष, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस प्रदेश, ये सब देश में भी इसका आबादी होता है। ये छोड़ के भी साउथ अफ्रीका का कुछ देश में और भी देश में इस फसल की आबादी होता है। ये फसल का एक हम फलीदार फसल भी बोलते हैं, इसको लिगुमिनस फसल भी हम लोग बोलते हैं
17: जी।
18: लिगुमिनस फसल होने के कारण ये मिट्टी के लिए बहुत लाभदायक होता है। कैसे
17: जी?
18: ना, मिट्टी में इस फसल के आबादी के कारण हर हेक्टर में प्रति हेक्टर में 37 kg से 40 kg के आसपास नाइट्रोजन जुड़ जाता है।
17: अच्छा।
18: तो जब सबसे बड़ा अभी के जमाने में मिट्टी के स्वास्थ्य बचाने के लिए इस फसल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है
17: जी जी।
18: और इसका जो डाल है, इस डाल में 31% के आसपास प्रोटीन रहता है, 41 के आसपास कार्बोहाइड्रेट रहता है, 17% के आसपास डाइटरी फाइबर रहता है।
17: अच्छा।
18: तो आप देख रहे हैं इसमें प्रोटीन काफी है, 31% मतलब काफी है। और इसको पोर मैन पाल्स भी बोला जाता है। क्यों? ये ऐसा एक फसल है, कोई भी जगह पर आप इसको बुआई कर दीजिए, क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल रह जाएगा तो मिट्टी के साथ इसका जुड़ जाएगा, तो इसका बस जर्मिनेट कर जाएगा तो ये क्रॉप स्टैंड कर जाता है। और पहले आप जो बताया है, जो क्वेश्चन पूछे थे, जो इस फसल की आबादी करने के लिए लैंड प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, देखिए खेती कैसे करना चाहिए। देखिए, इस फसल को दो तरह से आबादी किया जाता है। एक है पैरा व यूटेरा क्रॉपिंग कहते हैं।
17: अच्छा।
18: दूसरा होता है डायरेक्ट।
17: अच्छा।
18: मेनली इस क्रॉप को पैरा व यूटेरा क्रॉपिंग में कल्टीवेशन किया जाता है। पैरा व यूटेरा क्रॉपिंग मतलब हुआ क्या? एक्चुअली ये जो धान का जो जमीन में इस फसल को खेसारी का जो बीज है उसको बुआई दिया जाता है। कैसे ना, धान का फसल कटने की 10 से 15 दिन पहले खेसारी का जो सीड है बीज जो हम कहते हैं उसको छिटका दिया जाता है। तो छिटकाने से पहले क्या देखा जाता है, नमी व मॉइस्चर लेवल मिट्टी में ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक ठाक होना चाहिए मतलब जो उसका मतलब इतना मॉइस्चर रहना चाहिए जो बीज जर्मिनेट किया जाए
17: जी।
18: तो इसी को कहते हैं यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग कहते हैं।
17: अच्छा।
18: और ज्यादा से ज्यादा यही फॉलो किया जाता है। क्यों? देखिए, इस फसल जहां पर यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग में आबादी किया जाता है, धान के बाद दूसरा कुछ फसल नहीं लिया जाता है। तो एक फसल ऐसा एक फसल है, ज्यादा दिन का भी नहीं है, 115-120 दिन के अंदर भी उसका मैच्योरिटी भी हो जाता है, आ जाता है। एक का बात है, शुरू किया जाता है इसका आबादी दिवाली के बाद, मतलब सोइंग का टाइम शुरू होता है दिवाली के बाद और होली से पहले, इसका बाद होली के आसपास इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है।
17: अच्छा।
18: और बाकी रह गया डायरेक्ट सोइंग के बाद। तो डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है, तो डायरेक्ट सोइंग के लिए आपको जमीन को तैयारी करना पड़ता है। इसका मतलब मान लिया पहले आपका फसल धान था, तो धान हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके बाद मिट्टी का नमी के आधार पर 1 से 2 बार उसको जमीन को प्लाइंग करना पड़ता है।
17: अच्छा।
18: तो उसके बाद बीज को मॉइस्चर व नमी जैसे रहेगा उसके आधार पर उसको सोइंग किया जाता है। सोइंग करने के बाद वो जर्मिनेट कर जाता है, बस यही है। तो मैडम, उसके बारे में थोड़ा सोइंग टाइम के बारे में और एक बार रिपीट कर देता हूँ। मतलब आप टाइम के आधार पर बताए थे, अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर महीना का लास्ट वीक से लेके नवंबर का सेकेंड वीक तक इसका सोइंग किया जाता है, बीज को सोइंग किया जाता है, बोई किया जाता है।
19: अच्छा।
18: और इसका फसल हार्वेस्टिंग का टाइम होता है आप मान लिए मार्च का एंड के आसपास,
19: मतलब होली के आसपास।
18: हाँ, होली के आसपास उसका हार्वेस्टिंग किया जाता
19: किया
18: है,
19: जा सकता है।
18: और इसके बाद आप पूछ रहे इसका उन्नत प्रभेद के बारे में,
19: हाँ।
18: यही बात है ना। देखिए इसका उन्नत प्रभेद बहुत इम्पोर्टेंट इशू होता है, क्योंकि दूसरे क्रॉप से थोड़ा इसका इशू कुछ अलग है। क्यों, आप सब लोगों को पता है एक समय इस क्रॉप को बैन किया गया था
19: जी,
18: तो उसका कारण भी था इस क्रॉप में एक केमिकल रहता है जो न्यूरोटॉक्सिन के केमिकल है, जिसको बीटा ऑक्साइल डाई एमाइनो प्रोपाइनिंग एसिड कहते हैं। तो साइंटिफिक आधार पर नहीं नहीं जा सकते हैं, जाना नहीं चाह रहे हैं। तो एक केमिकल रहता है जिसके कारण लेथाइरिज्म होता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन किए थे और रिसर्च भी चल रहा था, रिसर्च के आधार पर कुछ वेराइटी प्रभेद निकल के आया है। जैसे आपका इनिशियल फेज में आया था निर्मल करके एक वेराइटी व प्रभेद, इसके बाद आया है प्रतीक, प्रतीक है, रतन है, महातेवड़ा है, इस प्रभेद है। इस प्रभेद का, इस प्रभेद सब का खूबियत व स्पेशलिटी यही हुआ, इसमें जो केमिकल बारे में अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया उसका अमाउंट बहुत कम रहता है, 0.1 से नीचे रहता है। और ये रिकमेंडेशन है लेथाइरस का कोई भी प्रभेद जिसमें ओडाब व कोई कोई बुआ भी इसको कहते हैं, उसका परसेंटेज 0.1 से कम होना चाहिए। और मैं जो चार प्रभेद के बारे में आप लोगों को अभी अभी बताया, इस सब में 0.1 से कम है, तो इसके आप आराम से इसको कल्टीवेशन कर सकते हैं।
19: तो सर यहाँ पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीज दर की, और उसके बारे में बताएं, और जो दूरी है बोने की दूरी क्या होनी चाहिए, बीज दर क्या होनी चाहिए वो बताएं।
18: अच्छा, देखिए इसका हम पहले ही बताया हूँ, इसको दो तरह से स्विंग कल्टीवेशन किया जाता है, एक पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग, दूसरा है डायरेक्ट स्विंग किया जाता है।
19: अच्छा।
18: तो पैरा बाय यूटेरा क्रॉपिंग में हम लोग उसको ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, मतलब छिटका देते हैं, तो छिटका के कारण थोड़ा ज्यादा सीड का जरूरत होता है। इसमें 70 से 80 केजी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 70 से 80 केजी पर हेक्टर सीड को यूटेरा क्रॉपिंग व पैरा क्रॉपिंग आप ब्रॉडकास्टिंग भी बोल सकते हैं, इसमें कर सकते हैं आप लोग। और लाइन सोइंग के आधार पर आएंगे तो, अर्थात अब ज़्यादा कंट्रोल कंडीशन में करना चाहेंगे तो, तब उसका सीड रेट होता है 40-60 केजी पर हेक्टर। और इसमें लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस होता है 30 सेंटीमीटर के आसपास, और प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर के आसपास, इस डिस्टेंस को इसमें मेंटेन किया जाता है
19: जी। फिर जो है बीज उपचार की बात करते हैं, जब बीजों को कुछ रोगों से बचाना हो तो फिर क्या करना है?
18: हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज उपचार बहुत जरूरी है, जिसको बीज को टीकाकरण भी हम लोग कहते हैं। तो क्यों, बीज उपचार कर लेंगे तो इन फ्यूचर में बहुत रोग से हम फसल को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए बीज उपचार के लिए मोनली किसान भाई सबको पता ही है कार्बेंडाजिन वो लोग यूज करते हैं 2.0 ग्राम पर केजी, तो वो सीड सोइंग के एक दिन पहले कर लेना चाहिए। और इसमें बायोफर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन किया जाता है। बायोफर्टिलाइजर को एप्लीकेशन इसीलिए किया जाता है, देखिए जो राइजोबियम जो कल्चर होता है, राइजोबियम कल्चर को सीड के साथ मिक्सिंग करने से क्या फायदा होता है ना, ये नोड्यूल जो फॉर्मेशन जो गांठ होता है खेसारी का सिकोड़ में रूट में जो जड़ होता है उसमें क्या होता है ना, वो कुछ नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं।
19: अच्छा।
18: तो उस नोड्यूल में राइजोबियम रहता है, और राइजोबियम कल्चर आप देंगे तो नेचुरली उसका नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा, और नोड्यूल का फॉर्मेशन बढ़ेगा तो नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ेगा। तो इसलिए घुमा के हम बोल सकते हैं फसल के अपने लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है, और फ्यूचर जो क्रॉप है उसके लिए भी नाइट्रोजन मिल जाता है।
19: अच्छा, तो ये बात हो गई बीजोपचार की, और उर्वरक और खाद की बात करते हैं। जब खेती होता है तो उस समय उर्वरक और खाद बहुत ज़रूरी होते हैं, डॉक्टर साहब उसके बारे में बताएं कि कौन से उर्वरक और कौन से खाद देनी चाहिए इन्हें।
18: देखिए ऐसे जो ऐसे एक फसल है जो पैराक्रॉपिंग या यूटेराक्रॉपिंग में इस फसल को आबादी किया जाता है, तब तो किसान लोग उसको डायरेक्टली फर्टिलाइजर देने के बाद उर्वरक देने के लिए स्कोप नहीं रहता है। क्यों, मैंने पहले ही बताया जो धान का हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले उसको सीड को सोइंग किया जाता है, तो उसमें तो आपका उर्वरक देने का कोई जगह ही नहीं रही है। तो मतलब धान में जो उर्वरक दिया गया था व फर्टिलाइजर व मैन्योर जो दिया गया था उसी का रेसिडुअल जो है उसी को यूज किया जाता है। और डायरेक्ट सोइंग में हुआ तो उसके आधार पर 100 केजी डीएपी पर हेक्टर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 100 केजी डीएपी पर हेक्टर इसको दिया जाता है। तो इसमें फसल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल जाता है, इसी में काफ़ी काम हो जाता है। और एक इशू होता है इसके, जैसे मान लिया फर्टिलाइजर को स्प्रे भी करते हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे भी करते हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे करने का क्या जरूरत पड़ जाता है, मान लिया आपका पॉट फ्लावरिंग हो गया, पॉट फॉर्मेशन का आसपास

0: फिर मैं बता रहा हूँ ऐसा नमी बहुत घट गया तो आपका पानी देने का बंदोबस्त है तो पानी दीजिए, नहीं तो आपका ये फसल हो जाता है।
1: हाँ, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि क्लाइमेट रेजिलेंट है ये, तो इसलिए ये आराम से बिना सिंचाई के भी हो सकता है।
0: हाँ।
1: तो इसके बाद खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानना चाहेंगे।
0: देखिए, इसको हम लोग खेसारी को और भी एक बात बोलते हैं, ग्रास पी भी बोलते हैं, घास की तरह होता है। ये ऐसा होता है ना, ये खुद ही एक अपने में इतना ग्रोथ होता है इसका ना, उसके आसपास जितना भी वीड वगैरह जो भी रहता है उस खुद को ये कंट्रोल कर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें ज्यादा से ज्यादा वीड मैनेजमेंट के लिए इतना कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, क्रॉप खुद ही अपने से जो उसके आसपास जो वीड गए उसके ऊपर स्मूदरिंग इफेक्ट हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, उसको कर देते हैं। उसके लिए वो ज्यादा कुछ किसान का कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है।
1: तो इसके बाद पौधा संरक्षण उपचार के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे।
0: देखिए, एक क्रॉप जैसे क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप भी है और उसके साथ ये भी है, इस क्रॉप में कीड़ा बोलिए डिजीज का इन्फेस्टेशन बहुत कम होता है। फिर भी हम लोग कुछ कुछ जगह पर देखे हैं इसमें एफिड होता है, एफिड का थोड़ा बहुत अटैक होता है, तो लेकिन एफिड का अटैक होता है तो तब आप उसको औसत दवा देने का जरूरत होता है, तो उसके आधार पर आप डाइमिथोएट 30 से एट द रेट ऑफ 1.7 ml पर लीटर उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक रास्ट होता है, तो उसके आधार पर देखिए एक रास्ट जब दिखा जाएगा तो तब तो आपको कुछ मेडिसिन देने का जरूरत पड़ता है, लेकिन उससे पहले आप सीड ट्रीटमेंट ठीक से करके रख देंगे तो रास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कार्बन डाइजिन देके आप उसको ट्रीटमेंट करके रखे हैं तो सीड ट्रीटमेंट किए तो उसमें रास्ट का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो किसी कारण पर आ गया तो मैंगो जेब 75W पे एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर व पानी के आधार पर आप दीजिए। अच्छा। कंट्रोल हो जाएगा।
1: अच्छा, अब बात आती है अंत में कटाई की, तो हमारे किसान भाइयों को कब समझ जाना चाहिए कि अब इसकी कटाई कर देनी चाहिए और उसका भंडारण कैसे करना चाहिए?
0: अच्छा, देखिए एक भंडारण का कटाई करने के लिए आप क्रॉप फील्ड में मतलब फसल के जमीन में आप लोग रेगुलर विजिट भी करते हैं। पहली बात है पत्ती का जो कलर है, कलर ये हो जाता है ग्रीनिश, जो डीप ग्रीन से धीरे धीरे उसको लाइट होते होते वो जो क्या बोलते हैं ना मैच्योरिटी का जो कलर होता है वो आ ही जाता है, और आप देख पाएंगे पॉट जो होता है उसका पॉट भी सूखा शुरू हो जाता है, मोर और लेस आप देखेंगे पौधा ड्राई हो गया, तब आपने वहां से उसको हार्वेस्टिंग करके लेके आइए, और हार्वेस्टर अवेलेबल है। अच्छा। तो हार्वेस्टर में जैसे आप लोग चना का हार्वेस्टर है, उसी हार्वेस्टर लेके आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए, उसका जो क्या बोलते हैं पुआल वगैरह जो भी हो सेपरेट हो जाए, सीड भी अलग हो जाएगा। सबसे बड़ा खूबी क्या है, उसका जो स्ट्रॉ जो बोलते हैं हम लोग पुआल जो बोलते हैं उसका वो भी फोडार के आधार पर और तत्व गाही जो है बेस के लिए एक खाने का अच्छा एक सोर्स हो सकता है, एवं गांव में प्रैक्टिस भी होता है और इसमें मिल्क का परिमाण दूध का परिमाण भी बढ़ जाता है।
1: अच्छा, तो इस तरीके से किसान भाइयों आपने जाना कि खेसारी की फसल की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं। शुरू से लेकर अंत तक सभी बातें यहाँ पर आप सभी को बताई गई, आप सभी को निर्देश दिए गए हैं, तो आशा करती हूँ कि आप इन निर्देशों को अपनाएंगे और खेसारी की फसल जी हाँ ज़रूर करेंगे और उन्नत खेती करके आप एक सफल किसान बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन RJ अनु के साथ उन्नत कृषि में। कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं बल्कि

0: मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या है बारिश की संभावना? क्या रहेगा हवा का रुख? बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड? आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर।
5: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 ईसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे, या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान रखे की छिड़काव तभी करे जब आसमान साफ हो। आपको बता दे, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौधे से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित है। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20-30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है संतुलित उर्वरक एवं स्वस्थ मिट्टी। और नाम से पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम उर्वरकों का संतुलित रूप से इस्तेमाल करके मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कई सारे ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जो हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर उन फूलों के पौधे खेत में होते हैं तो कीटनाशकों का आपको कम प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप गेंदा के पौधों की बात करें तो सूत्रकृमि, जिसे कि नेमाटोड भी कहते हैं, या फिर कुछ और भी कीटों के प्रबंधन में काफी उपयोगी माना जाता है। वैसे ही सूरजमुखी और गेंदा जैसी और भी कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो मिट्टी की हानि कारक नेमाटोड के प्रबंधन में बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी होती है। और कुछ ऐसे भी फूलों के पौधे होते हैं जो लाभकारी कीटों को, जो कि फसलों को, मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत फायदेमंद होता है अगर आप अपने मुख्य फसलों के साथ फूलों के पौधों को लगाएं तो आपको आय तो मिलती ही है, साथ ही आपके फसलों को आप कीटनाशकों से बचाते हैं और आप मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं। और जब हम फूलों की बात करते हैं तो फूलों से हमें लगता है कि कितना ही आय हम कमा लेंगे, क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा, तुरंत मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि एक रास्ते पर चलने से आपको नुकसान होगा तो आप कई सारे रास्ते खुले रखिए। और जब फूलों की खेती की बात आती है तो बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन के बारे में। किसान भाई बहनों और जो भी हमारे श्रोता है, आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा स्रोत है आय का। आपको पता होगा कि हमारे बिहार में भी फूलों की बहुत ज्यादा मांग है, हर तरह के फूलों की मांग है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम ताजे, सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धन कर आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं या आय का एक नया जरिया बना सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह से। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापक उद्यान पुष्प एवं भूदृश्य विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ताजे, सूखे एवं प्रसंस्कृत फूलों के मूल्य संवर्धन के बारे में।
0: जी मैम, तो मैम जब हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करते हैं तो फूलों का, पुष्पों का मूल्य संवर्धन क्यों जरूरी होता है?
1: देखिए, ताजे फूलों एवं पत्तियों में अधिक नमी होने के कारण इनकी आयु सीमित होती है, जिससे हम अधिक समय तक इन्हें भंडारित नहीं कर पाते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए फूलों को मूल संवर्धित करने की तकनीक काफी महत्वपूर्ण है, जिससे हम फूल की सुंदरता को काफी समय तक सहज कर रख सकते हैं।
0: जी मैम, तो अगर हम मूल्य संवर्धन के बारे में बात करें तो मूल्य संवर्धन के कितने वर्ग होते हैं?
1: देखिए, प्रायः तीन तरीके के फूलों को हम मूल्य संवर्धित कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ताजे फूलों का मूल्य संवर्धन। अगर हम फूलों को बाजार में बेचने ले गए हैं और कुछ फूल बच गए हैं तो वहीं बैठे बैठे हम उनसे कुछ ताजे फूलों में थोड़े सा कुछ ऐसे लगा के उनको मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं। दूसरा वर्ग हमारा ऐसे फूलों का होगा जैसे कि फूलों को हम सुखा लेंगे और सूखे फूलों से हम कई तरीके के उत्पाद बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा दूसरा वर्ग। और तीसरे वर्ग की यदि हम बात करें तो फूलों को या तो हम ठंडे पानी या गर्म पानी में उबालकर, पीसकर या उसमें किसी भी तरीके से प्रसंस्करण करके हम मूल संवर्धित उत्पाद बनाएंगे, तो ये हमारा तीसरा वर्ग हो गया प्रसंस्कृत फूलों का मूल संवर्धन।
0: पहले वर्ग के साथ मैम शुरू करते हैं, तो क्या फूलों के मूल्य संवर्धित उत्पादों की जब हम बात करते हैं
1: जी,
0: तो ताजे फूलों के मूल्य संवर्धन द्वारा कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: देखिए, ताजे फूलों से हम गुलदस्ता, मालाएं या जैसे गजरा, वेनी या फिर साज सज्जा के रूप में भी इन फूलों में, जैसे जो आजकल हम शादी ब्याह में डेकोरेटिव डेकोरेशन के चीजें देखते हैं, तो ये साज सज्जा भी की जा सकती है। तो आजकल जैसे शादी ब्याह बहुत ही आधुनिक हो गया है और इसमें सिर्फ मंडप ही नहीं अपितु इसमें हम बात करें तो गाड़ी, पंडाल या यहाँ तक कि घर के अंदर की भी सजावट की जाती है। वहीं फूलों से बनी हुई रंगोली और मेहंदी और हल्दी जैसे फंक्शंस में फूलों से बने गहने भी बहुत डिमांड में हैं। तो इस तरीके के उत्पाद हम ताजे फूलों से तुरंत के तुरंत बनाकर कर सकते हैं
0: जी, अगर फूल बच गए तो उसका इस्तेमाल कर
1: जी।
0: तो मैम क्या पुष्पों के जब हम मूल संवर्धन उत्पादों की बात करते हैं, अभी आपने अलग अलग अवसरों के बारे में बताया, तो शोकाकुल अवसरों पर भी इसका प्रयोग हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है। जैसे उल्लासित अगर अवसरों की बात करें तो वहां तो हम बुके देते हैं या गुलदस्ता भेंट करते हैं, पर अगर हम शोकाकुल सभाओं की बात करें तो वहां भी हम एक कीपाकार गुलदस्ता या तिकोनाकार या गोलाकार गुलदस्ते का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में रीथ बोलते हैं। प्रायः इनमें हम हल्के वर्ण के फूल, क्योंकि शोक है तो हल्के सफेद से लेकर हल्के रंग के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, और जितने ही फूल तो उतनी ही पत्तियां भी इस्तेमाल करके इनका आकार दिया जाता है। और आजकल जैसे कि कह लें कि इसमें खास बात यह है कि फूलों के साथ इसमें पत्तियां भी जो इस्तेमाल होंगी तो वो बड़ा अच्छा लुक देती हैं, मतलब फूलों के साथ उनका कंट्रास्ट इफेक्ट आता है। मेनली जैसे कि फूल हो गए गुलाब, कार्नेशन, ग्लैडुलस, एस्टर, लिली, या पत्तियां हो गई जैसे साइकस, ताड़, फर्न, इनको हम प्रयोग करके बहुत अच्छे रीथ्स बनाते हैं, और ये रीथ्स बुके के मुकाबले काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं, तो इनका भी शोकाकुल सभाओं में प्रयोग होता है। और वहीं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे कि डिप्रेशन जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ऐसे में गुलाब का तेल या तुलसी का तेल या इनके पौधे बगीचे में होना भी एक बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि ये भी हमारे एज अ एंटी डिप्रेसेंट काम करते हैं। इनसे जो निकलने वाली खुशबू होती है ये एरोमाथेरेपी में भी बहुत काम आती है।
0: जी मैम, मैम जब हम फूलों से साज सज्जा की बात करते हैं तो क्या इस वक्त हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है?
1: जी, बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि सामान्यतः फूलों की साज सज्जा के मिश्रण में हल्के रंगों की अपेक्षा गहरे रंग अधिक इस्तेमाल होते हैं, बट वहीं पर जैसे मैंने बताया शोकाकुल में आप हल्के रंग इस्तेमाल करेंगे। और फूलों के संयोजन में क्या होता है कि कलियों को प्रायः हम किनारे की ओर रखते हैं, और जो भारी फूल होता है उसे हम, या चटकीले रंग का फूल होता है उसे हम सेंटर पर रखते हैं। प्रायः हमें एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि फूलों के अधिक रंग या अधिक तरीके के फूलों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 तरीके के फूलों का ही इस्तेमाल करके हमको गुलदस्ता या साज सज्जा करनी चाहिए। और वहीं पर कृत्रिम रोशनी अगर है तो हल्के रंगों की जगह गहरे रंग इस्तेमाल करने चाहिए, और नेचुरल लाइट में हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और फूलों को यदि पात्र में रखना हो तो फूलों की लंबाई पात्र से कम 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए। और प्राकृतिक रूप प्रदान करने के लिए हमें प्रायः लचीली टहनियाँ या लटकने वाले क्लाइंबर जो फ्लावर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अभी हमने बात करी थी कि गाड़ी को जब हम शादी ब्याह के लिए सजाते हैं तो उसमें भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो फूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे गाड़ी के रंग से विपरीत हो, तभी वो निखर के आएगी उसकी सजावट। और यदि कार को बहुत दूरी तय करनी है तो हमको फूलों की डंडियों के नीचे गीली फोम का इस्तेमाल करना चाहिए। और कम खर्चे में अगर गाड़ी को सजाना है तो छोटे छोटे बटन होल का प्रयोग करना चाहिए। अधिक खर्चे में भी हमें भारी भरकम सजावट से बचना चाहिए ताकि गाड़ी चलाने में कोई असुविधा ना हो। और प्रायः सफ़ेद गाड़ियों के लिए हमें रंग बिरंगे फूल जैसे ऑर्किड, जरबेरा या गुलाब, या फिर हरी चटकीली पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही में इनके रिबन या हल्के नेट या फ्रिल को इस्तेमाल करके भी हम गाड़ी को सजा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम रंगों पर सही ध्यान देंगे तो बड़ी अच्छी सजावट निखर के आएगी।
0: जी मैम, मैम अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम सूखे फूलों के मूल्य संवर्धन की बात करें तो वो किस प्रकार किया जा सकता है?
1: देखिए, यहाँ पर फूलों को सुखाकर फिर हम अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। ये जो उद्योग है ये बड़ा नवीन उद्योग है, क्योंकि इसमें हम सूखे फूलों को उनके ढांचे के बिगाड़े बगैर या उनके नेचुरल प्राकृतिक रंग को संजो के सुखाते हैं, एवं अन्य विभिन्न तरीके के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि हो गई आपकी फ्रेम जड़ित तस्वीरें, बधाई कार्ड, कवर या पुष्पगुच्छ, मोमबत्ती स्टैंड या शीशे की कटोरी में बने हुए पेपर वेट, ऐसे बहुत तमाम इस तरीके के उत्पाद हैं जो हम सूखे फूलों से बना सकते हैं। ये उत्पाद टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं और थ्री डायमेंशनल भी। और अन्य उत्पाद जैसे जो और उत्पाद हैं टू डायमेंशनल में हैं, ग्रीटिंग कार्ड या फिर पॉट पोरी या फिर आपका वॉल हैंगिंग हो गया, पुष्प विन्यास हो गया, या थ्री डायमेंशनल में गुलदस्ता, पेन स्टैंड, इस तरीके के उत्पाद हो गए जो होटलों और मॉल में बहुत मांग में हैं। साथ ही ऐसे उत्पादों से जो खाली बैठी घर में महिलाएं हैं या कोई भी वर्ग है वह इसका बहुत फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है। इसमें हम कबाड़ का इस्तेमाल करते हैं, घरेलू जो कबाड़ है उसके साथ खराब फूलों को सुखाकर उनसे उत्पाद बनाते हैं, और वहीं इनकी डिमांड अधिक होने के कारण इनकी जो बिक्री दर है वो बहुत अच्छा है।
2: जी मैम, मैम आपने एक और वर्ग की बात की थी प्रसंस्कृत फूलों के बारे में
1: जी,
2: जहां आपने बताया था उबाल सकते हैं, तो फूलों को उबाल कर कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: देखिए, हर तरीके के तो फूलों को नहीं उबालते हैं, जो फूल टेम्परेचर को सहनशीलता जिनमें रहती है उनको उबालते हैं, या फिर कुछ को ठंडे पानी में ही हम रख के उनसे तेल निष्कर्षित कर सकते हैं या रंग निष्कर्षित कर सकते हैं, और इनसे हम हर्बल गुलाल, धूपबत्ती, या फिर फूल अगर हमारा बहुत तादाद में बच गया है तो इसे गड्ढे में डाल के हम खाद में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर जो बचे हुए फूल हैं उनको सुखाकर पाउडर बना के मुर्गी के दानों में मिश्रण बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो होता है क्या है, अक्सर इसके लिए गेंदा का प्रयोग किया जाता है, जब डेकोरेशन के बाद जो फूल गेंदा के बच जाते हैं तो उनको पीस कर, क्योंकि इसमें कैरेटिनॉइड और भी पिगमेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, तो ये मुर्गी की आँखों की बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और अंडे के पीले भाग को और रंग प्रदान करते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो इस तरीके के उत्पाद बनाकर भी हम काफी लाभ कमा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम उबाल कर या पका कर बात करें तो इससे हम गुलकंद या फूलों से बनी हुई चाय या सौंदर्य आइटम जैसे हो गए क्रीम, शैम्पू या गुलाब जल, ये भी बना सकते हैं।
2: जी मैम, तो मैम अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को एवं अन्य श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि फूलों से, अगर आप फूलों से खेती करेंगे तो बहुत इससे फायदा है। फूलों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमी अधिक है, बस इस नमी को यदि हम कंट्रोल कर लें और इससे मूल संवर्धित उत्पाद बना लें तो किसान भाई बहन या उनके परिवार में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, या शारीरिक कमज़ोर से भी अगर कोई मेंबर है तो वो घर बैठे बैठे ऐसे ऐसे उत्पाद बना सकता है जिनकी भारी डिमांड है और इससे बहुत लाभान्वित हो सकता है।
2: जी मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि किस प्रकार से ताजे सूखे और प्रसंस्कृत पुष्पों से मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान भाई बहनों, फूलों की खेती से न केवल आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी फसलों को बचा सकते हैं और अंततः फायदा इससे हमें ही होता है। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीकू, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
5: हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में, और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें, यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं?
10: जैसा कि आप, हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नजर आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
5: संक्रमण होने
10: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नज़र आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2 साल 3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है। और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
5: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है?
10: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफी अधिक रहती है। और खास करके वैसे पशु जो ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं, उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
5: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज्यादातर देखा जाता है,
10: ये ज्यादातर पाया ही जाता
5: और
10: है।
5: सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है?
10: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-6 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है,
5: अच्छा,
10: और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
5: और गला
10: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
5: और सर, एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
10: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
5: तो इसके लक्षण क्या?
10: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी, अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांघ वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और यह सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है, शरीर का तापक्रम, वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है, और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें, प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
5: टीकाकरण पर विशेष बल देना है, और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
10: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग भी होते हैं।
5: खुर और मुँह,
10: हाँ, तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
5: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
10: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है, और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुरपका और मुंहपका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है। किया जा रहा है लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशु पालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
5: उनको नुकसान होता है,
10: दूध में काफी कमी आ जाती है और चलने में पैर के पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
5: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती है ये?
10: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
5: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
10: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी, जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो और ऊंचे स्थान पर रखें, वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें, उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वहाँ नमी की कमी रहती है।
5: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियाँ हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती है?
10: जी, ये सब सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग है और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
5: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
10: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
9: अच्छा।
10: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहाँ जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
9: अच्छा।
10: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है HS, BQ और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
9: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज्यादा अच्छा होगा। आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु है उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं। अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
10: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
9: जहां पर सभी पशु,
10: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहाँ जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहाँ पानी जमा होता है, जहाँ घोंघे की अधिकता होती है, वहाँ पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें, या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल, जो जल जमाव है, वहाँ का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
9: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
10: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
9: अच्छा।
10: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
9: अच्छा।
10: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
9: कृमिनाशक दवा
10: बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये, इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
9: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से, यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो हैं वो बीमार ना पड़े। और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटी मोटी उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
10: यहाँ तक है, जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें और

0: अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें, और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, हाँ HS बीमारी में हम लोग सल्फाडीमाडीन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडीमाडीन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावे चूँकि HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरोलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूँकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है, तो इनिशियल सबको सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है तो वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई जरूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ सबसे जरूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव। हाँ। तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें, अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
1: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए, और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
8: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
9: देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। ये बहुत ही अहम विषय है, क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है, तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें, और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें, और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहां पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहां पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम

0: कुछ फसलें कट गई हैं। बाढ़ से प्रभावित धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
1: जी सर। सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहाँ चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज़्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
1: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीज़ें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहाँ पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहाँ पे ना हो सके और मछलियाँ वहाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उन्हीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र है उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय, लगातार किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादक उत्पाद

0: उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004528893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है। आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी ब कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी ब कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करे या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक एक, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT presents audiobook Kriti, textbook of arts for grade 8.
1: Page number 17, chapter 2, one stage, many scripts. On the right side top of the page is given a QR code. When you scan the QR code, you will be able to get the additional sources related to the chapter. On the left side of the page at the top is a mask in green, yellow and orange colors. The most fundamental aspect of any performance is the script. It is important to write down your ideas and thoughts on paper to develop them further. In fact, that is why this textbook is written. It will not be enough for a teacher or a mentor to just talk about a concept and assume that you have understood and will remember it. Writing helps in multiple ways, such as point number one, bringing clarity, point number two, building on idea with more creativity, point number three, sharing with others for collaborative work, point number four, helping you remember and refer back when required, point number five, acting as a record for future generations. Writing takes many forms. You might be familiar with short stories, essays, poems, letters or emails, articles or blogs. Not just that, but every movie, TV show, web series, news telecast or documentary you watch also has detailed scripts written for it. Writing in its various forms is the invisible thread that ties all communication together. You will learn point number one, types of scripts, point number two, genres in various forms. Given is a page from the movie script Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Page number 18. Scripts for stage. Play scripts are written works intended for the performance on stage, in film or on television. Depending on the kind of performance, they are designed for they vary in structure, style and purpose. Some of the most common types of play scripts are listed below. Each type of play script serves a different artistic purpose, reflecting human experiences in unique ways. Understanding these types allows us to appreciate the diversity of theatrical storytelling. Play scripts in ancient India. Ancient Indian thinkers used the term rupa or rupaka for drama. The ancient Indian writers mostly use a term drishyakavya, visible poetry. The writings usually combined the dialogue and poetry. So all the Sanskrit play writers were also poets. The Natyashastra describes the different types of writing drama. Let us compare it with the current types of scripts. On the right side of the page are given three images. These are some ancient manuscripts written by Kalidasa on the bark of the birch tree. Page number 19. Types of scripts. Given is a table with two columns. On the left side, the heading is Dasharupaka Natyashastra and it consists of 11 rows. On the right side, it is written classification in scripts and this has 6 rows. On the left side are the Dasharupakas from the Natyashastra. The first row is Nataka. Nataka has 5 to 10 acts based on the stories on kings or divine beings with love, heroism or pathos. The second row is Prakarna. Prakarna has up to 10 acts. It is an entirely invented plot based on the society. The third row is Bhana. Bhana is a one-act play with an invented plot based on the rogues and heroism. The fourth row is of Prahasana. Prahasana is a one-act play based on the humor and happy contexts. It is comical in nature. The fifth row is of Dhima. Dhima has four acts based on a popular story including Devas and Asuras. The sixth row is Vyayoga. Vyayoga is a one-act play based on the traditional heroic stories that are non-comical. The seventh row is of Samvakara or Samvakar. Samvakar has 3 to 4 acts based on the traditional stories of Devas and Asuras. The seventh row is Anka. Uttasrishtanka is a one-act play that is composed primarily based on the Karuna Rasa. The ninth row is Ihamruga. Ihamruga is a four-act play that mixes popular stories and fiction based on Puranic stories. The tenth row is Vithi. Vithi is a one-act play with just 2 to 3 characters that can be performed at any location. Row number 2, classification in scripts. Row number 1, one-act plays are short dramatic works, typically lasting 10 to 30 minutes, that focus on a single, dominant and dramatic situation or conflict within a single act. Row number 2, two-act plays are stories with a climactic midpoint where the stakes rise or the protagonist's goal changes. Row number 3, three-act structure is a common plot structure used in films and television, divided into setup, confrontation and resolution. Row number 4, linear, cyclical and non-linear are different ways to structure the plot, including flashbacks and non-chronological storytelling. Row number 5, adapted script is based on pre-existing materials like novels, books, poetry, short stories or historical events. Given on the right side of the page at the bottom is an image of a manuscript. Page number 20. Activity 2.1. Script your style. While the writers wrote and experimented in different forms of writing over the centuries, let us do a simple experiment in class. Note, this can be done either in groups or individually. We will try 4 types of scripts. Each group or individual picks 1 type of script from the list given. Point number 1, dialogue script. Characters speak directly. Point number 2, narrative script. Narrator tells the story. Point number 3, mime script. Only actions and stage directions. Point number 4, musical script. Includes lyrics or rhythmic speech. The common topic for everyone is 2 friends walking in a forest where they find a box that has the birch bark and other writing material that Kalidasa used. Write 1 page in a style of your choice and compare the scripts. Discuss. Point number 1. Did the style affect the content? Point number 2. How does the experience of the audience vary? Do you know? On the right side of the page is given an image of the Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand. According to the Natya Shastra, the first written script was a Samvakara or the Samvakar, the seventh in the above list, by Brahma. It was based on the Amrita Manthana. As the process of creation of the performing arts, bracket, Nritya Utpatti, learnt in grade 6, bracket closed, had a discussion and debate between the Devas and the Asuras, Brahma thought it was appropriate for the first performance to be about them. The Amrita Manthana, bracket, churning of the ocean, bracket closed, by the Devas and the Asuras is a significant event that has been depicted in different parts of the world. The picture given is an iconic representation of the Suvarnabhumi Airport in Bangkok, Thailand. Note to the teacher. Though the given activity requires only one page, encourage the students to extend their writing and build the story creatively. They can also try multiple styles to explore the possibilities. This activity can also be extended to writing assignments of other subjects such as language or social science. Instead of writing an essay, the students can write it in the form of a story or a script. Page number 21. Genres. You must have heard the term genres when you read reviews or see the posters of movies or plays. This term is also used for novels, short stories, and other fictional work. What does it actually mean? Given is a box that reads, according to the Oxford English Dictionary, a genre is a particular type or style of art, music, literature, or film characterized by distinctive features. It essentially refers to a category or class of works within a particular form that share common characteristics. Based on the features in the writing, both in its style and content, it is characterized into a particular genre. The popular ones are tragedy. Focus on serious themes, often involving a flawed protagonist who had experienced downfall due to fate, personal mistakes, or societal forces. Given is the image of a distressed boy. Historical drama. These plays are based on historical events and figures with dramatizing real-life occurrences. Given is an image of a woman fighting a British soldier. Comedy, designed to entertain and amuse. It has humorous dialogues, misunderstandings, exaggeration, and happy endings. Given is an image of two girls making funny faces. Musical, incorporates songs and dialogue with rhyme and rhythm along with dance to tell a story. Given is an image of a lady in a sari singing along with a girl playing a guitar. Melodrama, emphasizes on the exaggerated emotions, moral conflicts, and a clear distinction between heroes and villains. Given is an image of a king along with a priest or a Brahmin. Mystery. It is centered around solving a puzzle, usually a crime. The answer is not revealed till the end. Given is the image of a boy dressed in a coat, tie, and a cap, carrying a magnifying glass and a paper that contains a clue to solve a mystery. Page number 22. Experimental. Break conventional storytelling norms by using unconventional structures, abstract themes, and surreal elements. Given is the image of two dancing clowns. Fantasy. incorporates magical elements in imaginary worlds, characters, and situations. Given is an image of two children. The boy is with a turban and the girl is wearing a bear costume. Docudrama presents a dramatized reenactments of real events and facts. Given is an image of a girl carrying a suitcase and a boy trying to stop her. These are only a few examples of genre. There are books and records that have documented more than 300 genres. The ones mentioned are broad-based and can include most works of literature. However, there are also writings in which the features of two genres are combined. In such cases, though the predominant theme is considered, it is listed under both categories. For example, tragicomedy is a blend of tragedy and comedy. The play mixes the serious themes with moments of humor and relief. Have you wondered why is the concept of genre is necessary? Why should we categorize them into different boxes? Can it not just be a free and creative way of expressing an idea? Point number one, genre is necessary because it provides a framework for understanding and interpreting texts. A piece of writing can be written in different ways depending upon the context. The reader or the audience may not know the state of mind or the intent of the writer. This might lead to misinterpretations and complications in understanding the text. Stating the genre helps avoid this problem. Point number two, it facilitates better organization of works. For example, if you go to a public library or a bookstore, you will see books classified based on the categories of genre. It makes it easy to access as you won't have to look among thousands of books every time. Page number 23. On the left side of the page is given a box. The box reads, "The writer of plays is called a playwright." Our country has seen hundreds of brilliant playwrights over the years. From the Sanskrit playwrights like Bhasa or Bhas and Kalidasa to the present day, there are numerous plays written on all genres. Here are two examples from the 19th century. Bharatendu Harishchandra. Born in Varanasi in 1850, he is known as the father of modern Hindi literature. He used the pen name Rasa. His most popular play, Andher Nagari, is performed in all languages till today. Given is the image of Bharatendu Harishchandra. T.P. Kailasam. Born in Karnataka in 1884, he wrote numerous plays in a unique style that combined Kannada and English. His plays are translated and performed across the country till today. He was known for his satire and sarcastic comedy, earning him the title Prahasana Prapitamaha. Given is the image of T.P. Kailasam. Given on the right side of the page is a box. Do you know? The box reads, "Even music, dance, and visual arts have genres. Just like the genres in theater." Given is the image of a tabla of the right side. Music and dance have genres like point number one, classical, point number two, folk, point number three, contemporary, point number four, semi-classical, and many more. Given is an image of a sitar. Visual arts has categories like point number one, portrait, Point number 2, landscape. Point number 3, still life, and many more. Given is an image of a visual art displaying fruits. How many have you learned so far? Given is a portrait of a woman.
2: Activity 2.2, genre genius. Now that we have discussed so much about various genres, you must have connected them to the books you have read or the movies and plays you have watched. Let us try to categorize these paragraphs into the genres we have learned. Remember, they could belong to specific genres or a combination of genres. Think and respond.
1: Page number 24. Given is a box with two rows and two columns. The first row and the first column reads, Title: The Curious Case of the Vanishing Vada Pav. Detective Ria sniffed the empty lunchbox. Someone here. She squinted at her classmates. Has onion breath and a guilty conscience. I was just checking if it was fresh. Kushal stammered. Just then, the principal walked in munching. Delicious snack, she commented. Case closed. Kushal fainted. Row number 1, column number 2. Genre. Title: The Last Paper Boat. Anil folded his last paper boat and placed it in the rainwater stream. It wobbled and then drifted away. His sister had made hundreds before falling ill. He whispered, "This one's for you." The wind howled like her laughter. As the boat disappeared, so did his childhood. Given is the image of a boy floating the paper boats in rainwater. Column number 2, row number 1. Title: Lunchbox Rhapsody. The bell had rung. The bags unzipped. With spoons in hand, the rhythm gripped. Smita sang of soft idlis. Rohan drummed with expert ease. Tiffins swirled in a tasty trance. Aruna broke into a chutney dance. The teacher came and tapped a beat. Now lunch and music made the treat. Given is an image of a happy lunch box. Column number 2, row number 2. Genre. Title: The Time Travelling Tabla. In ancient Mohenjo-daro, little Tara found a glowing tabla in the ruins. When she played it, a magical portal opened. Suddenly, Kalidasa appeared, reciting a verse in rhythm. "Back to your time," he warned. Tara stopped playing and poof! Back in class, she blinked. Her tabla whispered, "Next time, Maratha Empire?" Given are the answers. Row number 1, column number 1, title: The Curious Case of the Vanishing Vada Pav. Mystery plus comedy. Column number 2, row number 1, title: Lunchbox Rhapsody. Musical. Column number 1, row number 2, title: The Last Paper Boat. Tragedy. Column number 2, row number 2, title: The Time Travelling Tabla. Fantasy plus historical. Page number 25. Now that you have peeked into the magical wardrobe of genres, from mysterious boxes to musical ghungroos, it is time for you to start writing. Pick your favorite genre or combine a couple of them. Go ahead and try them all. Who knows, today you may be writing a tear-jerking tragedy and tomorrow a comedy that makes even your dog laugh. You may even create a new genre. The options are limitless. Given is an image of children performing a fantasy musical. Given is a box that reads, "Remember." Do not miss the basics of a story and script that you have learned in grades 6 and 7. Plan your beginning, middle, end and find an interesting conflict. This is a must for whatever genre or type of script you write. So, grab your pen and paper, your next superhit story awaits. Get your parents and teachers to sit back and enjoy your show. On the right side of the page is a cylindrical shape that reads circle time. Point number one, which is your favorite genre and why? Point number two, do you prefer lengthy writing like a novel or a play with 5 acts or short stories and plays? Point number three, read a scene of a script from ancient times and a scene from a contemporary play. Discuss and note down the differences in style and thought. Which one do you like more? Given is an image of a teacher sitting in a circle with 5 students. Page number 26. Assessment. Chapter 2. One stage, many scripts. C2.1. Creates and performs drama based on situations or stories that challenge stereotypes observed in their surroundings. C2.2. Connects elements of drama, themes and symbols with personal experiences, emotions and imaginations. Given is a table with 5 columns and 7 rows. Column number 1, CG. Column number 2, C. Column number 3, learning outcomes. Column number 4, teacher. Column number 5, self. Column number 1, CG, 2. Column number 2, C, 2.1. Column number 3, learning outcomes. Shares thoughts on genres and stereotypes associated with them. Column number 4, teacher, blank. Column number 5, self, blank. Next row. Column number 1, CG, 2. Column number 2, C, 2.2. Column number 3, learning outcomes. Relates different genres to the stories read or movies watched. Column number 4, teacher, blank. Column number 5, self, blank. Next row. Column number 1, CG, 2. Column number 2, C, 2.2. Column number 3, learning outcomes. Tries to create simple imaginary stories in each genre. Column number 4, blank. Column number 5, self, blank. Next row. Column number 1, CG, 2. Column number 2, C, 2.2. Column number 3, learning outcomes. Can bring in stories from personal experience to interpret in genres. Column number 4, teacher, blank. Column number 5, self, blank. Next row. Column number 1, CG, 2. Column number 2, C, 2.2. Column number 3, learning outcomes. Reads plays to identify different types of scripts. Column number 4, teacher, blank. Column number 5, self, blank. Next row, overall participation in class. Teacher's comments and students' observation, fill in the blanks. End of chapter 2.
0: Kriti, you were just listening to this audiobook, Textbook of Arts for Grade 8. Narration, Richa Jain. Sound recordist, Muhammad Faizan Khan. Assistance in production, Soumya Malik. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This audiobook is brought to you by CIET NCERT, New Delhi.
3: Namaste, class. टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीवी किसी को भी हो सकता है टीचर जी
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं
4: जी सर आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
6: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
5: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
9: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: क्या है बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
12: नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। रबी फसलों की बात करते हैं और दलहनी फसलों की हम बात ना करें तो थोड़ा अधूरापन रहता है। जी हां, रबी फसलों में बुआई के पहले और उसके उपरांत लगने वाले रोगों के प्रबंधन के बारे में आज हम जानेंगे। जी हाँ श्रोताओं, तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रमेश नाथ गुप्ता। मैं आप सभी को बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में। और डॉक्टर साहब आज बहुत सारी जानकारी देंगे हमें, तो स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बुआई के पूर्व रोगों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और बुआई के उप, डॉक्टर साहब।
13: प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दलहनी रबी के दलहनी फसलों का समय, बुआई का समय आ चुका है, तो अच्छी उपज लेने के लिए और खासकर रोगों से बचाव करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है और उसका प्रबंधन करना जरूरी है ताकि रोग का प्रकोप कम से कम हो और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो देखा जाता है कि अगर हम समय से बुआई करें, जैसा कि बुआई का समय आ गया है और यहाँ पे हमारे बिहार की परिस्थिति में जो बुआई का जो दलहनी फसल है खासकर चना और मसूर का, इसका बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय जो है ये सही समय माना जाता है। इस समय अगर लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ जाती है
12: जी।
13: अगर इसमें अगर लेट हो जाती है किन्हीं कारणों से, अगर धान की कटाई बाद हो तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक भी बुआई कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें प्रभेद का चुनाव करना आवश्यक होता है उसके अनुसार। तो सबसे पहली कड़ी है कि हमारा जो है बुआई अगर समय समय पर हो जाता है तो उसमें रोग और कीटों का भी प्रकोप काफ़ी कम जाता है
12: जी।
13: रही दूसरी बात कि जो हम बुआई करें तो सबसे बड़ी बात है कि खेतों में जो है खरपतवार के जो है वहाँ पे नहीं हो, खेतों की सफाई अच्छे ढंग से हो और जुताई हो तो बहुत ज़्यादा भुरभुरी जुताई ना हो, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है
12: जी।
13: तो जुताई भी अगर हल से भी करते हैं या ट्रैक्टर से भी करते हैं तो उसमें जो है मिट्टी को बहुत भुरभुरा होना ज़रूरी नहीं है। तो जुताई जो है अच्छी तरह से होना चाहिए, खेतों में साफ़ सफाई होना चाहिए, खेत बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा गीली रहेगी तो उसमें जो है बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तीसरी बात रही कि जो है हम सही प्रभेद का चुनाव करें। अगर हम सही प्रभेद का चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है उसमें बीमारियां कम लगती है और उत्पादन बढ़ती है। तो सही प्रभेद के चुनाव में अगर मसूर है तो हल 57 जो है ये अच्छी प्रजाति है और इनका उत्पादन भी अच्छा होता है। रही बात चना की, तो चना में हमारे विश्वविद्यालय द्वारा बहुत सारी प्रजातियाँ का विकास हुआ है चना में, उसमें खासकर जो है चना का जो है सबौर चना उवन जो है वो समय से बुआई के लिए उपयुक्त है और इसमें उत्पादन भी अच्छे होते हैं और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। दूसरी जो है हमारी प्रभेद जो है विश्वविद्यालय द्वारा है वो है सबौर चना टू। सबौर चना टू जो है नवम्बर के बाद करते हैं और 15 दिसंबर तक करते हैं, तो ये प्रभेद जो है उपयुक्त है और इसमें बीमारी भी कम आती है और इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। बुआई पूर्व रोगों से प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त प्रभेद का चुनाव भी करना आवश्यक होता है। और जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो है विकसित प्रजातियां हैं सबौर चना वन की समय से बुआई के लिए उपयुक्त है और इसकी बुआई अगर किसी कारणों से लेट हो जाता है तो उसमें हम सबौर चना टू की बुआई कर सकते हैं, जिसका जो है बुआई का समय आपको 15 नवम्बर से 15 दिसंबर तक है। तो इस दरमियान में ये प्रभेद अच्छा करता है और उत्पादन भी इसमें अच्छा होता है। छिटकौआ विधि द्वारा छीट करके ही बुआई करते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे बीजों का अंकुरण नहीं सही से हो पाता है क्योंकि बहुत सारे बीज ऊपर में रह जाते हैं, उनको प्रॉपर नमी नहीं मिलती है जिसके कारण जो है उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो बुआई के लिए जिस पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है ताकि हर पौधे को सही हवा पानी और उपयुक्त जो है उनका पोषक तत्वों को मिल सके। तो इस चीज़ों को अगर हम ख्याल रखते हैं तो उससे भी हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। इन सबसे ज़रूरी है कि अगर हम लोग ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो इससे भी बीमारी कम हो जाती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घने रहेंगे तो उस शरीर है वो बीज का उपचार करना ज़रूरी है। बीज उपचार जो है खासकर रोगों से बचाव करने के लिए आपको करना आवश्यक है। बीज उपचार करने के लिए जो सबसे ज़रूरी तत्व है उसमें कार्बोक्जिन, उसका जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उपचार कर सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रैकोडर्मा का उपलब्ध है तो हम ट्रैकोडर्मा 10 ग्राम, वह समस्या बहुत ज़्यादा है। वैसे खेतों में जो है हम 2 ग्राम कार्बोक्जिन और प्लस 10 ग्राम ट्रैकोडर्मा से बीज का उपचार करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा बीमारियों का प्रकोप कम होगा और साथ साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। और बीज उपचार में ये तो रोकथाम के लिए होता है, इसके अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते जो है कीट का भी प्रकोप होता है, तो अगर वैसे खेतों में जहाँ कीट का प्रकोप ज़्यादा हो और उकठा की समस्या ज़्यादा हो और उत्पादन भी अगर बढ़ाना हो तो उसमें समग्र बीज उपचार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कार्बोक्जिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार कर दें, उसके 12 घंटे के बाद हम कीटनाशक में जो दवा आती है क्लोरोपाइरीफॉस उसका 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करें और इसके 36 से 48 घंटे के बाद हम राइजोबियम से उपचार करें। अगर हम इस तरह से समग्र उपचार करते हैं तो निश्चित तौर से बीमारियां का प्रकोप भी कम होगी और साथ साथ हमारा उत्पादन भी कम से कम 15 से 20% सिर्फ इतना ही करने से हमारा बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर पर बीज उपचार करके ही लगावें अगर इस तरह से आप, तो इन सारी प्रक्रियाओं को समावेश करना ज़रूरी है। अगर समावेश करते हैं तो निश्चित तौर पर बीमारी हमारी कम आएगी। अब दूसरी बात रही कि बीमारियां जो है बुआई के बाद कौन कौन सी आती है, तो इसमें जो प्रारंभिक अवस्था में जो बीमारी आती है वो कॉलर रॉट की समस्या आती है। ये हमारे अंकुरण के 1 सप्ताह के बाद ही ये बीमारियां लगना शुरू हो जाती है पौधे के कारण, इसको कॉलर रॉट बोला जाता है, जो कि यह एक मृदा जनित बीमारी है। अगर हम ट्रैकोडर्मा से मतलब बीज का उपचार करते हैं तो निश्चित तौर पर ये कम जाता है। अगर जिन खेतों में इस तरह की समस्या ज़्यादा हो, उकठा की समस्या, निश्चित तौर पर प्रक्रिया उसको डालना चाहिए ताकि खेतों की जो है हिसाब से भी उसमें डाल के करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ये दोनों का प्रभाव तौर पर ये करना चाहिए बुआई पूर्व। और वैसे खेतों में प्लस मृदा जनित दोनों हैं तो वैसे खेतों में जो फफूंद जिस उसके कारक। तीसरी जो बीमारियाँ आती है वो शुष्क जड़ गलन की समस्या आती है। शुष्क जड़ गलन की समस्या प्रायः जब पौधे में जब दाने बनने लगते हैं और मृदा में नमी की कमी हो जाती है, वैसी परिस्थितियां अगर रहती है तो उस समय इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। और जब हम पौधे को उखाड़ते हैं उस समय तो ये तने का भाग जो है और जड़ का भाग जमीन के अंदर रह जाता है और तने का भाग जो है वो मतलब टूट जाता है। तो इस तरह से इस रोग को हम पहचान लेते हैं। अगर इस तरह की समस्या आती है तो उसको रोकथाम करने के लिए आप उस समय हल्की वह सिंचाई कर दें, क्योंकि ये रोग के तापमान बढ़ने के कारण ही ये पैथोजन का विकास होता है। तो उस समय हल्की सिंचाई कर देने से इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। एक बीमारी और प्रमुख है जो कि अभी हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है, उसको हम लोग स्टंट रोग के नाम से जानते हैं। और ये बीमारियाँ काफ़ी ये धीरे धीरे बढ़ने जा रही है और एक समस्या के रूप में सामने उभर कर आई है। ये स्टंट रोग जो है ये हमारे जो लाही है उसके द्वारा ये रोग फैलते हैं। ये एक विषाणुजनित रोग है और ये इसमें जो है आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें पत्तियां पीली और नारंगी और लाल रंग की पत्तियां हो जाती है। और जो इसके इंटरनोड होते हैं, जो पर्व होते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं। पौधे का विकास काफ़ी कम हो जाता है, पौधे बौने हो जाते हैं और इसमें बहुत कम फलियां लगती है। इस तरह से जो है इस बीमारी को हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगर इस तरह के बीमारी के लक्षण जैसे ही खेतों में दिखाई पड़े तो उस पौधे को उसको उखाड़ देना चाहिए और एक कीटनाशक कोई भी जैसे इमिडाक्लोरोफीड उसका 1 ml 3 लीटर पानी में स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि जो इसके रोग वाहक है जो बीमारी फैलाते हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये सब जो है हमारे प्रमुख रोग थे जिनका निदान करना ज़रूरी है और ये इनके पहचान भी आसानी से आ जाती है। तो बुआई से पूर्व भी कुछ प्रक्रिया अगर अपनाते हैं तो बिना पैसे को उसको हम कम कर सकते हैं, और अगर बुआई के बाद आती है तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम समग्र उपचार करते हैं तो निश्चित तौर से जो है जो लगने वाली बीमारियां हैं उससे हम काफ़ी हद तक उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं।
12: जी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि कैसे रबी में जो दलहनी फसलें हैं उनके बुआई के पहले और उसके उपरांत आप कैसे रोगों का प्रबंधन कर सकते हैं। सारी दवाइयों के नाम भी आप सभी को बताएं और तरीका भी बताएं। तो आशा करते हैं कि आपको आज के इस वार्ता से लाभ मिलेगा इसे सुनकर। तो इसी के साथ अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।
11: उन्नत कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM

0: चिंतित ही सुरक्षा को लेकर।
1: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
2: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दें, यानी कि उन्हें नष्ट कर दें। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में।
1: प्यारे बच्चों आदाब, मैं डॉक्टर चमन आरा खां, NCERT नई दिल्ली से। आज हम आपको आपकी 7वीं जमात की किताब अपनी जबान की दर्सी किताब से एक नज्म पढ़ाएंगे जिसका उन्वान है मेरा वतन। ये नज्म जो है ये लिखी है शफीउद्दीन नैयर ने। शफीउद्दीन नैयर के बारे में थोड़ा सा हम जान लें एक मुख्तसर तारुफ, उसके बाद फिर हम इस नज्म को पढ़ेंगे। शफीउद्दीन नैयर 1903 में पैदा हुए। नैयर इनका तखल्लुस था, अलीगढ़ के कस्बे अतरौली में इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की, फिर अलीगढ़ तालीम हासिल करने गए, उसके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक स्कूल में उस्ताद मुकर्रर हुए और वहाँ पर 65 बरस की उम्र तक पढ़ाते रहे। शफीउद्दीन नैयर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। उनका इंतकाल 30 जनवरी 1978 को दिल्ली में हुआ। तो ये जो नज़्म है मेरा वतन, ये भी शफीउद्दीन नैयर की नज़्म है। इन्होंने ज़्यादातर जो नज़में लिखी हैं वो जो कुदरती मनाजिर हैं उन पर लिखी है, फूलों पे, बागों पे, इस तरह की नज़में जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हैं। जैसे बंदरवाला इनकी नज़्म है, और भी बहुत सी नज़में हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इसी तरह से देखिए वतन के ऊपर तो हमारी पूरी उर्दू शायरी में बहुत नज़में लिखी गई हैं। इसकी जो दूसरी और नज़में हैं जिसमें दुनिया में जन्नत, वक्त की डिबिया, ये सब नज़में हैं। शफीउद्दीन नैयर साहब ने जो ये नज़्म लिखी है मेरा वतन, तो इसमें इन्होंने हिंदुस्तान के जो परिंदे हैं, चिड़िया है, तोता है, मोर है, बुलबुल है, चकोर है, इन सब का जिक्र किया है, झीलों का जिक्र किया है, दरियाओं का जिक्र किया है, झरनों का जिक्र किया है। तो आइए आज इस नज़्म को हम पढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है। मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, ज़मीने वो ज़रखेज दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, पहाड़ों का मंजर, बनों का समा है, इनमें हजारों ही चश्मे रवा, कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर घुमा, ये बागे इरम है, ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। शफीउद्दीन नैयर ने जो शुरुआत की है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी एक फख्र के साथ कह रहा है कि देखिए ये मेरा वतन है कि जिसमें चिड़िया है, तोता है, मैना है, मोर है, और कोयल, बुलबुल, कुमरी और चकोर। तो कुमरी जो है ना फाख्ता की किस्म का बच्चों एक परिंदा होता है, उसकी आवाज़ जो होती है ना बहुत गूंजदार होती है उसकी आवाज़। और चकोर जो होता है तीतर की किस्म का एक परिंदा है, उसे चांद का आशिक भी कहा जाता है। कहते हैं ना वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर। अब जैसे पहले शुरुआती उन्होंने नज़्म में किए ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, कहते हैं ये मेरा वतन है, ऐसे इस तरह से कह रहे हैं कि ये वो चिड़िया है, वो तोता है, वो मैना है, वो मोर है, वो कोयल है, बुलबुल है, खुमरी है, चकोर है, झीलों की लहरें हैं, यानी झीलें जो हैं उनमें जो लहरें उठती हैं वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। तो झरनों का गिरना ना पूरा एक मंजर हमारे सामने आ जाता है, झरने गिर रहे हैं, पानी का शोर हो रहा है, झीलों की लहरें हैं, दरिया जोरों पर है, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और बन, पहाड़ों का भी जिक्र कर दिया कि सरसब्ज जिसमें हरियाली छाई हुई है। सरसब्ज के मायने होते हैं हरियाली, हरा, सरसब्ज इसके पहाड़ और वन। उसके बाद कहते हैं वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुशरू फूलों की गुलकारियाँ। अब यहाँ पर गल्ले मेवे, गल्ले तो अनाज हो गया, मेवे जो होते हैं जैसे बादाम, पिस्ते और काजू वगैरह, ये सब मेवे होते हैं। तरकारियाँ यानी सब्जियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, यानी गुलकारियाँ यानी ऐसे ऐसे फूल हमारे मेरे मुल्क के मेरे वतन में हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, और फुलवारियाँ भी हैं, और कैसी फुलवारियाँ हैं जो सरसब्ज हैं, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ। सैराब यानी पानी से भरी हुई, खुशनुमा दिल को खुश करने वाली खुशनुमा क्यारियाँ मौजूद हैं। ज़मीनें वो जरखेज दिलकश चमन, ज़मीनें जरखेज़ हैं यहाँ की, यहाँ पे जो है हर फसल पैदा होती है। जैसे कि बताया कई मौसम है हमारे यहाँ, गर्मी, सर्दी, बरसात, और एक बाहर का मौसम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हर मौसम की फसल है, ज़मीनें हैं, ज़मीनें जरखेज़ हैं, दिलकश चमन है, खूबसूरत चमन यानी बाग हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन यानी मेरे वतन में ये सब चीज़ें हैं। हर तरह के तरकारियाँ हैं, हर तरह के गल्ले हैं, गल्ला यानी अनाज है, दालें हैं, चावल, ये सब तरह की हर तरह की फसल जो है मेरे मुल्क में मौजूद है। और इतना जरखेज़ मुल्क है मेरा। इसी तरह से पहाड़ों का मंजर, बनों का समा, पहाड़ों का मंजर, पहाड़ों का मंजर की बात कर रहे हैं, बनों का समा यानी बन जो है नी जंगलों में, जैसे पेड़ हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, झरने हैं, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवा, और इसमें चश्मे रवा हैं, ये झरने हैं, चश्मा कहते हैं झरने को, तो चश्मे रवा हैं। कहाँ तक बयां हूँ इसकी खूबियाँ, मैंने कितनी खूबियाँ मैं इनकी बयान करूँ कि इसकी कोई हद नहीं है। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना दिलकश मेरा वतन है। है फिरदौस का चमन पर घुमा, फिरदौस कहते हैं जन्नत को, तो जन्नत पर जो है ये चमन जो है यहाँ के जो बाग हैं उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हम जन्नत का गुमान होता है, जन्नत तो नहीं लेकिन गुमान होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि जन्नत में इसी तरह के फल फूल पेड़ पौधे गल ये सब चीज़ें होंगी। ये बागे इरम है या बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। जैसे कि मैंने बताया जो है क्यारियाँ हैं, गल्ले हैं, यहाँ पे हर तरह के अनाज हैं, मेवे हैं, खुश्क फल हैं, बादाम है, अखरोट, किशमिश वगैरह वगैरह और भी हैं, तो जो इस मुल्क में पैदा होते हैं, सब्जियाँ हैं, गुलकारियाँ हैं, गुल बूटे हैं, फूल जो हैं उनको तराशा जाता है, सैराब हैं, पानी से भरे हुए हैं जो चश्मे हैं, जरखेज हैं, ऐसी ज़मीन जरखेज़ किसे कहते हैं, उपजाऊ को कहते हैं बच्चों, जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है। तो यहाँ हिंदुस्तान में हर तरह की फसल होती है, गर्मी की अलग है, सर्दी की अलग है, बरसात की अलग है, तो इस तरह की फसलें होती हैं जो मौसम के हिसाब से होती हैं। चश्मा ज़मीन से उबलता हुआ पानी का, पानी या सोता, ज़मीन से उबलता हुआ पानी, पहाड़ों पे देखे होंगे आपने झरने बहते हुए, और चश्मा जो होता है वो ज़मीन से उबलता हुआ पानी होता है। रमा यानी बहता हुआ, फिरदौस के माने जन्नत है, जो मैंने बताया कि उस पर चमन जो है, जो बाग हैं उन पर जन्नत का गुमा होता है। ऐसे ही गुमान, गुमा के माने होते हैं शक, शुबा यानी वहम गुजरता है, हालांकि वो जन्नत नहीं है लेकिन जन्नत की जैसा है। जैसे हम कहते हैं अरे कितना खूबसूरत बाग है, कितना दिलकश बाग है, कितना खुशनुमा बाग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में आई, हवाएं ऐसी चल रही हैं कि जैसे जन्नत की हवाएं आ रही हैं। हवा के बारे में भी एक कहा जाता है, इसी तरह से दिलकश, दिल पसंद है, दिल को लुभाने वाली है। ऐसे ही बाग इरम, बाग इरम कहते हैं जन्नत का बाग, इरम बाग इरम यानी जन्नत का बाग, इरम भी जन्नत को ही कहा जाता है। बाग़-ए-अदन वो जन्नत का बाग जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। तो इस नज़्म में ज़्यादातर जो मंज़र बयान किए गए हैं बड़े खूबसूरत मंज़र हैं, जिसमें सबसे पहला मंज़र जो है वो बागों का है, फूलों का है, परिंदों का है, उसके बाद चश्मों का है, पहाड़ों का है, दरियाओं का है। तो ऐसी इसी नज़्म के उस पर मुझे एक हमीदुल्ला अफसर का एक नज़्म है जैसा मेरा देश, उसकी एक चार लाइनें याद आ रही हैं जो उन्होंने अपनी नज़्म में कही है, कैसे अच्छे अच्छे दरिया वो उनका इठलाकर चलना, दो बहने हैं गंगा जमुना, दुनिया में सानी नहीं उनका, जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं। देखिए जहाँ इन्होंने कहा कि दरियाओं के बारे में कहा है, ऐसी हमीदुल्ला अफसर ने भी, कैसे अच्छे अच्छे दरिया वो इनका इठलाकर चलना, और दो बहने यानी गंगा और जमुना का जिक्र कर दिया, गंगा जमुना उनका जिक्र किया है, और दुनिया में उनको कोई स्थानी नहीं है यानी उनको कोई दूसरा है नहीं, जैसी गंगा जमुना हमारे मुल्क में बहती है, तो जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं। अब हम सवालों की तरफ आते हैं कि शायर ने इस नज्म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है, तो वही है, कुमरी का है, चकोर का है, बुलबुल का है, मोर का है, चिड़िया, तोता, मैना, इन सब का जिक्र जो है इस नज्म के अंदर किया है। दिलकश चमन किसको कहा है उसने, वतन को कहा है। इस नज्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियां बयान की गई हैं, जो खूबियां बयान की गई हैं उनको आपको इसमें से देखकर समझकर लिखना है, और वो क्या खूबियां हैं, वो यही है कि भाई आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है, हर तरह के परिंदे हैं, हर तरह के मेवे, हर तरह का जो है वो अनाज यहाँ पैदा होते हैं, और यहाँ के बाग, यहाँ के झरने, यहाँ के पहाड़, इन सब का जिक्र जो है भारत शायर ने, शफीउद्दीन अय्यर ने बड़ी खूबी से बयान किया है, और उसमें जो ज़बान का इस्तेमाल किया है वो बड़ी आसान और आम फहम ज़बान है, यानी ऐसी ज़बान है जिसको आप जो है वो आसानी से समझ में आ जाती है, कोई मुश्किल लफ्ज़ जो है उन्होंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि सारे लफ्ज़ जो हैं वो आसान हैं और उसकी मौजू की मुनासबत से हैं, क्योंकि वो वतन के फूलों का, बाग़ों का इसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें ये सब लफ्ज़ों का, दिलकश जैसे लफ्ज़ है, खुशनुमा लफ्ज़ है, तो इन सब लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं या कोई नज़्म लिखते हैं, क्योंकि नज़्म जो है बच्चों एक मुसलसल इज़हार ख्याल होता है, नज़्म जो है किसी मौजू पर मुसलसल इज़हार ख्याल करते हैं, जैसे कि यह नज़्म है मेरा वतन, तो मेरे वतन में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरा वतन कैसा है, इस पर जो है वो शायर का पूरा जो है फोकस है, और उसमें वो यही बताते हैं कि मेरा वतन हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा वतन है, और उसमें ये सब चीज़ें जो ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत का गुमान इस पर हो रहा है, और खूबियाँ भी बयान की अपने वतन की, हर तरह के अनाज हैं यहाँ पर, हर तरह के परिंदे हैं, और हर तरह की मेवजात यहाँ पर हैं, हर तरह के परिंदे, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। बच्चों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जब भी कोई नज़्म पढ़ें तो ठहर ठहर के पढ़ें, नज़्म को नज़्म के अंदाज से पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि हर चीज़ हर आप पर वाज़े हो जाए, लफ्ज़ को दुरुस्त अदायगी के साथ, मुनासिब लब व लहजे के साथ जो है आप उसको पढ़िए, तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखिए, दिलकश को दिलकशी बोलिए, दिलकश मत बोलिएगा, क्योंकि उसकी मीनिंग फिर जो है वो बदल जाएंगे, ऐसे ज़रखेज़ लफ्ज़ है तो ज़रखेज़ मत करिए उसको, ज़रखेज़ पूरा क़े और ज़े की आवाज़ जो है वो पूरी निकलनी चाहिए, इसी तरह से जो है कुमरी है तो कुमरी ना निकल जाए आपके मुंह से, तो कुमरी को ख़ाफ़ की आवाज़ जो है वो बाकायदा आपको तलफ़्फ़ुज़ को ऐसे ही अदायगी करनी है, और मुनासिब लब व लहजे के साथ, मौज़ूनियत के साथ उसको पढ़ना है और पढ़कर समझना है, समझ कर उसको जो मरकज़ी ख्याल है उसको लिखना है। मरकज़ी ख्याल क्या है, वो यही है कि वतन के बारे में, वतन की अहमियत को, वतन की खूबियों को शायर इस नज़्म में बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करता है। पैगाम क्या देना चाहता है, पैगाम यही देना चाहता है कि भाई मेरा वतन हिंदुस्तान जो है वो इतना दिलकश और इतना अच्छा है कि इस पर जन्नत का गुमान होता है मुझको, क्योंकि ज़रखेज़ ज़मीन है यहाँ की, बाग फल और बाग है, मेवाजात हैं, बागों में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, जब बरसात का मौसम आता है तो इसमें आपने देखा होगा कि हर चीज़ धुल जाती है, सब्ज़ा जो है वो चारों तरफ साफ़ सुथरा नज़र आता है, फूलों में जान पड़ जाती है, कलियों में जान पड़ जाती है, और परिंदे भी चहचहाने लगते हैं और खुश होते हैं क्योंकि गर्मी से सबका बुरा हाल होता है। तो इस तरह से उसने जो शुरुआत में जो एक कहा है कि मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, नहीं एक बड़ाई बयान कर रहा है, अपने वतन की खूबियां बयान कर रहा है, इसी तरह से इसमें कुछ लफ्ज दिए गए हैं, नीचे लिखे हुए कुछ लफ्ज हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें है वतन, तो वतन पे आप वतन लिखिए और वतन को जुमले में इस्तेमाल कीजिए कि मेरे वतन का नाम हिंदुस्तान है और उसमें बहुत दिलकश बाग है। इसी तरह से मंज़र है, तो पहाड़ों का मंज़र बहुत अच्छा मालूम होता है, तो मंज़र लफ्ज़ जो है उसमें ज़रूर आना चाहिए। उसकी मीनिंग मत लिखिएगा बल्कि उस मंज़र को, क्योंकि लफ्ज़ अपने आप में कुछ नहीं होता, बल्कि लफ्ज़ को जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं विद कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ऐसी चमन लफ्ज़ है, ऐसी समा, कैसा खूबसूरत समा है या कैसा दिलकश समा है। तो समा यानी कैफियत, एक तरह से किस तरह का मंज़र है, तो वो मंज़र जो है वो आप इसके अंदर समा में लिख सकते हैं, कैसा अच्छा समा है या कितना खुशगवार वक्त है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इसके अंदर लफ्ज़ हैं जिनको आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही इसमें जैसे तरकारी है, तो तरकारी जो है वो वाहिद हो गया, उसके जमा तरकारियाँ हो गई। ऐसे जो है इसमें चश्मा है, तो उसकी जमा जो होगी बहुत सारे चश्मे यानी चश्मों। ऐसी जो है बाग, बाग की जमा बागों। इस तरह से नज़्म में जितनी भी वाहिद जमा और मुतज़ाद अल्फाज आ रहे हैं उनको इसी नज़्म से भी तलाश करके लिखिए। ऐसे इसमें मैंने बताया था जैसे लिखते वक्त भी जो इमला जो लिखते हैं आपकी मैडम आपको लिखवाती हैं, या घर में आप अपने इमला लिखते हैं, आपके घर में आपकी बहन या आपकी मदर आपको इमला लिखवाती हैं, तो उसमें जैसे इसमें है तरकारियाँ, तो आपने अगर उसको सही सुना होगा तो सही लिखेंगे, अगर आपने सुन लिया तरकारियाँ तो उसको क्या लिखेंगे, तरकारियाँ। तरकारियाँ तो कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है, तरकारी है, तरकारियाँ हो गया। इसी तरह से अब जैसे बागों, तो गैन की आवाज़ ने लिख के आपने गाफ उसके अंदर लिख दिया, तो वो हो जाए बागों, तो बागों तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो है इसका इमला जो है वो दुरुस्त आपको लिखना होगा। ऐसी मंजर है, तो मंजर को मीम नून और जो और रे से लिखा जाता है, और अगर आप उसको जे से लिख देंगे तो वो मंजर मंजर नहीं रहेगा, गलत लिख जाएगा। तो लफ्ज़ों को सही हिज्जे के साथ लिखना, सही तलफ़ुज के साथ लिखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वतन है, वतन वाव तोय और नून है, तो आप इसमें वतन को जो है बहुत से बच्चे लिख देते हैं वाव ते और नून वतन, तो ते तो उसमें है नहीं बल्कि तोय है, तो तोय को जो है उसमें लिखा जाएगा। तो इसी तरह सरसब्ज है, तो सरसब्ज को आप सीन से ना लिख कर स्वाद से लिख दें तो वो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इमला भी आपको दुरुस्त करना है, तलफ़्फ़ुज़ भी आपको उसकी अदायगी भी सही से करनी है, और उसको उसका जो मतलब है उसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मुनासिब लफ़्ज़ोलॉजी के साथ और मौजूनियत के साथ आपको पढ़ना है, मौजू करके पढ़ना है। यानी कि आप एक आंग होता है ना, एक लय होती है एक नज़्म के अंदर, उसी नज़्म के तहत उसको पढ़ना है। जैसे ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। देखिए एक ही लय में, ले आपकी एक ही होनी चाहिए, और अगर आपको आपने उसको ऐसे पढ़ दिया वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर इस तरह से, तो कोई भी नज़्म होती है ना उसका अपनी एक लय होती है, उस लय में जो है अगर आप उस नज़्म को पढ़ेंगे तो मज़ा भी आता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। आप जब उसको पढ़ें या उसकी किरत करें या उसको बुलंद खानी करें तो आवाज़ का भी आपको उतार चढ़ाव आपको देखना है, तो बहुत ज़्यादा ये ना हो कि बहुत खींच के पढ़ना है या बहुत ज़्यादा ऊपर एकदम चढ़ा दिया उसको, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान पढ़ते वक्त रखना है। जैसे मैंने बताया था चिड़िया, तो चिड़िया की जमा चिड़ियाँ हो गई, बुलबुल बुलबुलें, झील की जमा हो गई झीलों, दरिया की जमा दरियाओं, फिर झरना झरना की झरनों हो जाएगी, पहाड़ की पहाड़ों होगी और मेवे की में वो हो जाएगी। तो इस तरह से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद अगर आप बनाएंगे तो नए नए लफ्ज़ भी आप लिखेंगे और इस तरह से आपकी ज़खीरे अल्फाज में इजाफा होगा। और बच्चों आप भी नज़्म लिख सकते हैं किसी भी उस पर, इन्होंने तो वतन पे लिखी है, आप किसी भी मंजर पर, आप फूल पे लिख सकते हैं, आप बरसात पे लिख सकते हैं, या पहाड़ पे लिख सकते हैं, या कोई आपको परिंदा नजर आता है तो चिड़िया पे भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप नज़्म, लेकिन लिखते वक्त जब आप लफ्जों का इंतखाब करें, तब जैसे चिड़िया है तो चिड़िया से मुतालिक जितने लफ्ज हैं, जैसे चिड़िया आई, दाना लाई, इस तरह से, तो चिड़िया से मुतालिक जो जो चीज़ें हैं वो आपको उसके अंदर जो लफ्जियात है उनका इस्तेमाल जो है सही तरीके से करना होगा। चिड़िया आई, दाना लाई, या फिर एक नज्म जो है वो, एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्ही मुन्नी भोली भाली, पाली और भोली भाली, तो इस तरह से उसमें पूरा ये कहानी है कि एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई, मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूख आई डाला, चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद ना आई, चू चू चू चू करके रोई, सारी रात इसी में कोई, सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला, प्यार से जब उसको चमकारा, चिड़िया ने तोतों से चोंचों से मारा, बुढ़िया भागी अंदर आई, मिट्टी भरकर दाना लाई, जब बुढ़िया ने दाना खिलाया तब चिड़िया ने गीत सुनाया। तो देखा, ये भी एक गीत है और चिड़िया पर है, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी के नाम से है, बरकतुल्ला फराक की नज़में, जो कि बच्चों के शायर थे, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। तो ये मुझे नज़म याद आ गई, क्योंकि आपको बता रही थी कि नज़म को किस तरह से लिखा जाए, तो वो नज़म आप लिख सकते हैं। फिर ये है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप नज़में भी जमा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यार बच्चा नज़म लिख सके, आप नज़म नहीं लिख सकते तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में इकट्ठी कीजिए, उन नज़मों को याद कीजिए, इस नज़म को याद कीजिए और उसको सुनाइए आप अपने घर वालों को, और या फिर जो है तरन्नुम से गाइए, मिलकर गाइए, दो तीन लोग अगर मिलकर गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो गाने से क्या होता है वो जल्दी समझ में आएगी, और बच्चे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं खासतौर पर नर्सरी केजी के, या तो इस तरह के बच्चे जो है ना नज़में गा के पढ़ते हैं, गा के पढ़ते हैं तो उनको याद भी हो जाता है, क्योंकि आपकी बड़ी क्लास है, क्योंकि पाँचवीं क्लास आप पास कर चुके हैं, प्राइमरी आपका इब्तदाई जमातों से आप निकल कर अब आप प्राइमरी में दाखिल हुए हैं, तो अपर प्राइमरी में आपसे क्या तवक्कु की जाती है, यही तवक्कु की जाती है कि आप नए नए अल्फाज जो हैं उनको समझेंगे, और ज़बान मतलब आपने जो वहाँ पर सुनना बोलना पढ़ना लिखना सीखा है, तो यहाँ अगर आपका जो मयार है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ऊँचा हो जाएगा, और वो कैसा होगा ऊँचा, कि आप रवानी से बोलेंगे, रवानी से अपनी किसी बात का इजहार करेंगे, किसी मंजर को देख के उसके बारे में दो चार जुमले भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के जुमलों को लिखेंगे, या वतन से मुतालिक और किसी ने जो नज़में कही हैं, जैसे मैंने अभी आपको सुनाई थी हमीदुल्लाह अफसर की नज़म, और भी अल्लामा इकबाल ने भी लिखी है नज़में, तो उन नज़मों को भी आप ले सकते हैं, या और जो मनाज़िर फितरत पर लिखी गई हैं नज़में, उन नज़मों को भी आप इंटरनेट से तलाश कीजिए, उनको लिखिए और उनका एक वो बना लीजिए। ऐसे ही अब इसमें जो है वो से शेर मुकम्मल करने हैं, तो मिसरों को सही तरतीब से देख के लिखना, मिसरा दे दिया इसमें, वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, अब इसमें मुझे देखना है कि इसमें वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, तरकारियाँ और गुलकारियाँ, कहाँ तक बयां उसकी हों खूबियाँ, मुझीलों वो सरसा बागों की फुलवारियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुबा, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। तो इस तरह से आपको नज़्म जब आप देखेंगे, तो ये जो किताब में जो मशकें दी गई हैं, उस मशक में ये लिखा गया है कि मिसरों को सही तरतीब से लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए, क्योंकि जो शेर होता है दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, तो दोनों मिसरों को आपको जो है मिलाना है। अब इसमें एक एक मिसरा इधर दिया है, तो दूसरा जो है वो आप अगर आपको नज़म याद है तो बखूबी उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको देख कर और उस नज़म को कीजिए। अच्छा, इस ज़बान को मैं ये भी कहूँगी कि आप ये भी कर सकते हैं कि नज़म को ज़बानी याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी नज़म है और ज़बानी याद की जा सकती है, ज़बानी याद कीजिए, फिर उसको जो है वो तरन्नुम से गाइए, और उसके बाद ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में जब आपको याद होगी नज़म ना, तो आप आराम से उस नज़म को लिख सकते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि इसमें वतन की जो सबसे बड़ी वतन की अहमियत को बयान किया है शायर ने, शफीउद्दीन अय्यर ने, और इसके अलावा वतन की या मुल्क की, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बहुत सारी खूबियों को मुख्तसरन बयान किया गया है, क्योंकि नज़्म तो मुख्तसर बयान होता है, बहुत कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाती है, और नसर जो होती है उसको हम इतने वजाहत के साथ लिखते हैं। जैसे अब ये मेरा वतन है, मेरा वतन पे आप मज़मून भी लिख सकते हैं बच्चों, तो एक मज़मून जब लिखेंगे तो आप उसमें लिखिए कि भाई मेरा वतन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इतना ये चीज़ें हैं जो आपने इसमें देखी है, जो जो आप महसूस करते हैं, उन सब चीज़ों को लिखिए, एक पैराग्राफ कम से कम आप लिख सकते हैं मेरा वतन पर। ऐसे ही इस वतन की मोहब्बत और दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है कि शायर को अपने वतन से कितनी मोहब्बत है, वो ये कहता है ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी उस पर एक फ़ख्र महसूस करता है कि देखिए मेरा वतन कितना दिलकश है, कितना खूबसूरत है मेरा वतन, मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है कि यहाँ पर हर तरह के पर फूल हैं, क्यारियाँ हैं, चश्मे हैं, झरने हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपने नज़्म में भी, अगर नज़्म अगर लिख सकते हैं तो नज़्म में लिखिए। नज़्म ज़रूरी नहीं आप मेरे वतन पे ही लिखें, किसी और मौजू पे भी लिख सकते हैं, मेरे वतन पर आप मज़मून भी लिख सकते हैं, वतन पर कोई ड्रामा भी आप जो है वो लिख सकते हैं, उसको स्टेज कर सकते हैं, वो ड्रामा आपको जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर आप बना सकते हैं तो उसको जो है वो बना सकते हैं, और उसमें कुछ मुकालमे वगैरह जो है वो डाल दीजिए, और बहुत कितना 5 मिनट का बनाइए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 मिनट में आप अपनी बात को जो है बयान कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ बच्चों आपको इस नज़्म से एक तो पढ़ना, मौजूनियत के साथ पढ़ना, और दूसरे ये कि लह के साथ पढ़ना, सही तलफ़ुज़ से अदायगी करना, और इस नज़्म का जो मरकज़ी ख्याल है उससे वाकफियत हो गई होगी। इसके अलावा वतन की अहमियत को जो शायर ने जो बयान की है, ज़बान को जो लिखा है, जो उनका अंदाज है, जिसको कहते हैं हम तहरी उसलूब कहते हैं, जिसको स्टाइल कहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस पर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार लगिए कि आपको ये नज़्म कैसी लगी और क्यों अच्छी लगी, इस पर कम से कम 5 जुमले तो आप लिख ही सकते हैं। और मैं समझती हूँ बच्चों आपको आज की नज़्म बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप जो है इस नज़्म को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए, समझ के फिर लिखिए। तो इस तरह से ये नज़्म जो है वो वतन की अहमियत, उसकी वतन से मोहब्बत और वतन दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है। तो इसके साथ ही मैं समझती हूँ आपको ये नज़्म बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना। सफर और ये मौसम हसी।
4: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
11: नमस्कार किसान भाई, मैं हूँ आरजे अनु और एक बार फिर से आ चुकी हूँ आप सभी के बीच लेकर उन्नत कृषि कार्यक्रम। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर हमेशा इस कार्यक्रम में बातें करते हैं किसानों के लिए, किसानों के हित की बातें। तो आज भी कुछ ऐसे ही बातें, आपकी खेती से जुड़ी सारी बातें हम लेकर आए हैं। लेकिन फिलहाल आज का एक हमारा बहुत ही खास विषय है, और जैसा कि जानते हैं आप किसान भाई कि आलू, जिसे सब्जियों का राजा कहा जाता है, आलू के बिना हमारा हर एक जो सब्जी है वो अधूरा रहता है। तो जब भी हम जाते हैं बाजार तो आलू ज़रूर खरीदते हैं। क्या आपको पता है कि आलू की खेती भी वैज्ञानिक तरीके से हो सकती है? जी हाँ, आलू की वैज्ञानिक खेती, आज यही विषय है हमारा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर से, और ये हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आलू की खेती किस मौसम में होती है?
12: आलू मिट्टी के नीचे तैयार होने वाली शीतकालीन कंद फसल है। आलू की खेती मुख्य सब्जी फसल के रूप में बिहार के प्रायः सभी क्षेत्रों में की जाती है। आलू की खेती ठंडे मौसम में, जहाँ पाले का प्रभाव नहीं होता है, सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके सही जमाव के लिए 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अधिकतम तापक्रम कंद बनते समय दिन का 20 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस तरह का तापमान उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर से मार्च तक रहता है। कम तापमान, सूर्य की तेज रोशनी और छोटे दिनों में कंदों का शीघ्र निर्माण होता है। 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर कंदों का निर्माण रुक जाता है।
11: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, शीतकालीन मतलब कि शीतकाल में इसकी जो आलू की खेती है वो हो सकती है, ये आपने बताया। तो डॉक्टर साहब, अब खेत की बारी थी कि हम आलू की खेती करना चाहते हैं, तो खेत की तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए? हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें?
12: आलू उत्पादन में खेत की तैयारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें तथा उसके बाद दो तीन बार कल्टीवेटर से जुताई करें। ध्यान रखें कि प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं, ताकि भूमि में नमी बनी रहे तथा मिट्टी भुरभुरी हो जाए। यदि भूमि में नमी की कमी हो तो जुताई से पूर्व सिंचाई कर लेना चाहिए, जिससे भूमि भली भांति तैयार की जा सके। उसके बाद जुताई के क्रम में खरपतवार एवं फसलों के डंठल वगैरह जो भी हो उसे चुनकर खेत से बाहर निकाल दें।
11: तो ये थी खेत की तैयारी। और डॉक्टर साहब, खाद और उर्वरक जो हैं, ये इसका इसके लिए यानी कि किसी भी फसलों की खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आलू की खेती की बात आती है तो इसके लिए अलग खाद और उर्वरक की ज़रूरत होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि खाद और उर्वरक आलू की खेती में कैसे दें, कौन सी देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए?
12: अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। आलू की फसल के लिए खाद एवं उर्वरकों की मात्रा भूमि की किस्म, भूमि की उर्वरा शक्ति, जलवायु, फसल चक्र एवं किस्म पर निर्भर करती है। नियमतः खाद एवं उर्वरक मिट्टी के परीक्षणोपरांत ही डालना चाहिए। अतः खेत जोतने के समय 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। गोबर की खाद खेत में डालने से न केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी पूरी होती है, बल्कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी पूर्ति होती है। आलू की फसल को प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर तथा 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए 730 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट या 325 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होती है। आलू की फसल को गंधयुक्त रासायनिक उर्वरकों से अधिक लाभ मिलता है, अथासंभव यूरिया के बदले अमोनियम सल्फेट तथा डीएपी के जगह सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा आलू बोने के समय ही करना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा मिट्टी चढ़ाते समय अर्थात बुआई के 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। बुआई के समय उर्वरकों को डालने की विधि पर ध्यान देना आवश्यक है। आलू के कंद उर्वरकों के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, अन्यथा कंद सड़ने की संभावना रहती है। अतः आलू बोने के लिए बनाई गई उथली नालियों में उर्वरकों को डालकर मिट्टी में मिला दें और तब आलू के कंद रखें, या कंद रखने के 50 सेंटीमीटर दूर उर्वरक को डालें। आलू के कंदों को पंक्ति में रखने के बाद मिट्टी चढ़ा दें। प्रायः देखा जाता है कि एक ही खेत में प्रत्येक वर्ष आलू लगाया जाता है। शुरू के कुछ वर्षों तक उपज अच्छी मिलती है, परंतु बाद में उपज में कमी आने लगती है, क्योंकि एक ही खेत में कई वर्षों तक लगातार आलू की खेती करने पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। अतः सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए प्रत्येक 2-3 वर्षों पर 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 10 से 15 किलोग्राम मैंगनीज सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व खेत तैयारी के समय ही खेत में डाल दें।
11: तो डॉक्टर साहब ने बताया आप सभी को कि खाद एवं उर्वरक किस मात्रा में, कौन से खाद एवं उर्वरक डालने चाहिए आपको आलू की खेती के लिए। और डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि हम अगर सही प्रभेदों का चयन करें तो हम आलू की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो आप किसान भाइयों को बताएं कि आलू के कौन कौन से प्रभेद उनके लिए अच्छे होंगे।
12: आलू की भरपूर उपज प्राप्त करने के लिए उसकी उन्नत किस्मों को ही उगाना चाहिए। आलू के प्रमुख उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे आलू का कुछ किस्में आगात किस्म होती है। जैसे आगात किस्म में आती है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी कुबेर, कुफरी जवाहर, कुफरी पुखराज। ये सभी किस्में 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है तथा इन्हें 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अवश्य ही लगा देना चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। फिर दूसरा ग्रुप आता है मध्य आघात। मध्य आघात के लिए अच्छी किस्में हैं कुफरी बादशाह, कुफरी लालिमा, कुफरी ज्योति, कुफरी चमत्कार। ये सभी मध्य आघात यानी कि मुख्य फसल वाली किस्में हैं जो लगभग 100 से 110 दिनों में तैयार होती है। इसे 20 नवंबर तक लगा देना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ पिछात किस्में। इसमें पिछात किस्में में मुख्य रूप से हैं कुफरी सिंदूरी, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2। ये किस्में लगभग 120 से 125 दिनों में तैयार होती है तथा इन्हें 30 नवंबर तक लगा देना चाहिए।
11: तो यहाँ पर हमने जो प्रभेदों के बारे में जाना है, डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्नतशील प्रभेदों को ही हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए, आलू के उन्नतशील प्रभेदों को, और उसके टाइमिंग के बारे में बताया कि कब और किस समय के बीच लगाएं आप, ताकि आपको फ़ायदा हो किसान भाइयों। और डॉक्टर साहब, जब बीजों की आवश्यकता की बात करते हैं तो हमारे जो किसान भाई है वो सही बीजों का चयन करेंगे तो उन्हें इस खेती में, आलू की खेती में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप बताएं हमारे किसान भाइयों को कि कौन से जो बीज हैं वो उनके लिए सही होंगे।
12: आलू का उत्पादन आलू के बीज के ऊपर निर्भर करता है। आलू के बीज पर लगभग कुल लागत का 40-50% तक खर्च आता है, अतः अधिक उपज हेतु सदैव प्रमाणित एवं निरोग बीज का उपयोग करना चाहिए। इसकी खेती के लिए बीज की मात्रा आलू के कंदों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे 25 से 30 ग्राम यानी कि बाजार में उसे सूत पर बिकता है, तो 25 से 30 ग्राम यानी कि 8 से 9 सूत का कंद प्रयोग में लाने पर एक हेक्टेयर के लिए 15 से 20 क्विंटल बीज लगेगा तथा 40 से 50 ग्राम यानी 12 से 14 सूत का कंद लगाने पर एक हेक्टेयर के लिए 20 से 25 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है। 20 ग्राम यानी लगभग 6 सूत से छोटे आकार के कंदों का प्रयोग करने पर उपज में कमी हो जाती है, अतः बहुत छोटे कंदों का प्रयोग बुआई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 25 से 30 ग्राम अर्थात 8 से 9 सूत यानी उससे बड़े आकार के कंदों को वायरस से ग्रसित होने की संभावना नहीं होती है तथा पौधे स्वस्थ एवं पुष्ट होते हैं। यदि बीज के कंद वायरस से ग्रसित होंगे तो कुछ दिनों के बाद पौधे की पत्तियां मुड़ने लगेगी यानी कुकुड़िया जाती है और ऐसे पौधों में कंद लगेंगे ही नहीं, और यदि लगेंगे भी तो आकार में बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, फलस्वरूप उपज में कमी आ जाएगी। आलू के बड़े कंदों को काटकर भी लगाया जा सकता है, परंतु कटी हुई आलुओं से बुआई अक्टूबर माह के बाद ही की जानी चाहिए, जब तापक्रम कम हो जाए। वायुमंडलीय तापमान अधिक रहने की स्थिति में कंदों को काटकर लगाने पर सड़ने की संभावना रहती है। कंदों को काटने के समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 आँखें, जिसे कलियां कहते हैं, अवश्य रहे। अंकुरित आलू के कंद ही लगाने चाहिए। उत्तर भारत में प्रायः शीतगृह में रखा हुआ बीज ही बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड स्टोरेज से बीज को निकालने के बाद उसे ठंडे हवादार और अंधेरे कमरे में फैलाकर एक सप्ताह छोड़ दें ताकि कंदों में अंकुरण आ जाए। यह हमेशा ध्यान रखें कि अंकुरण आने के बाद ही उसकी बुआई करें।
11: अच्छा, तो यहाँ पर हमने जाना कि कैसे बीज होने चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ बीजों की जो खराबी है उनके बारे में बताया कि अगर वैसे बीज रहते हैं तो आप उसे ना लें ताकि उससे आपको नुकसान ना हो, आपके जो फसल है उस पर नुकसान ना पहुँचे, उससे नुकसान ना पहुँचे। और डॉक्टर साहब, अब सस्य क्रियाओं की बात करते हैं, तो इसकी खेती में जो प्रमुख सस्य क्रियाएँ हैं वो हम जानना चाहेंगे।
12: इसकी खेत पहले तो कि जब हम आलू लगाते हैं तो उसको हमको बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। उपचारित करने के लिए एमिसान नामक दवा आती है, एमिसान 6, उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर उसे घोल बना लें और उसमें आलू को डुबो दें। 10-15 मिनट डुबोने के बाद उसे बाहर छानकर निकाल लें और छाया में सुखाने के पश्चात उसकी बुआई करें। बुआई की दूरी जो है हमेशा 50 से कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें और कंध से कंध की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें खरपतवार आ जाते हैं, अतः बुआई के 10-15 दिनों बाद निकाई गुराई करें ताकि फसल खरपतवार से मुक्त रहे। साथ ही साथ मिट्टी हल्की होगी जिसके कारण कंदों का विकास भी ठीक होगा। अब आलू बोने के बाद जो है उसमें मिट्टी चढ़ाना एक प्रमुख कार्य होता है, अतः आलू में मिट्टी का चढ़ाया जाना बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए मिट्टी चढ़ाना समय पर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। विलम्ब से मिट्टी चढ़ाने के कारण नए नन्हे कंदों को नुकसान होगा, अतः बुआई के 25 से 30 दिनों के अंदर ही खेत की कोरनी कर एवं नाइट्रोजन उर्वरक का भुरकाव कर मिट्टी चढ़ा दें। उसके बाद शस्क्रिया में मुख्य रूप से सिंचाई पर भी ध्यान देना आवश्यक है, तो सिंचाई के लिए हमें नियमित एवं हल्की सिंचाई का होना आवश्यक है। यदि बुआई के बाद नमी में कमी नज़र आए तो प्रथम सिंचाई बुआई के 4-5 दिन बाद

0: के बाद इसमें मुख्य रूप से फसल सुरक्षा भी आता है, तो फसल सुरक्षा के लिए इसमें मुख्य रूप से कजरा पिल्लू दीमक वगैरह लगता है, तो फसल को कजरा पिल्लू एवं दीमक से बचाने के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय फुराडाउन 3G एक कीटनाशी दवा है, इस दवा को 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के समय मिट्टी में डाल दें। आलू में मुख्य रूप से अगात झुलसा, पिछात झुलसा एवं वायरस रोग का प्रकोप होता है। इन रोगों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि फसल 5-6 सप्ताह का हो जाए तो इमीडा क्लोरोपीड कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में तथा इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद सिर्फ इंडोफिल M45 फफूंदनाशी दवा का 10-15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। यदि मौसम में नमी अधिक हो, तापक्रम बहुत कम हो, बदली छाए रहे तथा हल्की बारिश हो जाए तो रीडोमिल एम गोल्ड फफूंदनाशी दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना अति आवश्यक है, अन्यथा पिछात झुलसा रोग से फसल बर्बाद होने की संभावना रहती है। वैसे तो बिहार राज्य में पाला पड़ने की संभावना नहीं रहती है, परंतु कभी कभी तापक्रम काफ़ी कम हो जाता है और पाला गिरने जैसी स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति में फसल को बचाने के लिए खेत में कम दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे तथा रीडोमिल गोल्ड दवा का भी छिड़काव करते रहें। आलू के पौधों की पत्तियों में जब पीलापन आने लगे तो समझें कि अब मेरा आलू तैयार हो गया है, उसके बाद इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। आलू को खेत से निकालने के बाद उसे छायादार एवं हवादार जगह में 10-15 दिनों तक सुखाने के बाद ही भंडारण करें।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी कि आप आलू की वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि खेत की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, खाद एवं उर्वरक आप किस तरीके के और कौन से डाल सकते हैं, साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी खेती के प्रमुख सस्य क्रियाएँ कौन सी हैं, बीमारियों से बचाव के बारे में बताया। तो इन सारी चीज़ों की पूरी जानकारी आप सभी को उपलब्ध हो गई है और आशा करेंगे कि आप डॉक्टर साहब के बताए गए इन सुझावों को अपनाएंगे और आलू की खेती बिना रुकावट के साथ करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे

0: बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। यूमेन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन एफएम पर।
6: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फाली डाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगाज किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाज बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. हेलो नमस्कार, तो लीजिए फिर से हाजिर हैं हम और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु, लेकर आ चुकी हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम. जी हाँ, वैसे समय की बात करें, सीजन की बात करें तो सब्जियों की रोपाई का वक्त आ चुका है और उसमें भी बहुत सारे सब्जियां हैं जो आप अपने बागान में लगा सकते हैं. तो सब्जियों को लगाने से पहले ज़रूरी होता है कि हम सावधानियाँ बरतें. सावधानियाँ यानी कि जो कीट पतंगे हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, उन कीट पतंगों से हम कैसे आज़ादी दिलाएं अपने बागानों को, यानी कि खास तौर पर सब्जियों के बागानों को. तो आज हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं एक खास विषय पर जो है सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन. जी हाँ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर टी साहा जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में. और जहाँ तक देखा जा रहा है तो मौसम के अनुसार भी हमारे किसान भाइयों को अभी ये सलाह दिया जा रहा है कि वो अपने नए बागान सब्जियों के लगा सकते हैं. तो सबसे पहले हम बैंगन की ओर जाएंगे और ये जानना चाहेंगे कि बैंगन के अगर हम बागान लगाते हैं तो उनमें कौन कौन से कीट पतंगे जो हैं वो आ सकते हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम.
1: धन्यवाद. मैं पहले बताना चाहूँगा, बैंगन में हमारे बिहार में जो है मुख्यतर 3-4 कीड़े जो है सबसे ज़्यादातर डैमेज करते हैं. उसमें जो है बैगन के तना और फली छेदक है, जो जब हमारे बैगन ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उसके 20 से 25 दिन के बाद से ये कीड़े का आक्रमण शुरू होता है. ये पहले तना में अटैक डैमेज करता है, तना के अंदर वो जो है छेद करके उसके अंदर घुसता है, जब एक से जब उसका पिल्लू निकलता है उसके बाद फिर वो होल पहले शुरू में जो है बहुत छोटा रहता है, बट जब मैच्योर होता है लार्वे जो पिल्लू जो है वो निकल के फिर फ्रूट में डैमेज करता है. जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है, फल का अवस्था होता है तो फल में वो डैमेज करता है. ये पिल्लू जो है देखने में थोड़ा सा हल्का सा उजला और भूरा कलर का मिक्सचर है और जो उसका हेड है जो उसको बोलते हैं वो जो है भूरा कलर का होता है. और ये जो है दोनों तना को भी एवं फल को भी ये छेद करते हैं, किंतु इसका जो एडल्ट है जो संपूर्ण अवस्था है ये डैमेज नहीं करता है, किंतु इसका जो इमैच्योर जिसको हम लोग पिल्लू बोलते हैं इसको ज़्यादा डैमेज करता है सब्जी में, बैगन में. और ये डैमेज जो है लगभग 20-80% तक डैमेज करता है. रबी में भी डैमेज करता है, तो रबी फसल में थोड़ा सा कम करता है कंपेयर अगर किया जाए हम लोग खरीफ बैगन और रबी में अगर बैगन लगाए. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सबसे मुख्य कीट है जिसको हम लोग बोलते हैं हड्डा बीटल, ये शुरू के टाइम में ज़्यादा डैमेज करता है. जब बैगन का 2-3 पत्ती के समय आता है इसमें ये क्या, ये बैगन का पत्ती को जो है नोच के इसको पूरा उसका जो हरा वाला पोर्शन है, पीला हरा वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा डैमेज करके ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है. और उसमें जो पत्ती में जो वेंट्स वगैरह रहता है वही से बढ़ जाता है. तो इसके लिए हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा. जब बैगन का 2-3 लीप का स्टेज रहे उसी समय हमको इनको अच्छा से कंट्रोल करना पड़ेगा. अच्छा. उसके बाद तीसरा जो कीड़ा है ये है बैगन का जैसिड बोल सकते हैं हम लोग, ये पूरा पीला का हरा कलर का होता है, बहुत छोटा होता है और बैगन के पत्ती के निचले भाग में ये ज़्यादातर देखा जाता है. ये अंडा भी उसी के अंदर ही देता है, अंदर जो बैगन के नीचे वाला पत्ती में. और ये बैगन को बैगन से जो है पत्ती से रस चूस के इसको कंप्लीट जो है एकदम ड्राई कर देता है, जो पत्ता जो आहिस्ता आहिस्ता इसका अंदर जो क्लोरोफिल रहता है बैगन के पत्ती में ये पूरा ख़त्म करके इसको भूरा कलर का आकार कलर में आ जाता है. पहले पीला करते फिर भूरा कलर होके फिर पत्ती गिर जाता है. और ये वायरस नामक एक बीमारी भी फैलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ बेंजर. ये कैसे होते हैं देखने में, जब भी ये वायरस बीमारी आपके खेत में आएगा तो बैगन का जो नॉर्मल जो हाइट होता है उससे वो छोटा हो जाएगा, उसमें ना फल लगेगा ना फूल लगेगा और बैगन का जो जितना भी ब्रांचेस आता है उसमें छोटा छोटा जो है जो पत्ती है छोटा छोटा हो जाएगा और वो ऊपर की तरह थोड़ा सा मुड़ जाएगा और उसमें कोई फूल भी नहीं लगता है कोई फल भी नहीं लगता और उसका पत्ती का जो कलर है जो नॉर्मल हमारा बैगन का पत्ती का कलर है उससे ज़्यादा डार्क डार्क जो है डार्क हरा कलर का पत्ती आता है, तो ये जो है बहुत भयंकर बीमारी है। ये अगर आपके खेत में आ जाता है तो आपको तुरंत जो है आपको खेत को वो बीमारी से मुक्त करना पड़ेगा। और उसके बाद भी कुछ और छोटा छोटे कीड़ा है जिसे हम लोग बोल सकते हैं सादा मक्खी बोल सकते हैं बैगन का, ये भी डैमेज करता है। ये भी निचले वाले पोर्शन के बैगन के पत्ती के नीचे वाले पोर्शन पे रहता है, ये भी शुरू के टाइम में ही डैमेज करता है मैक्सिमम। ये जब डैमेज करता है जो पत्ती का फिर वही कलर चेंज हो जाता है और बैगन का पत्ती का कलर जो है ये पीला कलर का हो जाता है फिर भूरा कलर का हो जाता है, तो इससे भी हमको सावधानियां बरतना पड़ेगा। यही सब जो है बैगन का मुख्य कीट जो है हमारे इधर लगता है।
0: अच्छा, यहाँ पर आपने बताया डॉक्टर साहब कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं इन कीट पतंगों से, तो अब जो समेकित अगर हम इसके समाधान के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए खासतौर पर बैंगन के लिए?
1: हाँ, हम लोग अगर समाधान करने के जाए बेचा हम शुरू से बताना चाहेंगे हम कैसे बैगन का समाधान करेंगे। जैसे शुरू में हम आपका आप लोगों को बताएं जो बैगन का जो जैसीड है और सादा मक्खी है ये शुरू के समय में ज़्यादा लगता है और जो दो से तीन पत्ती में हड्डा बिटल लगता है।
0: अच्छा।
1: जो अगर हम बीज शोधन करके अगर हम लगाए तो ये हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है जैसे जैसीड हो गया सादा मक्खी हो गया ये जो है 20 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और नर्सरी में भी हम जब इसको बुआई करेंगे तब भी कोई दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारा जो है कीट जो फसल में जो कीटनाशी का प्रभाव भी कम होगा और हमारा फसल में जो फार्मर फ्रेंडली जो बंधु कीट है इसका भी नंबर बढ़ेगा और डिजीज़ भी हमारा कम है, मतलब तो रोग भी जो है हमारा कम आएगा। तो ये हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा। शुरू से हम लोग बीज शोधन करें, बस सीडलिंग डीप मतलब जो सीडलिंग जो नर्सरी से आप मेन फील्ड में जब रोपाई करेंगे तो सीडलिंग को अगर इमिडाक्लोपीड बथायोमिथाक्साम नामक जो दवा है इमिडाक्लोपीड का गौचो और थायोमिथाक्साम नामक एक तरह का दवा है, ये दवा अगर 3 ml और 5 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप इसको डीप कर सकते हैं। अगर कम मात्रा में बनाना है तो इसका मात्रा है 1 ग्राम/1 ml प्रति 3 लीटर पानी। अगर स्प्रेयर में लेना है तो 15 लीटर का नैपसैक स्प्रेयर में 5 ग्राम/15 लीटर स्प्रेयर में आप घोल कर सकते हो। तो हम इसको बीज शोधन जो है हम उसको नर्सरी से मेन फील्ड में लगाने के बाद हम इसको सीडलिंग डीप करके भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा जो चूसने वाले कीड़ा से हम 25 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा हड्डा बिटल के बारे में आप बताएं, जब आप 2 से 3 लीफ्स की स्टेज में हैं वो मैक्सिमम डैमेज करता है। अगर वो एक बार डैमेज मैक्सिमम कर देंगे तो फिर उसमें फल भी नहीं बनेगा, फूल भी नहीं आएगा और वो ग्रोथ भी बंद हो जाएगा, तो इसका ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम अगर समेकित प्रणाली में जाए तो हम जानते हैं हमारे गाँव में जो है राख मिलता है, राख मतलब जो जलावन करने के बाद जो रेसिड्यू रहता है उसको अगर हम कलेक्ट करके उसको अगर हम भुरकाव करें पत्ते के ऊपर, भुरकाव करने के बाद हल्का सा मिट्टी का तेल डाल दे, इसलिए डाल दे जो वो उसके ऊपर बना रहे, नहीं तो कभी कभी ये होता है बारिश के समय पे बा हल्का जो संडी के समय पे जो ड्यू जो पानी गिरता है उससे जो है वो फिर पत्ती में सट के नहीं रह सकता है। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसमें अगर डाल देंगे तो ये जो है हमको कोई भी कीटनाशी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमारा जो पत्ती जो है और हमारा बैगन का जो फसल है कीटनाशी मुक्त रहेगा और इस तरह से हम समेकित प्रणाली से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके गाँव में नीम का पेड़ है, नीम का पत्ती आपको मिलेगा, अगर नीम आधारित कोई दवा अगर आप इस्तेमाल करना चाहे अगर बाजार में उपलब्ध है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना मिले तो नीम का पत्ती जो है आप पेड़ से तोड़ के 400 से 500 ग्राम पत्ती मिक्सचर ग्राइंडर में उसको क्रश करके उससे जो निष्कास निकलेगा उसको एक उजला कपड़ा में पोटली बनाकर 1 लीटर पानी एक मिट्टी के घड़ा में या कोई भी बर्तन में आप रख के उसको ओवरनाइट जो एक रात तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन देखिएगा जो पानी का पूरा कलर चेंज हो जाता है, निष्कास से जो पानी में जो मिल गया उससे जो आपको जो बना जो नीम का सॉल्यूशन बना वो आप एक लीटर का पानी का जो बॉटल मिलता है उसमें आप उसको आप स्टोर कर गए, स्टोर करके उसी से 5 ml 1 लीटर पानी के दर से आप छिड़काव करें। अगर 15 लीटर का नेफ्सट्रक स्प्रे है तो 75 ml 75 ml का जो है आप लेके उसको छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको कोई कीटनाशी का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और हम जो है समेकित कीट प्रबंधन के और भी बढ़ सकते हैं। तो इससे बहुत हद तक हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप केमिकल में भी जाना चाहते हैं तो केमिकल के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक केमिकल है बहुत ही सस्ता है जिसको हम लोग बाजार में क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन जो नाक के नाम से मिलता है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो मात्रा है 1 ml 1 लीटर पानी में आप घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। ये हो गया जो चूसने वाले कीड़ा और जो चूसने और चाटने वाले। अब जो सबसे खतरनाक जो कीड़ा है बैगन का, तना और फली छेदक। तना और फली छेदक के लिए हमको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। इसलिए बैगन जो है हम डायरेक्टली इसको खाते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों को दिमाग में ये रखना पड़ेगा कीटनाशी का छिड़का जितना हद तक कम करें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो शुरू में हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू में हम आपको जैसे नीम आधारित दवा के बारे में बताएं, आप नीम आधारित दवा का अगर बाजार में मिले आप उनका छिड़काव कर सकते हैं। नीम के पत्ती से बना जो सॉल्यूशन बनाए हम उसको 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके 7 दिन के अंतराल में 25 से 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप उसके अंदर छिड़काव करने से ये जो है रिपेलेंट का काम करेगा। इससे क्या होगा, जो हमारे कीड़े का आक्रमण कम होगा। और हम फेरोमोन ट्रैप जो है बाजार में उपलब्ध है, फेरोमोन ट्रैप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं आपके खेत पे। इससे क्या होगा, जो मेल जो मक्खी होता है वो मक्खी सोचेगा उसका फीमेल उस ट्रैप के अंदर है, वो उससे मेटिंग करने जाएगा और उसके अंदर वो फंस के मर जाएगा। इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन हमारा जो बैगन का तना और फली छेदक का पॉपुलेशन है ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा और इससे हमारा कंट्रोल भी बहुत हद तक हो जाएगा। ये तो हुआ समेकित कीट प्रणाली। अगर हम केमिक बायोपेस्टिसाइड भी इसके अंदर हम बताना चाहेंगे, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस नामक एक बायोपेस्टिसाइड है जो बैक्टीरियासाइड बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1 ml 1 लीटर पानी में बाजार में BT करके नाम से मिलता है, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस भारत कुर्सटाकी के नाम से मिलता है, इसको हम लोग बाजार से खरीद के इसको भी 1 ml 1 लीटर के दर से पानी के दर से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ये भी समेकित कीट प्रणाली में कर सकते हैं। और दो बायो इंसेक्टिसाइड्स है, अगर आपको लगे जो नहीं मात्रा 10% to 15% डैमेज से ज़्यादा हो जा रहा है हमारे विल में, इस समय जो है आप दो बायो इंसेक्टिसाइड है, एक है स्पाइनोसेट जो बाजार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, इसका मात्रा जो है 2 लीटर पानी में 1 ml, और एक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाजार में प्रोक्लेम के नाम से मिलता है जिसका मात्रा है 5 लीटर पानी में 2 ग्राम। तो ये दोनों में से कोई भी मिल जाए, थोड़ा सा ये दो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है किंतु ये दवा तभी आपको स्प्रे करना पड़ेगा जब आपका खेत में कीड़े के आक्रमण 20% to 30% से ऊपर डैमेज कर रहा है तब। नहीं तो हम जो आपको समेकित कीट प्रणाली बताए जिसमें आपको नीम लीव्स कर सकते हैं, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस का स्प्रे कर सकते हैं और फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं तभी आप कर सकते हैं। और ये भी दोनों बायो इंसेक्टिसाइड है। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छा दो केमिकल पेस्टिसाइड है, इस एक जो नाम है फ्लूबेंडियामाइट जो फेम करके दवा के नाम से आता है, ये जो है 1 g/3 liter पानी में आप घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा जो है लैम्डा साइहैलोथ्रिन जो कैराटे के नाम से आता है, लैम्डा साइहैलोथ्रिन नामक दवा, ये भी बहुत अच्छा है, ये बैगन के तना फली तना छेदक के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसका भी यूज़ करते हैं, इसका दाम थोड़ा सा कम होगा। फेम नामक जो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है किंतु ये ही दवा आपको कब करना पड़ेगा, जब आपका आक्रमण ज़्यादा होगा तभी आपका छिड़काव करना पड़ेगा।
0: तो इस तरीके से आप बैंगन के कीट से छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप राख का छिड़काव कर सकते हैं उस पर किरासन तेल डालकर, और इसके अलावे जो है अगर सावधानियों की बात करें तो आप नर्सरी से जैसे ही आप उसे पौधे रोपाई के लिए ले जाते हैं तो बीज शोध करके ही ले जाएं, अन्यथा नहीं ले जाएं क्योंकि डर रहता है कि उसमें कीट पतंगे भी लग सकते हैं। इसके अलावे अभी बात आ रही है डॉक्टर साहब कि हम टमाटर की जो है रोपाई वो कैसे करें, अभी फिलहाल टमाटर की रोपाई का सीज़न भी है, सलाह दिया जा रहा है किसान भाइयों को कि आप टमाटर की आराम से रोपाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सावधानी भी बरतना है। और उसके उसमें सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि कीट पतंगों से कैसे बचा जाए, तो हम जानना चाहेंगे टमाटर खासतौर पर इस पौधे में जो कीट पतंग लगते हैं उनके बारे में और वो किस तरीके से इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं।
1: टमाटर में हमारे बिहार में मुख्यतः तीन चार तरह के कीड़े हैं जिसमें ज़्यादा समस्या दिखाई देता है शुरू के टाइम में, जो सादा मक्खी जिससे एक वायरस डिजीज़ जो हम लोग बताते हैं टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, मतलब पत्ता ऊपर की तरह कुकड़ी हो जाता है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ये जो वायरस जो बीमा वायरस बीमारी है ये सादा मक्खी नामक कीड़े से फैलता है। ये सब शुरू में ही सबसे प्रॉब्लम होता है। इसके छोड़ के टमाटर के सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है टमाटर फसल को वो है फली छेदक। वो जो है अंतिम अवस्था में आता है, जब फल आना शुरू होता है उस समय जो है फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, तो वो भी बहुत ही समस्या। तो फली छेदक को अगर हम लोग कैसे पहचाने, तो हम जब भी देखेंगे टमाटर के फल में छोटा सा छेद किया हुआ रहता है, जब भी उसका आक्रमण होता है उसको अगर हम तोड़े फल को तो उसके अंदर से एक पिल्लू, तो हरा कलर का पिल्लू जो है निकल के आएगा, तो वो सबसे ज़्यादा बैगन में जो है 20-30% तक डैमेज करता है अगर हम बैगन लेट में लगाए। अगर हम बैगन अक्टूबर से नवंबर के महीने में लगा देते हैं और हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च तक हो जाता है हमारे, उस केस में हम लोग देखते हैं जो बैगन में फली छेदक का आक्रमण कम है। अगर बैगन हम लोग लेट लगाते हैं, लगभग नवंबर के एंड दिसंबर में लगाते हैं और हार्वेस्टिंग हम लोग मार्च के मिडिल से अप्रैल तक करते हैं, तो उस फसल में हम फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादातर देखते हैं। ये फली छेदक छोड़ के जो तीसरा जो हमारा कीड़ा है, जो हम लोग टमाटर का लीफ माइनर कहते हैं, जो पत्ता में जो है सांप जैसा जो है अपना दाग छोड़ के जाते हैं, और ये भी जो है बहुत ही हद तक डैमेज करता है किंतु हमारा फल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, किंतु टमाटर का पत्ती के ऊपर मैक्स बहुत हद तक ये डैमेज पहुँचाता है। तो ये तीन जो है मुख्य कीड़ा है, टमाटर का सादा मक्खी, टमाटर का फली छेदक और टमाटर का लीफ माइनर। और माइनर अगर उससे भी अगर हम डैमेज अगर कम करें इसके बारे में अगर हम बताना चाहेंगे, तो टमाटर में माइट का भी, मकड़ी जिसको बोलते हैं, माइट का भी समस्या है। और इसमें जो है पत्ता जो है टमाटर का नीचे की तरह मुड़ने लगेगा, जब हम बताए सादा मक्खी जब आक्रमण होगा तो ऊपर की तरह मुड़ेगा, किंतु जब मकड़ी व माइट का आक्रमण होता है तो नीचे की तरह मुड़ता है। तो ये भी जो है बहुत हद तक डैमेज करता है टमाटर के पत्ते के शुरू के समय में।
0: अच्छा, तो ये हो गई बातें कीट की, और अब इसका समाधान कैसे करें हमारे किसान भाई, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम।
1: समाधान के लिए पहले ही हम बताना चाहेंगे आपको, शुरू से ही आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप बीज शोधन से शुरू करते हैं तो आपको जो बैगन टमाटर में जो वायरस बीमारी है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जिसको हम कहना चाहेंगे, इससे आप बहुत हद तक जो है आप निष्कास पा सकते हैं। इसमें जो है आपको जो है इमिडाक्लोपिड नामक दवा जो गौचो करके नाम से आता है 5 ग्राम प्रति केजी सीट, थायमिथक्सम बा एक तरह नामक दवा जो आता है वो भी 5 ग्राम प्रति केजी सीट के दर से आप इसको बीज शोधन कीजिए। बीज शोधन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं हम आपको ये थोड़ा सा बता दें। एक पॉलीथीन जो है आप मिट्टी में बिछा दीजिए और सीट को फैला दीजिए पॉलीथीन के ऊपर, और पॉलीथीन में थोड़ा सा हल्का सा जो है बीज के ऊपर नमी के लिए थोड़ा सा पानी का हल्का सा छिड़काव करें, और जो इमिडाक्लोपिड नामक दवा और थायमिथक्सन का जो पाउडर हम बताए वो पाउडर पूरा बीज में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करके आप हाथ में पॉलीथीन पहन के, खाली हाथ में नहीं, हाथ में कुछ पहन के, पॉलीथीन पहन के या कुछ भी ग्लव्स पहन के आप उसको अच्छा से मिला दीजिए। मिला के एक पूरा रात छोड़ दीजिए, अगले दिन बा अगले से एक दिन और छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन जाके आप इसको जो है सोइंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपको शुरू के समय में जो आपका वायरस नामक बीमारी का जो समस्या है ये समस्या आपके खेत पे नहीं आएगा, ये बहुत हद तक जो है आपको खेत में कंट्रोल भी कर देगा और कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव भी नहीं करना पड़ेगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है शुरू के 20 से 25 दिन के बाद अगर बीज शोधन करते हैं तो 30 दिन और 40 दिन के अंतराल में, मतलब 10 दिन के इंटरवल में, 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप दो छिड़काव, कीड़ा खेत में थोड़ा भी रहे तब भी आप कर सकते हैं। इमिडाक्लोपिड नामक दवा है वो एडमायर बा कन्फिडर के नाम से मिलता है, 1 ml 3 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। बा आप जो है थायोमिथक्सम जो एक तरह नामक दवा है इसका भी जो है आप 1 ग्राम 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर समय की पीठ प्रबंधन के तरफ आप जाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा, जो ये सादा मक्खी जो है, जो वेक्टर है जो बीमारी का, जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है, इसके लिए हम लोग योलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। योलो स्टिकी ट्रैप ये है, आप कोई भी पीला कलर का कागज व पॉलीथीन जो है, आप एक पिच बोर्ड जो है, बच्चे लोग जो पढ़ता है वो पिच बोर्ड उसको उखाड़ के पिच बोर्ड के दोनों तरफ जो पीला कलर का कागज साट दीजिए, साट के उसके अंदर जो है ग्रीस और गोंद का मिक्स करके, ट्रांसपेरेंट गोंद होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट गोंद और ग्रीस का जो है प्रोलेप मिक्स करके उसको ब्रश से इससे दोनों साइड में आप उसका प्रोलेप लगा दीजिए। लगा के जो है आप एक जो बांस का ये मिलता है स्टिक मिलता है उसको जो है आप गाड़ के जो फसल का जो हाइट होता है, जो हमारा पौधा का जो हाइट है उसी हाइट के अनुसार आप अपना जो ट्रैप जो बनाए उस ट्रैप को आप जो फील्ड खेत में लगाइए। ऊँचा ज़्यादा ऊँचा भी नहीं लगाना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाना, जो उसका हाइट है फसल का वही सिमिलर हाइट में आपको लगाना है। इसलिए लगाना है जो हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है वो ज़्यादातर ऊपर उड़ नहीं पाते हैं, वो बहुत ही वीक है, उड़ नहीं पाते, तो इसीलिए वो सिर्फ हवा के माध्यम से ही दूसरे जगह पे जा सकता है। तो ये जो हम येलो स्टिकी ट्रैप बताए, जो पीला कलर का ट्रैप बताए, इससे क्या होगा, जो हमारा सादा मक्खी उसमें अट्रैक्ट ज़्यादा होगा और उसमें जाके वो फंस जाएगा। एक बार जब उसमें फंस जाएगा उसके गोंद और ग्रीस के वजह से वो उधर से निकल नहीं पाएगा, उसी में वो मर जाएगा। तो इससे जो है बहुत हद तक हम पॉपुलेशन जो है हमारा सादा मक्खी का कंट्रोल कर सकते हैं। और शुरू में जो है आप नीम आधारित, आपको हम बताए थे नीम आधारित कोई भी दवा, निम्बिसिडिन हो, निमाजोल हो, एचूक हो, कोई भी दवा अगर आपको बाजार में मिले वो कर सकते हैं, बा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जिसको हम लोग नीम का बीज को मिक्सचर ग्राइंडर में क्रश करके उसका 5% सॉल्यूशन बना के 5 ml 1 liter पानी में घोल करके भी हम छिड़काव कर सकते हैं, पर नीम का पत्ती से भी हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो है हम कीट बताए, कीड़े के बारे में बताए, जो टमाटर का फली छेदक है, फली छेदक के लिए हम लोग शुरू से हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जब भी हम लोग जिस फील्ड में लगाना है उस फील्ड को अच्छा से जुताई करना चाहिए। इसलिए जो कीड़ा है, कीड़े का जो इमैच्योर जो अवस्था है वो एक इमैच्योर स्टेज जो है वो सॉयल जो मिट्टी के अंदर भी रहता है, अगर हम उसको अच्छा से प्लाउइंग करेंगे तो वो जो है सूर्य के सामने जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, उससे क्या होगा उसका पॉपुलेशन भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो प्लाउइंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो हम टमाटर में हम ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं, ट्रैप क्रॉप की आप मतलब जो है जो कीड़ा टमाटर छोड़ के दूसरे क्रॉप में भी अट्रैक्ट हो, उससे क्या होता है जो हमारा जो मेन क्रॉप टमाटर है वो बच जाएगा, जो ट्रैप क्रॉप है ट्रैप क्रॉप के ऊपर ही हम दवा का छिड़काव करेंगे तो मेन क्रॉप में कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होगा। तो ये ट्रैप क्रॉप का नाम है मेरीगोल्ड, गेंदा जिसको हम लोग बोलते हैं, गेंदा का जो है 25:2 रो, मतलब 25 रो टमाटर 2 रो गेंदा, 25 रो टमाटर 2 रो गेंदा, ये लगा के हम जो है अपना पेस्ट जो है जो हम बोले पिल्लू हेलिकोबर्फा वो हम गेंदा पे शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज गेंदा का जो फूल है वो जो पीला कलर का होता है इसमें वो अट्रैक्ट होता है और उसमें वो शिफ्ट हो जाए, तब हम गेंदा में स्प्रे कर से जो हमारा टमाटर जो मेन फसल है इसको पेस्टिसाइड के लोड से बचा सकते हैं। ये एक तकनीक है समेकित कीट प्रबंधन का। दूसरा जो समेकित कीट प्रबंधन का तकनीक है हम बताए थे फेरोमोन ट्रैप के बारे में, फेरोमोन ट्रैप भी आप लगा सकते हो, फेरोमोन ट्रैप का नाम है हेलिलियो। हम लोग अगर मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग मतलब कब हमारे खेत में कीड़ा है इसके अगर हम लोगों को जानना है तो इसके लिए हम लोगों को 1 hectare में 12 ट्रैप लगाना पड़ेगा 200-200 meter के दूरी में। उससे क्या होगा जो उसका एडल्ट का जो एडल्ट है पिल्लू का जो एडल्ट है वो उसमें फंस जाएगा, उससे हमको पता चलेगा जब हमारे खेत में जो है हेलिकोबर्फा का इन्फेस्टेशन शुरू हो चुका है, तो हम लोगों को सचेत रहना होगा। और उसके बाद हम लोगों को अगर इन्फेस्टेशन लेवल जो है 5%, 5% या 10% फ्रूट डैमेज से ज़्यादा हो तो हमको समेकित कीट प्रणाली में से एक दवा आता है HANPV, उसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबर्फा आर्मीजेरा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये नामक दवा का जो है हम 2.5 से 3 gram प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से बहुत 70-80-90% तक हमारा कीड़े का जो है कंट्रोल हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, तो हमको कोई रासायनिक दवा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसान बंधु रासायनिक दवा में भी जाना चाहता है तो रासायनिक दवा के लिए हम बता देते हैं जो एक दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्साकार्प, जो बाजार में एवांट करके नाम से मिलता है, उसका मात्रा है 2 लीटर पानी में 1 ml इंडोक्साकार्प एवांट, ये एक दवा है। दूसरा जो दवा है ये है लैम्डा साइलोथ्रिन, जो बाजार में कराटे के नाम से मिलता है। ये शुरू में आप दे सकते हैं, इसका महंगा भी नहीं है ज़्यादा, आप यूज़। अगर आपका कीड़े का आक्रमण ज़्यादा हो गया, अगर लगता है जो नहीं किट जो है कीटनाशी, अच्छा कोई कीटनाशी देना पड़ेगा जिससे कंट्रोल और कम हो जाए, इसके लिए हम बताना चाहेंगे थोड़ा कॉस्टली दवा है, जैसे स्पाइनोसेट, जो हम बताना चाहेंगे स्पाइनोसेट जो बाज़ार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, 2 लीटर पानी में 1 ml के दर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। बस फ्लूबेंडियामाइड जो फेम है, फेम भी 1 ग्राम प्रति 3 लीटर के दर से 15 लीटर पानी में 5 ग्राम के दर से आप छिड़काव कर सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा दवा है जो कोराजेन के नाम से मिलता है, ये भी जो है 3 लीटर पानी में 1 ml के गुना के दर से घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। ये दो जो लास्ट दवा बताए, फ्लूबेंडेमाइड फेम और कोराजेन, ये थोड़ा सा महंगा दवा है। जब आपका खेत में आक्रमण जो है 20-30% के ऊपर चला जाएगा तभी इस दवा का छिड़काव करें, अन्यथा आपको जो पहले जो हम इंडोक्सोकार्प के बारे में बताएं, लैम्डा साइहेलोथ्रिन के बारे में बताएं, इसी दवा का आप छिड़काव करें। और अंतिम जो मैं कीड़े के बारे में बताया था, टोमेटो का लीफ माइनर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पत्ते में जो सांप के जैसा दाग छोड़ देता है, इसके लिए जो है आप समेकित कीट प्रबंधन में नीम आधारित दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और रासायनिक में क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा है, क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और जो है आप प्रोफेनोफॉस नामक दवा है जो कुराक्रॉन के नाम से मिलता है, ये भी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं।
0: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि लगभग सभी सब्जियों में कीट और सामाधान एक समान है लगभग, तो इसलिए आप इस तरीके से इन दवाइयों का छिड़काव जो डॉक्टर साहब ने बताया, उन दवाइयों का छिड़काव करके या फिर कुछ सावधानियों को अपनाकर अपनी सब्जियों को स्वस्थ रख सकते हैं, यानी कि इन कीटों से दूर रख सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे आगे मुलाकातें होंगी अगले विषय के साथ, अगली जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे 90.8 FM ग्रीन पर। तब तक सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों, इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो, तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
3: सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं, वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
5: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनर्रोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि अब हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहाँ पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है वहाँ फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें, आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहाँ भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहाँ संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें, मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं बाढ़ से प्रभावित, धान मक्का दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
3: जी सर, सर ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
5: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने के अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लू और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा वैन चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का, सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
3: जी सर, सर जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
5: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती है ये चीजें, लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें, ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर वो नहीं तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें, तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीज़ों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें, और पशुधन एवं मत्स्य क्षेत्र हैं उनकी बहाली सुनिश्चित करें, और चीज जल्दी से जल्दी हम किसानों की आय पुनः बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहा है विश्वविद्यालय लगातार, किसानों के आय कैसे बढ़े, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादकता कैसे बढ़ाए, इस पे विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है ताकि किसी न तरह किसानों की लागत कम हो सके। और इस पे मैं किसान भाइयों ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की और कोई समस्या भी आ रही है तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है जिसे आप लोग सभी जानते भी हैं, इससे मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004-52-8893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा 7004-52-8893। हमने किसान भाइयों आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की अब तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
3: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सके। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं, इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं, आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है। और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता, ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी

यह आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहे। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपनी जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई, लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
6: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
5: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
7: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव।
5: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
5: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
9: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
5: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
10: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
11: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
10: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
12: हर घर सूर्य घर।
13: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
14: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
13: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
14: आपकी सेहत की बातें,
13: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
14: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
13: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
14: वो कहाँ पर?
13: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
14: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
15: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
16: जी
15: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
16: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
15: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात, बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: नमस्कार, मैं अजय कुमार, रेडियो प्रतिनिधि 90.8 एफएम ग्रीन से। मैं आज इब्राहिमपुर की ओर हूं और इब्राहिमपुर में व्यक्तियों को पोषण से संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं, ये जानकारी एकत्रित करने का कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आज एक भैया जी से पोषण से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। तो भैया जी, आप पोषण के बारे में।
2: पोषण वह है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण कर अपना लोग अपना पाचन, अपना शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, जिससे आदमी को काम करने में मदद मिले।
1: तो पोषण को हम किस किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं?
2: पोषण को हम बहुत सारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम फल, हरी सब्जी, फिर साबुत अनाज, प्रोटीन, वसा, इसे सब खाकर हम उसे हम अपने उपयोग कर सकते हैं उस सबका।
1: अच्छा, मान लिया जाए कोई व्यक्ति कभी कभी जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति दवाई वगैरह से भी अपना पोषण को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति मान लिया जाए पोषण को दवाई के अलावा, वो किन माध्यम से प्राप्त कर सकते?
2: पोषण दवाई के माध्यम, दवाई के अलावा मनुष्य को अपना फल खाए, सब्जी खाए, और फिर आपका दाल दूध पिए, और फिर उसके बाद वो प्रतिदिन सुबह सुबह योगा करे, तो उससे उसका शरीर तन स्वस्थ रहेगा, उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा भैया जी, आप ये बताएं कि मान लिया जाए अगर व्यक्ति को सही से पोषण ना मिले, आम व्यक्ति को, मान लिया जाए जो भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर ग्रामीणों को या फिर व्यक्तियों को सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
2: हृदय रोग हो सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकता है, कुपोषित हो सकता है वो, जैसे इसी तरह के कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके शरीर में।
1: जी, मान लिया जब महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
2: वो उन्हें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, महिलाओं को उन्हें खून की कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है, बराबर संक्रमित हो सकती है वो, हार्मोनल उसका असंतुष्ट हो सकता है, जिससे गर्भाशय या माँ दोनों बच्चों का, उस पर दोनों का बुरा असर पड़ेगा। उनके अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके अंदर जो पल रहे बच्चे हैं उन पर भी उनका असर पड़ेगा।
1: जी, मान लिया जाए इसी तरह से अगर मान लिया जाए पोषण आहार सही से बच्चों को ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?
2: बच्चों को ना मिले तो फिर उसे कई प्रकार के रोग, बौनापन, जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं उन्हें, और उन्हें कठिनाइयाँ बहुत सारे, बच्चों के लिए बहुत सारे कुपोषित हो सकते हैं रोग, जैसे एनीमिया, रतौंधी, ये सब बढ़ सकते हैं उन लोगों।
1: तो अगर मान लिया जाए, ये सब तो आपको पता है कि मान लिया जाए ऐसा होता है, अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले, स्त्रियों को ना मिले या फिर आम व्यक्तियों को ना मिले, तो ये समस्याएं होती है, ये जानकारी आपको है। तो इसी बीच आप अपना परिचय देंगे क्या?
2: जी हाँ, मैं सबौर बड़ी इब्राहिमपुर का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा नाम मानव है।
1: जी, तो मानव जी, आपसे ये तो आपने पोषण के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कि इस पोषण को सही से हम प्राप्त करते रहें इसके लिए हमारे कृषि कॉलेज भी एक मुहिम चलाई है, उस मुहिम के अंतर्गत अपनी क्यारी अपनी थाली एक मुहिम है, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? इब्राहिमपुर से एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपको अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में क्या जानकारियाँ हैं ये बताएं।
2: अपनी क्यारी अपनी थाली का उसका कहना है कि जैसे अभी आपके पास अगर ज़मीन है तो वहाँ पे अपना कुछ रोप दिए, अपना उगाइए, अपना खाइए, जिससे कि अनाज की कमी नहीं होगी, जिससे आदमी को बराबर पोषण मिलता रहेगा।
1: ये तो मान लिया जाए कि बृहद पैमाने पे आपने बताया, मान लिया जाए ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, उनको सभी को मान लिया जाए बहुत सारा जमीन नहीं होती है।
2: हाँ।
1: जब जमीन नहीं होती है तो वो अपना खेती तो नहीं कर सकती है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करे और कैसे अपनी क्यारी अपनी थैली को यूज कर सकता है? मान लिया जाए वो घर के आगे गार्डनिंग के लिए क्या करे, या फिर क्या उनके बारे में जानकारी है?
2: वो अपने बारे वो क्या करे, अगर जो वो नहीं कर सकते, अगर जो उनके पास अपना जमीन नहीं है तो वो दूसरे पे, दूसरे के अथी पे डिपेंड कर सकता है। अगर वो उगा रहा है तो अगर वो उसके पास है कि वो एक दूसरे
3: नहीं, नहीं, अपनी क्यारी अपनी थाली का एक सीधा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि आपके आगे आंगन हो, बाड़ी हो, उसमें आप एक क्यारी के रूप में आप लगा सकते हैं, उस क्यारी में लगाएं। और अपना जैसे कि सब्जी हो, फल हो, वो अपने आप आंगन में अगर उपजाते हैं तो वो आपको ऑर्गेनिक मिलती है, पूर्ण रूपेण आपको रासायनिक रहित मिलती है, ठीक है। उसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए क्या कहते हैं बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इनके लिए 90.8 FM ग्रीन आपका धन्यवाद करती है। मैं

0: आपको खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
1: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
0: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
2: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
0: या हैं आप चिंतित अपने फसलों की सुरक्षा को लेकर?
3: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
0: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
4: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले इसमें है उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
0: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमे आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं, और बात करें अपने बिहार के तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: जी धन्यवाद मैम, और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया, जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं, जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब, लोग किसान नाम सुनते ही ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में, गरीब, एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान, अगर बिहार की बात करें तो, परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूं मुख्यतः, जो खरीफ की बात करें तो ज़्यादातर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित हैं। और यहाँ बरसों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु, तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में, जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट, जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूं, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती, व्यावसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन भाइयों, आज के टाइम में सारी विचारधाराएं ये बदल गई है, अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, 30 बीघा ज़मीन है, तो आप कुछ ज़मीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में, राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं, उस कंडीशन में अगर जिनके पास ज़मीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी, तो वो क्या कर सकते हैं, पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है। लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके मान लीजिए उतना भी ज़मीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं तो। उतनी भी जमीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा सकते, अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है। और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यावसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
5: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
6: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है। फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं, और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए, कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है, तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था, आप बोल सकते हैं, आज वहाँ पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो कैसे जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, वही धान गेहूँ पर आश्रित है, तो ऐसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध नहीं है तो दलहन ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नज़दीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नज़दीक है या किसी शहर के आसपास नज़दीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गाँव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
5: तो सर, अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
6: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है, मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा पाएं, आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते हैं कोई भी काम, उसको बोलते हैं व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही, जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आके आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती हो।
5: और सर अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
6: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है, उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे ऐसे योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके लिए जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है। तो इसलिए सरकारी योजनाएं, उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों, नई फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है। फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है। तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे। आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा आपको, लकड़ी के हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, अब जो जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है। तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
5: जी, यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
6: जी जी हाँ।
5: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
6: जी देखिए, हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट, प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी, आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
5: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
6: देखिए एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है, जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उससे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, इसी सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियाँ वो है छोटे और बिखरे हुए खेत, अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाद में बोलते हैं, बाद बोलते हैं, खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला, पूर्वी पुबारी बाद में है, पश्चिम बाद में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है, तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में आसान दिक्कत होती है। और छोटे खेत में आप एक एक खेत के लिए अब ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या है पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं या, तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ हैं। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुँच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
5: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं जो पारंपरिक खेती से व्यवसायिक खेती की ओर जा रहे हैं उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
6: जी ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती, क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पे जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है, अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो एक 10 लोग मिलके एक टाइप का फसल उगाई है और वो 10 लोग मिलके एक जगह मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागवानी में आपका फल फूल आपका जो औषधीय पौधे, औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए, तो इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
5: जी, तो सर जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
6: जी जी, देखिए बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए, और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, खाना हो जाए, सालों भर के लिए हम उसे उतना उगा लें वो हो गया। लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो मूलतः लाभ आधारित है, हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, हमारा लाभ कमाना, आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है पारंपरिक खेती क्या है, उसके लिए छोटी जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे, लेकिन जो व्यावसायिक खेती वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए, तो यही सब अंतर है। पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
5: तो सर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
6: देखिए बिहार जैसे राज्य हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत महाराष्ट्र हो गया गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज़्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज़्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और बहुत जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जलवायु अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे मैंने बताया वही एक बीघा में धान लगाइए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज़्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियाँ जैसे हमने बात किया, तो उस चुनौतियाँ सब जगह चुनौतियाँ हैं, जीवन में चुनौतियाँ हैं, खेती में आप किसी भी चीज़ में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियाँ हैं, लेकिन उस चुनौतियाँ उससे आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो आखिरी जो है निष्कर्ष ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी
5: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सर आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
7: उन्नत कृषि आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: को खेती से संबंधित सही जानकारी नहीं मिल रही?
7: अब किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अजोला की खेती आप कैसे करें।
6: लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आपके हर सवाल का जवाब। कैसे करें अपने खेतों को इन रासायनिक खादों से मुक्त?
8: रासायनिक खादों का प्रयोग कम करते हैं तो फिर क्या अप्लाई करें खेतों के अंदर? तो उसके लिए होता है जैव उर्वरक।
6: आप चिंतित अपनी फसलों की सुरक्षा को लेकर?
9: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हो, चाहे मोथा परिवार का खरपतवार हो, इन सबको ससमय नियंत्रण करना जरूरी है।
6: क्या आपको भी चाहिए जानकारी फलों और सब्जियों के पौधों को लगाने की?
10: तो आप आम में जो ज्यादा बढ़ने वाले पौधे किसमें हैं, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पे लगाएं।
6: तो परेशानी की नहीं है बात जनाब, क्योंकि लेकर आया है 90.8 FM ग्रीन आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें आप रूबरू होंगे हमारे अलग अलग विशेषज्ञों से अलग अलग विषय पर अलग अलग जानकारी के साथ। तो सुनना ना भूले 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहे उन्नत कृषि।
11: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
12: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
13: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
12: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
14: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर,
15: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
16: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
15: महिलाओं की

एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनाल फास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर लें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अघनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है।

बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. നമസ്കാര, ആപ്നെ ട്യൂൺ കിയാ ഹൈ 90.8 FM ഗ്രീൻ ഓർ മേ ഹൂ ആപ്കി ഹോസ്റ്റ് ആപ്കി ദോസ്ത് ആർ ജെ അനു. एक बार फिर आप सभी के बीच एक बहुत ही उपयोगी विषय लेकर हम आ चुके हैं. दोस्तों, हमारे भारत में और हमारे बिहार में बहुत सारे फलों का उत्पादन होता है, लेकिन एक जो सबसे खास, जो देखने में तो सुंदर लगता ही है और उसकी विशेषताएं भी बहुत हैं, वो है स्ट्रॉबेरी. जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का नाम सुनते ही हम उसकी खेती के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉबेरी की खेती की बात करूं तो बहुत ही कम जगह, ख़ासतौर पर मैंने देखा इसकी खेती, और इसीलिए लोग इसकी खेती को जानने के लिए उत्सुक होते हैं. तो आपको बता दें कि अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इसकी एक विशेषता इस स्ट्रॉबेरी से है, वो है पोषण सुरक्षा. यानी स्ट्रॉबेरी की खेती से पोषण सुरक्षा कैसे हो सकती है और ये एक लाभदायक व्यवसाय हमारे लिए कैसे बन सकता है, तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे. और हमारे बीच इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर रूबी रानी जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद अनु. मैं आज किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरी की खेती बिहार में क्यों की जानी चाहिए और पोषण सुरक्षा में उसका क्या अनुदान है, योग उपयोग है, कि स्ट्रॉबेरी के उत्पादन का हमारा क्या उपयोग है, पोषण सुरक्षा इससे कैसे की जा सकती है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे.
0: तो मैम, सबसे पहले जब इसकी खेती की बात आती है तो हम ये इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि इसे इतनी मेहनत करके लोग उगाते हैं, क्योंकि इस खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसकी क्या आवश्यकता पड़ी कि स्ट्रॉबेरी को उगाई जानी चाहिए, लोगों ने सोचा?
1: यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी है और किसानों को जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें स्ट्रॉबेरी की खेती क्यों करना चाहिए. सबसे पहली बात है कि हमारे स्ट्रॉबेरी जो है उसमें बहुत ही पोषण से भरपूर, या पोषण का कैप्सूल, न्यूट्रिटिव कैप्सूल आप इसको कह सकते हैं. अच्छा. इसमें हर तरह का न्यूट्रिशन है और जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटास, फोलेट, पोटाशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फैट का ये अनुपात कम है और इसमें कैलोरी कम मिलती है.
0: अच्छा.
1: लेकिन ये फाइबर रिच फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफिनॉल्स में बहुत ज़्यादा है. अब एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल्स का क्या मतलब है? ये जो तत्व होते हैं ये शरीर में रोग रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं.
0: अच्छा.
1: इसलिए स्ट्रॉबेरी के खाने से लोगों में रोग रोधी क्षमता बढ़ती है और बहुत से रोगों से आप इससे बच सकते हैं अगर इसका नियमित सेवन करें.
0: अच्छा.
1: इसमें जो कैलोरी है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है. जो भी फैट कंटेंट, थोड़ा फैट कंटेंट है, मिनरल्स विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, फैट कंटेंट काफ़ी कम है और वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसलिए ये लो कैलोरी फूड है. आज सभी जो हमारे किसान भाई हैं, आम नागरिक हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होते जा रहे हैं.
0: जी बिल्कुल,
1: होना चाहिए. और वो चाहते हैं कि हमें ऐसा फल मिले जिसमें कि वसा की मात्रा कम हो, फैट की मात्रा कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य फलों की तुलना में कम हो,
0: एंटीऑक्सीडेंट्स
1: ज़्यादा हो, विटामिन मिनरल्स ज़्यादा हो. तो इस तरह का फल उन्हें चाहिए या इस तरह का खाद्य पदार्थ उन्हें चाहिए. तो इस स्ट्रॉबेरी में ये सारे गुण मौजूद हैं.
0: जी.
1: तो इसलिए इसका पोषण का कैप्सूल बोला गया है इसे.
0: अच्छा अच्छा.
1: तो मतलब इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से लो कैलोरी फूड है, फाइबर रिच फूड है, एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल बहुत ज़्यादा है, सोडियम फ्री है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लो कैलोरी फ्रूट है. लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम ये सफिशियंट मात्रा में है, इसलिए इस फल की महत्ता बहुत बढ़ जाती है. और ये फल जो है बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, बहुत दूर से इसको लाया नहीं जा सकता है.
0: अच्छा.
1: जैसे कि हमारे पोषण तो बहुत है, जैसे कैसू नट है, उसमें प्रोटीन बहुत है, अखरोट है, बादाम है, इसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये इन फलों को, इन नट्स को हम बहुत दूर से प्रोक्योर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में रहते हैं.
0: अच्छा.
1: स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही कोमल फल है. इसका तुड़ाई के उपरांत इसकी अवधि जो इसको जो अच्छे कंडीशन में जब इसको बहुत कम दिन होता है, 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं.
0: अच्छा.
1: इसलिए ये आवश्यक है कि ये हमारे आसपास उगाए जाए.
0: जी.
1: तभी हमें ये मिल पाएगा वरना हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए आवश्यकता है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती करें।
0: तो दोस्तों मैम ने बताया कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फैट कम है और बस हमें यही तो चाहिए। आजकल लोग डाइटिंग भी करते हैं तो फल को ज़रूर शामिल करते हैं, और अगर आप उसमें स्ट्रॉबेरी लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अभी फ़िलहाल हम कोरोना काल में जी रहे हैं, जी हाँ, हमारी ज़िंदगी के साथ कोरोना शामिल हो चुकी है ये महामारी, और इस समय कहा जा रहा है कि हमें ऐसे फल और सब्जियां लेनी चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाते हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी को ज़रूर शामिल करें, और आपको हम स्ट्रॉबेरी से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे। तो मैम ने जैसे कहा कि इसे बहुत दूर से नहीं लाया जा सकता, ये बहुत कोमल फल है, तो मैम बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है क्या?
1: बेशक बिहार में इसका उत्पादन हो सकता है, हमने पिछले 10 साल में पर इस पर शोध किया। जब हमने शुरू किया था तो हमें भी विश्वास नहीं था कि यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हमने इसका शोध किया तो मैंने पाया कि बिहार में इसका खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हालांकि ये फल जो है वो ठंडे जगहों का फल है, जैसे कि पहले ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्यों में, सिक्किम में, आदि जगहों में उगाया जा सकता था, लेकिन अभी कुछ किस्में आई हैं और कुछ विशेष तकनीक की मदद से इसे हमारे प्रदेश जैसे बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि जगहों में भी काफ़ी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए हमने शोध के उपरांत मैंने देखा कि बिहार में ये अच्छी तरह से उगाई जा सकती है और इसकी हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं।
0: मतलब पहले लोग ये घबराते थे कि गर्म वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उगाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ये पहले जम्मू और कश्मीर में ही उगाया जाता था। तो यहाँ पर शोध के बाद पता चला है दोस्तों कि बिहार में इसका उत्पादन किया जा सकता है। मैम साथ ही आप इसके लगाने की विधि भी बता दें और समय क्या है लगाने इसे लगाने की वो भी बता दें।
1: तो सब इसमें एक बात और बताना चाहूँगी कि इसमें पोषण तो भरपूर है ही है, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, जैसे कि इसका उपयोग सौंदर्य सामग्री बनाने में होता है, आइसक्रीम, कैंडी, आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मांगते हैं तो उन सब चीज़ों में बनाता है, सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है, केक, आइसक्रीम, बहुत तरह से सॉफ्ट ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी का यूज होता है, और इस तरह से इसमें पोषण के साथ साथ इसके उपयोग
0: व्यावसायिक रूप में
1: बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही सुवासित सुगंधित फल है, इसका अलग ही एक एरोमा है, और जो कि इसका आकर्षित रंग के साथ साथ इसका एरोमा भी लोगों को अट्रैक्टिव करता है, साथ ही पोषण और बहुआयामी इसके उपयोग हैं, इसके कारण इसकी खेती बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि किसान इसके प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं इसको उगाने के लिए, क्योंकि ये 7 से 8 महीने में पूरा फसल तैयार हो जाता है और इसका डिमांड ज़्यादा होने के कारण इसके प्राइस ज़्यादा हैं और किसानों को ज़्यादा मुनाफा 7 से 8 महीने में प्राप्त हो जाता है
0: जी।
1: और अब आती है कि इसको लगाने की विधि
0: जी
1: और इसका समय क्या है। तो हमने शोध के उपरांत पाया कि बिहार में इसको लगाने का समय अक्टूबर माह जो है इसको लगाने का सबसे उत्तम समय है, प्रथम सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से अंत तक आप लगा सकते हैं, हालांकि इसको 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप अक्टूबर तक लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर 15 नवंबर के बाद आप लगाएंगे तो इसके उत्पादन में तेजी से वृद्धि कमी आ जाती है। अच्छा। क्योंकि उसको सही समय नहीं मिल पाता है उसको समुचित ग्रोथ का, और फूल खिलने लगते हैं इसके कारण कि छोटे पौधे में फूल खिलने से उत्पादन में कमी हो जाती है, गुणवत्ता भी सही नहीं रहती है। तो लगाने का उचित समय इसका अक्टूबर है,
0: अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से।
1: प्रथम सप्ताह से आप 15 नवंबर तक लगा सकें, नवंबर तक बिल्कुल लगा दें, और 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी उत्पादकता में आपको कमी मिलेगी
0: जी।
1: अब मैं इसको पूछा जैसे कि अपने लगाने की विधि क्या है, तो इसको लगाते हम लोग रनर से, पौध से हम इसे लगाते हैं
0: जी जी।
1: इसके लिए जो है छोटे छोटे पौध आते हैं और इसके हम बीज से नहीं लगाते हैं, और ये पौध जो है हमारे रनर से एक पौधे से कई कई पौधे निकलते हैं उससे तैयार होते हैं। परंतु हमारे राज्य में अप्रैल महीने के बाद से इतनी गर्मी होती है
0: जी
1: कि ये पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें पौधों के लिए दूसरे राज्यों जहाँ ठंड प्रदेश हैं वहाँ से हमको उस पर निर्भर रहना पड़ता है, और ये पौधे 4 से 6 पत्तियाँ हों उस पौध में उसको हमको लगाना चाहिए, और लगाने के पहले पौधे को हम कार्बन डाइजीम के 0.2% के घोल में 5 मिनट तक डुबाते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके पौधे को लगाते हैं। तो ये भी लगाने की विधि और इसका लगाने का समय।
0: तो मैम इसके बाद उत्पादन तकनीक को भी हम जानना चाहेंगे, जब विधि की बात हो गई है और इसके बाद उत्पादन तकनीक को ना जाने तो थोड़ा अधूरापन रहता है, तो इसके उत्पादन तकनीक के बारे में भी बताएं थोड़ा।
1: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगी इसका भूमि की तैयारी कैसे करें, इसका बेड कैसे बनाएं, इसमें फर्टिलाइजर कैसे डालें और इसमें सिंचाई कैसे करें, और इसमें कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इनके बारे में मैं एक एक करके सबको आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी करने के लिए आप जैसे अक्टूबर में लगाना चाहते हैं तो उसके 10 से 15 दिन पहले एक गहरी जुताई कर दें खेत की। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी वैसे भूमि का चुनाव करें जहाँ जल जमाव नहीं होता हो।
0: अच्छा।
1: और मिट्टी जो है वो बलवाही दोमट मिट्टी हो, भुरभुरी मिट्टी हो जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, और वो क्षारीय मिट्टी ना हो, जैसे कि उसमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का चुनाव करें और वैसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल का जमाव नहीं हो और मिट्टी हल्की हो। इसका जिसका पीएच मान मिट्टी का 6.5 से 7 के बीच या 6 से 7 के बीच हो, 7 से ज़्यादा ना हो, वैसी मिट्टी का हम चुनाव करें
0: जी।
1: और चुनाव करने के बाद लगाने के समय के, यानी कि अक्टूबर में आप लगा रहे हैं या 15 अक्टूबर को लगा रहे हैं, तो उसके 10 दिन पहले आप उसकी ज़मीन की गहरी जुताई करें, उसके बाद एक हल्की जुताई करें। हल्की जुताई के समय उसमें आप कुछ खाद डालें, तो खाद की मात्रा जो है प्रति एकड़ लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट, 20 से 25 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो फास्फोरस और 25 से 30 किलो पोटास प्रति एकड़ आप हल्की जुताई के समय में डाल करके इसको जुताई कर दें। उसके बाद इसकी खेती, व्यावसायिक खेती जो होती है वो उठी हुई क्यारियों पे होती है।
0: अच्छा।
1: तो उस क्यारी को बनाने के लिए आप उसकी ऊंचाई जो है 30 से 35 सेंटीमीटर रखें और उसकी चौड़ाई 1 से 1.25 मीटर तक आप रख सकते हैं और लंबाई आप अपने सुविधा अनुसार जितना चाहे रख सकते हैं
0: जी।
1: दो क्यारी के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। तो इस तरह से आपकी उठी हुई क्यारी तैयार हो जाएगी जो कि 30 से 35 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 1 से 1.25 मीटर चौड़ा हो और दो क्यारियों के बीच की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर हो। एक क्यारी पे अगर आप 1 मीटर रखे हैं या 90 सेंटीमीटर तक चौड़ा रखे हैं तो आप 2 पंक्तियां लगाएं, अगर उससे ज़्यादा रखे हैं तो 3 पंक्तियां भी आप लगा सकते हैं। 4 पंक्तियां में थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए 3 पंक्तियां आप एक क्यारी पे लगा सकते हैं। पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर रखें
0: जी।
1: तो इस तरह से आप बेड पे 2 से 3 क्यारी
0: तैयार
1: कर सकते हैं और प्रति एकड़ लगभग 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी। अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो 20 से 22 हजार पौधे की आवश्यकता होगी।
0: अच्छा।
1: उसके बाद आता है कि हम इसको लगाने की विधि मैंने पहले बता दी, लेकिन अगर आप इसमें सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई का व्यवस्था कर सकें तो ये आपके लिए वरदान होगा
0: जी।
1: और ड्रिप सिंचाई पे आज जो है सरकार 90% तक अनुदान भी दे रही है, तो आप सरकारी सहायता प्राप्त कर आप ड्रिप सिंचाई का अपने खेत में लगा सकते हैं, और ये जो कि काफ़ी वरदान होता है इसके लिए, बड़ी अच्छी खेती, उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है, गुणवत्ता भी बढ़ जाती है फलों की। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि किसान भाइयों आप ड्रिप सिंचाई का इसमें उपयोग जरूर करें
0: जी।
1: इसके अलावा पौधे लगाने के बाद ये इसकी जो खेती होती है, इसके जो फल होते हैं वो मूलतः जमीन पे सटे हुए होते हैं। जब निकलते हैं तो जैसे ही फल बड़ा होता है तो अपने भार से वो जमीन सतह पे सट जाते हैं। तो इसलिए अगर आप, इसलिए मल्च या पलवार का उपयोग बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी और फल का संपर्क ना बने। ये फल चूंकि बहुत ही कोमल मुलायम होता है, लगातार अगर मिट्टी के संसर्ग में रहेगा तो ये खराब हो जाते हैं और खाने के लायक नहीं रहते हैं, बाजार में ले जाने के लायक नहीं रहेंगे। जी। इसलिए मल्च बहुत ही आवश्यक है। मल्च आप पुआल का भी दे सकते हैं और प्लास्टिक का भी दे सकते हैं।
2: अच्छा,
1: तो प्लास्टिक का मल्च बहुत ही अच्छा देखा गया है इसमें। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की मल्च नहीं है तो आप धान या गेहूं के का जो भूसा होता है या पुआल होता है उसका भी उपयोग मल्च के रूप में कर सकते हैं। वो 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंचा मल्च होना चाहिए ताकि फल का संपर्क डायरेक्ट मिट्टी से ना हो और आपकी फल जो है परिपक्वता तक अच्छे कंडीशन में रहे और बाजार में ले जाने लग रहे। तो इस तरह से दो तकनीक, जो मल्च और सूक्ष्म सिंचाई, ये दोनों इसके लिए वरदान है। और जब आप बेड तैयार करते हैं तब उसमें जो है आप सूक्ष्म सिंचाई पहले बिछा दें, पौधे लगा दें, उसमें सूक्ष्म सिंचाई कर दें। उसके बाद आप जहाँ जहाँ पौधे लगाए हैं आपने वहाँ वहाँ उतनी दूरी पर आप मल्च में छेद करके उस तरह से पौधे को व्यवस्थित कर दें
2: जी।
1: आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले बेड तैयार करके मल्च को फिक्स कर दें, फिर जितनी दूरी पर आपको बेड को तैयार करके पहले ड्रिप इरिगेशन लगा दें, फिर आपको मल्च डाल दें, मल्च फिक्स कर दें और जितनी दूरी पर आपको पौधे लगाने हैं वहाँ पर छेद करके थोड़ा सा होल करके वहाँ पर पौधे को आप फिक्स कर दें और ड्रिप से आपका पानी और पोषण सारा चीज ड्रिप के माध्यम से पौधे को मिलता रहेगा। तो ये हुई विशेष तकनीक।
2: अच्छा,
1: कि इसके उत्पादन में विशेष तकनीक है। इसके अलावा हमारे राज्य में दिसंबर के अंत में और जनवरी तक पाले का प्रकोप रहता है, उसमें बहुत धुंध रहती है, पाले का प्रकोप रहता है। और पाले से बचाने के लिए आप छोटा पॉलीटनेल का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि पौधे जो है पाले से बच सकें। और पॉलीटनेल जो है उसकी ऊंचाई 65 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये पॉलीटनेल क्या है, एक छोटा पॉलीहाउस है, मिनिएचर है पॉलीहाउस का, इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। इसको बेड कवर या रो कवर भी बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है 65 से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और ये अगर आपको टनल बनाने के लिए जीआई पाइप का ना मिले तो आप बांस की करची पे भी पतली पॉलीथीन की सीट बिछा करके पॉली टनल बना सकते हैं। और जो कि आपके पास बहुत आयत में बांस तो हर गांव में उपलब्ध रहता है तो उस कमाची का उपयोग करके, बांस का उपयोग करके आप पॉलीटनल बना लें और पॉलीटनल पर पतली सी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, उजले कलर की पॉलीथीन आप डाल दें। और ये जो है जब आपका पाला पड़ना शुरू हो जाए तब और फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इसको डाले रहें। इससे क्या होता है कि पौधा जो है पाले से बचा रहेगा और धूप उसके अंदर आती रही, ग्रोथ बढ़वार बढ़िया रहता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमारा पॉलीहाउस का इफेक्ट रहता है। पॉली जैसा पॉलीहाउस में उसका इफेक्ट रहता है पौधों का, उसी तरह से पॉलीटनेल का भी उपयोग है। साथ साथ ये पाले से भी बचाता है और ढके रहने के कारण कीट व्याधि का भी प्रकोप कम रहता है, इसी कारण की फल की गुणवत्ता भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये विशेष 3 तकनीक जो है स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सूक्ष्म सिंचाई, पॉलीटनेल और मल्च। किसान भाइयों, अगर आप सूक्ष्म सिंचाई नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन मल्च तो मस्ट है। चाहे आप पुआल का मल्च दें, चाहे आप प्लास्टिक का मल्च दें, मल्च के लिए हमेशा काले पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन आती है, मल्च सीट कहलाता है, और वो 1 मीटर और 1.25 मीटर के चौड़ाई में आता है और लंबा आप जितना चाहे एक रोल ले सकते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी ही रखी जाती है। खासकर ये स्ट्रॉबेरी, सब्जियों आदि के लिए ही बनाया जाता है। तो इस तरह से मल्च आप का उपयोग करें। सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, अगर अरेंज नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बिना उसकी भी खेती कर सकते हैं। टनल का भी उपयोग अगर नहीं कर सकते हैं, करना करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट आपको मल्च का उपयोग तो करना ही होगा। तो ये है उत्पादन तकनीक। और लगाने के बाद जो है आप जो भी उसमें पोषण देंगे वो फर्टिगेशन के थ्रू देंगे, क्योंकि आप ड्रिप सिंचाई लगा चुके हैं और पौधा जो है मल्च के नीचे है तो आपको बाहर से आप नहीं दे सकते हैं, आप जो है इसको फर्टिगेशन के थ्रू दे सकते हैं। और फर्टिगेशन के लिए भी हमने शोध किया है, पौधे लगाने के 30 से 45 दिन बाद जो घुलनशील हमारा एनपीके है 20-20-20 का, उसका 25 ग्राम की मात्रा को चार भागों में बांट दें और प्रति वर्ग मीटर 25 ग्राम चार भागों में बांट करके और 15 दिन के अंतराल पे उसको चार बार दें, तो इस तरह से आपका जो है वो फलों की गुणवत्ता बनी रहेगी और आपका उत्पादन भी ज़्यादा होगा।
0: जी श्रोताओं, मैम ने आपको बताया कि उत्पादन की तीन विशेष तकनीक हैं, वो है मल्च, पॉलीटनल और साथ ही मैम ने बताया सूक्ष्म सिंचाई। मल्च जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये अपनाएं ही अपनाएं, और सूक्ष्म सिंचाई आप चाहे तो अपना सकते हैं नहीं तो नहीं, और पॉलीटनल भी आप चाहे तो अपना सकते हैं नहीं तो आपकी जो सुविधा है आप उसके अनुसार उत्पादन तकनीक को अपना सकते हैं। मैम, उत्पादन तकनीक के दौरान भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और अगर किसान भाइयों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं तो पहले से सावधान हो जाएंगे, उन सावधानियों के साथ वो उत्पादन तकनीक को अपनाएंगे ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए उन समस्याओं को ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं।
1: किसान भाइयों, हमारे पास बहुत सारे किसान, हमारे राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत लोग किसान लोग कर रहे हैं और हमारे पास उनकी समस्याओं के बारे में भी फ़ोन आते हैं और बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के दौरान किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक कुछ इसमें फफूंद जनित रोग ज़्यादा लगते हैं, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा है उकठा रोग। कभी कभी देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी जो है वो बीच बीच में पौधे गलने शुरू हो गए, पौधे अचानक सूखने शुरू हो जाते हैं और उसको चाह करके भी आप नहीं बचा सकते हैं, तो इसके लिए ये समस्या फरवरी मार्च के बाद आनी शुरू होती है, जब पौधे जो थोड़ी सी गर्मी आती है उसके बाद ये आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले आपको देना पड़ेगा कि अच्छी गुणवत्ता की आपको पौध होनी चाहिए, उस पौधे में कहीं किसी तरह का स्पॉट या कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप पौधे को लगाएं तो मैंने बताया कि कार्बन डाइजीम में उसको 0.2% के घोल में, आप कार्बन डाइजीम के घोल में उसको 5 मिनट तक दुबाएं, उसके बाद लगाएं। और जब आप बेड तैयार करते हैं, ऊँची उठी हुई बेड आप तैयार करते हैं, तो 0.01% का मेटल एक्सिल का घोल से एक बार उस पर स्प्रे कर दें
0: जी,
1: तो ये आपको उकठा रोग से बहुत बचाव करेगा। साथ ही साथ मैंने देखा है कि अगर आप ट्राइकोडर्मा को जो कंपोस्ट डालते, इसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, कंपोस्ट को डालने के पूर्व ट्राइकोडर्मा आधा केजी लेकर के ट्राइकोडर्मा उसको 15-20 केजी कंपोस्ट में मिक्स कर दें, उसको एक सप्ताह के लिए छोड़ दें, मॉइस्ट रखें, और उस कंपोस्ट को अगर यूज़ करते हैं तो इसका प्रकोप कम होता है। तो इस तरह से जो मैंने बताया कि आप कार्बन डाइजीम का यूज करें, ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें और मेटल एक्सिल के 0.01% के घोल से आप बेड को, जो नर्सरी का अपनी जो उठी हुई क्यारी तैयार की उसको उपचारित करें। इस तरह से करने से आपको जो है फफूंद जनित रोग जो है वो आप से आप इसको बचा सकते हैं
0: जी।
1: दूसरा और इसका रोग है लीप स्पॉट आता है, पर्णचित्ती आता है। कभी कभी देखेंगे कि गोल गोल गोल गोल स्पॉट आ गया है लीप पे, जैसे ही आप स्पॉट देखें उसको आप कैंची से हटा दें, उसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 1% का घोल से उसका छिड़काव करें, इससे आप जो है इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। ये कभी कभी आप देखेंगे कि फल में फल जो है उस पर फफूंद रोग गया है, तो वैसे फल जो मिट्टी के संसर्ग में आएंगे या ज़्यादा पानी भी आप अगर आपने दे दिया है तो ग्रे मोल्ड का, जो ग्रे मोल्ड होता है, ग्रे मोल्ड का प्रकोप हो जाता है और ग्रे मोल्ड का प्रकोप होने से आपका फल खराब हो जाएंगे, इसलिए आप मल्च का उपयोग करें। बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं दें, जड़ों को आप नमी बरकरार रखें जड़ में, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी वातावरण में नहीं रहने दें। और अगर सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करते हैं तो आपको जड़ में पानी जाएगा, पत्तियों पे बाकी वातावरण में पानी कम रहेगा और वहाँ पर ग्रे मोल्ड की समस्या कम होगी। इसलिए ग्रे मोल्ड से बचाने के लिए आप मल्च का उपयोग करें। अगर ये कुछ आ गया है तो तुड़ाई के उपरांत डायथन M45 का 2 ग्राम का प्रति लीटर का घोल बना करके आप एक बार स्प्रे कर दें, तो इस तरह से आप ग्रे मोल्ड से, उकठा रोग से यानी कि विल्ट से और लीप स्पॉट से इसका निजात पा सकते हैं
0: जी। तो श्रोताओं, आपने जाना कि जो भी परेशानियां हैं उनके समाधान के बारे में भी आपने जाना, और मैम इसके बाद उत्पादन से लाभ तो मिलेंगे ही, क्योंकि पहले ही भी हम जान चुके हैं इसमें पोषण बहुत ज़्यादा है। तो व्यावसायिक तौर पर, आम तौर पर क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं इसके उत्पादन से?
1: इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि इसकी तुड़ाई कैसे की जानी चाहिए।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो अगर आप इसको अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो दिसंबर माह में इसका फल टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ये लगातार मार्च तक या कभी कभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक फल देगा। जैसे ही गर्मी आएगी इसमें फूल आना बंद हो जाता है और फूल आना बंद हो जाएगा तो फल आपको नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप अगर अक्टूबर में लगाते हैं तो आपको मार्च तक आपको अच्छा फलन देगा। और इसका तोड़ने के लिए जब ये फलना शुरू हो जाता है तो कुछ कुछ अंतराल पे ये फल आपको तोड़ने होंगे और फल की तुड़ाई आप सुबह में करें। तुड़ाई के बाद आप फल को जो है आप ठंडे जगह में रखें और जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें, क्योंकि तुड़ाई के उपरांत इसकी जो है संधारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट फ्रूट है और बहुत जल्दी खराब होता है
0: जी।
1: तो जितनी जल्दी हो सके उसको मार्केट में भेज दें। अगर दूर के मार्केट में आपको भेजना है तो फल को पूरा लाल होने के पूर्व यानी 75% जब पक जाए तभी आप इसको हार्वेस्ट करें। थोड़ा उसमें टफ रहता है और एक दो दिन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये थोड़ा सा और पकता है, फिर जा करके आप उसको मार्केट में भेजें। तो नज़दीक के लिए मार्केट के लिए पूरा फल पकने के बाद इसको तोड़ें, और अगर दूर का मार्केट में भेजना है तो आप 75% पकने पर ही उसको तोड़ दें। इसकी पैकिंग के लिए पुनेट आता है, पुनेट का उपयोग करें और सही ढंग से इसकी पैकिंग करें। एक फल दूसरे फल पे बहुत ज़्यादा कसा हुआ ना हो, एक फल पर दूसरा फल ना हो, इस तरह से इसकी पैकिंग करें और तभी आपका ये ज़्यादा दिन तक थोड़ा मार्केट में रह सकता है
0: जी।
1: और जहाँ तक इसके लाभ की बात है, कितने लाभ हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि इसकी लागत जो है आपको अगर ड्रिप सिंचाई क्या लगाएंगे, मल्च डालेंगे, पॉलिटिनेल डालेंगे तो पहले साल इसकी लागत कुछ ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर लगातार इसकी खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इसकी व्यवस्था ज़रूर करें। और 3 साल के बाद उपरांत पाएंगे कि आपने अगर 1 रुपया लगाया है तो कम से कम 4 रुपया आपको मिलेंगे। तो पौधों का कीमत थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो पौधे आपको 10 से 12 रुपये के बीच में मिलेंगे या 15 रुपये तक भी मिल सकते हैं। तो अगर आप 20,000 पौधे लेते हैं तो आपको लगभग 3.5 लाख रुपये आपको पौधे में लग जाएंगे, लेकिन उसमें उत्पादकता जो है अगर अच्छे से आप मैनेज करें तो प्रति एकड़ उत्पादकता आपको 15 टन से कम नहीं होगी। तो इस तरह से अगर उसको 200 रुपये के जी भी बेचेंगे तब भी आपको 3 से 4 लाख का शुद्ध मुनाफा होगा 1 एकड़ में। इसलिए 8 से 9 महीने के बीच में इतना शुद्ध मुनाफा किसी भी क्रॉप में नहीं है, इसका डिमांड भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये काफ़ी लाभकारी व्यवसाय है, पोषण से भरपूर फल है, कम अवधि में इसके उगाए जा सकते हैं। और अगर आपके शहर के किनारे छोटा सा भी ज़मीन है तो आप छोटी सी भूभाग में इसकी खेती करके आप इसको बहुत मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों स्ट्रॉबेरी की खेती करें और अच्छी आमदनी पाएं, अच्छा लाभ पाएं। व्यावसायिक तौर पे पोषण सुरक्षा की दृष्टि से ये इसका स्ट्रॉबेरी का फल उत्पादन काफी अच्छा है। और मैं अपनी वार्ता के दौरान एक चीज बताना भूल गई कि हमारे राज्य में किस्में कौन कौन सी अच्छी उत्पादकता के साथ कर रही हैं
0: जी।
1: तो मैं बता दूं कि इसके लिए आप स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, कामारोजा, विंटर डाउन, नबीला, सेंसेशन, ये 6-7 किस्में जो हैं वो अच्छा उत्पादन कर रही हैं, अच्छी उत्पादकता और गुणवत्ता के साथ हमारे राज्य में इसका उत्पादन हो रहा है। तो ये हमने शोध के उपरांत पाया, हमने लगभग 21 किस्में शोध किया है, किस किस्मों का उत्पादन किया अपने रिसर्च प्लॉट पे, और हमने पाया कि ये 6-7 किस्में जो हैं हमारे राज्य में बहुत अच्छा उत्पादन कर रही है, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादकता के साथ। तो मेरा ये मैंने अपने बताया आपको कि स्ट्रॉबेरी की खेती के कैसे उत्पादन करें और कैसे इससे लाभ कमाएं और क्या इसके लाभ हैं, ये हमारी बात। धन्यवाद किसान भाई, उम्मीद है कि आपको उचित जानकारी मिली होगी, जो जानना चाहेंगे जानना चाह रहे होंगे आपकी वो जानकारी आपको मैं दे पाई होंगी इतने कम समय में। धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना स्ट्रॉबेरी एक लाभदायक व्यवसाय कैसे बन सकता है, पोषण सुरक्षा है तो स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे की जा सकती है, हर एक छोटी से बड़ी बात मैम ने आपको बताया यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि आपको इन जानकारियों से बहुत लाभ होगा। अगर आप अभी भी इसे लगाना चाहते हैं तो लगा लें, समय है। और साथ ही जो भी समस्याओं की बात यहाँ पर हुई है, मैम ने उसके समाधान के बारे में भी बताया, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए ही लगाएं। और उत्पादन तकनीक के बारे में भी मैम ने बताया कि आप उस तकनीक को ज़रूर अपनाएं, और मल्च जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसे तो आपको अपनाना ही चाहिए, जो कि आपकी जो फल हैं वो मिट्टी से संपर्क में ना आए। तो इस तरीके से बहुत लाभ होगा आपको अगर आप इन जानकारियों को ध्यान से सुनते हैं। तो आज के लिए श्रोताओं इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। नमस्कार। उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना। टीकू, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
10: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
10: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
10: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
10: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
10: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम कृषि की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो उर्वरक की बात बहुत आम होती है और हमेशा हमें कुछ नया सीखना चाहिए और नया अपनाना चाहिए। और नया अपनाने की जब बात उर्वरक के बारे में बात हम करते हैं, तो नैनो उर्वरक को अपनाने की बहुत ज़रूरत है। नया है पर विशेष है, और इस बारे में, नैनो उर्वरक के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरी कासेन बेउरा। मैम, आप हैं मृदा विज्ञान विभाग से, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि नैनो उर्वरक होता क्या है?
1: नैनो उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनके कणों के आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण इनकी सतह क्षेत्रफल अधिक होती है, जिससे पौधा द्वारा पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो पारंपरिक उर्वरक होते हैं उनसे काफ़ी गुणों में ज़्यादा इनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है।
0: मैम, नैनो उर्वरक का प्रयोग क्यों करना है जब हमारे पास पारंपरिक उर्वरक मौजूद हैं और उसका उपयोग करते आ रहे हैं हम?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। नैनो उर्वरक आधुनिक सटीक एवं सतत कृषि के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना हम लोग करने को पड़ रहा है। सारे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि योग्य भूमि, मृदा की उर्वरता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण। सो पारंपरिक उर्वरकों के अधिक एवं असंतुलित उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मिट्टी में और उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव जरूर पड़ा है। तो इस परिदृश्य में नैनो उर्वरक आधुनिक कृषि के लिए क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रहे हैं।
0: तो मैम, इसके और क्या गुण हैं जिसकी वजह से हमें नैनो उर्वरक को महत्व ज़्यादा देना चाहिए?
1: जी, नैनो उर्वरक की बहुत अच्छी अच्छी गुण हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, लागत में कमी, फसल उत्पादकता में वृद्धि, ऐसे अनेक प्रकार की इसकी गुणवत्ता है। अगर आप देखेंगे हमारे जो पारंपरिक खाद होते हैं तो उसमें मुख्यतः हमारे जो फार्मर प्रयोग करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व, अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन की जो दक्षता है वो 30 से 40% होते हैं, फास्फोरस की बहुत कम होती है। उसको अगर हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय क्षेत्रफल में तो इसकी जो दक्षता है वो 15 से 20% होती है एवं पोटाशियम का 60 से 70% होती है। और सबसे जो कम दक्षता होती है वो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की होती है, जो 1 से 5% तक होती है। तो नैनो उर्वरक अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो पारंपरिक जो खाद है उसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा उसकी अवशोषण क्षमता होती है, तो पौधों में जो हमारे अपटेक होगी, जो भी हमारे खाद होते हैं, तो वो ज़्यादा होती है। तो इस के साथ साथ अगर हम लोग कम मात्रा में उत्पादक, मतलब अगर हम लोग कम मात्रा में खाद डालेंगे तो हमारी जो रिसोर्स है वो भी कम होगा, और तो हमारे जो फार्मर की बचत भी होगी और उसके साथ साथ लागत में भी कमी होगी। एवं जो प्रयोग करने के लिए खाद को हम लोग जितने भी तकनीकों का यूज़ करते हैं उसमें भी कम आएगी, लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। यानी अगर हमारी उपज की उपज में अधिक पोषक तत्वों की गुणवत्ता बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारी जो फसल में उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी।
0: जी जी। तो मैम, अभी आप अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक से अलग होता है अवशोषण के मामले में, तो और किस किस पैमाने पर नैनो उर्वरक अलग होता है पारंपरिक उर्वरक से?
1: जी, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसकी उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण प्रभाव होते हैं, जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा खाद देंगे तो उसकी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ज़्यादा पड़े। जैसे आप नाइट्रेट लीचिंग के बारे में सुने होंगे, तो हमारे जो नीचे के स्तर में जो पानी होते हैं उसमें भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर हम लोग नैनो उर्वरक देते हैं तो कम मात्रा लगेगी, तो इस हिसाब से उसकी प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पे कम पड़ेगी। एवं उसकी जो उपयोग की मात्रा होती है पारंपरिक खाद के मुकाबले, उसकी उपयोग की मात्रा में भी कमी आएगी, कम लागत होगी और पोषक तत्व की हानि कम होगी। जैसे हम लोग पारंपरिक खाद देते हैं तो हमारे मिट्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स हो जाती है, तो नैनो उर्वरक हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो प्रयोग विधि होती है नैनो उर्वरक की, वो तो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी बीज उपचार और एक होती है हमारी पत्ते पे छिड़काव, जिसको हम लोग फोलियर स्प्रे भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग मिट्टी में नैनो उर्वरक की ज़्यादा मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे तो जो लॉस होगी वो कम हो जाएगी, तो इस हिसाब से वो पौधे के अंदर ज़्यादा जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि होगी एवं स्थिरता आएगी। स्थिरता माने जो लॉस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें कमी आने के कारण जितना मात्रा हमारे पौधों के अंदर जाना चाहिए वो ज़्यादा होगी और उसकी लॉस कम होगी।
0: जी, तो ये काफ़ी बेहतर है। और मैम, नैनो उर्वरक पर अभी भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे और अभी भी बहुत सारे काम होने बाकी होंगे, तो आप बताइए कि भविष्य में नैनो उर्वरक पर और क्या क्या शोध किए जा सकते हैं?
1: ये एक बहुत अच्छी सवाल है। अभी तक बहुत काम नैनो उर्वरक पे हो चुका है, बहुत सारे कंपनियां भी बहुत सारे अनेक इसके जो उर्वरक है वो विकसित कर चुके हैं। जैसे आपने सुना होगा इफको का नैनो यूरिया या इफको का नैनो डीएपी, वो हमारे बाजार में आ चुके हैं। अलग अलग हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फिर हमारे जो रिसर्च स्टेशन होते हैं या आईसीआर हो, वो भी अनेक नए नए शोध के द्वारा इसका इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अभी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी हम लोग की एक नैनो तकनीक इकाई है, हम लोग इस पर भी बहुत सारे अभी फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड पे या फिर अनेक ग्रोथ हार्मोन पे अभी काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए इसके फ्यूचर की जो परिदृश्य है, जो भविष्य में हमें क्या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो जो हमारे प्रिसीजन फार्मिंग, इसमें ये एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि हमारे स्मार्ट कृषि है, जलवायु अनुकूल कृषि है, या पोषक तत्वों की विभिन्नकरण है, मतलब अलग अलग तरीके की पोषक तत्व, स्मार्ट पोषक तत्व या फिर स्मार्ट खाद जो आजकल हो रहे हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रबंधन, जैसे उसकी मैंने बताया था आपको उसकी जो दक्षता होती है वो 1-5% होती है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आएंगे। जैसे कि पारंपरिक खाद में आपने देखा होगा नाइट्रोजन का है, फॉस्फरस का है, पोटेशियम का है, सूक्ष्म पोषक तत्वों का है, लेकिन आप नानो उर्वरक दिशा में अगर काम करेंगे हम लोग तो हो सकता है हम मल्टी न्यूट्रिएंट पे काम करें, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको एक ही खाद में मिल जाएंगे जी। तो ये भी एक अनुसंधान के विषय हैं। तो क्योंकि ये एक नवाचार है, नई तकनीक है, तो इसके दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हो सकता है भारतवर्ष या फिर बिहार या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छा या अग्रणी भूमिका निभा सकती है
0: जी। और मैम, किस तरीके से हम किसानों के बीच नैनो उर्वरक को आम बना सकते हैं और क्या इसमें चुनौतियां आती है?
1: जी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी खाद, जब भी आपने सुना होगा, जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तब भी लोगों के अंदर, फार्मर अपने अंदर उस चीज को जानने के लिए बहुत समय लगा था, तो वैसे ही ये भी एक नई तकनीकी है। तो इसको हम लोग को फार्मर या हमारे किसानों के बीच अवेयरनेस पहले फैलाना है, नैनो उर्वरक होता क्या है, उसके द्वारा आपकी क्या क्या पॉजिटिव, जो कैसे उनकी लागत कम होगी या फिर कैसे उसको हम बाजार से कम दाम में खरीद के अपनी उत्पादक को वृद्धि करेंगे, ये सब चीज़ें हमें फार्मर या किसानों के बीच इसको हमें अच्छी तरह से अवेयरनेस फैलाना है। और जो एक बड़ी चुनौती है कि नैनो उर्वरक हम लोग बना लेंगे लेकिन कितने दिनों तक ये स्टेबल रहेगा, जैसे कि इसको हम लोग उसकी स्टोरेज पे काम कर सकते हैं या फिर उसकी गुणवत्ता या फिर मानकीकरण नियंत्रण या फिर उसके साथ कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मृदा के अंदर, उस पर भी बहुत सारे शोध हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे चुनौतियाँ हैं और इसके दीर्घकालीन प्रभाव पे भी हम लोग शोध कर सकते हैं। जैसे एक अगर हम सस्य ले लेते हैं, सो सस्य और हमारे दलहन तिलहन, उसको हम मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स के द्वारा ये जान सकते हैं कि उसके प्रभाव लॉन्ग टर्म में क्या होता है। 15-20 साल में उसको अगर हम लोग कंटिन्यूअस प्रयोग करेंगे तो क्या होगा उसकी प्रभाव। तो ये सारे एक छोटे छोटे चुनौतियां हैं जिसपे मुझे लगता है हमें आगे काम करने की जरूरत है।
0: जी मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और बहुत सारी अच्छी बातें कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: धन्यवाद उमा आपको।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
7: बारिश की संभावना, क्या रहेगा हवा का रुख, बढ़ेगी तपिश या आएगा ठंड, आखिर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, सुनिए मौसम आजकल रोजाना 90.8 ग्रीन FM पर। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 60 से 80% रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता

चलते धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी बग कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें, और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें, या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें, या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर ले। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगात बुआई के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूलगोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबोल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूलगोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं। अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं, वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे जरूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है, कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 24 घंटे 7 दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना, और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती है या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात। आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
4: सुहाना सफर और ये मौसम हसी।
3: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
5: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में रबी मक्का में लगने वाले कीटों के समुचित प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह और सर वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका स्वागत है। और किसान अभी मक्का लगा रहे हैं और इस समय उनको क्या कुछ करना चाहिए तो उसके बारे में पहले बता दें।
10: हाँ नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप मक्का लगा रहे होंगे, इसमें कुछ सावधानियां हैं। कैसे, आप मक्का तो आप लगाते ही हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जिसको आप कर करके आप ये कीट है, ये कीट का जो संक्रमण होता है जो, उसे आप बच सकते हैं और आप अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप खेत की तैयारी, जो लोग नहीं लगाए होंगे वो कर रहे होंगे, तो खेत की तैयारी में कुछ चीज़ें हैं, उस बातों पे ध्यान देना है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब जुताई करते हैं तो जुताई हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा है कि कल्टीवेटर से भी करते हैं तो एकदम ऊपर ऊपर ना हो करके उसको थोड़ी गड्ढा में उसको करना है। चूँकि अभी तो ये सीजन है, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी हर तीसरे साल पे आप लोगों को अपनी ज़मीन का गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई जनरली इस महीने तो नहीं संभव है, इस महीने करने से फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। गहरी जुताई करना है आपको मई जून के महीने में, जब सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा होता है उस समय आपको करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है कि जितने भी रोग जो पौधे को करता है, जो शुरुआत में जो पौधा जब हमारा बहुत छोटा रहता है तो उसको संक्रमित करता है, तो उनसे रोग करने वाले कारक को सूर्य के जो प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश जो है उनको मार देते हैं, जिसके चलते ये संक्रमण नहीं हो पाता है। तो एक तो रोगों से बचाव होता है, दूसरा जो है कीट के जीवन चक्र का कोई भी जो स्टेज होता है वो अगर सॉइल में है, ज़मीन में है, तो वो ये ज़्यादा तापमान से, धूप के प्रकाश से वो मर जाते हैं। तो साथ ही साथ जो बहुत सारे जो कीट को जो चिड़िया हैं वो चुन करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये हो गए आपके गहरी जुताई के फ़ायदे। अब हम लोग चलते हैं उर्वरक के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि उर्वरक भी कहीं ना कहीं हमारे कीटों पर व्यापक प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो आपको जो उर्वरक है उसको कब कब देना चाहिए, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उर्वरक हम लोग देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के फॉर्म में, तीन फॉर्म में हम लोग देते हैं। तो इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी खड़े फसल में भी वो फॉस्फोरस और पोटाश डालते हैं। तो ये खड़े फसल में जब फॉस्फोरस और पोटाश डालेंगे तो इनका जो उपलब्धता होता है, ये अगर आज हम उसको छींटते हैं प्लांट में तो इसकी उपलब्धता में होते होते महीनों लग जाते हैं। तो इसीलिए फर्टिलाइजर उर्वरक जो है देने का भी एक प्रोटोकॉल है, एक सही समय है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आधी मात्रा यूरिया का जो अनुशंसित है मक्का के लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान आजकल हाइब्रिड मक्का लगाते हैं तो उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उसकी आधा मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय और पूरी मात्रा फॉस्फोरस और पोटास की। आपको खेत की जब अंतिम जुताई करते हैं उसके बाद पट्टा दे करके जब हम बीज लगाते हैं तो उस समय आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका जब पौधा शुरू में छोटा रहता है तो जितना उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो तो मिलेगा, लेकिन फॉस्फोरस और पोटास लगभग एक महीने के बाद जब उपलब्ध होगा तब तक आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसका उस समय में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, ऐसे आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जो रेस्ट जो नाइट्रोजन है उसको जो आप यूरिया के फॉर्म में देते हैं तो उसको पुनः दो पार्ट में आधा आधा कर करके, एक जब नी हाइट होता है, मतलब नी हाइट कहते हैं जब आपके ठेहुने के हाइट का हो तब, और दूसरा जब उसमें धनवाल जब आने वाला होता है उस समय आपको प्रॉपर सिंचाई के साथ आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो पोटेशियम जो होता है अगर आप कम मात्रा में देते हैं या नहीं देते हैं तो ये आपके पौधे के जो रोगों से लड़ने या कीटों से लड़ने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। अगर पोटेशियम आप कम मात्रा में देंगे तो आपके जो फसल होंगे उस पर कीटों का आक्रमण हो सकता है कि ज़्यादा हो और वो, लेकिन अगर आप पोटेशियम जो समुचित मात्रा में देते हैं तो इस पर कीट, वो पौधा जो होता है वो मजबूत होता है और उसके चलते जो है उसमें कीटों का आक्रमण कम होता है। तो ये आप पोटेशियम के बारे में आप समझ लीजिए, जो म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद जब आप उर्वरक जब दे दिए तब होती है कि भाई बीज का चुनाव कैसे क्या करना है। तो बीज आप अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लेंगे और बीज में भी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बीज एक तो हाइब्रिड होना चाहिए, क्योंकि अच्छी जो गुणवत्ता वाली जो अगर बीज होती है तो उसमें रोग और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। एक जो साधारण प्रकार का अगर बीज हम लगाते हैं वो और एक जो अच्छी गुणवत्ता वाली बीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक तो उत्पादन में ही अंतर होता है और साथ ही साथ इसमें रोगों और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। तो बीज आपको हाइब्रिड और अच्छी गुणवत्ता वाली लेनी है। अब ये बीज आपको मिलेगी कहाँ से, इसके बारे में भी कुछ बात करनी है। तो बीज जो है अच्छे दुकान से ले और वहाँ उनसे कैश मेमो का डिमांड करें, मांग करें, और कैश मेमो जो होता है ओरिजिनल बिल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है उसका लॉट नंबर रहता है, सारा डिटेल रहता है उसमें दिया हुआ। तो इन केस अगर कभी कोई आपको अगर बीज का शिकायत होता है समय से अगर पहले उसमें अगर फ्लावरिंग हो गया, फूल आ गया या दाना सेट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है आपको, अगर आपका कैश मेमो होगा तभी कृषि विभाग या कोई भी आपको सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो ये होगा कि कहाँ से बीज लाएँ, तो ये आपको रसीद लेनी है ओरिजिनल कैश मेमो के साथ और उसको आपको लगाना है। टाइमिंग का भी सही उपयोग करना चाहिए, अभी उपयुक्त टाइम चल रहा है उसको आप लोग लगाइए। अब क्या है कि बीज जो आप लेते हैं उसको उपचारित करना है। अब वो उपचारित कैसे करें, उपचार करने से क्या फ़ायदा होता है, तो उपचार करने का दो, चूँकि ये मक्का है इसलिए दो चीज़ों से उपचार करने से ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो करना है कि रोगों से इसका कैसे बचाव हो, तो रोगों से जो बचाव होने के लिए इसका हम लोग कार्बेंडाजिम से हम लोग इसका बीज उपचार कर सकते हैं। इसका 2 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलो सीड की दर से आपको कार्बेंडाजिम लेना है और पानी उतना ही मिलाना है जितना कि जस्ट ये बीज आपको उसमें मतलब ये भींग जाए। और इसको आपको पक्का फर्श पे या पॉलीथीन जो आता है पॉलीथीन सीट उस पे करना है, ज़मीन पे कभी इसको ना करें। और ये जब भी बीज उपचार करते हैं आपको ठंडे में करना है, धूप में, कड़ी धूप में नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपको रोगों से लड़ने। इससे क्या होता है, ये जो कार्बेंडाजिम है ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, फफूंदनाशी है, और ये आपके पौधे को, जो पौधा आपका छोटा छोटा होता है उसको लगभग 21 दिन तक आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आपके मिट्टी में मिट्टी जनित फफूंद भी होगा तो ये अप टू बहुत हद तक आपके फसल को ये बचाता है। तो ये हो गई। दूसरी बात है कि कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक से भी इसको जो है बीज उपचार करना चाहिए। तो मक्का के केस में क्योंकि कहीं कहीं पे ये हम लोग रबी में लगा रहे हैं इसको, तो इसमें दीमक और इस सब की भी समस्या हो सकती है। दूसरे जो कीट है उनके भी जो शिशु है वो मिट्टी में हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 AC प्लस साइपरमेथ्रिन 5 AC ये जो द्रव के मात्रा में ये पाए जाते हैं कीटनाशी, तो इसका आपको जो मक्का का बीज है उसमें 2 मिलीलीटर प्रति की दर से इसको आपको किसी भी पात्र में या जो पॉलीथीन का जो पैकेट आता है, मक्का का जो पैकेट आता है 2 kg वाला जो आता है, तो उसी में डाल करके आप दोनों हाथ से उसको हिला दीजिए, और हिलाने के बाद पुनः जो है इसको पक्का फर्श पे इसको आप सुखाइए, और सुखाने के बाद तब जा करके आप इसको खेत में लगाना है। इसको पुनः अब खेत में कैसे लगाना है, तो कई किसान भाइयों को रहता है कि अगर जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हम कम करेंगे, और फिर लाइन में पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको भी कम करके अगर जो मक्का के जो पौधा है उसकी संख्या अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा। लेकिन इसके उल्टा भी होता है, जब इस सारा एक अनुशंसित मतलब इसका जो दूरी होती है जो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, और पुनः उसमें 20 सेंटीमीटर का जो होता है लाइन में पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखना चाहिए, क्योंकि इसे अगर कम आप रखते हैं तो जो सूरज का प्रकाश है वो हमारे जो मक्के का पौधा है उसको सभी पार्ट में नहीं लगता है, और जिसके चलते रोग भी होने की समस्या रहती है, और कीटों के जो जीवन चक्र के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था नीचे में जाके कहीं ना कहीं वो छुप जाता है, और छुपने के बाद जो है वो आपके फसल को ज़्यादा ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लाइन से लाइन कर दिए, देन आपको जो पौधा है उसको हमेशा आपको खेत पे अपने जाते रहना चाहिए। खेत पे जाते रहने से क्या होता है कि आपको अगर कोई कीटों का अगर उस पर समस्या होगा, आक्रमण होगा, तो आप देख पाएंगे और उसका जो है समुचित आप उपचार कर पाएंगे।
0: जी, तो अगर हम बात करें कीटों की, तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं इसके बारे में बताएं।
10: हाँ, ये कीट एक तो कटवर्म जो मक्का में बहुत, अभी जब आपका पौधा जब छोटा छोटा होता है तो वो आता है कटवर्म, और दूसरा है जब पौधा फिर आपका जब थोड़ा सा बड़ा होगा तब इसमें तना छेदक का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है। और उसके बाद तना छेदक के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, एक फॉल आर्मी वर्म जो कीट है, जो पहले नहीं पाया जाता था लेकिन विगत कुछ सालों से उसकी आक्रामकता बढ़ गई है, तो वो मुख्यतः ये रहते हैं। उसके अलावा भी कई कीट है लेकिन इन ये तीन कीटों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है ग्रास हॉपर है जो आपको पत्तियों पे खाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग इन तीनों तीन कीटों पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे कि क्या है, उनको कैसे आप पहचानें, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जिसको हम लोग कटवर्म बोलते हैं, ये कटवर्म का आप लोग अपने अलग अलग जगहों पे लोकल भाषा में उसका कुछ और भी नाम है, हो सकता है, ये आपको बताते हैं कि ये कैसे आपके फसल को नुकसान करता है। तो आप जब अपने जो हम मक्का जब लगाते हैं तो शुरुआती कंडीशन में जब ये दो पत्तियाँ एक फेज में होता है, ये जर्मिनेशन के अंकुरित होने के बाद के जो बात है उसके बाद ये जनरली आपको कटवर्म की समस्या हो सकती है। तो कटवर्म में क्या होता है कि इसके जो शिशु होंगे वो लंबा लंबा शिशु होते हैं, और वो जनरली ज़मीन का जो ढेला होता है और उसमें ये छुपा रहता है या दरार रहता है उसमें छुपा रहता है ये दिन को, लेकिन जो ही शाम होता है ये निकल करके आपके जो फसल है उसको ये नीचे से ही कट कर देते हैं, मतलब जड़ के ऊपर से ये कट कर देते हैं। चूँकि पौधा बहुत छोटा होता है, मुलायम रहता है, जिसके चलते कभी कभार किसान भाइयों को क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर ये काट दिए ये जो कीट है इसके जो शिशु है, तो आपको पुनः किसान भाइयों को वहाँ पे गैप फिलिंग करना पड़ता है मक्का के दूसरे बीजों से। तो ये कटवर्म है। तो अब इस कटवर्म से कैसे आपको निजात पाना चाहिए, तो अगर ये इसकी कहीं कहीं समस्या है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी समस्या ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको ये क्लोरपाइरीफॉस 50C प्लस साइपरमेथ्रिन 5EC की जो मात्रा है वो 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में, इसको आपको पूरी तरह से इसको ज़मीन पे और जो आपका छोटा पौधा है उस पे शाम के समय, शाम के 4 बजे के आसपास इसको छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से आपका जो है वो रोकथाम हो जाएगा। तो ये तो हो गया जो शुरुआती कंडीशन है। उसके बाद पुनः इसके बाद क्या होता है कि जब पौधा आपका जो बड़ा होगा तो तना छेदक का समस्या हो सकता है। तो ये तना छेदक कैसा होता है, ये तना छेदक आप देखेंगे कि आपका जो मक्का है तो उनकी जो पत्तियां हैं उस पत्तियां में लाइन से तीन तीन गोला गोला छिद्र ये हो सकता है, छिद्र मिले। तो पुनः छिद्र के साथ साथ होता है क्या कि जो उसका जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन में जो है ये इसके जो है शिशु रहते हैं और वहाँ पे वो उसको वो खा करके क्षतिग्रस्त करते हैं, साथ ही साथ स्क्रीटा भी उसमें वो डालते रहते हैं। तो ये है तना छेदक का। तो तना छेदक की जब समस्या हो, और इसमें भी आपको ध्यान देने की बात है, अगर 100 पौधे में अमूमन अगर 5 पौधे में ऐसा समस्या अगर 5 से ज़्यादा में देखा जाता है तब आपको इसके उपचार के लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए। अगर कहीं कहीं पे है 5 से इसकी संख्या कम है तो ये उतना इकोनॉमिक लॉस नहीं कर सकता है, आपको इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसके कीटनाशी को छिड़कने में और ख़रीदने में और छिड़कने में जितना पैसा आपका लगता है उससे कहीं ना कहीं उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तब आपको इसके उपचार के लिए आपको आगे आना होगा। तो एक तो हो गया, अब इसका उपचार कैसे करें। तो इसके उपचार करने के लिए अगर पौधा आपका छोटा है, आपका अगर पौधा आपके ठोने से नीचे कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप जो दानेदार जो कीटनाशी है जो कट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 0.4G के नाम से आता है, तो इसको एक जर्दे के डब्बा में डालना है और जर्दे के डब्बा में छेद करके जैसे जर्दा पान पे डालते हैं लोग, उसी ढंग से आपको जो मक्का का जो गभा है उस गभा में उसको डालना है, ऐसे छींटना है ताकि दो तीन उसके जो हमारा जो कीटनाशी है क्लोरोपाइरीफॉस दानेदार, उसकी ये दानेदार कीटनाशी है उसका दाना जो है उसके कंठ में चला जाए, क्योंकि ये कीट जो कंठ में छुपे रहते हैं तो ये कीट के बॉडी में ये सट स्पर्श करते ही सटते ही ये कीट मर जाता है और आपका जो है जिस पोर्शन में जिस पॉकेट में जिस क्षेत्र साइड में अगर ये समस्या उधर ही सिर्फ छिटने से आपको काम हो जाएगा, आपके पूरे फसल पे छिटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके चलते क्या होता है कि एक तो हमारा जो कीटनाशी की मात्रा कम लगती है और हमारे जो मित्र कीट है वो भी मरने से बच जाते हैं। तो ये हो गया आपको ये तना छेदक के लिए। लेकिन हाँ, अगर पौधा पर बहुत जब बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में आप ये जो दानेदार दवा जो है नहीं छींट सकते, तो उस कंडीशन में आपको जो लिक्विड वाला दवा है उसको आपको गटोर से स्प्रे करना चाहिए और उस कंडीशन में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5SG उसकी मतलब 10 लीटर पानी में 4 ग्राम मात्रा आपको डालना है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक ऐसा कीटनाशी है जिसको पहले ये झिल्ली की तरह होता है, इसको पहले आपको किसी भी पात्र में घुला लेना है और घुलाने के बाद तब आपको स्प्रेयर में डाल करके फिर पानी डालना है और उसके साथ कुछ मात्रा में स्टिकर मिलाना है और स्टिकर मिला करके अच्छी तरह से उसको तब आपको स्प्रे करना है, गटोर से पूरी अच्छा से स्प्रे करना है और स्प्रेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें एकदम स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटा छोटा बूंदा है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी पूरा निकल रहा हो, इससे आपकी दवा भी ज़्यादा लगती है और हमारा जो सॉयल और सारा हमारा जो सिस्टम है वो उस पर ख़राब प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया तना छेदक के लिए। अब एक आती है जो फॉल आर्मी बम, तो ये फॉल आर्मी बम हो सकता है कि सब कहीं पे आता है कहीं पे नहीं भी आता है, लेकिन इसको ये बहुत आक्रामक है, ये तना छेदक से भी ज़्यादा बहुत जल्दी ये आपके फसलों को बर्बाद करता है, इसीलिए इसका नाम फॉल आर्मी बम रखा गया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका 2 से 3 दिन में आपके फसल को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। तो पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो ये आपको जो तना छेदक होता है इससे ये ज़्यादा मोटा होता है, लंबा भी होता है, इसके बॉडी पे ये काला काला धारी होता है और साथ ही साथ इसके जो टेल जो पूंछ पोर्शन जिसको बोलते हैं, तो पूंछ पोर्शन में 4 छोटे छोटे बिंदु काले काले बिंदु होते हैं जो एकदम स्क्वायर के रूप में रहते हैं, जैसे कि अगर चारपाई या जो भी स्क्वायर होता है उसके चारों साइड पे ये बुंद रहेंगे। साथ में अगर आगे पोर्शन में देखिएगा तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो उल्टा वाई का शेप उसके सर पे बना हुआ रहता है। तो ये फॉल आर्मी बम है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो जनरल कीटनाशी है उसे ये कंट्रोल जनरली नहीं होता है। तो इसके भी 6 इन स्टार है, इसके जो 6 स्टेजेज हैं, अगर ये इनिशियल कंडीशन में है तो सिंपल कीटनाशी से भी ये इनका रोकथाम हो सकता है, लेकिन अगर ये इन स्टार अगर ये एडवांस इन स्टार में है जैसे 4, 5 और उसके आगे के इन स्टार में है, तो उस कंडीशन में आपको मतलब इससे जो हार्डी इंसेक्टिसाइड है वो देना है। तो जो शुरू वाला अगर फेज है जैसे स्टेज 1 और 2 में है तो इमामेक्टिन बेंजोएट हमने जो बताया है उससे भी ये नियंत्रित हो जाएगा, लेकिन अगर 3 या 4 स्टेज में है तब स्पाइनोटोरम 11.11.7% की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको और साथ में स्टिकर लेकर के इसको छिड़काव करना है शाम के समय में। और अगर इसकी उपलब्धता नहीं हो तो थायोमेथगजम 12.6% और लैम्डा साइलोहेलोथ्रीन 9.5% की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में इसका 1 ml दवा देना है। मतलब ये कहें कि अगर 16 लीटर का हमारा स्प्रेयर है तो इसमें जो है थायोमेथोगियम प्लस लैम्डा साइलोथिन का जो कीटनाशी है उसकी 4 ml दवा ही देनी है। तो ये सब इसके कीटनाशी हैं जिनको आप छिड़काव करके और समय समय पे आप उसको देख करके ये कर सकते हैं। फॉल आर्मी वर्म में क्या होता है, ये आपके पत्तियाँ को तो खाते ही हैं, जो बढ़ने वाले पोर्शन को खाते हैं, साथ ही साथ जब आपका जब मक्का का जब बाल लग जाता है और बाल का जो बाहर वाला पोर्शन है जिधर मोचा से अंदर की ओर जब हमारा इसका दाना लग जाता है तो उसको भी ये खाना उसको भी ये खा करके क्षतिग्रस्त करता है। तब उस समय में आपको क्या है कि हमने जो ये कीटनाशी बताया है इसको पूरी तरह ऐसा इसको गटोर मशीन से छिड़काव करना है ताकि ऊपर से आपको मोचा और समथिंग ये सब में भी जाए और इससे आपका इस से आप निजात पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप करिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मक्का का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा।
11: उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पपोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन से। दोस्तों इस बार बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह रही। कोसी, गंडक और गंगा नदियों में जो आकस्मिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों किसानों के खेत लगभग बर्बाद हो गए। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे किसान भाई बहन जब पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हो तब उन तक सही जानकारी पहुंचे, सही बात पहुंचे, किस प्रकार से वो पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निदेशक प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से डॉक्टर रविंद्र कुमार सुहाने। सर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद।
6: सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कई जिलों के लोग प्रभावित हैं, वहाँ के जो किसान भाई बहन हैं वो कृषि से संबंधित क्या उपाय करें?
8: देखिए किसान भाइयों नमस्कार, ये बहुत ही अहम विषय है क्योंकि हमारी किसान भाई आपदा से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से बहुत सारे राहत कार्य चला रही है, लेकिन उसमें कृषि जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और 15 जिले के मुझे लगता है 100 के अधिक प्रखंड हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। उन प्रखंडों में हमने देखा कि कृषि काफ़ी प्रभावित हो रही है, कृषि और फसलें हमारी काफ़ी प्रभावित हो रही हैं। तो अगर हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि अगर धान उन्होंने निचली भूमि में लगा रखा है तो 3 से 7 दिन तक अगर उनका जल भराव है तो और आंशिक क्षति है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि तत्काल पानी को निकाल दें और जो उनका धान पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है वहाँ पे गैप फिलिंग या पुनरोपाई कर दें और उपलब्ध स्वस्थ पौधों का उपयोग करें। मतलब उसमें भी हमें देखना है कि स्वस्थ पौधे ही लगाएं। पानी निकलने के बाद हमें ये भी देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही, क्योंकि कई बार बीमारी या कीट के अटैक होंगे, उसके लिए भी हम आपको एडवाइजरी देंगे। अगर ऐसा आ रहा है तो आप तत्काल हमारे जो टोल फ्री नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है विश्वविद्यालय का, उस पर आप बता सकते हैं। दूसरा, धान जो पूरी डूब चुकी है, अभी हमने जो बात की थी वो निचली भूमि की थी, जहाँ पे केवल 3 से 7 दिन तक जल भराव रहता है, जहाँ पे धान हमारा पूर्ण रूप से क्षति हो गई है। लंबे समय तक पानी में डूबी फसल पूरी तरह नष्ट होने पर खेत की स्थिति एवं बुआई समय के अनुसार करें। अब हमें मेन फोकस करना होगा रबी फसलों पे। मेन हम देखना कि हमारी अगर पूरी फसलें नष्ट हो गई हैं धान की, तो हमें अब रबी फसल का, सितंबर माह चल ही रहा है, हम अक्टूबर माह से रबी की तैयारी करने लगते हैं, तो वैसी स्थिति में हम सरसों का, मसूर का, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लगा सकते हैं। धान में भी हम देखते हैं कि मध्यम भूमि है, अभी निचली भूमि और जहां पूरी क्षति हो उसकी बात की है, अगर मध्यम भूमि है और पौध संख्या पर्याप्त है, वहां फसल को आप बचा लें, जल निकासी, गैप फिलिंग एवं पोषक तत्व प्रबंधन करें। पूर्ण क्षति होने पर मिट्टी के काम करने योग्य होते ही कम अवधि वाली रबी फसलों की तैयारी करें। ये हमारा धान के लिए संदेश था। मक्का में अगर पानी अतिरिक्त है तो उस पानी को निकाल दें। आंशिक रूप से जो फसल अगर बची है तो उसे बचाए रखें, और अधिक नुकसान हो गया है तो पुनः बुआई अथवा उपलब्ध रबी फसल में ही हमें जाना पड़ेगा। पूरा नुकसान अगर हो गया है तो हमें रबी फसलों की ही ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह दलहन में हम लोग कई बार अरहर लगाते हैं, वहां भी हम पानी निकालकर पौधों की स्थिति को देख लें, स्वस्थ पौधों को बचाएं, जहां संभव हो गैप फिलिंग करें। अगर अधिक क्षति हो गई है तो कम अवधि वाली रबी फसलों को, जो हमने पहले ही बात की है कि सरसों है, मटर, मसूर है, मटर या तोरिया जैसी कम अवधि वाली रबी फसलों को लें। साथ ही सब्जियां, वहां पे हमें ये देखना है कि सब्जियां कई बार बहुत नुकसान हो जाती हैं, तो पहले हम वहां पे जल निकासी का प्रबंधन कर लें। मिट्टी की स्थिति ठीक होने पर पुनः बुआई करें या रुपाई करें, और आगे के लिए उठी हुई क्यारियां रिज पर सब्जी उत्पादन, हम रिज मेथड को इसमें ज्यादा बढ़ावा दें ताकि पानी आपके फसलों पे नहीं लगे, तो क्यारियों को रिज बना के हम सब्जी उत्पादन करें। अगर आपकी कुछ फसलें कट गई हैं, बाढ़ से प्रभावित धान, मक्का, दलहन की तुरंत सूखे स्थान पर ले जाकर सुखाएं और साफ करें, और क्षतिग्रस्त फफूंद लगे अनाज को अलग रखें, पर्याप्त नमी कम होने के बाद ही भंडारण करें। तो कृषि के क्षेत्र में इन चीजों की देखने की बहुत आवश्यकता है।
6: जी सर। सर, ये तो बात हो गई फसलों की और उनसे जुड़े जो उपाय करने चाहिए, लेकिन इस दौरान बाढ़ की वजह से पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, फिर चाहे उन्हें चारा की कमी हो या फिर उनके स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा प्रभावित होते, तो ऐसे में पशुपालक भाई बहन को क्या करना चाहिए?
8: देखिए, पशुधन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चारा, किसान भाइयों। तो हम लोग, राज्य सरकार ने कई जगह चारा बैंक स्थापित किए हैं, जहाँ पे भूसा या ब्लॉक है वो, और सरकार हमारे अपने स्तर से दे रही है, तो वो सरकार के द्वारा जो भूसा पुआल का कुट्टी दिया जा रहा है, उसको आप, उससे आप मवेशियों को खिलाएं। और दूसरा, हम इस स्थिति में गैर फफूंद युक्त पेड़ की पत्तियों, जैसे पीपल की, बरगद की, बांस है, सुबबूल आदि का सुरक्षित उपयोग करें, और उपयुक्त स्थिति में अजोला एवं गन्ने की अवशोषों का भी प्रयोग करें। हमारे इस क्षेत्र में गन्ना कम होता है, लेकिन अजोला भी अगर हम उसको खिलाने लगे तो ठीक हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ ध्यान देना होगा कि फफूंद लगा या सड़ा चारा हम बिल्कुल ना खिलाएं, इससे पशुओं को कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक घोंघा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं को चराने से बचाएं, क्योंकि वो पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, ताकि उनको लीवर फ्लूक और फैसिलियोसिस जैसी परजीवी बीमारियों का जोखिम कम हो पाए। ये हमारी थी जहां चारा की हम बात कर रहे थे, संरक्षण की बात कर रहे थे। साथ ही सरकार ने बहुत ज्यादा मोबाइल पशु चिकित्सा बैंक चला रखी हैं, उनके माध्यम से HS, BQ, FMD, एंथ्रैक्स, PPR एवं रानीखेत जैसी बीमारियों के विरुद्ध आवश्यक टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। उसमें आप अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा दें। बाढ़ का पानी उतरने के बाद पशुओं का व्यापक कृमिनाशक कराया जाए, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कृमिनाशक दवा खिला देंगे तो फिर आगे वो लॉस नहीं होगा आपका। तीसरा, हम देखते हैं कि पशुओं को खुले या स्थानांतरित करते समय उन्हें आपस में बांध कर न रखें, तथा गले की रस्सी लगी न छोड़ें, ताकि डूबने या फंसने का खतरा न हो। अस्थायी पशु शिविरों का सरकार ने कई जगह अस्थायी पशु शिविरों का बना दिए हैं, जहां पे आप पशुओं को रख सकते हैं। वहां पे सरकार ने उन पशुओं को खाने और स्वच्छ रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुर्गी पालन इकाई अगर ऐसी हैं तो वहां पे ऊंचे स्थान पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित, सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल तथा आवश्यक एंटी स्ट्रेस मल्टीविटामिन जरूर उपलब्ध कराएं। ये पशु स्वास्थ्य के बारे में है।
6: जी सर। सर, जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं या फिर जलीय कृषि करते हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
8: देखिए, ये हमारा मत्स्य पालन जो करते हैं उनके लिए मैं विशेष संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि मत्स्य पालन हमारा होता ही उसी बांध में ही, मतलब पानी में ही होती हैं ये चीजें। लेकिन कई बार आपका जो तालाबों की मेड़, बंधों की तत्काल मरम्मत करें, जाल और बांस की घेराबंदी से मछलियों के बहाव को रोकें, क्योंकि मछलियां इसमें सबसे ज्यादा मछलियों को नुकसान होता है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे तालाब हमारे हैं तो वहां पे हम जाल और बांस की घेराबंदी कर दें ताकि मछली का बहाव वहां पे ना हो सके और मछलियां वहां सुरक्षित रह सके। दूसरा, एरेटर एवं पंप एवं अन्य मत्स्य उपकरण को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कई बार हम एरेटर लगा देते हैं, अगर उड़ी तो पानी में बह जाएंगे, सारा पानी का लेवल एक हो जाता है। बाढ़ के पानी से प्राप्त प्राकृतिक मत्स्य बीज, स्पान फ्राई, फिंगरलिंग्स जो अपने आप आ जाती हैं, उनको सुरक्षित ऊंची नर्सरी तालाबों में रखें। बहुत सारी फिंगरलिंग्स अपने आप एक खेत से दूसरे खेत में आ जाती हैं। और बाढ़ के बाद तालाबों की जल गुणवत्ता की नियमित जांच करें तथा हमारे जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्य विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके सलाह लेकर चूना एवं अन्य अनुमोदित जल स्वास्थ्य को अपनाएं। तो ये मुख्य है। और तालाब के सुरक्षित एवं उपयुक्त होने के बाद उन्नत फिंगरलिंग्स, ईयरलिंग्स को पुनः फिर आप उसका नया ढंग से शुरू करना पड़ेगा। तो मत्स्य पालन में मुख्य ये है, मुख्य इन चीजों को ध्यान देना है। और विश्वविद्यालय का संदेश है कि पहले जीवन और पशुधन की सुरक्षा, फिर फसल और एवं संपत्तियों को बचाना, जल निकासी एवं क्षति का आकलन, उपयुक्त फसलों, मेन अभी हमें रबी फसलों का ध्यान देना है कि उनकी हम समय पर बुआई करें।

0: बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1-800-345-6455। अगर इस टोल फ्री नंबर पे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप 10 से 5 तक जो हमारे कार्यालय अवधि के दिन होते हैं उसमें अगर बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक आपके, कहीं अगर बाढ़ के बाद कोई बीमारी, कीट या किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत निदान करेंगे, हमारी टीम आपके यहाँ जाएगी। तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है, मैं पुनः एक बार बताना चाहूँगा, 1-800-345-6455। इसी तरह एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम BAU एग्रो डॉक्टर के नाम से जानते हैं, 7004528893। मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, 7004528893। हमने किसान भाइयों, आपकी सुविधा के लिए हमारे बिहार कृषि विद्यालय में 4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें इनकी लगातार हम आपसे बातें करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई जो आपदा में उनका नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम पुनर्बहाल करके और उनकी आय में इजाफा कर पाए। धन्यवाद
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, सर के द्वारा बताई गई बातों का ध्यान रखें और उम्मीद हम करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन को वापस सुचारू रूप से व्यवस्थित करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और इस दौरान आप तक सही जानकारी पहुंचाने का काम हमारा है, आप हमारे साथ यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 60 से 80 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं अनुमान है कि इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो, यानी कि उनमें दूध भरने की अवस्था हो, इस अवस्था में उन्हें गंधी व कीट से बचाना बहुत जरूरी होता है। गंधी व कीट के नियंत्रण के लिए फालीडाल 10% या मेलाथियान 10% धूल का प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलोग्राम की दर से भुरकाव करें। और ये भुरकाव ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले करें या शाम में 5 बजे के बाद करें। भूरा तना मधुआ कीट यानी कि BPH धान की फसल का एक प्रमुख शत्रु कीट है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला दें या फिर एसीफेट की 75% WP की 1.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आगात बोई गई धान की फसल जो बाली निकलने की अवस्था में आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जो मक्का की खेती करते हैं उन्हें बता दें, धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें। और जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में फल और प्ररोह वेधक कीट की निगरानी करते रहें। इसके पिल्लू भिंडी के फलों के अंदर छेद बनाकर उसके अंदर घुसकर फलों को खाते हैं और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी के अंदर दबा दे, यानी कि उन्हें नष्ट कर दे। और अगर भिंडी की फसल में अधिक नुकसान दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में क्विनालफास 25 EC की 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से इसका छिड़काव करें। या फिर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। आपको बता दें, टमाटर के पौधे बुआई के 21 से 30 दिन के पश्चात पौधे लगाने योग्य हो जाते हैं। संकर प्रभेद के लिए 90x60 cm पौध से पौध की दूरी रखें। रोपाई के दौरान 120 किलोग्राम नेत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश खेत में मिलाकर रोपाई अच्छी तरीके से करें। गाजर की अगेती बुआई किसान भाई बहन कर लें। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यम दागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो और नेंटेस प्रभेद अनुशंसित हैं। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी

0: में कर ले। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया गोल्डन एकर पूसा मुक्ता पूसा गीती और अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित है। मूली की आगाध बुआई के लिए पूसा चेत की, पूसा देशी, पूसा हिमानी, पूसा रश्मि, जापानी सफेद, पंजाब सफेद, अर्का निशांत प्रभेदों की बुआई करें। बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 25 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पेटामेन, पूसा सिंथेटिक एक, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी और अर्ली स्नोबॉल, इन किस्मों की बुआई नर्सरी में कर ले। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के फसल के लिए बीजों को उपचारित करना बहुत जरूरी होता है। फूल गोभी के उपचारित बीजों को उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिराएं। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा जरूर खिलाएं, अनुपात आधा आधा होना चाहिए। 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण और नमक प्रतिदिन देना जरूरी होता है। पशु घर के आसपास मच्छर, मक्खी और कीड़े पनपने से रोकने के लिए चूना का छिड़काव करें। मवेशियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण जरूर करवाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। कृषि विभाग द्वारा जारी पौधा संरक्षण सामयिक सूचना। खरीफ मौसम में ग्रास हॉपर के प्रकोप की संभावना रहती है। ग्रास हॉपर को किसान फुतका के नाम से भी जानते हैं। इसका व्यसक 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी मादा पूरे मौसम में औसतन 200 अंडे देती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर अंडे की संख्या 400 तक हो सकती है। व्यस्क मादा आधे से 2 इंच मिट्टी के अंदर अंडा देती है। अप्रैल मई में शिशु कीट 5 से 6 विकास की अवस्था के बाद 40 से 60 दिनों में व्यस्क बनते हैं। ग्रास हॉपर की संख्या को नियंत्रित रखने के लिए इसके प्राकृतिक शत्रुओं जैसे ब्लिस्टर बिटिल, ग्राउंड बिटिल, चिड़िया, छिपकली, मेढक, मकड़ी इत्यादि का संरक्षण करना चाहिए। ग्रास हॉपर कीट फसल की पत्तियों को एक या दो किनारों से खाता है। इसके उग्र आक्रमण की दशा में सिर्फ मध्य शिरा ही बचा रह जाता है। फलस्वरूप पौधे की वानस्पतिक वृद्धि प्रभावित होती है। इसकी संख्या प्रति वर्ग मीटर 3 से 7 होने पर इसके जैविक या रासायनिक नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। फुतका कीट का प्रबंधन आप इस प्रकार कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पक्षी बैठक लगाना, जैविक कीटनाशी के रूप में यूवेरिया बेसिना 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मेटारीजियम स्पी का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और नीम तेल 1500 ppm का 3 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। रासायनिक कीटनाशी के रूप में क्लोरपाइरिफास 20% ईसी की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर लैम्डा साही हेलोथ्रीन 5% ईसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डेल्टा मेथ्रीन 2.8% ईसी की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर या फिर फिप्रोनील 5% SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव कार्य शाम के समय यानी कि दोपहर 4 बजे के बाद करना अच्छा होता है। विशेष सेवा या सुविधा के लिए अपने नजदीक के पौधा संरक्षण केंद्र या कृषि विज्ञान केंद्र अथवा पौधा संरक्षण सहायक निदेशक उद्यान या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जाँच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
1: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
1: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
2: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
1: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
2: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
1: श्रोताओ, मेघालय यानी मेघों का घर
2: जी।
1: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
2: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
1: किसेन वानियांग, एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024, मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
2: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
1: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है
2: जी।
1: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देख कर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
2: श्रोताओं कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि चार बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने दो रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
1: और किसेन ने श्रोताओं दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था
2: जी।
1: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
2: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
1: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
2: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
1: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया
2: जी।
1: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
2: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस के चार बच्चों का जीवन बच गया।
1: श्रोताओ, किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है
2: जी।
1: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
2: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
1: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
2: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
1: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने चार बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
2: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
1: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम तीन बातों को जरूर याद रखें
2: जी।
1: तो पहली बात,
2: संकट में घबराएं नहीं।
1: दूसरी बात,
2: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
1: और तीसरी बात,
2: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम
2: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
1: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी
2: जी,
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
3: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: ना नहीं,
4: अरे
5: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
6: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
4: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
5: प्लीज मेघा
6: दिखा दो।
4: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं। चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
7: बहुत अच्छी।
8: मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
3: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
9: जी मैडम।
3: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
9: धन्यवाद मैडम।
3: क्या मिला पुरस्कार में?
9: जी
6: मैडम, आप ही कहते इंतजार कर रही थी।
3: अच्छा,
6: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
3: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
9: लीजिए मैडम।
3: हाँ, इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
4: अरे किताब ही है।
3: हाँ, शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
9: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
3: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
4: सैनिकों के बारे में?
9: सैनिकों के बारे में है।
6: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
3: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
9: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
3: अच्छा।
9: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
3: वाह,
8: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
3: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
4: सैनिकों को तो बात करनी होती होगी।
9: बहादुर है हमारे सैनिक।
6: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
8: मुझे भी।
6: इसके बाद में नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
5: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
6: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
3: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
6: रास्ता है?
3: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
9: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
7: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
9: जी मैडम।
3: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
9: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
3: क्या बात है।
6: अच्छा मेघा ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
9: बताती हूँ सुनो। परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
3: वाह। अच्छा मेघा क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
9: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
3: शाबाश।
9: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
6: मेघा ऐसा क्या किया था उन्होंने?
9: बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहां से शुरू करूं?
7: ओ मैडम जी।
3: जी मोहन भैया क्या बात है? आ जाइए।
7: मैडम जी आपसे कोई मिलने आए हैं। कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
3: हाँ। मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
7: ठीक है जी।
3: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
9: जी मैडम।
3: मेघा देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
6: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
4: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, बहुत ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन।
8: वाह देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
10: मोहित लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
3: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
11: नमस्ते
12: बच्चों।
3: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
9: जी मैडम।
12: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
9: धन्यवाद सर।
10: धन्यवाद सर।
12: सबसे पहले तो मेघा मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
9: धन्यवाद सर।
12: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
9: सर मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
12: बिल्कुल ठीक। बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
3: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
12: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
13: एक हिंदुस्तान।
12: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को ये नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
11: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
12: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद। दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
14: शाबाश जांबाजों, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, चलो ये काम करो। फायर, फायर!
12: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
14: सर, सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए।
12: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
14: सर,